ओम शांति। संगम युग भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। यह अनमोल समय सचमुच कल्प में केवल एक बार ही आता है, जब भगवान आकर अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं, जब वो भाग्य बांटते हैं, वरदान देते हैं और जन्म जन्म के लिए भरपूर कर देते हैं। हम पूछें अपने से, मेरा संगम युग कैसे बीता? क्या मैंने संगम युग के एक एक क्षण को उतना ही महत्व दिया जितना इसका महत्व है, जितना इसको बाबा वैल्यू देते हैं? हमारा एक एक सेकंड बहुत ही मूल्यवान है। बाबा कहते हैं एक एक वर्ष के बराबर है, और हमारा एक एक संकल्प बहुत महान है, हमारा एक एक कर्म भी, हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, हमारा अमृत वेले का योग, मुरली सुनना, सारा दिन सेवा करना या अपने कार्यों में अलौकिक रूप से निष्काम भाव से रहना, ये सभी संगम युग की महानताएं हैं। तो सभी बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, मैंने अपना संगम युग कैसे बिताया है? एक से हमने पूछा, ज्ञान में कितने समय से हैं? 16 साल से। इनके जीवन में समस्याएं बहुत हैं। मैंने पूछा 16 साल में कितने घंटे योग किया होगा, तो उत्तर मिला 16 घंटे। तो देखिए, ये तो संगम युग के महत्व को समझने की बात नहीं है। अगर योग अच्छा नहीं तो जीवन समस्याओं से घिरता जाता है, मन परेशान होता रहता है, क्योंकि अब सभी के कर्मों के हिसाब किताब पूर्ण होने का समय आ गया है। तो फिर से सोचें, मैंने अपना संगम युग कैसे बिताया है? अलबेलेपन में दूसरों को देखते हुए, पर चिंतन करते हुए, तेरी मेरी में, सेवाओं में संघर्ष में, या सेवाओं का आनंद लेते हुए अमृत वेले सोकर बिताया, या अमृत पान करके बिताया, मुरली का रस लिया, या कभी लिया कभी नहीं लिया, कैसे बीता हमारा दिन, कैसे हम बाबा के साथ के अनुभव में रहे, पूरा संगम युग कैसे हमने बिताया, जरा एक नजर डाल लें। और अब पुनः ध्यान दें कि हमारा ये पुरुषोत्तम संगम युग कैसे बीत रहा है। ऐसे तो नहीं कि हम फिर से अलबेलेपन में इस अनमोल समय को व्यतीत कर रहे हैं। चेंज करेंगे अपने को, जितना महत्व इस समय को स्वयं भगवान दे रहे हैं, उतना ही महत्व हमें भी इस समय को देना है। बस हम जितना चाहें अपना भाग्य बना लें, और विचार कर लें अब अच्छी तरह गहनता से कि आने वाले संगम युग के दिनों को हमें कैसे व्यतीत करना है। महान स्थिति में या तेरे मेरे में, उलझनों में या ईश्वरीय मौजों में, प्रतिपल सफल करते हुए या हर क्षण और हर संकल्प दूसरों के बारे में सोच सोच कर उसे व्यर्थ गंवाते हुए अपने जीवन का एक सुंदर प्लान बनाएंगे। ये प्लान ही हमें महान लक्ष्य की ओर ले चलेगा। लक्ष्य भी निश्चित करें और सुंदर प्लानिंग भी करें। लक्ष्य अगर कोई महान बना भी ले, लेकिन उसे प्राप्त करने की प्लानिंग बहुत अच्छी ना हो, तो लक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। लक्ष्य मनुष्य को निराशा के गर्त में ले चलता है। तो सुंदर लक्ष्य भी और उसको प्राप्त करने की सुंदर प्लानिंग भी बनाएं। तो आइए हम आज सारा दिन इस स्वमान में रहें कि मुझ भाग्यवान आत्माओं को ही ये पुरुषोत्तम संगम युग का सुंदर काल मिला है, सुंदर अवसर मिला है, जिसमें मैं अपनी स्थिति को महानतम बना सकता हूँ, बना सकती हूँ। और आने वाला समय हमारी हमसे डिमांड करेगा कि हमने संसार को देने के लिए स्वयं में क्या क्या भरा है। तो आइए आज अभ्यास करें ये संगम योग। सामने बाप दादा बैठे हैं, जो साकार स्वरूप को इमर्ज कर सकें वो उसे करें, जो अव्यक्त रूप में बाप दादा से मिले हैं उसे देखें। और बाबा ने
अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे महान भव, संपूर्ण पवित्र भव, सफलता मूर्त भव और आज इस तरह इस नशे में रहेंगे। स्वयं भगवान का हमें साथ मिला है। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कुछ युवक बहुत पढ़े लिखे, योग्य और स्वस्थ होते हुए भी जब समय की बुराई करते हैं तो उस समय बड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि इस युग में तो आगे बढ़ने के सारे अवसर भरे पड़े हैं। क्या इससे अच्छा समय कभी आपने देखा है? नहीं, इससे पहले ऐसे अवसर थे ही नहीं। आज तो हम जिधर भी नजर दौड़ाकर देखते हैं, उधर ही अवसर नजर आ रहे हैं। इस पर भी यदि कोई नव युवक निराश होकर बोले, अरे अपना तो भाग्य ही खोटा है, जिधर भी जाते हैं निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता, हमें आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, इस समाज में तो जीना ही बेकार है जिसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं, यह सब कुछ उन लोगों का बहाना है जो मन में पाप के गठरे लिए घूमते हैं। यह पाप नहीं तो और क्या है? आप स्वयं कुछ नहीं करते, दोष देते हो समाज को। क्या आपने अपने ही जैसे लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर और बड़े बड़े बिजनेस चलाते नहीं देखते? इन सब लोगों ने यह सब कुछ कैसे प्राप्त कर लिया? इन लोगों ने हिम्मत से परिश्रम किया और साथ ही अपने विवेक से काम लिया, तभी सफल हो पाए। सफलता एक दिन में नहीं मिल पाती, इसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। जैसे कि एक किसान पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी को खोदता है, फिर उसमें बीज बोता है, बीज बोने के पश्चात खाद डाली जाती है, समय समय पर पानी दिया जाता है, गुड़ाई करके फालतू घास फूस निकाली जाती है, कई महीनों की मेहनत के पश्चात जाकर फसल तैयार होती है, परंतु किसान इस पर भी कभी निराश नहीं होते। वे तो अपना कर्तव्य पालन बराबर करते रहते हैं, कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है, अधिक वर्षा होने या सूखा पड़ने पर भी फसल मारी जाती है, मगर इस पर भी किसान खेती का काम नहीं छोड़ देते। तब फिर आप निराश क्यों होते हो? क्यों जरा सी असफलता पर भाग्य का रोना रोने लगते हो? सफलता और असफलता, दुख और सुख, यही तो जीवन के दो पहलू हैं। जीवन तो संघर्ष से बनता है, मुफ्त ही खाने वाले जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अगर जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, जी जान से।

आजकल के युवकों के मन में सबसे बुरी बात यह घुस गई है कि वे चाहते हैं कि पहली असफलता के पश्चात कोई उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए, यानी किसी की सहायता पाकर ही वे ऊंचे उठने की धारणा बना लेते हैं। यदि उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कुछ करने की हिम्मत उनमें नहीं रहती। आपकी घड़ी का कोई पुर्जा यदि खराब है तो वह घड़ी के अंदर ही तो है। वह जब भी ठीक होगा तो घड़ी को खोलकर ही होगा। बिना घड़ी के खुले बाहर से सिर पटकने पर भी कुछ होने वाला नहीं। ठीक इसी तरह से जो भी शक्ति आपको मंजिल की ओर ले जाती है वह आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि बाहर के हालात ही कुछ ऐसे हैं जिनके कारण उनकी हालत खराब होती जा रही है, उसी कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यदि वे हर काम के लिए स्वतंत्र होते तो फिर काम करके दिखलाते। यह सब खोखली और बेसिर पैर वाली बातें हैं। इनसे कुछ नहीं होता। यदि यह होता तो वो हो जाता, यदि वो हो जाता तो हम यह कर लेते। जिन लोगों को कुछ करना होता है वे कहां यह सब सोचते हैं कि वह होता तो वो होता, वो होता तो यह होता। यह सब अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने वाली बातें हैं। जो लोग कुछ कर नहीं सकते वे केवल बातें ही करके अपना काम चला लेते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यही सोचते हैं कि शादी के पश्चात उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। एक के साथ एक मिलकर हम दो हो जाएंगे। दो की सोच के सहारे वे जीवन की खोई हुई खुशियां फिर से प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रतीक्षा में कुछ भी नहीं कर पाते बल्कि कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए अपना दिल बहलाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी असफलता का सारा बोझ किस्मत पर डालकर अपने आप को बचा लेता है। उनकी हर असफलता के पीछे भाग्य का हाथ रहता है। गोया कि हर असफल प्राणी ऐसे ही बेतुकी बातों का सहारा लेकर अपना बचाव कर लेते हैं, जिसे उनकी उन्नति के रास्ते का रोड़ा कहा जा सकता है। तोड़ दो ऐसे बंधनों को, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप कार्य करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो आप कुछ प्राप्त कैसे कर पाएंगे। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध कुछ भी नहीं मिलती। भूल जाओ इन सब रूढ़िवादी घटनाओं को। आपकी उन्नति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा आपका रूढ़िवाद है। यदि आपको आगे बढ़ना है, अपने मन की कामनाओं को पूरा करना है तो रूढ़िवाद को छोड़कर संघर्ष की ओर ध्यान दो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

भाग्य कोई लिखता नहीं बल्कि बनाया जाता है। इसीलिए अपनी हर कमजोरी, हर असफलता को भाग्य के सिर मत मढ़ो। किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं, किसी के बनाने से कोई बनता नहीं। यदि कुछ बनना चाहते हो और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो तो यह प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे अपना भाग्य स्वयं बनाना है। मैं जो भी चाहूंगा या मैं जो भी चाहूंगी उसे पाकर ही दम लूंगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने मनोवृत्ति के कारण ही दीन बन जाते हैं। इसका कारण कोई बाहर से आने वाला प्राणी नहीं, वह स्वयं ही है। आप में ही कोई न कोई दोष, कोई त्रुटि ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जिसने आपके भविष्य को अंधकार में डुबो रखा है। इससे आपकी वृद्धि भी कुंद हो रही है। कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जो केवल उत्साही और परिश्रमी युवकों की तलाश में रहते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ में घूमना पसंद नहीं, वे तो कुछ अलग रहना चाहते हैं। उनकी सफलता का मूल मंत्र यही है कि परिश्रम करते चलो, फल उसका जरूर मिलेगा। बिना परिश्रम किए फल की आशा रखने वाले को लोग पागल ही कहेंगे। फल आपको तभी मिलेगा जब आप कोई बीज बोएंगे। बीज बोने पर ही आप फसल काट पाएंगे। तीव्र बुद्धि, उच्च कोटि के विचार, नई मौलिक सूझबूझ, यही ऐसे गुण हैं जो इंसान को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे लोग ही उन्नति करते हैं। उद्योगपति लोग भी इस बात को जानते हैं कि ऐसे आदमी तो बहुत मिलते हैं जो केवल उतना ही काम करते हैं जितना कि उनको बताया जाता है। वे लोग अपने को केवल कहना मानने की मशीन समझते हैं। जिस प्रकार उस मशीन से बटन दबाकर जितना काम होने के लिए निर्देशित किया जाए वह उतना ही काम करती है। अपनी बुद्धि से काम करने के लिए उस मशीन की क्षमता ही नहीं होती। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, ऊंचे पद प्राप्त करने या बड़े कारोबार करने में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास कुछ नया करने की क्षमता होती है। केवल लकीर के फकीर बने रहने वालों की उन्नति रुक जाती है। इसीलिए अपने आप में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा पैदा करें। आगे बढ़ने के लिए मौलिकता का सहारा लें। पुरानी प्रथाएं यदि आपका रास्ता रोकती हैं तो उन्हें तोड़ डालो। यदि आपने उन्नति के मार्ग पर अपना पांव रख दिया है तो इसे आगे बढ़ाते रहें, परंतु साथ साथ अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहें। हर आगे बढ़ने वाले का रास्ता रोकने के लिए कुछ लोग आगे जरूर बढ़ते हैं। ऐसे लोगों से होशियार

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सफलता के लिए यह जरूरी है कि जिस काम को एक बार हाथ में ले लो उसे हर हाल में पूरा करके छोड़ो। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदमी आपको अपने नीचे रखना चाहता है उससे आगे निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि जो काम वह आदमी कर रहा है आप उस काम को उससे कहीं अधिक अच्छे ढंग से करके दिखाएं। किसी भी चीज को छोटा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उससे बड़ी चीज उसके सामने रखी जाए। जैसे किसी बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए उसे काट छांट न करके उसके पास एक बड़ी लकीर खींच दें, तो वह अपने आप छोटी हो जाएगी। जो लोग अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को सौभाग्य का अवसर मानते हैं, उनको यह तो पहले से पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सा अवसर लाभकारी सिद्ध होगा। यह तो उन अवसरों के काम से ही पता चल सकता है कि किसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि आप अपनी ओर से जो कुछ भी करें उसे सच्चे दिल से सोच समझकर हर तरह से नाप तोल करके इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। इसका परिणाम जो भी हो आपके हित में ही होगा। यह भी हो सकता है कुछ लोग आपकी बुद्धि की ओर से आंखें बंद करके बैठे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक आदमी यदि पागल हो जाता है तो बाकी लोग तो पागल नहीं हो जाते। जो लोग जीवन में आए हर अवसर को ही भाग्य प्रदाता मान लेते हैं वही सबसे बड़ी भूल का शिकार होते हैं। उन्हें ही निराशा का मुंह देखना पड़ता है। उन्हें यह उदाहरण सदा याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसीलिए हर अवसर को सफलता का खजाना न समझें। पहले से ही अपने मन में सपनों के महल न बना लें, जो बाद में रेत के घरौंदों की भांति गिरते नजर आए। बस इतना ही सोचकर काम शुरू करें कि मुझे इस कार्य को करना है, और फल तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, परिश्रम करने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए तो पूरा फल कभी मिलता ही नहीं। जो भी काम आप स्वार्थ भाव से हटकर पूरे परिश्रम और बुद्धि के सदुपयोग से करोगे उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। परंतु इस ईमानदारी और सच्चे परिश्रम के साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वह रिश्ता है कठिनाइयों और उलझनों का। वैसे तो इस संसार में हर अच्छे काम के साथ कठिनाइयां जुड़ी रहती हैं, मगर इनको झेलने वाले और अपना रास्ता साफ रखने वाले लोग ही एक दिन सफलता के द्वार पर पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। हम सभी के मंगल की कामना भारत में करते आए हैं। ये प्राचीन शांति मंत्रों में से एक है। जब हम सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के बाद ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई दुख न हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति, संसार का हर एक जीव निरामय हो या स्वस्थ हो, इस बात की कामना करते हैं। प्रार्थना में तो हम ये कामना करते हैं, मगर क्या हम अपने जीवन में इस कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ कार्य करते हैं? क्या सिर्फ हम भगवान से अपने और दूसरों के मंगल और स्वस्थ रहने की कामना मात्र से काम हो जाएगा, या स्वस्थ बने रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की जरूरत है? अगर प्रार्थना से ही काम बन जाता होता, अगर हम कुछ न करके सिर्फ प्रार्थनाओं से ही काम चला रहे होते, तो शायद आज इतने ज्यादा संख्या में अस्पतालों और चिकित्सकों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। जरूर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, ईश्वर भी हमारी आस्था अटूट है, परंतु हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हम प्रार्थना तो निरामय होने की कर रहे हैं, मगर अपने आप को बीमार करने के लिए कुछ ऐसे कार्य और कर्म कर रहे हैं जिससे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम स्वस्थ बने रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अब भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा, ये भारत के सबसे मशहूर प्रार्थनाओं में से एक है कि हम विश्व के, संसार के हर एक जीवी के मंगल के लिए कामना करते हैं, हर एक जीव जंतु का मंगल हो, इसके लिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, ये बात कहते हैं। और इसके साथ अगली ही लाइन सर्वे संतु निरामया, यानी सर्व, सभी के सभी निरामय हो, रोग मुक्त हो, वो सभी स्वस्थ हो, ये कामना करते हैं। प्रश्न उठता है कि जब हम प्रार्थना तो करते हैं स्वस्थ रहने की, क्या सिर्फ प्रार्थना मात्र से काम होगा, या स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की और कर्म करने की जरूरत है जो हमें स्वास्थ्य लाभ दे?
1: सबसे पहले तो देखिए, आपने जो बात की वो ये बता रही है कि हम भारतीयों की कितनी अच्छाई है कि हम अपने बारे में न सोच के हम सबके बारे में सोच रहे हैं, और ये हमारी देश, हमारी परंपरा की अच्छाई है कि हम सब लोगों ने मैं को हम से रिप्लेस किया है, और हम जो प्रार्थना भी कर रहे हैं वो सब निरोगी हो इसकी बात कर रहे हैं। और इस प्रार्थना का जो मूल है उसमें ये कहीं भी नहीं बात कोई है कि सबको पैसा मिल जाए या मुझको पैसा दे दो भगवान। हमने स्वास्थ्य की बात की है, हमने हेल्थ की बात की है। इंग्लिश में भी कितनी सारी बातें हैं, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी हेल्दी नेशन, मतलब सारी हेल्थ की ही बात की है। और ये माना गया है कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने देश की सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने समाज की सुरक्षा भी कर लेंगे। तो सबसे ऊपर इसीलिए हेल्थ को रखा गया है, स्वास्थ्य को रखा गया है। हमने प्रार्थना तो कर ली कि हम स्वस्थ रहें, पर कहते नहीं है कर्म भी करना पड़ेगा। हम लोग रोज भगवान के सामने अगर बैठे, सुबेरे सुबेरे नहा धोकर अगरबत्ती जला लें, पुष्प चढ़ा दें, उनको प्रसाद चढ़ा दें कि हे प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे दो, हे प्रभु मुझे ये दुनिया दिखा दो, हे प्रभु मुझे यहाँ भेज दो, और मैं चुपचाप कमरे में वापस जाके सो जाऊं, तो मुझे कैसे कुछ मिलेगा? इसमें एक छोटा सा जोक भी है भैया, मुझे बताया जाता है कि एक ऐसे ही व्यक्ति रोज लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम करता था, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो। तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो तीसरे चौथे महीने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी अवतरित हुई, बोली मूर्ख तुम रोज मुझसे कह रहा है कि मुझे लॉटरी जिता दो, पर क्या तुमने लॉटरी खरीदी?
0: लॉटरी टिकट तो
1: तो
0: खरीदना पड़ेगा।
1: अगर हम टिकट खरीदेंगे नहीं तो लॉटरी कैसे जीत सकते हैं? और अगर हम स्वास्थ्य की बात अगर हम करेंगे तो हमें शरीर से भी कुछ करना पड़ेगा। हमें टहलना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा, हमें अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, हमें संयम से भोजन करना पड़ेगा, और संयम से रोज भोजन करना पड़ेगा, संयम से रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम आज करें और कल ना करें। तो मेरा ये कहना है कि आपको सब काम ठीक से करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको उचित कसरत और भोजन पर संयम करनी पड़ेगी, और अपने मन के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें।
0: प्राय यही चीज देखने को मिलती है डॉक्टर साहब। हम चाहते तो हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, मगर हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। प्राय हम जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा सोच रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अक्सर जब ये चीजें कही जाती लोग ये कह देते अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है। जब ये चीज कहा जाता है कि नहीं थोड़ा सलाद खा लो, ये खा लो, तो बोलते अरे सलाद बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लोग रीजंस दे देते हैं, और क्या ये रीजंस जो देते हैं, जो वजह बताते हैं कि भाई इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या इसकी वजह से हम बीमार पड़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं?
1: हाँ, हम बहाना बनाने में हम पूरे आदमी, हम सब लोग बहुत तेज हैं। हाँ, कहना नहीं चाहिए, भगवान की सर्वोत्तम अगर कोई रचना है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य अपने लिए सबसे ज्यादा लाचार व्यक्ति है, और मतलब हमसे ज्यादा सजग तो प्राणी है। जिन भी लोगों के घर में अगर कुत्ता या बिल्ली जिन्होंने पाल रखे होंगे, वो ये देखेंगे कि अगर वो बीमार पड़ेगा तो सबसे पहले खाना छोड़ देगा। आप ये देखिए, आज हमारे पास हर विधा, हर ब्रांच के डॉक्टर हैं, जो जंगल में शेर रह रहे हैं, हाथी रह रहे हैं, बंदर रह रहे हैं, हिरन रह रहे हैं, मगरमच्छ रह रहे हैं पानी में, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? जो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी छोटी छोटी मछलियां समुन्द्र में तैर रहे हैं, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? प्रकृति ही उनकी माँ है, और वो प्रकृति के ही हिसाब से चल रहे हैं। वो आप देखिए ना, जंगल में कौन सा जानवर प्रोसेस्ड फूड खा रहा है या पैक्ड फूड खा रहा है? वो तो वही खा रहा है जो उसे प्रकृति दे रही है। और हम भैया, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर हमारी तो ये मानसिकता है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। आप कह दीजिए जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना, कल से करेंगे। इस समय अगर बहुत ठंडक है तो लोग कहेंगे यार कौन सुबेरे सुबेरे रजाई से निकलेगा, कहीं निकले तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये ठंड है भाई, रजाई में भी थोड़ा पड़े रहते हैं, जब ठंड कम होगी तब पहले निकलेंगे। भैया अगर वातावरण सुबेरे का टेम्परेचर 10 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी आज 74 साल की उम्र में बिना चप्पल के नंगे पैर मट्टी पर टहलने रोज जा रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, सुबेरे सुबेरे का भी अगर जो टेम्परेचर हो 28 डिग्री 30 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी नंगे पैर मिट्टी पे घूमने जा रहे हैं। वो रोज जा रहे हैं, सिर्फ बारिश में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बारिश में मिट्टी पे नहीं चला जाता, आपके फिसलने का डर है, तो वो घर पे टहलते हुए मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि वो कोई भी चीज जो मतलब उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया है, वो कोशिश करते हैं कि वो हल्का भोजन करें, वो कोशिश करते हैं रोज एक्सरसाइज करें। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें रोज एक्सरसाइज, रोज संयम से भोजन करना पड़ेगा।
0: संयम और भोजन, एक्सरसाइज या हमारी कसरत, इन चीजों पे जब हम ध्यान देते हैं और इन चीजों को हम हर दिन एक रूटीन बनाते हैं, तब हम स्वास्थ्य की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए जाते हैं। हर दिन स्वास्थ्य के लिए मंगल की कामना करना, निरामय रहने की प्रार्थना करना अच्छी बात है, मगर उस प्रार्थना को कार्यान्वित करना भी हमारे हाथ में है, और उसे कैसे किया जाता है आपने चीज बताई। पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो आप ये बता रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन को अगर हम सही समय पर सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उससे अलग कॉम्प्लिकेशंस शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। आपने पाइल्स की बात की, बावासीर की बात कही थी, इसी विषय पर मैं कुछ और जानकारियां लेना चाहता हूं। आप ये बात कह रहे थे कि पाइल्स को जब व्यक्ति जब उसको समझ में आता है उसको पाइल्स हुआ है, तो बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करते हुए नजर आते हैं कि कई लोग कई तरह की चीजें कराने के लिए ये चीज देखते हैं। एलोपैथी में अक्सर लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए भी लोगों को कहा जाता है कि नहीं, पहले आप दवाइयां लीजिए, उससे आप इसे ठीक कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा, इत्यादि चीजें बोली जाती हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बवासीर या पाइल्स को ठीक करने के लिए इलाज के तरीके क्या हैं, क्या क्या अलग अलग चिकित्सीय पद्धतियां इस बात पर कहती हैं।
1: सबसे पहले पाइल्स जो है वो मोटा मोटी दो तीन तरह की होती है, एक जो अंदर और एक जो बाहर। बाहर वाली को पकड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब आप अपना गुदा द्वार साफ करते हैं तो आपको महसूस होता है कुछ है वहां पे और आपको तुरंत मालूम चल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो ब्लीडिंग, मतलब जिनसे खून निकल रहा था, खूनी बवासीर जैसे कहते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, उसको भी पकड़ना आसान है, क्योंकि जिस दिन खून निकलता है और आदमी को जब अपना खून दिखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, गरीब आपरे खून निकल गया। वो मस्से को अवॉइड करता रहता है, मगर जैसे ही खून देखता है तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। और ये हमारे देखिए प्रकृति की कितनी अच्छाई है कि वो जैसे ही खून देखेगा, खून से जो भय होता है वो तुरंत, और आदमी के मन में आता है अरे बाप रे खून बह गया, अब तो मैं मर ना जाऊं, चलो तुरंत डॉक्टर के पास। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको मस्सा महसूस हो रहा है या खून निकल रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आपने उपचार की बात की, तो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि बवासीर रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। और सबसे कॉमनली ये जो है वो अगर आपको लंबा कॉन्स्टिपेशन हो तब हो रहा है। और जो पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो हम हो सकता है कि तुरंत बवासीर को भी ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहला इलाज, अगर हर पैथी को हटा दीजिए, हर विधा को हटा दीजिए, वो है पानी पीना। अगर आप ठीक से पानी पिएंगे तो आपका जो मल है वो कड़ा नहीं होगा, उसमें ताकत आपको नहीं लगानी पड़ेगी और आपका जो पेट है वो ठीक से साफ हो जाएगा। और जहां वो नॉर्मली साफ होने लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, आप जोर नहीं लगाएंगे। अब कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, आप पहली बात तो जोर ज्यादा लगाते हैं तो मसों में उन मांसपेशियों में ताकत, मतलब वो अपनी जगह से हिलती खुलती बंद होती है। और दूसरा, जब पानी कम हो जाता है तो आप जो कड़ा मल है वो रगड़ते हुए चीजों को बाहर निकलता है। तो सबसे पहला काम कि आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, मतलब ज्यादा खुज्जे वाला भोजन आपको करना चाहिए। बवासीर में हम बोलते हैं हाई फाइबर की जगह कंट्रोल्ड फाइबर का भोजन करना चाहिए, कि इतना भी हम फाइबर न ले लें कि जिससे वो भी उस क्षेत्र को रखड़ने लगे। एक सबसे सिंपल बात ये समझिए कि जब प्राकृतिक चिकित्सा एक बात और बोलती है कि जब आंतों में बहुत गर्मी आ जाएगी तो भी आपको बवासीर हो जाएगा। आंतों में गर्मी क्यों आ गई, आप ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादा क्या काम कर रहे हैं, आप आंतों को रोज कह रहे धक्का दो, निकालो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, और हो ही नहीं रहा है। तो आंतों की गर्मी को शांत करना भी बहुत जरूरी है। और इसका सबसे जो प्राकृतिक चिकित्सा में है वो है मिट्टी की पट्टी पेट पे रखने से आंतों की गर्मी शांत होती है। पुराने प्राकृतिक चिकित्सालयों में गुदा द्वार पे भी मिट्टी को गोला बना के रखा जाता था, पर इसे मॉडर्न मेडिसिन ने इसका एक सिंपलर तरीका बताया है कि मिट्टी में इंफेक्शन ना हो जाए, उसमें गंदगी, कैसी मिट्टी मिली आपको, और आजकल साफ सुथरी अच्छी मिट्टी मिलना बड़ी मुश्किल चीज हो गई है। तो वो है आपको पानी में बैठना, इसको इंग्लिश में सिट बाथ का कहते हैं। और एक बड़ा सिंपल है कि आप किसी भी टब में ठंडा पानी या नॉर्मल पानी डालकर उसमें बैठिए, और आप जैसे ही उसमें बैठेंगे, आपके गुदा द्वार की सिकाई होगी, और जहां आपके गुदा द्वार की सिकाई होगी वहां आपको आराम मिलने लगेगा। कुछ लोग इसमें हल्का गुनगुना पानी भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आप नॉर्मल वाटर या हल्का गुनगुना पानी लेकर अपने जो मल का द्वार, आप एक पानी को एक टब में लेकर आप उसमें बैठ सकते हैं। बहुत से लोगों को बवासीर कोई एक पर्टिकुलर फल या कोई एक पर्टिकुलर सब्जी खाने से भी होता है जो उनको परेशान करती है। अगर हम देखें तो मैं किसी फल का नाम और किसी सब्जी का नाम यहां लेना नहीं चाहूंगा, उसका सिर्फ ये रीजन है कि कल से अगर आदमी को शक पैदा हो जाएगा कि शायद मुझे इसकी वजह से हो तो नहीं हो रहा है, तो आप खुद ढूंढिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर फल या एक पर्टिकुलर आप सब्जी खा रहे हैं और उसको खाने से आपको अगर परेशानी हो रही है तो आपको उसका त्याग थोड़े दिनों के लिए कर देना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक चीज और देखी है कि चोकर समेत आटे की रोटी खाने से बवासीर में और कॉन्स्टिपेशन में आराम होता है, और कुछ लोग जब इसको नहीं खा पाते हैं तो उन्हें हम गेहूं का दलिया खिलाते हैं। बहुत अच्छे से अगर हरी सब्जियां उन्हें खिलाएं, जैसे पालक है, बथुआ है, तरोई है, परवल है, पात गोभी है, मूली है, पपीता है, पका केला है, खरबूजा है, फलों में खरबूजा, सेब, नाशपाती, दूध पिलाने से इनसे भी कॉन्स्टिपेशन में और बवासीर में आराम मिलता है। हम लोग वैसे चिकित्सा में दालों को अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि दालें थोड़ी गर्मी पैदा करती हैं, तो उस गर्मी से कभी कभी बवासीर उभर जाता है। तो जो सबसे अच्छा चीज है जो कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स दोनों में आराम देता है वो है मुनक्का, अंजीर और किशमिश। इसको जितना आपने मुनक्का लिया इससे इसको दुगने या तिगुने पानी में इसको अच्छे से धोकर इसको रखिए, ये 12 से 14 घंटे तक भिगाइए, सुबेरे भिगा दीजिए और शाम को आप इसको खा सकते हैं। अगर आप इसको खाएंगे तो ये ताकत भी देता है, आपको अच्छा फाइबर भी देगा, और इससे आपको जो है आपकी जो समस्या है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बहुत सारे लोगों में इसबगोल की भूसी भी हम लोग इस्तेमाल करने को कहते हैं, पानी में इसबगोल मिला सकते हैं आप, छाछ में मतलब दूध पानी और दही थोड़ा सा मिलाकर आप अगर इसका प्रयोग करिए तो वो आपको आराम देगा। प्रकृति चिकित्सा में आंतों को ठंडक पहुंचाना, गुदा द्वार को ठंडक पहुंचाना, और भोजन में कंट्रोल्ड फाइबर या ऐसी चीजें जिससे आपको हेमरॉइड या पाइल्स या बवासीर हो सकता है उसको हटा देना आपका इलाज है। जब ये सारी चीजें करके आपको नहीं आराम मिलता है तो फिर हम उपवास कराने की बात करते हैं, क्योंकि जब पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो आपकी आंतें जो हैं वो अगर मिट्टी की पट्टी और एनिमा आपको दिया जाएगा तो आपकी आंतें को कम काम करना पड़ेगा, उनको ताकत कम लगेगी और वो अपने आप हील कर पाएंगे। तो अगर आप सप्ताह में एक दो दिन का उपवास कर लें और मिट्टी की पट्टी एनिमा ले लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन एवं बवासीर दोनों में आराम मिलेगा। ये सारी बातें जो हैं वो प्रकृति चिकित्सा एवं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी में जब ये आउट ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग होने लगती है या वो मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो गुदा द्वार को जो है वो ढकने लगता है और बहुत परेशान करने लगता है, तब उसमें इस जो मस्सा है उसको सर्जरी से हटाया जाता है, मसे की गर्दन को एक रबर के बैंड से बंद करके उसको हटाया जाता है, या उसको जो कॉटरी से मतलब हम लोग उसको वहां से हटाकर जो उसकी समस्या है जो लोकल है उसको हटा देते हैं। मगर उसके बाद भी ये बोला जाता है कि आप भोजन पे कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छा हाई फाइबर डाइट लेंगे और आप कोई भी ऐसा चीज नहीं खाएंगे जो बहुत प्रोसेस्ड हो, बहुत लो फाइबर हो, मैदा बहुत हो, जो चीजें आपकी आंतों के मूवमेंट को कम करती हैं उसको आप एकदम नहीं खाएंगे अगर आपको बवासीर की समस्या हो चुकी है।
0: ये बात समझ में आ रही है कि जब हम समस्या के कारण को समझते हैं तो उसके निवारण को समझना भी आसान है। इलाज के लिए पहले तो हम उन्हीं चीजों को ठीक करें जो इस समस्या को ले आने का कारण बनती हैं। और इस तरीके से जब हम अपने इलाज के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम न सिर्फ उस समस्या से उस समय के लिए निजात पाते हैं, मगर आगे वो समस्या लौट कर हमारे पास आए ही नहीं, वो बीमारी हम तक पुनः आए नहीं, इसलिए भी हम अपने आप को सुधार लेते हैं। इस सुधार से स्वस्थ रह पाना संभव है, ये चीज समझ में आती है। आज बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है जिसमें हम ये बात समझ रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के संबंधित अनेक जो बीमारियां देखते हैं उसका इलाज हमारे पास हमारे हाथों में है, और बहुत ही सरलता से और सहजता से इस चीज को हम समझ कर अपने स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को हम सहजता से पा भी सकते हैं। घड़ी इशारा करती है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज आप सभी श्रोता मित्रों को बवासीर और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कैसे किया जाता है, इस पर सही मार्गदर्शन डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी हैं वो सिर्फ जानकारी मात्र नहीं है, ये अनुभव कर अपने जीवन में लागू करने वाली चीजें हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से परेशान है तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करें, उन्हें मदद पहुंचाएं और बिना हिचकिचाहट के अपनी बीमारियां या समस्याओं को बताने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसकी पहचान लगभग पूरी हो चुकी है। अब जान चुकी हूँ मैं कि मैं वो प्यार करने वाली एक शांत प्रिय आत्मा हूँ। जी हाँ, वो आत्मा जो शक्ति का स्वरूप भी है। और ना सिर्फ मैं वो आत्मा हूँ, बल्कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें मैं कई रूपों में, कई रिश्तों में जानती हूँ, वो भी बेसिकली वही आत्मा है। उस अवेयरनेस के साथ हमने ज़िंदगी शुरू कर दी है, मेडिटेट कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है हम और आप सब अनुभव कर पा रहे हैं। अब इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और

0: वो आत्मा हो होता जा रहा है, हर रोज का अनुभव, हर पल का अनुभव हो रहा है। अब आगे बढ़ने को हम तैयार हैं कि वो उन परमात्मा की एक झलक हमने देख ली, शिव बाबा का एक तारुफ, एक इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। रिश्ता अभी नहीं बन रहा है रिश्ता, क्योंकि वो विजुलाइजेशन बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब नहीं बन पा रहा है, उसके लिए अभी काफी सारी बातें बाकी हैं।
1: राइट, किसी के साथ भी रिश्ता जुड़ना, परमात्मा को हम साइड थोड़ा सा करते हैं, पहले अपने रिश्तों की बात करते हैं कि किसी के साथ भी रिश्ता जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा।
0: उसके साथ रहना पड़ेगा,
1: हाँ,
0: उससे जानना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी।
1: राइट, एंड ये करते करते एक रिश्ता जुड़ जाएगा। सबसे पहले होती है हमारी इंट्रोडक्शन एक दूसरे से। इंट्रोडक्शन होने के बाद वी जस्ट गेट टू नो इच अदर, जिसको हम कहेंगे ना, आई जस्ट गॉट टू नो देम टुडे, थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में पता चलता है। फिर अगर हम उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहें तो हम जान पहचान बनाए रखते हैं, एंड उसका सबसे सिंपल तरीका है कम्युनिकेशन, कि हम बातचीत रखते हैं, चाहे हम फिजिकली एक दूसरे से मिल पाते हैं या डिस्टेंस है तो फिर हम टेलीफोन या ईमेल्स या आजकल ऑनलाइन चैट, ये सारे मेथोडोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हम शुरू शुरू में महीने में एक बार बात करते हैं, फिर हफ्ते में एक बार बात करते हैं, फिर धीरे धीरे रिश्ता ऐसा जुड़ता कि हम रोज़ बात करने लगते हैं, एंड तब ऐसे पॉइंट पर हम आके पहुँच जाते हैं जब हम अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ मिल रहे हैं जिनको हम कभी कभी मिलते हैं, you know? जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं, तो आप देखो कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। आप ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, बाकी सब ठीक चल रहा है, घर में सब ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू डोंट नो व्हाट टू से टू मच,
0: यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू नो मौसम,
1: या
0: पॉलिटिक्स, ये इधर उधर,
1: बिकॉज आप अपने बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और शायद आप शेयर भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप उनको बहुत कम ही मिलते हैं। लेकिन जिनके साथ आप रोज बात करते हैं, इफ यू रियलाइज, सपोज पेरेंट्स या चिल्ड्रन, यू नो, जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, वो हमारे जीवन के हर पहलू को जानते हैं, यू नो, जैसे अगर आपकी मम्मी से बात होती है तो यहाँ तक बात होगी, आज दोपहर को क्या खाया था, अभी रात में खाने में क्या बन रहा है, स्मॉलेस्ट थिंग्स, आज आपके घर कौन आया था, आज मेरी अपनी इस फ्रेंड से बात हुई, क्यों, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, अ डेली कम्युनिकेशन। तो ये हमारी अब चॉइस है कि हम परमात्मा के साथ, उस मीठे शिव बाबा के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कभी कभी वाला, रोज वाला, हर पल वाला, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप ऑफ इंट्रोडक्शन हमें दिया, तो सबसे पहले हमें तो अपना ही परिचय नहीं था, तो इस प्रोसेस में तो उन्होंने हमें दोनों का परिचय दिया है, क्योंकि आज दिन तक हम बिना अपने को जाने परमात्मा को याद करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने वही देखा, जैसी कॉन्शियसनेस, जैसी स्मृति, वैसी स्थिति, और वैसा ही फिर वो कनेक्शन डेवलप होगा। मैं अगर उस रोल में बैठूंगी तो मुझे परमात्मा याद नहीं आएंगे, मुझे इस दुनिया के लोग याद आएंगे। अब हम सोल कॉन्शियसनेस में बैठते हैं तो हमें नेचुरल परमात्मा याद बहुत ईजी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें परमात्मा ने आकर स्वयं अपना परिचय दिया कि जैसे तुम एक आत्मा हो, निराकार हो, ज्योति बिंदु हो, सिर्फ एक शक्ति का पुंज हो, हाँ, क्वालिटीज में तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, फिर परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं भी आत्मा हूँ, हम सब तो आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं भी निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, लेकिन तुम साकारी शरीर लेते हो, मैं निराकार हूँ, तुम शांत स्वरूप हो, मैं शांति का सागर हूँ। तब हमें स्मृति आई कि हाँ, परमात्मा भी तो मेरी तरह ही है, यू नो, लाइक फादर लाइक सन, वी आर लाइक हिम। तो जैसे मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, एंड द वे आई कैन स्टार्ट सीइंग माई सेल्फ वेरी स्लोली, इफ आई रियली पे अटेंशन, आई कैन स्टार्ट सीइंग हिम इन आंखों से, नहीं तो आत्मा को भी इन आंखों से तो देखा ही नहीं था, बुद्धि के नेत्र से देखा, अब हम बुद्धि के नेत्र से परमात्मा को देखना शुरू करते हैं, हम अभी देख सकते हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट, वेरी सिंपल, विजुअलाइज शिव बाबा, मैं उनके साथ

0: धाम में रही थी। मुझे तो घर भी याद है ना अपना, जस्ट रेड लाइट, वेरी पीसफुल, नथिंग ओवर देयर एक्सेप्ट फॉर लाइट, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ, और उस प्रकाश में हम सब आत्माएं, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक अ स्टार सस्पेंडेड। और जैसे हम आत्माएं एक सितारे की तरह उस प्रकाश में है, तो शिव बाबा भी हमारे ही तरह उस परम धाम का रहवासी, वो तो उसी घर में रहते हैं, वो भी हमारी तरह बस एक ज्योति स्वरूप, बस एक आत्मा है, लेकिन वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो सागर है तो उससे वो शक्ति, उससे वो वाइब्रेशंस चारों तरफ आत्माओं पर फैल रही है और मुझ तक पहुंचती है। आई कैन सी इट, कैन यू सी एनीथिंग?
1: Yeah, but again, you know, like I could see it now when you were talking. When I talk to myself, you know, जब हम खुद बात कर रहे हैं, तब उतना आसान नहीं होता है।
0: No problem. कोई भी चीज एकदम से पहली बार करने में, जैसे अगर लेट्स से हम बचपन में किसी हॉलीडे के लिए गए थे, लेट्स से आप शिमला गए थे, अब आप 3 साल के थे तब, तो आपको याद नहीं है ना वो कैसा दिखता है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप गए थे, और क्योंकि आप गए थे तो वो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर है। अब आपके मम्मी पापा आपके उस रिकॉर्डिंग पर थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू करते हैं, यू नो, ठोकते हैं उस मेमोरी को, याद करो वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, धीरे धीरे हमें याद दिलाना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि देखा है, अगर नहीं देखा है कभी याद नहीं आएगा। आप 1 साल 10 साल देखते रहो परम धाम, कभी नहीं याद आएगा अगर कभी नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि देखा है तो जब हमें याद दिलाते हैं तो हमें वो शिमला धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जितना माइंड साइलेंट करेंगे उतना वो सबकॉन्शियस माइंड से वो सीन्स सारे आ जाएंगे। अब इसी तरह हम परमधाम घर से आए थे तो हमने परमधाम का भी अनुभव किया है, हम पिता के साथ वहां रहते थे, उसका सबूत ही ये है कि आज दिन तक भी जब दुखी होते हैं तो उसी को याद करते हैं, आज दिन तक भी जब परेशान होते हैं तो नजर ऊपर ही जाती है, जबकि भूल चुका है कि ऊपर क्या है, लेकिन थोड़ी सी याद अभी भी है शायद, तो इसलिए यू नो अनकॉन्शियसली जिसको कहते हैं, फिर भी ध्यान ऊपर जाता है। अब हमारे वो पिता खुद आए हैं और आकर हमें याद दिला रहे हैं, याद करो, याद करो, तुम वहां के ही रहने वाले थे, और वो हमें फिर पूरा डिस्क्राइब करते हैं, तुम ऐसे रहते थे, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, तुम भी वहीं रहते। तो रोज रोज रोज, 1 मिनट में नहीं होगा, 1 बारी में नहीं होगा, पहले दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज, क्योंकि वो इम्प्रेशन है, अब उसको सिर्फ ऊपर की लेयर पर लाना है, वो थोड़ा सा लेयर्स नीचे हो गए हैं और ये सारे बर्थ्स की इंफॉर्मेशन की लेयर उस पर फिट हो गई है, लेकिन रोज जब अभ्यास करेंगे, और अभ्यास क्या करना है, परम धाम नॉलेज मिल गई है देखने में कैसा है, अब उसको देखने का अभ्यास करें, और देखते ही क्या होगा, उसका अनुभव होने लग जाएगा। एंड सेम स्टेप, हियर इट, थिंक इट, सी इट, फील इट, एंड देन नो इट, सुन लिया, अब उसको संकल्प क्रिएट करें कि मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ शिव बाबा के सामने। ये एक थॉट क्रिएट कर लिया, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, तो जस्ट लुक एट इट नाउ, दैट थॉट अगेन, और संकल्प आएंगे जाएंगे, एक थॉट को पकड़ लिया, इनको आने जाने दो। और अगर हम पहले सोल कॉन्शियसनेस में बैठकर स्थिति में गए होंगे तो वो आने जाने वाले संकल्प भी
1: ऑलरेडी आसान हो चुके,
0: खत्म हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आ जाता है, डोंट पे अटेंशन टू इट, इट विल गो। If you pay attention to it, mind will get diverted towards it. And then, जैसे जैसे देखना शुरू कर दिया, उस संकल्प को पकड़ लिया, धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर लेंगे। और जब वो महसूसता आ जाएगी, तब अनुभव हो जाएगा ये सत्य है, ये सत्य है। ध्यान ये रखना है कि माइंड और इंटेलेक्ट साथ साथ चलना चाहिए। माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, आत्मा की जो तीन फैकल्टी है, मन संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि उसका दृश्य निर्माण करती है। मन ने संकल्प किया बच्चे, बुद्धि को तुरंत बच्चे दिखाई देते हैं। मन ने संकल्प किया घर, बुद्धि को घर दिखाई देता है। ऑफिस, ऑफिस दिखाई देता है। परमधाम, तो परमधाम दिखाई देगा, राइट? अब अगर मन ने संकल्प किया परमधाम, लेकिन बुद्धि को ये वाला घर दिखाई दे रहा है, तो रुक जाइए। आगे और संकल्प नहीं क्रिएट कीजिए जब तक बुद्धि को थोड़ा सा भी, ऐसे नहीं होगा कि एकदम से बहुत क्लियर दृश्य दिखाई दे, लेकिन कोई और दृश्य नहीं आए और परमधाम का एक फेंट सा दृश्य भी आपको दिखाई देना शुरू करे। अगर आपने वेट नहीं किया और बुद्धि ने दृश्य निर्माण किया इस घर का या इस ऑफिस का इधर, और हमने उसको पर ध्यान देकर चेंज नहीं किया, तो मन उसकी तरफ खींच जाएगा और फिर नेक्स्ट थॉट आएगी, ऑफिस में क्या करना है या आज घर जाके क्या करना है।
1: That is actually happening.
0: That is what will happen. So that's why take care कि जो आप संकल्प, मतलब जो छोटी सी मिस्टेक जो सभी लोग कर लेते हैं और मेजोरिटी करते हैं और जिसकी वजह से कहते हैं मेडिटेशन नहीं होता, वो थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, दृश्य नहीं क्रिएट करते साथ साथ। तो उससे क्या होगा, अब बुद्धि की स्क्रीन पर कुछ तो आएगा ना, स्क्रीन है तो कुछ आएगा। माइंड एंड इंटेलेक्ट आर गुड फ्रेंड्स, तो मन जो संकल्प करेगा बुद्धि उसका दृश्य लाए, अगर बुद्धि ने कोई और दृश्य लाया तो मन उसकी तरफ चला जाएगा। अगर बुद्धि ने कहा ऑफिस, तो मन ने कहा ऑफिस में आज ये करना है, बुद्धि ने फिर वो उस कोलीग का सीन ले आया, मन उसके बारे में सोचना लग गया, परमधाम और शुभ बाबा रह गए। और हम कहेंगे हम आधा घंटा बैठे रहे और हमारे मन में तो सारे इधर उधर के ही ख्याल आ रहे थे, मेडिटेशन तो हमारे से होता नहीं है। सो इट्स नॉट कि मेडिटेशन होता नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ अटेंशन से बैठे कि दिस इज द टेक्निक, जो जो सोचते जाए वो दृश्य साथ में
1: वो क्रिएट होता जाए, क्रिएट होता जाए।
0: उस पर ध्यान दे कि कोई और दृश्य नहीं आए, आता है तो चेंज इट। परम धाम कह रहे हैं और ऑफिस आ रहा है, टेल द इंटेलेक्ट ये परम धाम नहीं है, परम धाम जाना है।
1: लेकिन वो ऑफिस बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है उसमें।
0: हाँ, तो ये मेडिटेशन करने से पहले बैठकर अपने आप को बताएं मैं क्या करने के लिए बैठी हूँ, मेरी इस टाइम प्रायोरिटी क्या है। मैंने 10 मिनट निकाले हैं, लेट्स से 10 मिनट मैंने निकाले हैं उस पिता से मिलने के लिए, उस घर में जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि उस घर में जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। परम धाम में अगर हम पहुंच जाते हैं बुद्धि से, तो वो एक ऐसा स्थान है जहां बिल्कुल संपूर्ण शांति है, कंप्लीट साइलेंस, बिकॉज नो थॉट्स। ऐसा कोई स्थान इस सृष्टि के ऊपर नहीं है। तो जितनी चार्जिंग वहां जाकर हो जाती है, उससे उल्टा जब आप फिर इस ऑफिस में आएंगे
1: तो ज्यादा आसान हो जाएंगे,
0: बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। इट्स लाइक ऑफिस में बैठे हैं, कई लोगों का ऑफिस जिससे घर में ही होता है, तो उनको ऑफिस में काम करने जैसी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन घर पर बैठे बैठे कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल यू नो प्रैक्टिकली हु आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑफिस। जो घर पर बैठकर काम करते हैं वो थकते नहीं है, दे वेरी फ्रेश द होल डे एंड दे वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। आप ऑफिस जाते हैं, आप थक जाते हैं एंड शाम को आप घड़ी देखने लगते हैं, मुझे घर जाना है। सेम थिंग, हम इस सृष्टि रंगमंच पर हैं, ये ऑफिस है, वो घर है। अगर हम इस ऑफिस में ही इंटेंगल्ड रहते हैं तो आज जो हमारी स्थिति होगी ये बहुत दुखी, बहुत परेशान है। तो हम कहते हैं अब घर जाना है, अब हम समय देखने लगे हैं, वर्ल्ड क्लॉक, भगवान अब मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए, बहुत दुखी हो गए। लेकिन वो जब घर जाएंगे वो तो अलग बात, लेकिन अगर हम यहाँ रहते रहते बीच बीच में सारा दिन घर जाते रहे ऐसे, तो फिर काम करने में
1: प्रॉब्लम नहीं,
0: बहुत मजा आएगा. तो इस कर्म क्षेत्र पे भी जो हम कर्म कर रहे हैं हम उसको एंजॉय करना शुरू कर लेंगे, क्योंकि हम बुद्धि से घर बैठकर कर्म कर रहे हैं. तो हम एक कंफर्टेबल स्थान पर बैठकर, हम अपने पिता के साथ बैठकर अब हम कर्म कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कर्म योग. योग में रहकर कर्म करें. जो आपने पहले भी पूछा कि ड्राइव करते हुए, वॉक करते हुए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे यू आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज इंटरनली यू आर चार्ज्ड, यू नो. तो ये अभ्यास अगेन सुबह उठकर थोड़ी देर करें और वो रिश्ता बनाना फिर शुरू करें. सुबह हम थोड़ी देर बैठते हैं, वो चार्जिंग का टाइम है. पहले सोल कॉन्शियसनेस अभ्यास कम से कम 5-10 मिनट लगते हैं इनिशियली, तो क्योंकि सारा दिन बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में. तो 5-10 मिनट सिर्फ आत्मचिंतन कि मैं आत्मा हूँ. वो 5-10 मिनट में सब इधर उधर वाली थॉट्स आकर चली जाएंगे एंड यू विल सेट योर सेल्फ इन दैट सोल कॉन्शियस स्टेज. अब आपको कुछ और याद नहीं आएगा. अब आप यात्रा शुरू करें, मैं आत्मा यहाँ से निकलकर अपने बाबा के पास जा रही हूँ. और बहुत प्यार से उसको याद करेंगे तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोजनेस वाला होगा. परम धाम पहुँचिए, रास्ते में देखते हुए जाइए. जितना अच्छी तरह से जर्नी को देखेंगे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे कि चांद सितारों को पार करते हुए, सारी स्पेस को क्रॉस करते हुए परम धाम. गोल्डन रेड लाइट, शिव बाबा एंड आई, नोबडी एल्स. अब और कोई आत्माएं नहीं चाहिए. इट्स जस्ट हिम एंड मी, यू नो. सो जस्ट शिव बाबा एंड मी सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. एंड फर्स्ट स्टेज वॉज सोल कॉन्शियसनेस, सेकेंड स्टेज कॉन्वर्सेशन. अब आप बातें कर सकते हैं. कई लोग कहते हैं भगवान से क्या बातें करेंगे.
1: नो बट या दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू आस्क अबाउट. इधर आई ट्राइड, यू नो, ये हमने मैंने कोशिश की कि कॉन्वर्सेशन विद हिम, जो आपने बात कहा था कि आपने कहा कि आपको खुद महसूस होगा जवाब, क्योंकि कैसे आएगा. जब तक रिश्ता तभी बनता है जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी. मैं बोलती जाऊँ अपनी बात और आप, तो मैं तो अभी तक इंतजार कर रही हूँ सवाल के जवाब का. तो वही वो जवाब कैसे आएगा, कैसे मुझे पता चलेगा.
0: पहली बात तो जब आप पास में जाकर एकदम बैठ जाते हैं तो आप अपनी बातें करें और कंटिन्यूस नहीं सब अपने. कई बार क्या होता है सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी, क्योंकि पूरी लाइफ की इतनी सारा जो बर्डन था. बट दैट्स ऑल्सो गुड टू टेक इट आउट एंड फिनिश इट ऑफ वंस एंड फॉर ऑल. बट वो सारा करके खाली हो जाइए. कोई भी बात अगर आपको करनी है, जो आपने कहा कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप बाबा से पूछते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा. कई बार ज्ञान की भी बात होती है कि मेरे से सोल कॉन्शियसनेस नहीं प्रैक्टिस होता है सारा दिन, यू नो, एनीथिंग. आई पुट इट एज अ थॉट. अब आंसर कई बार उसी टाइम इमिजिएटली मिलता है. जस्ट वेट. अभी हमें लग रहा है कि हमें आंसर नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ बहुत सारा क्लटर है. 1-2-3 दिन 4 दिन अभ्यास को छोड़िए नहीं. कई बार ट्रांसमिटर दे रहा है लेकिन रिसीवर कैच नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत सारी दूसरी थॉट्स हैं. करते जाइए, आंसर मिलने वाला है. आंसर तुरंत भी मिल सकता है, जस्ट अ वेरी क्लियर थॉट. आंसर सारा दिन में भी मिल सकता है कि या तो आपको कोई आकर तुरंत से वो बात कह देगा और इतनी क्लियर कहेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो उनसे वो आंसर मिलने वाला था. बट देन ही यूजेस हिज इंस्ट्रूमेंट्स. सही, हम सब उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो किसी के द्वारा भी हमें वो मैसेज दे सकता है. लेकिन अगर हम वो बात को रख के साइलेंट हो सकते हैं थोड़ी देर. सी, नॉर्मली आंसर क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक हमें वो साइलेंस नहीं अनुभव करना आता. जैसे कई बार कॉन्वर्सेशन में भी कई लोग बोलते बहुत हैं, दे आर नॉट वेरी गुड लिसनर्स. सेम विद गॉड, वी हैव टू लिसन टू हिम. एंड लिसन टू हिम मीन्स माई माइंड विल हैव टू बी साइलेंट. इफ आई से कि बाबा ये बात है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, नॉर्मली वॉट हैपन्स इज मैं उस बात के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ. बिकॉज आई हैव जस्ट ट्रिगर्ड दैट थिंग इन माई माइंड राइट नाउ.
1: दैट हैपेंड.
0: या सो देन नाउ माई माइंड इज गॉन समवेयर एल्स. द आंसर अगर आया भी था तो मैंने सुना नहीं. बिकॉज मेरा माइंड और इंटेलेक्ट अब बाबा से हटकर कहीं और चला गया है, उस प्रॉब्लम पर इंटेंगल हो गया है. इसलिए बात डिस्कस करनी है लेकिन डिटैच होके एकदम, ताकि वो बात मुझे खींच कर ना ले जाए अपनी तरफ. तो इसलिए, और फिर भी आप करते रहिए, आंसर इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज फॉर श्योर. जस्ट बी साइलेंट, उसको रख दीजिए एंड पॉज. इट विल कम लाइक अ क्रिस्टल क्लियर थॉट, वेरी क्लियर, बिकॉज कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है. थॉट जा रही है, थॉट आ रही है, बट जस्ट बी रेडी फॉर इट. अब मैंने दे दिया और फिर मुंह मोड़ लिया और दूसरी बातों के बारे में चले गए.
1: एक और बात पे भी आगे हम आएंगे या भी बात कर पाए कि कई बार सिचुएशंस या थॉट्स जो है उनसे हमें इतना लगाव हो जाता है. अब बाबा के साथ क्योंकि रिश्ता हमारा अब जुड़ रहा है, उन थॉट्स के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है, हमें उनके साथ, चाहे वो हमें पेन ही दे रहे हैं, वी आर सो अटैच्ड टू दोस थॉट्स और मे बी यू नो वी गॉट सो मच यूज्ड टू ऑफ इट, वो इजी लगता है वो थॉट, वो थॉट प्रोसेस का जो जर्नी है वो आसान लगती है, हम उसी तरफ मुड़ जाते हैं और इस रिश्ते को जो बनाना है अभी वो नहीं शायद बना पा रहे. ये भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगता है, कई लोगों का होता है.
0: इसमें भी सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप को बताना, लाइक अ बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन शुड नो कि उनका प्रॉफिट किस चीज में
1: सही
0: है,
1: क्या है,
0: लॉस किस चीज में है. तो फिर वो लॉस की तरफ तो नहीं जाएंगे ना. तो अगर मुझे पता चल जाए कि इस रिलेशनशिप में मेरा बहुत प्रॉफिट है, आई एम गोइंग टू गेट ऑल दीज पावर्स, तो देन व्हाई वुड आई वांट टू गो एटलीस्ट फॉर दोज 10 मिनट्स. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी रिश्तों से किनारा हो रहे हैं, लेकिन 10 मिनट ही तो लिया है अपने लिए, तो वो 10 मिनट क्यों. अब बाकी तो है ना सारे 24 घंटे उन सब लोगों के लिए. तो अपने आप को फिर से समझाना पड़ता है कि अगर मैं ये 10 मिनट में अपने आप को भर लेती हूँ तो मैं उन रिश्तों को और भी अच्छी तरह निभा पाऊंगी. जो प्यार मुझे यहाँ से मिलेगा वो मैं औरों को दे पाऊंगी. आज सब लोगों को प्यार चाहिए, सभी को खुशी चाहिए, लेकिन किसी के पास है नहीं किसी को देने के लिए. तो मैं अगर बाबा से ले लेती हूँ वो, क्योंकि ही इज द सोर्स, द ओशन इज जस्ट फ्लोइंग, but I turn away. So yes. Let's just face the ocean.
1: I'm going to come to that now कि ये जो रिश्ता है ये कैसे मुझे empower करेगा. उस पे आ रही हूँ मैं कि किस किस तरह से हमें empower कर देगा. लेकिन उससे पहले एक और बात जो शायद मैंने कहीं experience की कि जब thought नहीं रहता है, जब हम एक thought पे concentrate कर रहे हैं, we tend to sleep. I tend to sleep.
0: Right.
1: You know, does it really happen?
0: Yes, because meditation and sleep come very close. Because dono mein mind silent ho jata hai. Isiliye eyes open and very conscious attention.
1: But then you start becoming very heavy, you know, like...
0: Nahin. Agar right meditation technique se kar rahe hain, toh heaviness nahi hogi. Agar aap kisi se baat kar rahe hain, toh heaviness nahi hogi. Agar aap bore ho rahe hain kisi ke saath, toh neend aa jayegi. See, if you're not interested in the conversation, tab shayad saamne wala bol raha hai aur aapko neend aa jaye. Lekin yahan the reply is going to change your life. So you are waiting for that answer. You know, and you have to build that up inside you, the relationship. कि मुझे परमात्मा आंसर देने वाला है. आज दिन तक मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आत्माओं के पास गई थी और कितना चात्रक होकर वेट करती थी, मुझे आंसर दे दो, मुझे सोल्यूशन दे दो. स्वयं भगवान मुझे आंसर देने वाले हैं अभी.
1: हाउ कैन
0: आई फॉल ऑफ टू स्लीप?
1: यस,
0: हाउ कैन आई फॉल ऑफ टू स्लीप? इट कुड चेंज माय लाइफ. सो एंड इट्स गॉड, आई एम टॉकिंग टू हिम. How can I fall off to sleep? If I remember that, so you know, and that takes a little time, but that's okay. Shuru mein, kyunki relationship abhi bana nahi hai, to ho sakta hai. Lekin uske liye fir hum ye external dhyan rakhte hain ki fresh hokar, attention se, aur fir bhi agar aapko lagta hai na ki baithe-baithe neend aa rahi hai, then do it walking. Do it walking. Agar aapko lagta hai early morning, aadat nahi hai, neend aa rahi hai, then move around little bit. या बैठने से पहले थोड़ा सा मूव अराउंड करके आके बातें करते करते फिर आकर बैठ जाइए. इट विल बिकम वेरी इजी एंड देन कैरी द रिलेशनशिप ड्यूरिंग द डे. यू नो, अब ये तो है कि हमने बहुत प्रोसेस से गए, देखा, इट्स अ चार्जिंग. और फिर जब हम बाबा के पास बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, थर्ड स्टेज इज जस्ट बी स्टिल. यू नो, स्टिल just for those powers to flow to you. That's all. Now, जैसे होता है ना, बात करते करते भी अब कुछ कहने को नहीं रहा, but we just want to be with each other. And सिर्फ बैठे भी silence में, it could be the best conversation. क्योंकि there is a lot of exchange of energy. यू डोंट नीड वर्ड्स. वर्ड्स भी एक लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी है. मोनो गो हायर देन दैट. सिमिलरली विद गॉड, प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गई, बातें हो गई, लेकिन अब सिर्फ प्यार, मुझे अब सिर्फ प्यार देना है और प्यार उससे लेना है, प्योरिटी उससे लेनी है, बिकॉज ही इज एवर प्योर. सो आई जस्ट सिट इन हिज कंपनी. यू नो, जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं कोई महान आत्माएं हैं, कहते हैं बस हमें उनसे मिलने दो, हमें बस 5 मिनट उनके पास बैठने दो. क्यों? क्योंकि बस उनके पास बैठने से ही उनकी वो पावर हमें मिलेगी. गॉड, जस्ट बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम्स नाउ, बिकॉज देयर इज नो एंड टू दोज प्रॉब्लम्स. दे विल फिनिश ऑफ ऑन देयर ओन वंस आई हैव फाउंड हिम. जस्ट सिट विद हिम, एनर्जी विल फ्लो. एंड फिर उस स्टेज से भरते हुए फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वापस अब आ गए इसमें, इधर आकर बैठ गए. गो थ्रू द होल जर्नी. अब सारा दिन में इस कॉन्शियसनेस को याद रखना है. एंड नाउ द सेम थिंग हम जो हर एक घंटे में 1 मिनट कर रहे हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू सोल कॉन्शियसनेस नाउ. 1 मिनट में मैं आत्मा हूँ, परम धाम, गो होम, मीट हिम, कम बैक. And it happens. एक मिनट में आप कर सकते हैं. जैसे बॉस नहीं है, फटाफट से घर पे एक फोन करके 2 मिनट बात कर सकते हैं ना, कोई नहीं देख रहा है. और ये वाली मीटिंग करने के लिए तो सब लोग भी देख रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सारा काम करते हुए 1 मिनट के लिए, बिकॉज दैट्स चार्जिंग. आप 1 मिनट के लिए घर जाते हैं, बैठते हैं उस सर्वशक्तिवान के पास, वापस आ जाए.
1: और 1 घंटे का जो कुछ हुआ है वो भी बता सकते हैं. Yes.
0: वो तो अच्छा. आप सारा दिन करते रहिए उस 1 घंटे के दौरान भी. ये तो बस वो टच एंड कम बैक. एंड उस 1 घंटे के दौरान, या कहे सारा दिन के दौरान, एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज दैट्स द बिल्डिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन. कि अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ ऑफिस चलो, आपको पता है आज ऑफिस में ये काम करना है, वो बॉस आज वो मुझे कुछ कहने वाला है, आई हैव टू बी रेडी, आई हैव टू बी ऑन माई बेस्ट, एवरीथिंग. आई टॉक टू हिम, यू नो, कंटिन्यूसली यू कैन टॉक टू हिम. एंड धीरे धीरे भोजन पर बैठे हैं, अकेले ही थोड़ी भोजन कर लेंगे, उसको याद करते हैं. देन सिट टू इट, कॉल हिम, से एवरीथिंग, एवरीथिंग, मीटिंग अ फ्रेंड, डूइंग एवरीथिंग, टॉक टू हिम. रात को सोने से पहले गुड नाइट, फर्स्ट मॉर्निंग थॉट गुड मॉर्निंग, रिलेशनशिप. That's all. Then it's a relationship. फिर आपकी हर बात उसको पता है.
1: You're being watched actually, but you would love to be watched.
0: You would love to be watched. Because you're sharing everything. जब आप कोई अपनी बात हर एक किसी बड़े से शेयर कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाते हैं, क्योंकि वो आपको राइट टाइम पे बता देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना.
1: और एक्चुअली वो बात करते करते करते करते खुद भी
0: क्लैरिटी आ जाती है.
1: एंड यू नो, लाइक द फियर फ्रॉम गॉड एक्चुअली आल्सो फिनिशेस. फियर लाइक नो, बट गॉड फियरिंग हमने बात की थी.
0: वी आर ऑल गॉड लविंग एंड गॉड लव्स अस, सो वी डोंट हैव टू फियर.
1: वंडरफुल. आई थिंक ये एक पूरा जो प्रोसेस हमने किया है कि ये रिश्ता जहाँ अपने से जुड़ा था परमात्मा से, इतना खूबसूरत रिश्ता जुड़ सकता है, तो फिर बाकी रिश्तों की जरूरत नहीं रहती है.
0: नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाकी सब रिश्ते रहेंगे. सी, दिस इज अनदर वेरी बिग फियर, वी डोंट वांट दैट. बाकी सब रिश्ते रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे. 100% गारंटी है कि वो पहले से भी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे. दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज यू आर फिलिंग योर सेल्फ अप सो मच विद लव. You share it with everybody. तो relationships finish नहीं होंगे,
1: और ज्यादा गहरे हो जाएंगे.
0: बहुत
1: सुंदर. तो इसी बात पर अभी तो फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत. लेकिन सिस्टर शिवानी, अभी बातें बाकी हैं कि किस तरह से हम ये जो रिश्ता जुड़ जाएगा परमात्मा के साथ, एम्पावर हो जाएंगे. कौन कौन सी और बातें हैं जो जिनसे हम दूर हो सकते हैं? कौन से नेगेटिव रिश्ते जो है, नेगेटिविटी के साथ जो रिश्ते हैं, वो खत्म हो सकते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. एक और रिश्ता जुड़ रहा है, वो रिश्ता जो सभी रिश्तों से ज्यादा मजबूत हो सकता है, परमात्मा से रिश्ता, शिव बाबा से रिश्ता. कैसे जुड़ेंगे? वही टेक्निक, वही कॉन्वर्जेशन, लेकिन इस बार ये कॉन्वर्जेशन दोनों तरफ से होगी. बस जरूरत ये है कि जब जवाब की उम्मीद करें तो खुद को थोड़ा शांत कर लें और कंसंट्रेशन उसी पर रहे. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं.
2: अभी बजे हैं सुबह के 8. स्वयं के प्रति 1 मिनट का समय दें.

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अभी निकलता हूँ, एक किलोमीटर यहाँ से लेके जाना पड़ेगा बाइक पे रख के घर पे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल काम है, ले फिर भी रेडियो सुनता हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी में था तो सुन नहीं पाया था, 8:30 बज गए, तो आप फिर जुट सकते ऑफलाइन ऑनलाइन।
1: जी जी ऑनलाइन हो आप।
0: हाँ जी, तो सर आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है और माता जी का भी दिन है। हमारे यहाँ आदिवासी आसपास आदिवासी एरिया है, तो मंगलवार और रविवार को माता जी का वार द्वितवार बोलते हैं, दूसरा नाम है द्वितवार। तो उसी दिन कल मैंने टीवी में देखा था कि सभी यहाँ नीचे दक्षिण जो आदिवासी विस्तार है वहाँ पेड़ों का पूजा पेड़ बोते हैं सर, मंगलवार और द्वितवार को ये सभी जाते हैं और पेड़ पौधे ये बोते हैं, तो ये अच्छी बात है सर। इन लोगों का जो काटते हैं जंगल में से, लेकिन दूसरे पेड़ बोते भी है ये लोग, तो सूखे पेड़ का लकड़ियों के लिए लाते हैं, लेकिन दूसरे पेड़ बोते भी है दूसरे पौधे, एक अच्छी बात है सर। और भादवी, कल मैंने बात की थी कि भादवी पूनम का मेला चल रहा है, वहां रामदेव जी का भी मेला चल रहा है, बीच में आपका वो स्थान है शांतिवन, तो वहां भी सब जाए और करे वहाँ का संस्कृति की बातें है वो जाने। और अम्बा जी तो बात करूं तो गब्बर जो है ना,
1: तो
0: बोलते हैं कि भाई माता जी का हृदय का भाग गिरा है वहाँ, जो 51 टुकड़े किए ना भगवान विष्णु ने, जो तो हृदय का भाग वहाँ गब्बर पे गिरा है, तो हृदय से जो मन्नत मानते हैं लोग जाते हैं वर्ष में एक दिन, तो मन्नत मांग के आते हैं कि मेरे ये हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, ये मन्नत पूरी होती है और आज के दिन वहां लेके जाते हैं सर सभी पैदल। वो हृदय से ही मन्नत मांगी हुई जो ये है न वो माता जी जरूर पूर्ण करते हैं। मानसरोवर है, कोटेश्वर है, ये सभी स्थल है जो दिखने वाले, तो जरूर जाए सभी दोस्त और वहां का इतिहास जाने और दर्शन करें सर। सभी दोस्तों को आपको आज के दिन की जरूर जरूर शुभकामनाएं और जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे।
1: चलिए कंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया अम्बा जी के बारे में। और आज विशेष एकादशी भी है, तो निश्चित तौर पे एक पद्मा एकादशी कहा जाता है आज के दिन को, और सभी अम्बे माँ का दर्शन भी करने के लिए जाते ही रहते हैं। और आपने जैसे कहा, अम्बा जी जो है अपने आप में एक अनूठा ऐतिहासिक स्थल है और तीर्थ स्थल भी है। तो चलिए, 8:35 हो रहे हैं और आप सभी से रूबरू हो रहा हूं मैं, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो ये पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में याद किया जाता है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। ये लक्ष्मी का परम व्रत है, इस दिन आषाढ़ मास में शेष शैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं और एकादशी को वर्तमान एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान के वामन अवतार का व्रत व पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होते हैं और भगवान

विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाले समस्त पापों को नष्ट करने वाली बताते हैं। लक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ है क्योंकि देवताओं ने अपना राज्य को पुनः पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। इस दिन व्रती को चाहिए स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वामन जी की प्रतिमा स्थापित करके मत्स्य कुर्मा वरहा आदि नामों का उच्चारण करते हुए गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें, फिर दिन भर उपवास करें और रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन पुनः पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दें, पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत को समाप्त कर सकते हैं। तो ये विधि है। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना के साथ एक सुंदर गीत और हनुमान जी का जो है हनुमान अंश फिल्म जोरों से चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में है। तो ऐसे ही भाव भरा गीत उसी फिल्म का अभी आपके लिए, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। हनुमान, मैं तेरे भरोसे ही नैया सागर में डाल दिया, ये भाव था इस भजन का। और निश्चित तौर पे जब आप भगवान के भरोसे, हनुमान जी के भरोसे अगर नैया को सागर में डाल देते हो, जीवन पतवार को, तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत, आपका जो है काम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि करण करावन हार परमात्मा आपके लिए सोचेगा, आपके लिए करेगा, बस आपको सोचना नहीं है। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो उनका सोचना बंद हो जाएगा, उनका आशीष नहीं मिलेगा, है ना तो आइए परिवर्तनकारी जो एकादशी है इसके बारे में बातें करें। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस दिन यज्ञ करने से यज्ञ का फल मिलता है, पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य आज के एकादशी के दिन मेरी यानी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोगों का पूज्य माना जाता है और उन्हें मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को व्रत करने से अवश्य प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, अवश्य भगवान के समीप जाते हैं, और जिनसे व्रत और पूजन किया जाता है उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया, ऐसी कुछ बातें इस एकादशी के व्रत के साथ बताया गया है। तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार बाबू जी, आपने तो अच्छी नैया चला दी संसार की।
0: जी
1: तो संसार सागर ही ऐसा है, क्या करे, जो भगवान के साथ बरसे चलती है नैया। तो मेरा भी एक भजन है सर, रघुपति राघव राजा हनुमान के, हनुमान के मन में बसे राम, जय सिया राम जय सिया राम, ये भजन है सर। ये भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी मेरा प्रणाम।
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए 8:42 हुए हैं और आप हो मेरे साथ, तो आइए एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। और आज के दिन पद्मा एकादशी, परिवर्तनकारी एकादशी का इसका आप पूजन करें। तो चलिए इस खूबसूरत गीत को, एक और सुंदर बड़ा प्यारा सा गीत आपके लिए

आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर ये भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: बम भोले, भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आज के दिन की और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच बुराराम जी ने आप सभी को बड़े प्यार से याद किया। उनके यहाँ जैसे और गांव है आबू रोड के पास में, तो यहाँ पर विट्ठल मंदिर है और जहाँ पर लोग जो है आते रहते हैं और बड़े प्यार से श्रद्धा के साथ दीप जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो महाराष्ट्र वगैरह से लोग आते हैं तो विट्ठल मंदिर के मंदिर पर आते हैं और वहाँ आसपास में 16 अलग अलग मंदिर भी है, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए बुराराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बताने के लिए। और 8:48 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। और एकादशी में जो खास आज का एकादशी, इसमें पूजा विधि इस तरह से है कि व्यक्ति को उपवास करना है, भूमि दान करने और गाय का दान करने का इसमें एक विधि है। और इससे मिलने वाले पुण्य फलों से सबसे अधिक शुभ फलों की प्राप्ति मानी गई है। व्रत में अगर उपवास करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। और तिथि के व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7ों कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। भरे जाने वाले धान्यों के नाम इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, उड़द है, मूंग है, चना, जौ, चावल और मसूर। एकादशी तिथि से पूर्व की विधि तथा दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए और कुंभ के ऊपर विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। ये व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलती है, इसलिए इस व्रत को विशेष रूप से व्रतों की तुलना में किसी कुछ लंबी होती है। और एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल में अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न का भरा घड़ा ब्राह्मण को दान देकर करना चाहिए। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। देव जिले एकादशी की ढेर सारी शुभकामना, मंगल
1: कामना। जी जी जी, बोलिए बोलिए।
2: बस आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन है हमारे यहाँ तो मंदिरों में। बस पूरे दिन दर्शन करने के लिए भीड़ लगी रहती है और शाम को भगवान की पालकियाँ निकलेगी, 11 पालकियाँ।
1: अच्छा।
2: और सरोवर किनारे जाएंगे, भगवान को स्नान करवा के फिर वापस मंदिरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। फिर पूजा आरती होगी और प्रसाद फिर वितरण होगा। हाँ, तो बस देव जी ने एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। और सर वो गाना हो जाए धन्य एकादशी।
1: ठीक है, ठीक है, ओके। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये थे सुरेश जी पिंडवाड़ा से, जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और एकादशी के बारे में बात कर रहे थे। और पुण्य एकादशी का जो है गीत भी सुनना चाहते हैं। चलिए मैं एकादशी वाला जो गीत है वो ढूंढता हूँ और आपको सुनाता हूँ। और आज के दिन जैसे कि हमने कहा पद्मा एकादशी है और परिवर्तनकारी एकादशी है, तो इसके लिए आइए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ। भारत एक जो है त्योहारों का सर्वोपरि देश है। हर दिन एक एकादशी हो सकता है और फिर कुछ न कुछ प्रोग्राम्स या विधिवत जो है देवी देवताओं को हम अलग अलग तरीके से याद करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा एकादशी का गीत आपने सुना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक व्यक्तित्व के बारे में। बात करते हैं पवन कुमार शामलिंग जी। हाँ, इनका जन्मदिन आज है और पवन कुमार जी जो है भारत के सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष है। 1994 से लेकर लगातार सिक्किम की राजधानी में सक्रिय है और पवन चामलिंग ने जब 21 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय उन्होंने एक नई रिकॉर्ड रच दिया था और वे भारत के पहले ऐसे राजनीतिक रहे जो किसी राज्य में लगातार 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हां, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफर आज रमेश। तो चलिए बात करते हैं पवन कुमार चामलिंग के बारे में। इनका जन्म आज ही के दिन 22 सितंबर 1950 को सिक्किम के एक छोटे और बेहद पिछड़े गांव में यांगयांग में हुआ। पवन कुमार चामलिंग ने केवल मैट्रिक तक की पढ़ाई की और 1972 में ही राजनीति में आने से पहले वो किसान और प्रथम श्रेणी के ठेकेदार रह चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते सुरेश जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे, सुन रहे हैं आपकी बातें और बता रहे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम की जो बात की तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे पवन कुमार की जो आपने बात करे उसका जन्मदिन है, तो ये सारी बातें राजगुरु गुरु नानक देव जी का जी पुण्यदिन है, ये सारे शिव के दिन है। आज 11वीं है, 11वीं भी है। तो बताओ तो हमारे आज दोपहर के बाद भगवान की शोभा यात्रा भी निकलेगी गांव में, तो पूरा गांव आनंद लेगा। आज दोपहर के बाद हमारे बाजार बंद रहती है और भगवान की शोभा यात्रा में सभी आते हैं। बस एक गाना भी है, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं सर। तो बस एक अच्छा शोभा यात्रा वाला का गाना है, राम चंद्र भगवान की जो सवारी निकलती है कृष्ण भगवान की, तो ऐसा गाना जरूर सुना देना सर आपके बचन का, ठीक है?
0: जी जी जी, शुक्रिया सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, वक्त हो गया है समाचारों का। समाचार सुनते हैं दिल्ली से अभी आप सब के लिए और बड़ा ही अच्छा दिन है तो आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं मंगल कामनाओं के साथ। आइए सीधे ले चलता हूं मैं दिल्ली। समाचार डाउनलोड हो रहे हैं अभी और सीधे सुनेंगे समाचार आपके लिए। अभी सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
4: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
5: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितम्बर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
6: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
3: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
7: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
8: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेकडाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
7: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
9: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे।
7: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक करम पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
10: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने के जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से दी लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 22 सितंबर 2026 आज का तारीख है और बात कर रहे थे हम लोग आज के दिन विशेष के बारे में। और 22 सितंबर को विशेष श्रीनिवासन शास्त्री का भी जन्मदिन है, इनके बारे में बातें करते हैं। शारदा देवी, इनका भी जन्मदिन है। तो श्रीनिवास शास्त्री के बारे में अगर बात करूँ तो उदारवादी राजनीतिक और इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान देश विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। अपनी जीवन वृत्ति स्कूल शिक्षक के रूप में आरंभ की, लेकिन सार्वजनिक मुद्दों में गहरी रुचि और अपनी वाक्पट

0: पिता के कारण जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाली और फिर इसी तरह लोगों से जुड़ने का काम, लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहे। श्रीनिवास शास्त्री जी का पूरा नाम वालिंगमन शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री था। इनका जन्म ग्राम वालिंगमन जिला तंजौर कर्नाटक में 22 सितंबर के दिन 1869 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये ग्राम प्रसिद्ध तीर्थस्थल कुंभकोकन के पास है, जहां हर 12 साल बाद विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे और इनकी माता जी अति धार्मिष्ठ महिला थी। इनका बचपन धार्मिक कहानियां सुनने और भजन गीत सुनते सुनाते बीता। इनके मन पर इसका गहरा प्रभाव हुआ और संस्कारों का उनके भावी जीवन में बहुत उपयोग हुआ। तो यही एक बचपन की जो बातें थी, उनका पूरे जीवन पर जो है संस्कारित होने में उनको मददगार साबित किया और फिर शिक्षा दीक्षा के लिए वो नेटिव हाई स्कूल से पढ़ाई शुरू की और उसके बाद 1884 में मैट्रिक करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के एक कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। वहाँ से पढ़ाई पूरा करने के बाद छात्रों में लोकप्रियता तथा अनूठी शिक्षण शैली के कारण इनकी उन्नति होती गई और ये पॉपुलर भी होते गए और फिर धीरे धीरे श्रीनिवासन शास्त्री मद्रास के कॉलेज में भी दाखिला लेने के बाद वहाँ पर भी स्कॉलरशिप इनको मिला और सार्वजनिक मुद्दों पर गहरी रुचि के साथ साथ हर मुद्दे को लेकर वो बातचीत करते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रसिद्धि हुई और फिर ये कला उनकी राजनीति की ओर ले गई। इस तरह से वो पॉलिटिशियन बन गए, राजनेता बन गए और फिर समाज सुधारक बनकर अपनी पहचान बनाई। 1930 और 31 के दौरान इन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लंदन आयोजित गोलमेल सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की और 1935 से लेकर 40 के दौरान मद्रास में अन्नमलाई विद्यालय की कुलपति के पद पर भी आसीन रहे और इस तरह से देश और विदेश में बसे भारतीयों की सेवा को समर्पित श्रीनिवासन शास्त्री 76 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 1945 को मद्रास में इनका देहांत हुआ। आइए एक और दूर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार, आज क्या बात है, फोन कब से हम घंटियां बजा रहे हैं, अगर क्या बात है। आज फोन
0: जी जी जी बताइए,
1: बहुत कोशिश कर रहे हैं बस बताने के लिए। तो आपको नमस्कार, रेडियो मधुबनपुर नवी किरण को, और आज बस मजेदार समाचार सुनाए हैं हमारे डॉक्टर साहब और हमारे जी भैया ने, बहुत अच्छा सुनाया है। और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो ईश्वर को याद कर सकेंगे, और भी बहुत जगह करते हैं मगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते नहीं है बहुत। मैं अब मैं इतना तो नहीं कह सकता हूँ कि और बहुत अच्छा लगा। और सभी को अपना अपना शरीर को संभाल के रखना चाहिए, और शरीर अच्छा नहीं होगा तो तुम किसी को याद क्या कर सको, कार्य क्या कर सको, खुद क्या रह सको। तो आपको नमस्कार करते हैं और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, ओम शांति, और हमारे शो सभी शो अच्छे लगे। और बस अब चलते हैं वापिस कंपनी में, और कहते हैं अरे मत गया शोर सारी नगरी रे आया दिवस का भाषा संभाल तेरी गगरी रे, बस गया शोर सारी नगरी रे आया दिवस का भाषा संभाल तेरी गगरी रे। अरे देखो रे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए मकन देना दिया पिछुराए, अरे देखो रे देखो कहीं ऐसा न हो जाए कर मकन देना दिया पिछुराए, अरे धमकाता है इतना किसको आने से डरता है कौन उससे, ऐसे ही ना बहुत बोल दो मत चमक चमक बोल दो पलट जाएगी गगरी जब आगे पीछे डरी,
0: नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। मदन जी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और एक गीत भी उन्होंने पेश किया आप सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप बात कर रहे थे हम लोग विशेष श्रीनिवासन शास्त्री के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा करते हुए समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ रहा। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे, शारदा देवी के बारे में। जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगनी थी। 6 वर्ष की शारदा मणि का 23 वर्ष के रामकृष्ण के साथ विवाह हुआ। कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी को दिव्य माता की प्रतिमूर्ति मानने लगे और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगनी शारदा देवी का जन्म आज ही के दिन 1853 को हुआ था। उनका बचपन का नाम शारदा मणि था। उनके पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय पुरोहित करने वाले साधारण ब्राह्मण थे और परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्ति में इतने मगन रहते थे कि लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। उनके वृद्ध माता चंद्रमणि पुत्र की यह दशा देखकर चिंतित रहती थी। ये सोच करके उन्हें अपने गांव कमर पोकर ले आई कि वहां विवाह हो जाने से पुत्र की मानसिक स्थिति बदल जाएगी और इस तरह से उन्होंने विवाह करने की बात रखी और विवाह हुआ। शारदा देवी का जिस समय विवाह हुआ उस वक्त शारदा देवी की उम्र सिर्फ 6 साल और रामकृष्ण परमहंस की उम्र 23 साल, यानी 14 वर्ष की जो एक गैप है उसमें शारदा देवी का दीर्घमन हुआ और वे अपनी ससुराल गई। रामकृष्ण ज़्यादातर दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्ति में ही लीन रहते थे। शारदा वापिस अपने पति के गांव जयराम बरी आ जाती है। किसी तरह 4 वर्ष गुजर गए। एक बार शारदा देवी रामकृष्ण की अवस्था का समाचार सुनकर सीधे दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गई। वे स्वयं भी बीमार थी। स्वामी जी ने उनकी सेवा शुरू की और शारदा ने शारदा के रहने की व्यवस्था अलग कमरे में करवा दी। तो इस तरह से यहाँ पर एक रामकृष्ण परमहंस जो है शारदा देवी के गुरु भी बन गए और उन्हें धीरे धीरे ज्ञान की बातें और भक्ति की बातें सुनाने लगे और इस तरह से शारदा देवी भी रामकृष्ण परमहंस की भक्त बनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। इसके साथ ही मदन जी भी काम पर चले गए हैं और अभी आप सभी को बताना चाहूँगा आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में और शारदा देवी के बारे में बातें हो रही थी। निश्चित तौर पर आप सभी शारदा देवी के बारे में कहीं ने सुना होगा, कहीं ने पढ़ा होगा, तो ज़रूर शारदा देवी को आप जानते भी होंगे। तो शारदा देवी की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो बीमार होते हुए अपनी पति की सेवा में अपने गांव से दक्षिणेश्वर मंदिर में, जहां पर रामकृष्ण परमहंस रहते हैं, वहां आई। और वहां आने के बाद उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से, और फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें जो है उनकी सेवा की। उनकी तबीयत जो बीमार थी तो उनके डॉक्टर इलाज वगैरह कराया। उसके बाद शारदा देवी को विशेष रूप से बैठकर जब वो ठीक हो गई तो उसके बाद उन्होंने उनको ज्ञान देना शुरू किया। और एक दिन वो शारदा देवी को बिठाकर उनके सामने उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर बोले, आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी दिव्य माता की प्रतिमूर्ति हो। और यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल गई। शारदा माता बन गई गुरु और वो बन गए उनके भक्त। इस प्रकार शारदा देवी माँ शारदा बन गई और उन्होंने अपने स्वामी का मार्ग अपनाया और 1888 में परमहंस के स्वर्गारोहण के समय तक के वे अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए समर्थ हो गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा शारदा देवी दिव्य माता की प्रतिमूर्ति शारदा देवी बन गई और 20 जुलाई 1920 को उनका देह त्याग हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें शारदा देवी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:51 हो चुके हैं और आइए 22 सितंबर को जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो बात करते हैं सबसे पहले भारतीय समाचार वक्ता थे रोहित सरदाना, 1979 को इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। इसके साथ भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पवन कुमार चामलिंग, 1950 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के समाज सुधारक श्रीनिवासन शास्त्री जी, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1869 को हुआ। रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगनी थी शारदा देवी, इनका जन्म भी आज ही के दिन 1853 को हुआ। तो चलिए, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।

झोल झूला झूले झूला झूले रे सांवरिया आगी ग्यारस की रमजोल। तो झल झुलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि प्राप्त कर लेती है। कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, साबुदाना हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है और कौन सी बीमारियां ठीक करता है आप जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भाई आज मैं आपको रेसिपी में फराली आइटमें सिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज है जलनी झुलनी एकादशी और बहुत सारे भाई बहन आज के दिन उपवास करते हैं, तो फराली रेसिपी सिखाऊंगी, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी को जलझुलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशाना कार्यक्रम में स्वागत है फिर से आप सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का सुंदर सा विचार है मिट्टी का प्रभाव। पढ़ता ही है, जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि प्राप्त कर लेती है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। मार्कंडेय पुराण में एक दृष्टांत आता है। एक बार की बात है, राम लक्ष्मण सीता जी जब वन में प्रवास कर रहे थे, मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कहीं ने तो वनवास राम जी को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था। दो तीन दिन यही क्रम चलता रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो लक्ष्मण जी ने इसका कारण राम जी से पूछा। श्री राम जी ने कारण बताते हुए कहा, भाई तुम्हारे मन में इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ पर सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी की किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में तो झगड़ने वाले हैं नहीं, अतः अमरता के अहंकार में वो देवों को सताना उन्होंने शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन करके उन असुरों के पास भेजा। सुंद और उपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए। तुम मेरी हो और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों आपस में लड़के मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की ये मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया है लक्ष्मण, इसलिए तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ है। इसीलिए कहा जाता है जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, साबुदाने पर। साबुदाना किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारी ठीक करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करता है जानेंगे आप। देखिए, साबुदाने की पतली खिचड़ी बनाकर उसमें थोड़ा सा घी, जीरा और सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट के कारण ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो साबुदाने की आप पतली खिचड़ी बनाइए, उसमें थोड़ा घी, जीरा और सेंधा नमक डाल करके आप खाइएगा। इससे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके कारण ऊर्जा मिलती है, कमजोरी नहीं रहेगी। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। साबुदाना अच्छी तरह भिगो करके पतली खिचड़ी या दलिया जैसा बना लीजिए। बहुत अधिक तेल, मिर्च, मसाला नहीं डालना है, ठीक है। तो ये हमारे जो पाचन क्रिया है उसको ठीक रखेगा। साबुदाना खिचड़ी में

मूंगफली और थोड़ा दही मिलाकर खाइएगा, इससे भोजन और भी अधिक पौष्टिक हो जाता है। फिर साबुदाने की पतली खीर या मांड जैसा हल्का व्यंजन आप ले सकते हैं, लेकिन पानी की कमी में मुख्य रूप से पर्याप्त पानी और ज़रूरत पड़ने पर ORS जरूरी है। यदि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बता रही हूँ, यदि उन्हें हल्का भोजन चाहिए तो अच्छी तरह पका हुआ नरम साबुदाना थोड़े से घी के साथ दिया जा सकता है। इन्हें खाने में कोई चिकित्सीय मनाही नहीं होती है। अगर कोई भी प्रकार की ऐसे बीमारी है, तकलीफ है, भारी भोजन नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह ले सकते हैं आहार में। और कमजोरी थकान में इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, इसलिए ऊर्जा जल्दी मिल जाती है। तो साबुदाना खाने का ये फायदा है। हल्की खिचड़ी या साबुदाना पानीदार रूप में कुछ लोगों को आसानी से पच सकता है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। और देखिए, वजन बढ़ाने की जरूरत कैलोरी अधिक होने के कारण भोजन में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और डायबिटीज में साबुदाना सीमित मात्रा में लेना है, क्योंकि इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है। और किसी बीमारी का इलाज केवल साबुदाने या घरेलू नुस्खे से करने के बजाय आप डॉक्टर की सलाह भी लीजिएगा, लेकिन आहार में आपको साथ ही साथ इसलिए नॉलेज देते हैं कि आप ऐसी चीज़ें हल्के फुल्के खा सकते हैं, ताकि दवा और दुआ दोनों ही काम करें। और बाकी साबुदाना कमजोरी, गैस, डायबिटीज, वजन, ये इन सब का सवाल हो तो उसमें मतलब सीमित मात्रा में आपको लेना है। वजन भी बढ़ाता है, बाकी ये जल्दी से पच जाता है और भारीपन नहीं आता है, ठीक है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414-1514-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

जल की लहरों में भक्ति का रंग गुल जाए, जल की लहरों में भक्ति का रंग गुल जाए, मन के आंगन में प्रभु का प्रेम खिल जाए, जल झूलने एकादशी का पावन त्योहार हर जीवन में लाए खुशियां अपार। जय श्री हरि, मंगलमय हो ये दिन, जय श्री हरि, मंगलमय हो ये दिन, भक्ति से मय के हर पल और हर क्षण। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में पुनः आप सभी को जल झूलने एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

और विषय में जुड़ने के लिए जलजुलनी एकादशी मनाने के लिए जुड़ सकते हैं आप रेडियो मधुबन से। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी रेडियो मधुबन में जुड़ करके जलजुलनी का त्यौहार मना सकते हैं। आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है आज ये त्यौहार ऐसा है कि सुबह से चहल पहल शुरू हो जाती है और भाई आज तो चलिए क्यों मनाई जाती वो हम ही बता देते हैं। जैसे कि हम श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते जन्माष्टमी, तो कहते कि आज के दिन श्री कृष्ण जी को नीलाया जाता है, वो भी देखे किवन द्वितीया है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, वो भी नदी के किनारे तालाब पर इस तरह के जहाँ पानी का स्थान है वहाँ जा कर के उनको स्नान कराया जाता है। तो और ऐसे भी कहते हैं कि यशोदा मैया पोतरे धोने जाती है श्री कृष्ण जी के नदी के किनारे, इसलिए भी ये झलझुलनी एकादशी मनाई जाती है। खैर जो भी है, लेकिन हम तो खुशी मनाए ना भाई, हर त्यौहार का आनंद लीजिए आप। हमारा भारत देश ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में भी पूरा एंजॉय करता है, पूरा आनंद लेता है और अच्छा है ना। इसी बहाने जीवन में खुशियां बनी रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हल्की सी उदासी आई नहीं कि कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है, फिर मन खुशी से भर जाता है, मन में यही विचार चलता है जाने दो छोड़ो ये सारी बातें, जो पुरानी पर बिंदी लगा दो, नई शुरुआत करो, हमें सोचना ही नहीं क्यों त्यौहार के दिन हमारा मूड खराब करे। ऐसा सोचते हैं ना, मूड भी चेंज हो जाता है, खुशियां भी आ जाती है और मूड अच्छा रहता है तो पूरे घर का माहौल अच्छा रहता है। जैसे घर के मुखिया है, मान लीजिए दादी दादा मम्मी पापा जो भी है, एक का भी मूड खराब होगा तो पूरे घर में उसकी दहशत छाई रहेगी, है ना। सभी ये सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, अरे मम्मी का मूड अच्छा नहीं, बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, कहीं मम्मी का गुस्सा हमारे ऊपर ना उतर जाए। पति को भी थोड़ा लगेगा अरे पत्नी कहीं दो चार भजन न सुना दे। पति का मूड खराब होगा तो पत्नी सहमी सहमी रहेगी, बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, ना वो घर में अच्छी तरह खुश रह पाएंगे और न ही बाहर निकलेंगे, तो भी संकल्प यही चलेगा अरे आज तो भाई पतिदेव नाराज है, पता नहीं बाहर जाऊं ना जाऊं, कितने तरह के संशय आ जाते हैं। और जैसे ये त्यौहार आता है सबका मूड अच्छा हो जाता है कि जाने दो भाई क्यों आज त्यौहार के दिन, और पत्नी भी थोड़ी हक से कह देती है पति को अरे त्यौहार के दिन भी मूड क्यों खराब कर रखा है। पति भी कह देता है अरे क्या हुआ, त्यौहार है उसका आनंद लो ना, क्यों मूड खराब कर रखा है। तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता है, सादे दिन में बोल दो, देखे दो चार बातें आपको सुनने को मिल जाएगी। इसलिए अपने भारत देश बहुत अच्छा है कि थोड़े थोड़े दिन में त्यौहार आ जाते हैं ताकि गिले शिकवे नाराजगी सारी समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी शिकायतें खत्म हो जाती है और फिर से परिवार में खुशियां छा जाती है। बाकी घर में जो भी बड़े एक का मूड अपसेट होता है तो सभी अपसेट हो जाते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण जी का आज के दिन बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। भक्त लोग नाचते गाते अभील गुलाल रंग उड़ाते हुए तालाब पर जाते हैं। और पता है आप सभी को, जितने भी मंदिरों की पालकियां होती है वो पालकियां एक जगह इकट्ठी होती है, मेन जो बाजार होता है ना, सारी पालकियां वहां इकट्ठी होती है बैंड बाजा के साथ। भक्त जन नाचते गाते फिर सभी पालकियों को साथ में लेके जाते हैं, कलर डालते एक दूसरे ऊपर और महिलाएं अच्छे अच्छे भजन गाती जाती है। वैसे तो बैंड बाजा की आवाज़ में आवाज़ ही दब जाती है, कहते हैं कि बाकिया की आवाज़ में पुपाड़ी की कौन सुने। फिर भी महिलाओं को शौक रहता है भजन गाने का, क्योंकि वही एक भक्ति का आनंद ही एक अलग ही है। तो भले बैंड बाजा बजे लेकिन महिलाएं पीछे पीछे, पालकियों के आगे तो पुरुष लोग चलते हैं, पालकियों के पीछे महिलाएं चलती है, वो भी भजन कीर्तन करती जाती है, नाचती गाती है और पुरुष लोग भी नाचते गाते मंदिरों में जो पालकियाँ एक जगह इकट्ठी की हुई होती है वो जहाँ भी अपने गांव की व्यवस्था के अनुसार लेके जाते हैं, कहीं नदी की व्यवस्था है कहीं तालाब की व्यवस्था है तो वहाँ पर लेके जाते हैं। और क्या बात है, आज मैं ही मैं बोली जा रही हूँ, क्या मैं अकेली मनाऊंगी क्या। अरे झलझुलनी एकादशी का मेला लगता है जगह जगह, मेरे को लगता है हमारे श्रोता बंधु मेले में पहुँच गए, गड़बोर धाम पहुँच गए क्या। चार भुजा जी में बहुत सुंदर मेला लगता है, मेवाड़ के तीन तीर्थ चार तीर्थ ऐसे हैं जहाँ पर इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। आप श्रीनाथ द्वारा चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है। आप चित्तौड़ जिले में भातसोड़ा तहसील में सांवलिया सेठ चले जाइए, सांवलिया धाम, वहाँ पर भी जबरदस्त मेला लगता है। और आप
गाने राव साथ।

0: उत्तरी के पास गड़बोर धाम है, चार भुजा जी का धाम है, वहां पर चले जाइए। वहां पर भी बहुत जबरदस्त मेला लगता है आज के दिन। कोई गुम जाए, किसी का हाथ छूट जाए बच्चों का, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में ऐसा होता है, एक धक्का आता है आप आगे पहुंच जाते हो, दूसरा धक्का आता है पीछे चले जाते हैं, तो बिछुड़ना ही है। इसलिए बच्चों को बहुत ही सोच समझ करके ऐसी जगह लेके जाना है, ठीक है। और लेके गए हैं तो बच्चों को छोड़ना नहीं है, ठीक है, बच्चों का हाथ पकड़ के रखना है और भीड़ भाड़ में घुसना ही नहीं, किनारे चलिए, ताकि न बच्चे बिछुड़ेंगे और ना ही टेंशन आएगा। भाई अपना ध्यान अपने को रखना है, अपनी सावधानी अपने को रखनी है। बाकी देखिए, गुजरात में भी जो राजस्थान के लोग रहते हैं, तो गुजरात में भी जगह जगह इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में तो ज़बरदस्त परंपरा है जलजुलनी एकादशी मनाने की। दूसरी जगह का तो पता नहीं, क्योंकि हम तो राजस्थान की मिट्टी में बड़े हुए हैं, पले बड़े, तो पता है कि इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। जो आँखों से देखा है और जीवंत इस जीवन को जिया है, तो भूल नहीं सकते। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, हमारी प्यारी बहन उषा जी।
0: हाँ जी, दयाराम जी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी दादियों की, बहनों की, सभी आर्जी भाइयों की, मेरे प्यारे मित्रों की, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ, क्लियर से आवाज आ रही है।
0: अच्छा, चलिए, और अच्छी बात है।
1: बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आते ही आपने पेश किया, नुस्खे भी बहुत सुंदर दिए और विचार भी बहुत सुंदर सुनाया।
0: थैंक यू।
1: प्रश्न भी बहुत सुंदर है और विषय भी बताइए आप थोड़ा।
0: जी, विषय यही, आज जलजुलनी एकादशी है तो जगह जगह इसका मेला लगता है, तो कैसे मनाते हैं आप इस दिन को, खास कैसे करते हैं?
1: जी जी जी जी, बिल्कुल। जो ये हमारा पवित्र माह चल रहा है, जो भाद्रवा और इससे पहले श्रावण मास था, तो ये दोनों मास जो पवित्र होते हैं, तो इसमें हम दर्शन के लिए ज्यादा जाते आते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं तो गुजरात में अंबाजी है, तो वहाँ इस भाद्रवी पूनम का बहुत बड़ा मेला लगता है, कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, तो उसमें बहुत भीड़ होती है। तो हमेशा परिवार के साथ हम जाते हैं, तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उन बच्चों को भी ख्याल रखना है, हमारे साथ रखना है, उंगली पकड़ के रखना है, एक बड़े को आगे चलना है, दूसरे को पीछे चलना है, बीच में बच्चों को रखना है और उंगली पकड़ के रखना है, नहीं तो हम जैसे हम अपनी चैन बना के चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और वो भी साथ में अपने संगठन के साथ चलेंगे, तो इस तरह चलना है। जैसे अम्बाजी है और हमारे यहाँ राज्य के पास भीमा जी है, यहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है बहुत जगह पे। राजस्थान में जो रामदेव पीर है जनुजा, वहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है लाखों की संख्या में
0: जी।
1: तो हम जाते हैं तो एक साथ रहते हैं, और हमारा मोबाइल होता है तो कहीं गम हो जाते हैं तो हम डायरी में उसका नंबर एक दूसरे के लिख के रखते हैं, ताकि हमारा कुछ मोबाइल वोबाइल हमारे साथ से कोई छीन ले, कहीं गिर जाए, तो एक दूसरे को हम संपर्क कर पाए, तो इस तरह का हम रखते हैं। और एक बार मैं भी गया था तो बहुत बड़ा, पिछले साल महाकुंभ हुआ था उसमें गया था, तो हमारे एक साथी एक दो हमारे से बिछड़ गए थे, तो कहीं हमें एक दूसरे को फल भी नहीं लग रहा था। तो हम, मैं तो वैसे जानकार था, तो आप जैसे गुरुओं ने मुझे बहुत शिक्षा दी थी, तो मैं उस वक्त चला गया, और जो पुलिस वाले होते हैं तो उसके पास जो माइक लगा भी होता है
0: जी,
1: तो मैं वहाँ जाके माइक में बोला, उसको बताया हमारा एक साथी छूट गया, पता नहीं कहाँ है, तो वहाँ ऐसी जगह है जो माइक लगे होती है, जो लाउड स्पीकर लगा होता है, तो वहाँ एक जगह बोलते हैं तो सभी जगह हमारी सुनाई देती है
0: जी।
1: तो कहीं कोई हमारा साथी है जो बच्चा है, कहीं छूट जाए तो तुरंत पुलिस का संपर्क करे, तुरंत वो कार्यालय में जो माइक लगा हुआ है उस जाके माइक्रोफोन से अपनी आवाज बोलिए, आप बताए कि हम पहले कहाँ चाय पी रहे थे, कहीं नाश्ता कर रहे थे, कहीं हम उतरे थे, वहाँ आप आ जाइए, हम आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा मिल जाएगा, कोई भी साथी है बच्चा है खोया हुआ वो मिल जाएगा और हम एक साथ हो जाएंगे
0: जी।
1: और सभी सुनने वाले प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, दीदी आपको प्रणाम है,
0: बहुत बहुत आभार दयाराम जी।
1: सवाल तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा।
0: अच्छा, थैंक यू,
1: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे दयाराम जी, रामपुरा से, बहुत सुंदर बात आपने भी बताई है कि देखिए इस त्योहार का कैसे आनंद लेते हैं। खैर जगह जगह मेला लगता है, अभी अम्बा जी में भी लगेगा, वो अम्बे माता का मेला लगेगा, लेकिन आज के दिन जो लगता है ये मेला झलझुली एकादशी का लगता है और ये 5 दिन का मेला रहता है। ये जैसे आठम नवमी से शुरू हो जाता है तो ये 13 के दिन ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो आज का दिन खास रहता है, फिर धीरे धीरे श्रद्धालु अपने घर पर जाना शुरू कर देते हैं, 13 के दिन तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत धूमधाम से आज के दिन, तो क्या बताऊँ आपको, बहुत मतलब जहाँ मेला नहीं लगता ना, उन गांवों में भी आप जाके देखिए, उन शहरों में, उन कस्बों में भी आप जा कर के देखिएगा क्या चहल पहल रहती है, और मेले जैसा ही माहौल आपको दिखाई देगा। क्योंकि भाई हर एक गांव में कितने सारे मंदिर होते हैं, जहाँ पर भी जैसे नारायण का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, चार भुजा जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो वहाँ की सारी पालकियाँ एक जगह एकत्रित होती है और एक गांव में कितने मंदिर होते हैं वो आप समझ सकते हैं। जैसा गांव वैसे मंदिर, भाई छोटा सा गांव है तो 2-4 मंदिर तो होंगे, कस्बा है तो 25-30 मंदिर होंगे, शहर है तो फिर पूछिए मत कितने मंदिर होंगे। तो बड़े बड़े शहरों में तो एक जगह सारे पालकियाँ लाना मुश्किल होता है, क्योंकि कम से कम 100-150 मंदिर होते हैं, तो फिर उनके भी स्थान फाइनल होता है कि 40-50 एक जगह इकट्ठे होते हैं, जो एरिया में पानी के व्यवस्था होती है वहाँ वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन कस्बों में तो आप देखिएगा 25-30 मंदिर की पालकियाँ एक जगह इकट्ठी होती है, और भक्तजन अपने मंदिर, अपने जैसे मोहल्ले के मंदिर है तो उस मोहल्ले के सभी महिलाएं, पुरुष सभी मंदिर पहुँच जाते हैं, फिर धूमधाम से घासते बाजते पालकी को लेके जाते हैं और एक मेन बाजार में लेके आते हैं, फिर सारी पालकियाँ धीरे धीरे धीरे धीरे इकट्ठी होती है। हेलो,
2: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी अभय सिंह जी, नमस्कार, ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: ज्ञानेंद्र भाई।
0: ओहो ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र भाई कैसे हैं आप?
2: कैसे हैं?
0: हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: अच्छे हैं
0: जी।
2: और जल झुन्नी एकादशी को ब्राह्मण एकादशी या देव झुन्नी एकादशी भी कहा जाता
0: है। अच्छा,
2: हेलो।
0: हाँ जी, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। और आज के दिन क्या कर रहे हैं खास?
2: हमारे यहाँ मनाई नहीं आती, व्रत तो रहते हैं।
0: अच्छा, नहीं मनाते आपके वहाँ?
2: नहीं।
0: अच्छा अच्छा, तो उपवास तो करते?
2: हाँ फास्ट करते हैं मैडम, मैं नहीं करता।
0: हाँ वो तो कोई बात नहीं, एकादशी तो खैर बहुत जने करते हैं, बहुत जने नहीं करते, लेकिन इस त्योहार को मनाते नहीं है उधर, है ना?
2: जी जी हाँ, हमारे यहाँ
0: जी जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार आता है तो उसके वाइब्रेशंस तो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं, भले ये त्योहार हम इधर मना रहे हैं लेकिन इसके वाइब्रेशंस तो आप सभी तक पहुंच ही रहे, तो भी मन में खुशियां आ जाती है ना, मन खुशियों से भर जाता है। जी, और बाकी सब बढ़िया?
2: हाँ, बढ़िया है।
0: अच्छा, और इस त्योहार को, इस तिथि को कौन से महीने में मनाया जाता है?
2: ये भाद्रपद में,
0: कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, क्या?
2: शुक्ल, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है।
0: कृष्ण पक्ष में, चलिए ठीक है
2: जी।
0: देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, आप सुनिएगा कार्यक्रम, हम कार्यक्रम के अंत में जवाब देंगे। अच्छा जी, ओम शांति, बहुत बहुत आभार आपका ज्ञानेंद्र जी। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी, और आइए अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
3: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
2: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
3: बस बहन जी, खेत में अभी अभी आए, खेत में सुबह सुबह में 6 बजे 6:30 बजे जाना पड़ता है, गर्मी बहुत पड़ती है तो सुबह में जाते हैं तो अभी आ गए करीबन 10:30 बजे आए
2: जी
3: घर पे।
2: अच्छा, वो कहते झूले में भी राजे प्रभु सजे फूलों की बहार, भक्तों के मन में गूंजे भक्ति का जयकार, जल की शीतल धारा दे मन को शांति अपार, झलझुलनी एकादशी लाए सुख समृद्धि हजार, प्रभु की कृपा से हर मन मुस्काए, हर घर में प्रेम और खुशहाली आए। तो झलझुलनी का त्योहार मना रहे हैं रेडियो में, आप कैसे मनाते हैं, आज के दिन को कैसे खास करते हैं बताएंगे?
3: वाह, हमारे यहाँ एकादशी सभी बहने करते हैं बहन जी, सभी एकादशी करते हैं। आज भी एकादशी मेरे घर से और इन्होंने की है तो अभी 12 बजे यहाँ मंदिर है, गुरु जी का आश्रम है तो सभी बहने आएंगे और भजन कीर्तन का करते हैं 3 बजे तक, और फिर प्रसाद करते हैं, ये सब करते हैं हर एक एकादशी को
2: जी, जी।
3: सोमवार गुरुवार एकादशी बीज को यहाँ बहने ये भजन कीर्तन करते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे जो राजस्थान में मनाते हैं ऐसे तो हमारे यहाँ गुजरात में, तो हमारे गांव में तो नहीं मनाते, गुजरात में शायद मनाते होंगे, ठीक है।
2: हाँ जी हाँ जी, राजस्थान में तो इसको धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही जोर शोर से।
3: हाँ जी
2: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर भी एकादशी का उपवास तो खैर करते ही है।
3: वो एकादशी का उपवास करते हैं सभी बहने करते हैं
2: जी,
3: ऐसा हमारे गांव में ऐसा एकादशी मनाते।
2: हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए
3: सवाल का जवाब तो मैं थोड़ा ये करके दूंगा भाई।
2: जी जी जी जी जी, ठीक है।
3: सभी दोस्तों को आपको एकादशी की जरूरत है। एक गीत है मुझे याद आ गया, जन एकादशी एकादशी करिए तू
2: ब्रज सुख पामिए,
3: ए बजा सुना ना एकादशी।
2: अच्छा ठीक है,
3: वो भी बहने गाते हैं ना तो मुझे याद है
2: जी। ठीक है चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
3: सभी दोस्तों को आपको नमस्कार
2: जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में झलझुलनी एकादशी मना रहे हैं आज हम सभी मिलकर के, और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है जिसको भी दोहरा रही हूँ, झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या क्या है, जरूर बताइएगा। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज का प्रश्न बहुत सरल है और आज का विषय भी बहुत सुंदर है। देखिए खुशियाँ मनाते हैं लेकिन जब सभी मिल करके मनाते हैं उसका आनंद ही अलग होता है। एक तो देखो इंडिविजुअल आप एक दो जने मनाओ, एक सभी मिल करके मनाते हैं उसका आनंद अलग होता है ना, तो आज के दिन यही होता है, सभी मिल करके इस खुशियों को मनाते हैं, क्या भक्तों की चहल पहल रहती है। हेलो हेलो नमस्ते।
4: आप बुरा राम बोल रहा हूँ सर बहन जी?
2: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
4: सर आपके ब्याह से बैठे आके खेत में बैठे, जब अभी फोन चालू किया था आपका, चालू था तो मैं बोला मेरे को राम राम तो कर दू सर बहन जी को।
2: जी जी बहुत अच्छा किया। और क्या कर रहे हैं आज? झलझुलनी एकादशी है, आप क्या कर रहे हैं?
4: एकादशी झूलने बोले तो देखो, हमारे जितने भी ये 12 महीने में लोग जिनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है, उनका मंदिर में जाके, हमारा विठल भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ 15-16 मंदिर है इधर, तो पूरा सूर्य देव का, न विष्णु देव का, न महादेव का, न गणेश का, न ऐसे करके 16 मंदिर है, और विठल भगवान का बड़ा मंदिर है इधर, तो वहाँ जाके रात को दिया जलाते हैं उनके
2: जी,
4: दिया जला के फिर सत्संग करते, सब बैठ के बोलते हैं, नया आदमी ने सब बैठ के भजन करते, और पूरी रात निकालते, सुबह फिर अपने अपने घर पे जाते। दूसरा, आज ऋषिकेश का मेला आपके शांति भवन के पीछे मंगले में, वहाँ भी मेला है आज
2: जी,
4: तो
2: जी जी
4: ग्यारह का एकादशी को भरता है मेला,
2: जी।
4: तो ये होगा कि अभी घर पे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर मंदिर पे जाएंगे, आज का ये कार्यक्रम है।
2: जी जी जी जी बहुत बढ़िया।
4: और
2: बस, और तो इसी त्योहार को मना रहे हैं। और आज का प्रश्न है जो मैं दोहरा रही हूँ, झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या है?
4: ये तो बहन जी अपने को इतना अभी तो मालूम नहीं है, फिर भी एक बच्चे को पूछ के बोलता हूँ, ऐसा ये बच्चे लोगों को मालूम करेगा।
2: ठीक है, झलझुलनी एकादशी कौन से महीने में मनाई जाती? ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है वो आप देखिएगा और जवाब दीजिएगा।
4: ये तो भाद्रवा महीना चल रहा है, भाद्रव महीना है,
2: तो आज के दिन त्योहार मना रहे हैं, तो आप सोचिएगा ये कौन सा महीना है, उतरता पकवाड़ा है, चढ़ता पकवाड़ा है, क्या है? पकवाड़े का नाम पूरा बताना है, क्योंकि प्रश्न सरल है तो उसका जवाब भी अच्छी तरह देना है। ठीक है,
4: अच्छा बोलिएगा, मैं बोलता हूँ। और मेरा ये फरमाइश है, एक भजन, वो कभी माँ पिता की सेवा की नहीं है, तो वो ऐसा करके गाना भजन है, वो सुनाएंगे तो बहन जी अच्छा करेंगे।
2: जी जी जी, हम
4: कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ऐसा करके है भजन।
2: जी जी जी जी, हमें मिलता है तो हम जरूर देंगे।
4: ओके सर,
2: ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, हाँ जी। तो ये थे भूरा राम जी ओर से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और विषय में भाग लेते हैं। हेलो, चलिए तो देखिए, झलझुलनी एकादशी का त्यौहार पूरे राजस्थान में मनाते हैं, लेकिन देखिए वो भी सभी का अपना अपना है ना, छोटे छोटे गांवों में वो उस हिसाब से मनाते हैं, बड़े बड़े शहरों में कस्बों में अपने हिसाब से मनाते हैं, लेकिन ये मेला ज़बरदस्त लगता है। और पता है आपको, सांवलिया धाम में जो मेला लगता है आज चार भुजा जी का, यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। श्रीनाथ जी में मेला लगता है आज के दिन, इसमें गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। और चार भुजा जी गड़बोर धाम में मेला लगता है, वहाँ पर राजस्थान के लोग ही ज़्यादा आते हैं, जगह जगह से आते हैं, जैसे गुजर समाज के है, बनिया समाज के है, जाट समाज के है, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। खाती जो मिस्त्री काम करते हैं वो लोग हैं, सबसे ज़्यादा इनकी भीड़ रहती है, और बनिया लोग तो सबसे ही ज़्यादा। हेलो
5: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बुल्तान से, कैसे दीदी?
2: हम अच्छे हैं सुरेश भाई, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
5: बस अच्छे, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि हम आज के दिन, तो क्या हमारे पास में 2 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है, वहाँ रामदेव जी का मंदिर पड़ा है, वहाँ तो आज के दिन जो हम घोड़ा बनाते हैं वो भगवान के वहाँ देने के लिए जाते हैं, और तो घोड़ा को वहाँ मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है इसके पास रखते हैं, पूरा साल तक उसकी पूजा होती है।
2: जी
5: तो
2: जी जी,
5: वहाँ गए थे 9 बजे से, तो अभी आए हैं।
2: अच्छा,
5: तो आके, हाँ अभी आके देखा तो सबका फोन चल रहा था, मैंने सोचा चलो मैं बात कर लूँ आपसे।
2: जी जी,
5: फोन बिजी बिजी आता था, तो हमारे कंसर्न भाई ने बात की।
2: फर्स्ट लिंक में तो कोई जुड़े नहीं ज्ञानेंद्र जी के अलावा, मैंने कहा अभी सब कहाँ बिजी हो गए।
5: आज मैंने सुना नेता ने कि मंदिर गया था, इसीलिए
2: जी जी
5: पैदल गया, पैदल आया, और गर्मी भी बहुत है तो थोड़ी देर लगी।
2: अच्छा,
5: तो चलो अच्छा विषय आज 11 से आज देती हमारे, बताओ तो हमारे गांव में भी आज भगवान निकलेंगे, पूरी गांव की परिक्रमा करने के लिए दोपहर को 2 बजे शोभा यात्रा निकलती है और रात को 6-7 बजे मंदिर में वापस जाते हैं भगवान
2: जी।
5: और पूरा गांव तक वो घूमेंगे भगवान आज के दिन
2: जी।
5: और कई सारे लोग साथ में, पूरा गांव भी साथ में होंगे
2: जी।
5: तो बड़ा मेला भी लगता है, लेकिन मेला हमारे पास पास के गांव में है तो वहाँ मेला भी लगेगा। शाम को हम वहाँ भी जाएंगे रात को
2: जी,
5: मेले में गांव देवी का मंदिर है वहाँ, जब कोड़ो हम चढ़ाने गए थे वहाँ, वहाँ मेला रात को पड़ता है।
2: अच्छा
5: जी, जी। भगवान आज चेतन सबको भगवान घर घर दर्शन देने के लिए निकलते हैं आज तो। ऐसा तो देखो आज भगवान, हम भगवान के पूरा कालम भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान हमारे सबके घर आके सबको दर्शन करवाते हैं, कितनी भाग्य की बात
2: है। जी जी जी जी,
5: तो बस अच्छा है दीदी, भगवान का जो दर्शन हो जाए, भगवान सबकी कृपा बनी रहे, ऐसी तो हम सब कामना करते हैं सबसे, सबका जीवन अच्छा जाए, पूरा साल अच्छा जाए और सबको भगवान का अच्छा दर्शन करने का लावा मिले
2: जी।
5: और जाओ तो आप चाहो को दो तो वरना मैं ऑफलाइन में दूंगा।
2: ठीक है, भले वो फिर दीजिए, भले आप मुझे मैसेज के द्वारा भी दे सकते हैं।
5: हाँ ठीक है, मैं बाद में दूंगा
2: जी। बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। और देखिए आपने भी बताया कि आपके भी गांव में बहुत ही अच्छा मेला लगता है, घर घर में ठाकुर जी दर्शन देने आते हैं, मनाते सभी है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि कहीं पर घर घर में जाते हैं, कहीं पर क्या है कि सारी मंदिरों की पालकियां बाजार में इकट्ठी होती है, भक्तजन नाचते नाचते अपने मोहल्लों से आते हैं अपनी मंदिर की पालकी लेकर के, अच्छा सा श्रृंगार करके, और फिर जब मेन बाजार में ला करके सारी पालकियाँ इकट्ठी करते तो सभी भक्त यहाँ पर भी बहुत नाचते हैं, कोई अपना टैलेंट शो भी दिखाता है, किसमें कोई विशेषता है वो भी वहीं पर होता है। और फिर एक दिन ऐसा भी फाइनल किया जाता है जिस दिन उनको पारितोषिक भी दिया जाता है, क्योंकि टैलेंट शो, कोई टैलेंट होगा तो ही वो बता पाएंगे। तो इस तरह सभी भक्तजन देखते हैं, चारों तरफ घूम जाते, बीच में जगह रखते हैं वहाँ पर, जिनमें जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। और फिर ऐसे सुबह से पालकियाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, अपने अपने मंदिरों से लाते, घंटा डेढ़ घंटा तो उसी में ही लग जाते हैं, भक्त लोग नाश्ते खाते लेके आते उसी में, तो ऐसे सारी पालकियाँ इकट्ठी होती है। फिर 3 बजे सारी पालकियाँ 3 बजे से पहले इकट्ठी हो जाती है, फिर सारी पालकियों को या तो नदी, अपने गाँव में जो भी व्यवस्था है, नदी या तालाब वहाँ लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, स्नान कराकर वहाँ फिर वापस उनका श्रृंगार किया जाता है, वहीं पर आरती होती है, फिर भक्तों में प्रसाद वितरण होता है। अभी तो कहते हैं ना कि दानवीर भी बहुत है समाज में, बहुत सारे इकट्ठे साबुदाने की खिचड़ी बना के लाएंगे, कोई आलू टमाटर की सब्जी बना करके लाएंगे, मतलब प्रसाद लेके आएंगे, पेड़े और ये मिश्री मावा कलाकंद, ये तो टू मच सभी बांटते हैं, बहुत जने बांटते हैं और अच्छी तरह क्वांटिटी में, हजारों की संख्या होती है लेकिन फिर भी अच्छी तरह देते हैं, जैसे डिस्पोजल कप है, दोने हैं, उनमें देते हैं, ताकि क्या है कि भक्तजन सुबह से नाच रहे गा रहे हैं तो उनको भूख भी लगती है, और जैसे अपने अपने मंदिरों से लाते हैं ना, तो मंदिरों में भी मोहल्ले वाले क्या करते हैं, अपने मोहल्ले के मंदिर में जो भी सेठ साहूकार है या सामर्थ्य अनुसार, वो भी सभी भक्तजनों को मंदिर में ला करके कोई साबुदाने की खीर पिलाता है, कोई फ्रूट बांटता है, फिर वहाँ थोड़ा सा खा पी करके फिर वो नाश्ते खाते मेन बाजार में आते हैं। मेन बाजार में भी जिनको जो बांटना हो बांटो, क्योंकि वहाँ पर तो 2 घंटा 2.5 घंटा यहाँ पर भी नृत्य और टैलेंट शो होता है, और जिसको जो बांटना हो वहाँ पर भी बांटते हैं भक्तों को, वो भी खाते, कोई वेपर्स के पैकेट पैक करके लाते हैं, केले के वेपर्स तो आलू के वेपर्स, ऐसे सभी को देते हैं, और फिर वहाँ से वापस पानी के स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर भी ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद भोग लगाते हैं, और इस तरह पेट भर के, जैसे साबुदाने की खिचड़ी है, मुरैया है, और जिसको जो देना हो वहाँ पर देते हैं। आज के दिन भक्तों को अपने घर पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फराल, क्योंकि पहले से फाइनल होता है मोहल्ले में से कौन बना रहे, भाई हम मोहल्ले वालों को तो थोड़ा दे ही देना, तो अपने मोहल्ले में तो बांटते हुए फिर पालकी लेके जाते हैं, और फिर ठाकुर जी को वापस स्नान ध्यान करा के, आरती करा के, वापस भक्त जन नाचते गाते अपने अपने मंदिरों में पहुँचते हैं, फिर मेन मार्केट में नहीं जाते हैं, अपने अपने मंदिरों में पहुँचते हैं, फिर वापस ठाकुर जी को वहाँ स्थापित कर देते हैं, फिर संध्या आरती होती है मंदिरों में, तो इस तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। अभिल गुलाल उड़ाते हैं जैसे होली आ गई हो, इतना कलर भी एक दूसरे पर डालते हैं। फिर भक्तजन भी स्नान करते हैं ठाकुर जी को निलाने के बाद, क्योंकि अब सभी कलर वाले हैं और ठाकुर जी की आरती करनी है तो वापिस स्वच्छ तो होने चाहिए। तो भक्तजन भी स्नान करते हैं और वो भी कपड़े चेंज करके अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे धुले हुए, फिर ठाकुर जी के इस तरह आरती करते हुए वापस अपने अपने मंदिरों में जाते हैं। इस तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। चार भुजा जी में दूध तलाई ले जाया जाता है ठाकुर जी को। हेलो,
6: राम राम। मुसाबेन आपने ना राजस्थान में केरे बोले गणपति ने उत्सव साइले रे ओसे
2: सु कोछो जसमत भाई।
6: हां गणपति ने उत्सव केवा साइले रे ओसे गणपति दादा मोरिया ने उत्सव।
2: हां सारू चाले छे, दरेक त्यौहार मनावे छे राजस्थान में, गणपति नु सारू चाले छे। हां
6: हमारे यहाँ गुजरात में बेन धामधूम की उत्सव साइले रे ओसे बधे गणपति दादा ना लाडवा बनावे छे, पंचेदी बनावे छे, અને ખૂબ દાંડિયા રાસ ને બધું રમે છે।
2: અહીંયા પણ એવું છે, અહીંયા પણ કાયમ ડીજે ની આવાજ સાંભળવામાં આવે છે અને ભક્તો નાચે છે। પણ આજે આજે જો જસમતભાઈ, આજે આપણે ગણપતિ દિવસ નથી મનાવતા, એ 10 દાડા ચાલે છે, તો આપણે મનાવી છે ઓર મનાવીશું અનંત ચૌદશ ના દાડે। આજે જલજુલ ની એકાદશી છે, તમે જલજુલ ની એકાદશી કરો છો?
6: હા બેન, અને હું તમને કાલ, તમે કાલ ફોન કર્યો તો મને કાલ તમે, હલો ઉષા બેન,
2: હા
6: કાલે તમે ફોન કર્યો તો મને,
2: હા
6: બરોબર 6 વાગે હાલ ના,
2: હા
6: બરોબર,
2: હા એક કામ હતું એટલે, પણ તમારી આવાજ નથી સાંભળવામાં આવી, બહુ ધીમી આવાજ આવતી હતી,
6: ચાલુ હતો ને બારી ચાલુ હતો એટલે બહુ આમ અવાજ નતો આવ્યો, બહુ એવું હતું, બારી ચાલુ હતી જ ને।
2: તો ચાલો જસમત ભાઈ, આજના પ્રશ્નનો જવાબ આપશો તમે?
6: એ પૂછો,
2: આજનું પ્રશ્ન છે જલજુલની એકાદશી કયા મહિનામાં આવે છે અને એનું બીજો નામ બતાવો।
6: હવે કયા મહિનામાં એનો જવાબ આપો કે ભાદરવા મહિનાની 11 ને દી આવશે,
2: પણ જો તમે થોડોક ઓર સ્પષ્ટ આપો જવાબ, કૃષ્ણ પક્ષમાં આવે છે, શુક્લ પક્ષમાં આવે છે, ક્યારે આવે છે?
6: એમ પક્ષની બેન ખબર નહીં, પણ ભાદરવા મહિનામાં આવે છે।
2: ચાલો ઠીક છે જસમતભાઈ,
6: અને એનો આપણે રથ ધોવા લઈ ને ભગવાન જળ જીલવા જાય એવું કઈક માનતા છે, બહુ યુનિવર્સિટી જાગી નથી માહિતી, પણ ગામમાં એવો પાલ થી એવું નીકળે છે હાલ ના 6 વાગે એવું બધું થાય।
2: અચ્છા ઓકે, ઠીક છે જસમત ભાઈ, હો
6: આભાર,
2: હા બહુ બહુ આભાર તમને, ઓર બસ અભી ઇસ વિષય કો યહી સમાપ્ત કરેંગે, ઓર સમય હો ચલા એક ગીત સુનને કા, તો ગીત સુન લેતે હૈ કભી પ્યાસે કો પાણી પિલાય નહીં, ઉસકે બાદ પુનઃ લોટ રહે હૈ, તો બને રહીએગા કાર્યક્રમ આશિયાના મેં, સુનતે રહો મુસ્કરાતે રહો, રેડિયો મધુબન 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज मैं आपको साबुदाने की खिचड़ी बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि साबुदाना की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, पेट भी भर जाता है और जल्दी पच भी जाता है। मुरैया जल्दी नहीं पचता है, वो भी लाइट खुराक है एकदम। मुरैया भी जैसे हम बीमारी में थुल्ली खिचड़ी खाते हैं, ऐसे मुरैया भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन साबुदाने की खिचड़ी सिखा रही हूँ आपको। सामग्री में ले लीजिए साबुदाना, मूंगफली के दाने, आलू, जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को। साबुदाना, आलू, सिंगदाने, सिंगदाने को मूंगफली के दाने कहते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक, जीरा और तेल। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। आप साबुदाने ले रहे हैं, पहले साफ़ कर लीजिए। साफ करके एक बार धुलाई करके फिर आप इसको भिगोइए। तरमा पानी रखना है, साबुदाने डूब जाए, हल्का सा पानी ऊपर रहे थोड़ा सा, क्योंकि साबुदाने सारा पानी पी जाता है। तो ऊपर रखिएगा पानी, थोड़ा तरमा रखिए, ठीक है? और इतने में 2 घंटा आपको कम से कम भिगोना है साबुदाने को। उसके बाद ही आप खिचड़ी बनाइए, तो ही खिचड़ी स्वादिष्ट बनेगी और साबुदाना अच्छी तरह गल जाएगा। फिर ऐसे गल जाएगा तो ये नहीं है कि आपको एकदम ही खिचड़ी पका देनी है, मतलब बिल्कुल ही साबुदाना दिखे नहीं, नहीं, साबुदाना साबुत रहेगा लेकिन गलेगा अच्छा। फिर आलू बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके उसके छिलके निकाल दीजिए और इसको मैश कर दीजिए। पहले आप जो भी चाकू से काटना चाहे काट लीजिए। सिंगदाने सेक लीजिए, सेक करके इसके छिलके हटा दीजिए। और इसका भी अतकचरा, अगर बुजुर्ग है घर में तो वो क्या है कि सिंगदाने चबा नहीं पाएंगे, तो फिर आप मिक्सर में बारीक पीस लीजिए। अगर बुजुर्ग नहीं है तो फिर आप अतकचरा रखिए, क्योंकि खाने में जब सिंगदाने का टेस्ट आता है तो साबुदाने की खिचड़ी का और भी स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब 2 घंटे हो गए साबुदाने को भिगे हुए, तो वो पानी वैसे ही जज्ब हो जाएगा साबुदाने में, ठीक है? फिर भी अगर आपको लग रहा है कि साबुदाने में पानी ऊपर अभी तक तैर रहा है तो उस पानी को निकाल दीजिए आप। और अब रखिए आप कढ़ाई गैस पर, गैस चालू कर दीजिए, तेल डालिएगा। तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का लगा दीजिए, हरी मिर्च धुलाई करके काट लीजिए। जब जीरा पक जाए तो आप हरी मिर्च डाल दीजिए, ठीक है? और हरी मिर्च के साथ आप मीठा नीम का पत्ता तो डाल ही सकते हैं, ठीक है? है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर आप अब इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक डालने के बाद अब आप डाल दीजिए सिंगदाने का जो अतकचरा कूट रखा है, ये आप डाल दीजिए कूटे हुए सिंगदाने। अब आप आलू डाल दीजिए, साबुदाने डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको हिला दीजिए खिचड़ी को, ठीक है? जब मसाला सब तरफ से मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर गैस बंद करके हरा धनिया डाल दीजिए और थोड़ी देर थाली ढक दीजिए। उसके बाद आप साबुदाने की खिचड़ी का पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हैं ठाकुर जी को भोग लगा करके। तो इस तरह साबुदाने की खिचड़ी बनाई जाती है। अब फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: माँ जी, ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर सोचिएगा, विचार करिएगा, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए, साबुदाना कैसे फायदा करता है। और जो हमने आज आशाना कार्यक्रम में झलझुलनी एकादशी का त्यौहार मनाया है उसका आनंद तो जरूर आपने लिया होगा, और रेसिपी में जो साबुदाने की खिचड़ी बनाई है जरूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है, तो जवाब दिया है हमारे श्रोता बंधुओं ने, नीलम जी, नीलम राठी आबुरा से, दीपा सोमानी कपासन से, प्रवीणा जी मुंबई से, और मीना सोमानी अहमदाबाद से, दयाराम जी रामपुरा से, ज्ञानेंद्र जी ने गलत जवाब दिया है, कृष्ण पक्ष में नहीं ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, आधा जवाब सही है आधा गलत है। कंचन भाई मंडाली से आपने जवाब नहीं दिया है, सरला जी बाड़मेर से आपका जवाब सही है, भूरा राम जी ओर से आपने जवाब नहीं दिया है, अलका सोमानी कपासन से आपका जवाब सही है, जसमत भाई ने जवाब नहीं दिया है, शोभा सोमानी सुरेश भाई जोटाना से आपका जवाब सही है, और नंबर भेजे हैं, मैसेज आया है 6352888 एक नंबर इसमें मिस हो गया, 6353238588 आपका जवाब भी सही है। तो पहले तो मैं तालियां बजाना चाहूँगी उसके बाद ही आपको जवाब दूंगी, तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उनके लिए ढेर सारी तालियां। और जो विषय में जुड़े हैं उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। तो देखिए नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी ने एक नाम भेजा, किसी ने दो नाम भेजा, पर देखिए आज के एकादशी को पद्या एकादशी भी कहते हैं, पार्श भी कहते हैं, पार्श एकादशी, जयंती एकादशी, डोल एकादशी, वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी, तो इतने सारे नाम हैं, और झलझुलनी तो कहते ही हैं। अब आज का मीठा मोती है, हाथों के द्वारा दिए जाने वाले दान से अधिक श्रेष्ठ दान मन के द्वारा दिए जाने वाला शुभ भावना का दान है। अब मैं आपको झलझुलनी एकादशी पर ही प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। झलझुलनी एकादशी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुरली वाले सावरा तेरी मुरली नेक बजाए, ई मुरली में मारो मन बस।

आगी ग्यारस की रमजोल, ग्यारस की रमजोल आगी झूलन की रमजोल, झूला झूले झूला झूले रे नंदलालो, आगी ग्यारस की रमजोल। दादुर मोर पपी हरे बोले, कोयलड़ी को शोर मोहन मारा, कोयलड़ी को शोर डाली डाली और पाते पाते मीठा बोले रे यारे मोर, झूला झूले ओ झूला झूले रे बनवारी, आगी ग्यारस।

गया प्यारा किशन कनाई, झूला झूले हो झूला झूले रे बनवारी, आगी ग्यारस की रमझोल, चंद्रस की ब्रज बाल किशोर।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: दीदी मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले

0: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तब हमें एक एडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना। हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए, ये भी हो सकता है ना। सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं तो ब्लंटली जवाब देता है, जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो, आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। अब उसको सवाल समझ में नहीं आया तो उसने कहा, क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को हर्ट करता
1: अनकंफर्टेबल होते हैं, हर्ट करते हैं।
0: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है। वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि उस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा, मेरे पास दो बिल्लियां हैं तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल। तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे, ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। तो कहा, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
1: छोटी बिल्ली
0: छोटा।
1: के लिए छोटा हो।
0: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की
1: जरूरत
0: जरूरत।
1: नहीं है।
0: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हैं।
1: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है।
0: हाँ, इन्वॉल्व।
1: तो जैसा आपने बताया, वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ। उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
0: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
1: जी
0: जो सवाल था आपका, उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।

0: हाँ जी, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते।
1: नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
0: ओके, कैसे?
1: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है, आप कोई चित्र बना दो।
0: ओके,
1: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो, है ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
0: ओके,
1: क्योंकि
0: इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना,
0: संभाले
1: और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना, लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी है।
0: ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
1: कर सकते,
0: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
1: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है। और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे, प्रेशर दे, तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
0: तो एकदम से बाहर आती है,
1: उछल कर कूद कर
0: चलती है,
1: कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं, तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते। उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स, उसको कई बार कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो, पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो, तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
0: वॉमिटिंग हो जाती है,
1: या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है, दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके, फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
0: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यानी यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो पूरा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं, एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसेप्शन में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
0: ओके,
1: हाँ, सो वो कैसे बना? तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था
0: जी।
1: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया कि किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे। तो मैंने आगे आके कहा कि मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए, उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होगे, मेरे सिंपल होगे लेकिन स्वच्छ होगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी, तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे, और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है? कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।
0: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कि ना प्रैक्टिकल है ये।
1: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं
0: जी,
1: कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
0: जी,
1: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
0: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए, अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊ मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं कि क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
1: देखिए, एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
0: जी,
1: तो मुझे आप बताओ, उनको ये पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या?
0: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है, नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या
1: ग्रुप में अच्छा शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते हैं।
0: जी,
1: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना, पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते हैं।
0: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
1: यस यस, ये फेक मी है,
0: इसमें से न्यू मी नहीं है।
1: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। So, यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते
0: हैं।
1: हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
0: मुझे अच्छा फील नहीं किया, अच्छा बुरा लग रहा है, डाउन बुरा लग रहा है, लो लग रहा है।
1: फिर लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझ में ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ,
0: सेम जरूरी नहीं है,
1: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
0: बहुत सुंदर डेफिनेशन है, और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं, सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है, मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए, और मी जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं उसको रियली रखें।
1: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर लें, किसी एक शांत स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को रोल प्ले करते। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूं, रियल हूं। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखी, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस ले, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलू। बहुत सुंदर आपने एग्जांपल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में, तब तक आइए दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाना चाहूंगी जिनका नाम है सौम्या रेवणकर। आप बेंगलोर के रहने वाले हैं और 5 वर्षों से आप राजस्थान आबू तलेटी में रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपने बीकॉम फाइनल तक पढ़ाई की हुई है और आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। आप सभी के साथ हिलमिल करके प्यार से रहते हैं और बहुत ही आपका व्यवहार सौम्य व्यवहार है। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं जो आपके द्वारा ही जानेंगे, तो ऐसी नारी शक्ति से आप सभी को मिलवाना चाहूंगी। देखिए, वंदे मातरम स्पेशल नारी शक्ति पर आधारित है कि महिलाओं के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो ऐसे तो पता ही नहीं चलता है कि इनके अंदर क्या विशेषता है, लेकिन रेडियो मधुबन के जरिए आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में क्या नहीं है। तो आइए हम आपको मिलवाएंगे। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू
0: जी। सौम्या जी, आपकी स्माइल बता रही है कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आकर।
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं। आज आपके अनुभव हम सुनेंगे। तो आपकी उम्र वैसे 55 वर्ष की है, 55वां अभी लगा है।
1: अच्छी।
0: तो चलिए 55 में बचपन को याद कर लेते हैं।
1: जी जरूर जरूर करेंगे
0: जी।
1: हम तो बचपन से ही बेंगलोर से ही पैदा है, कर्नाटक बेंगलोर से ही है हम लोग। हम यहाँ अभी 5 साल हो गए, मगर बचपन में हम अध्यात्म में और धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि थी। हम जब से पैदा हो गए दादी के साथ ही हम रहते थे। दादी पूजा पाठ में बहुत चलती थी।
0: अच्छा, तो दादी जी की वजह से आपको भी ऐसे ईश्वर में रुचि होने लगी।
1: हाँ जी।
0: तो आप बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे।
1: हाँ जी।
0: तो दादी जी क्या करते थे, मंदिर वंदिर जाते थे या घर में पूजा पाठ करते थे?
1: दादी जी मंदिर भी जाते थे, मंदिर भी बनवाए थे। हम बचपन से ही दादी के साथ ही पले बड़े हैं। अब हमारे घर धार्मिक प्रवृत्ति है और बड़ा घराना था वहाँ हमारा, वहाँ बेंगलोर में। तो आने जाने वाले भी बहुत सारे थे, स्वामी लोग भी बहुत सारे आते थे, साधु संत आते थे, ऋषि मुनियों का आना जाना रहता था। मेरा दादी सबको एक आश्रिता दाता जैसे वो रहती थी। इसके उनके बाद में मेरे पिताजी और मम्मी दोनों ऐसे उसी रास्ते में चल पड़े थे।
0: अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य, संयुक्त परिवार था?
1: हाँ, जॉइंट फैमिली थी हमारी। हमारी फैमिली में वैसे तो हम 23-24 लोग तो हमेशा घर में रहते थे और आने वाले वो लोग भी रहते थे। 30 तक हमारा घर में रोज सुबह शाम खाना बनता था।
0: अच्छा, तो उसमें आपके चाचा चाची?
1: चाची, बड़ी माँ, बड़ी पापा सब थे और जॉइंट फैमिली होने के कारण कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स बहुत सारे थे।
0: जी, तो कहाँ समय बीतता पता ही नहीं चलता।
1: नहीं,
0: क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो सभी भाई बहन साथ में हिल मिल करके रहे होंगे।
1: इसका एक रिजल्ट ऐसा है हमारी जिंदगी में, सबके साथ जुल मिल कर कैसे रहना ये भी हमको आसानी से आ गई। और सब काम करने की तरीका, साथ में मिलकर काम कैसे करे, वो एक करे हम एक दूसरे करे कैसे कर सकते हैं, वो सब हमको सीखने को मिला, बचपन से ही सीखने को मिला। आज अपनी जिंदगी में वो सब आ रहा है, वो सब काम आ रहा है।
0: जी जी, वो तो देखो बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन के जो हमने प्राप्ति की है ना, वो लाइफ टाइम चलती है। तो बहुत ही सुंदर की आपके दादी जी, चाचा चाची, उनके बच्चे, 30 लोगों का परिवार था।
1: 30 लोगों का परिवार था।
0: आप रियल भाई बहन कितने थे?
1: हम रियल भाई बहन 4 लोग हैं, 2 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे ऊपर, मतलब बड़ी मैं ही हूँ, मेरे पीछे सब लोग हैं। तो जिम्मेवारी भी मेरी ज्यादा ही थी और मम्मी पापा को देखना, वो सब वो जो कहते वो सब काम करना और पूजा पाठ में उनका समय देना, उसको रेडी करके जो पूजा करते थे वो रेडी करके देना, वो सब हमारी जिम्मेवारी थी।
0: घर में सबसे बड़ी बेटी आप ही थी?
1: हाँ जी।
0: बाकी चाचा के सबके छोटे?
1: वो सब छोटे ही थे।
0: बड़ों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती
1: है।
0: तो आपके दादाजी भी थे?
1: दादाजी नहीं थे।
0: अच्छा, आपके दादी जी बहुत धार्मिक?
1: दादी जी हाँ,
0: तो
1: बहुत धार्मिक,
0: सभी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे।
1: हाँ, सभी
0: जी।
1: सभी हमारी एरिया में वो तो बड़ी दादी नाम के, बड़ी नाम से वो पुकारते थे वो लोग। हमारे वहाँ श्रृंगेरी शारदा पीठ है शंकराचार्य से जो स्थापित किया हुआ है, वहाँ से जो स्वामी जी आते थे वो हमारे घर में आकर रुकते थे। उनका प्रवचन चलता था 7 दिन 8 दिन ऐसा, भागवत वगैरह सब। और उसके बाद में हमारा साउथ इंडिया के जो कंची हम अभी जानते हैं कंची कामाक्षी नाम से, वो भी शंकराचार्य पीठ से ही हो गया, शंकराचार्य के हाथों से ही वो भी स्थापित हो गया।
0: अच्छा, तो ये सत्संग आपके घर में होते या आप लोग अरेंज करते हैं?
1: नहीं, अपने घर में। अपना तो बड़ा वाड़े जैसा घर था।
0: अच्छा, बहुत बड़ा?
1: हाँ,
0: था।
1: बहुत बड़ा था। दो हॉल थे ऐसे, 50 के लोग आराम से बैठ सकते थे हम ऊपर और नीचे। ऐसे आंगन भी बड़ा था हमारा, इसीलिए हमारे घर में ही ज्यादातर चलते थे और मंदिरों में भी चलते थे, हम उधर भी चले जाते थे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। तो वो तो कहते हैं ना कि जब बड़े इस तरह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए तो छोटों पर तो प्रभाव उसका पड़ना ही है। तो आप भी ऐसे?
1: हाँ, और हर महीना हमारे घर में एक तो यज्ञ या होम हवन चलता ही था हर महीना।
0: जी जी जी तो साधु संतों का तो आना जाना चालू था। तो आप जैसे बच्चे लोग हैं और साधु संतों को तो बहुत ही स्वच्छता और वो उनका ध्यान रखना पड़ता था,
1: पड़ता है।
0: तो भाई इतना बड़ा परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से कभी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ कि कोई साधु संत थोड़ा भड़क गए?
1: नहीं नहीं, संस्कार ही ऐसे हो गए थे ना हमारे, इसलिए ऐसे ही हो गए थे हम। उनको जैसे चाहिए इसलिए हमारे घर को सिलेक्ट करते थे वो सब लोग।
0: और उनके रहने के लिए भी एक्स्ट्रा
1: अलग से कमरा, उनका आने जाने के लिए। उनके साथ वो भी शिष्य लोग भी आते थे, उनके चेला लोग भी आते थे, उनके लिए भी रहना। और अपना तो क्या है, वो बड़े जमींदारी ऐसा था ना, सर्वेंट्स तो हमेशा अपने घर में रहते ही थे, दिन रात चलता था वो सब, तो चलता था। मेरे पापा और बड़े पापा दोनों मिलकर करते थे वो सब।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी जी। तो आपके क्या बिजनेस था या?
1: हाँ, हमारी बिजनेस थी, नहीं बिजनेस थी, पापा की अपना जमींदारी थे, तो जमीन था, वो जमीन में वो पैदा उगा करते थे चावल वगैरह वो सब। और अपना बिजनेस भी था, पिताजी का साड़ी का, दादाजी का ये था, साड़ी का दुकान था, होलसेल दुकान था।
0: अच्छा।
1: तो वो सब करते थे, हम भी जाते थे साथ में, वो भी सिखाते थे हमको।
0: अच्छा।
1: लड़कियां पीछे नहीं हटना है, सब चीजें सीखे लड़कियां, आगे कौन सी वक्त आता नहीं पता नहीं है, निडर होके आगे चलने के लिए क्या चाहिए वो सब सिखा दिए मेरे पापा।
0: जी जी जी जी। हर प्रकार का कार्य आपने किया?
1: हाँ, जैसे भाई लोग करते हैं, भाई और बहन अलग से देखा ही नहीं अपने घर में, हर किसी को नहीं देखा, ये भाई बहनों का काम है, ये भाइयों का काम है, ये करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिताजी अपने साथ हम लोगों को, लड़कियों को, मतलब अपनी बेटियों को साथ में लेके जाते थे, सुनो परखो करो ये सब निर्णय ले लो कि तुम करती तो क्या होता, तुम होती तो क्या करती, वो सब सोचो, वो सिखा दिए, बचपन से ही सिखाते आए पिताजी हमको।
0: जी जी जी जी।
1: पालना बहुत अच्छी मिली है बचपन से हमें।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो इस तरह आप भी जैसे बिजनेस में भी माहिर हो गए।
1: हाँ,
0: और अध्यात्म में तो
1: आगे होकर अपना खुद का बिजनेस भी मैंने खड़ा कर दिया था।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: बताएंगे क्या बिजनेस खड़ा किया?
1: मैंने साड़ी का ही बिजनेस खड़ा कर दिया था। शादी हो गई, शादी होने के बाद ये हमारे हस्बैंड वो बैंक मैनेजर थे, तो बैंक मैनेजर माना उसका क्या होता है, काम सुबह से रात तक होती है, तो अकेले घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। और हमारे अपने घर में मायके में तो इतने सारे लोगों के साथ रहकर ये अकेला टाइम बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे को
0: जी।
1: तो मैंने भी साड़ी का बिजनेस शुरू कर दिया। पिताजी ने थोड़े बहुत मुझे अपने दुकान के साड़ी दिए थे, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। नाम के 5,000 से 5,000 रुपये की माल लेके आई थी मैं बस, तब से लेकर 14-15 लाख तक अपने बिजनेस को बढ़ाया। घर बैठे ही मैंने बिजनेस भी करती थी और आध्यात्म के रुचि रखती थी, आध्यात्म में भी यहाँ भी टाइम देती थी और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते चली थी मैं।
0: क्या बात है। आपकी शादी की बात तो हम जरूर करेंगे, अभी आपके बचपन की बातें चल रही है
1: जी।
0: तो चलिए हम यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, आपके अनुभव जरूर सुनेंगे
1: जी,
0: लेकिन सुन लेते एक गीत
1: जी।
0: तो कहीं भी जाइएगा नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, सौम्या जी के अनुभव बहुत सारे बाकी और आप देख रहे हैं कितने सुंदर अनुभव है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। उसके हौसले के आगे फीका हर वार। ममता भी है, शक्ति भी है, साहस की पहचान। नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान, नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान। तो ऐसे ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के बचपन के अनुभव हमने सुने हैं कि किस तरह आप बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: तो आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे। हाँ, आप बता रहे थे कि देखिए आप पढ़ाई भी करते थे, अध्यात्म में आप बहुत ही गहरी रुचि रखते थे, परिवार भी पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो आप हर प्रकार की मदद करते। फिर आपने बताया कि दुकान पर भी चालू किया आपने जाना, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जाना शुरू किया या पढ़ते
2: नहीं,
1: समय?
2: बचपन से पढ़ते समय भी हमको उस पर भी ध्यान देते थे। ज़्यादातर अभी दिवाली आती है तो ग्राहक लोग ज़्यादा रहते हैं, कस्टमर लोग, तो सर्वेंट्स कितने भी होते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी चाहिए। और गल्ला जो हम बोलते हैं पैसा लेने की बिलिंग जगह होती है, वहाँ पर पिटाते थे हमको। बिलिंग का भी हम करते थे, पैसे लेन देन करना। बिजनेस थोड़ा बड़ा था तो 1 घंटा 2 घंटा दिन में जाकर हम बैठ जाते थे दुकान में।
1: अच्छा, तो सभी का साथ में ही था, जैसे बड़े पापा के?
2: हाँ, सभी का साथ में, सभी का, सब मिलकर। यहाँ पर अपना राइस मिल था, जमींदारी थी और दुकान था, तीन भाई। हाँ, बड़े पापा और चाचा और अपना पिताजी का, सबका वही था।
1: तीनों भाई
2: साथ में थे।
1: जी जी जी। जैसे आप बता रहे थे कि संतों का आना जाना शुरू रहता था, तो आपने गुरु किया होगा उस समय?
2: हाँ, उस टाइम गुरु किए, मगर मन में एक अजीब सी एक प्यास थी, मतलब और कुछ हमें चाहिए। जो मैं उनसे प्रश्न पूछती थी, प्रश्न से उनको उलझाती थी, वो ऐसा कैसे करते हैं, ये पूजा कैसा क्यों करना है, ये क्यों करने से क्या फ़ायदा होता है, ये देवी ऐसे करने से हमको प्राप्ति, इससे वर मिलता है क्या, ऐसे मैं उसे जिज्ञासु होकर मैं उनसे प्रश्न पूछती थी।
1: तो आपके दादी जी डांटते नहीं थे कि क्या पूछ रही है? तो
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े पापा डांटते थे, क्योंकि दादी तो स्कोप देती थी, कितना अपना बुद्धि को बढ़ाना चाहती हो बढ़ा दो, अपना प्रश्न को उनसे निवारण कर लो तो तब भी तुमको तसल्ली मिलती है। और अपने तो भजन वो सब गाते थे, भजन में भी अपने दादी के साथ बैठकर ही हम गाते रहते थे। वो प्रश्न आता था उसमें भजन गाने से भी, अब भज गोविंदम ये सब गाते हो, गोविंद का नाम इतना क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कृष्ण को यहाँ आप वृंदावन में क्यों लाए, वो तो महाराजा होने वाला था, राजा होने वाला था, ऐसा प्रश्न तो मन में आता था। दादी को भी बोलते थे, पूछते थे, और अपने गुरु लोगों से भी मैं पूछती थी तब तो, अगर उत्तर वो क्या समझते थे, उनको क्या समझ में आता वो बता देते, या अपनी उम्र के हिसाब से वो बता देते थे, मगर तसल्ली नहीं होती थी।
1: जी जी,
2: बिल्कुल तसल्ली नहीं होती थी। मैं अपने पापा को बोलती थी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, मुझे अपने मन के अंदर लगा रहता था कुछ और चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, ये है नहीं, ये जो बता रहे हैं वो मेरे लिए है नहीं, कुछ और चाहिए, ऐसा मुझे होता था। और थोड़ा और आगे होने के बाद अपने घर में किराए पे एक चिन्मयानंद मिशन वाले आ गए किराए पे रहने के लिए, तो वो तो सुबह और शाम दो वक्त उपनिषदों का वो क्लास कराते थे। इतने उपनिषद थे, 8 उपनिषद थे, उप उपनिषद थे, वो सब उपनिषद का क्लास के लिए मैं सुबह और शाम दोनों उनके साथ बैठती थी, क्लास में जाती थी
1: जी।
2: कॉलेज जाते समय, स्कूल का टाइम अलग था, कॉलेज का टाइम में सुबह शाम उसको सुनना, मगर वो आत्मा के बारे में, चैतन्य के बारे में क्या बोलते थे वो सही लगता था, मगर परमात्मा के बारे में जो वो बोलते थे अद्वैत सिद्धांत बता देते थे शंकराचार्य का वेदांत के बारे में, ये सब मुझे ना थोड़ी सी अजीब सी लगती थी। घर में तो धार्मिक प्रवृत्ति रहते हुए भी मुझे वो अब मानने के लिए मैं रेडी नहीं थी। ये कुछ दूसरा है, ये कुछ और बोल रहे, जो चीज़ वो दूसरा है वो अपने हाथ में नहीं था, देखने के लिए भी नहीं, सुनने के लिए भी नहीं और समझने के लिए भी नहीं है। वो क्या है, वो क्या है, अंदर अंदर ये जिज्ञासा होता बहुत सारा था मेरा।
1: जी जी जी, लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान फिर आपको मिला कि नहीं मिला?
2: मिला ना, आगे जिंदगी में जरूर मिला।
1: अच्छा अच्छा, उस समय नहीं मिला?
2: उस समय नहीं मिला।
1: तो मैं आपको एक
2: कंची श्री से मैं एक बार प्रश्न पूछी थी भगवान के बारे में, भगवान माना क्या है, कौन है, भगवान के बारे में सही से बताइए। मगर वो बोले थे अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैं 16-17 साल की थी तब तो छोटी है, और तुम ये सब को ये सब सोचना नहीं है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि लड़कियां हैं
1: जी,
2: लड़कियों को एक पाबंदी रहती है, दिन महीने में 4 दिन का वो रहता है ना, इसलिए पाबंदी रहती है, ये सब तुम नहीं कर सकती, ऐसे बोले थे। मुझे अंदर से एक फेमिनिज्म, स्त्री शक्ति के बारे में ये अपमान कर रहे ऐसा लगा था उस टाइम लगा था। मगर उनकी बुद्धि शक्ति और उनकी नॉलेज उतनी ही थी, तो वो तो उस टाइम के वो जो बताए वो उनके लिए सही था, वो मैं गलत नहीं कहती हूँ।
1: जी जी जी, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं।
2: हाँ,
1: और हमको ऐसा लगता है कि अरे नारी होना क्या, नारी भक्ति नहीं कर सकती क्या, नारी
2: कर सकती है,
1: आगे नहीं बढ़ सकती, वो सारे प्रश्न आपके अंदर घूमे होंगे।
2: वो तो मैं हमेशा, मेरे पिताजी बोलते थे वीर शक्तियाँ, उनके बारे में बताते थे, और गार्गी और ये सब जो है मुक्ता ये सब है, और मीराबाई के बारे में तुम आगे बढ़ सकते हो। पिताजी का, मम्मी और अपने दादी का बहुत स्कोप, माना बहुत स्कोप था हमको।
1: जी जी,
2: कितना
1: जी।
2: आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ सकते हो, बढ़ो, कितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, तुम्हारा है, हम तो छूट दे दिए पढ़ने के लिए जाने के लिए, कभी फर्क नहीं किए।
1: जी जी जी जी, एक अच्छा माहौल मिला। और भाई बहने आपस में कैसे रहते थे?
2: बहुत फ्रेंडली, अभी भी है, बहुत फ्रेंडली है
1: जी। तो कभी ऐसे तू तू मैं तो नहीं होता था?
2: नहीं नहीं, बड़ी होने के कारण क्या होता था, जो भी मिलता है पहले छोटों को बाद में मेरे को।
1: अच्छा,
2: ऐसा सिस्टम था हमारे घर में, जो छोटे लोग पहले चूज करते हैं वो चुन लेते, पहले उनके अधिकार है बाद में तुम्हारा। बड़ी माना संभाल के जाना है, उनको भी संभालना है तुमको।
1: अच्छा, तो मतलब बड़ा होना तो ऐसे हो गया बस त्याग करो शुरू से ही?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी उठाना तब से शुरू हो गई थी।
1: तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पसंद का था लेकिन उसने ले लिया?
2: नहीं, मेरे
1: मन मार के कोई चीज आपने ली हो?
2: ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, वो वापस हमको ही देते थे बाद में, जो मुझे पसंद है वो मेरे भाई बहनों को भी पता रहता था, वो चीज छोड़कर

0: दूसरा ले लेते थे।
1: जी जी जी
0: जैसे मैं उनका ख्याल रखती हूँ वो भी ऐसे मेरे ख्याल रखते थे।
1: जी जी हाँ, वो स्नेह वो प्यार दिखाई देता है।
0: हाँ
1: वो त्याग भी दिखाई देता है दोनों का,
0: तो वो पता चलता था। लेते तो भी वापस कर लेते थे।
1: जी जी जी और जैसे आप कह रहे थे कि पूजा की सारी तैयारी आप करके रखते थे, मान लीजिए कभी कोई ऐसे गड़बड़ हो गई हो तो दादी जी से डांट भी खाई कभी?
0: नहीं नहीं दादी तो कभी नहीं डांटी। ऐसे तो हमने छोटा नहीं है, मगर बड़ी मम्मी जो थी ना वो डांटती थी कभी कभी।
1: अच्छा, वो क्यों डांटते थे?
0: वो क्यों, इसलिए मैं पूजा करना पसंद नहीं करती थी। पूजा की तैयारी करती थी मैं, जो जो चाहिए वो सब पूजा की तैयारियां करती थी। तो बेलपत्र फूल वगैरह सब लाना होता है, कलरफुल करना होता है, वो देवी के हिसाब से, इस देवी के हिसाब से ये कलर का होता है, लाल कलर का होता है, शंकर के नाम से सफ़ेद फूल रहते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखना चाहिए, वो सब उनके जो रीति रिवाज होता था उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी,
1: जी जी
0: ज़्यादातर
1: जी
0: नहीं।
1: जी जी जी बिल्कुल, बड़े हैं थोड़ा सा डांट भी देते हैं और बच्चे हैं तो थोड़ी गलतियां हो
0: और
1: ही जाती है।
0: सब लोगों को क्या होता है उस टाइम पूजा करना होता है, लड़कियों को भी पूजा करना होता था। सारी मेरी सिस्टर्स, कजिन सिस्टर्स पूजा करती थी, मैं अकेली नहीं करती थी, इसके लिए भी कभी कभी डांट पड़े हैं।
1: जी जी जी तो आपको कोई हेल्प करने वाला होता था, भाई बहन या फिर
0: हाँ
1: आप?
0: करते थे, अपने सर्वेंट्स भी थे, ये छोटे भाई बहन भी करते थे।
1: जी जी जी तो भाई इतना बड़ा परिवार है, इतना साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, तो सर्वेंट भी हर
0: होते
1: प्रकार
0: थे।
1: से हेल्प
0: हाँ
1: करने में रहे होंगे,
0: हाँ जी,
1: तो किचन में भी हेल्प लेते थे?
0: किचन में कभी नहीं लिया,
1: जी जी जी
0: किचन में अलाउ ही नहीं था। हमारा
1: जी
0: साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी, मतलब हम एक ब्राह्मिन्स है, एक ब्राह्मिन्स में दादी थी ना, वो शेर मुंडन कर, ऐसा सिस्टम था।
1: अच्छा, क्यों मुंडन
0: हाँ
1: कराते थे?
0: वो तो शायद दादाजी गुजर गए, माना वो ऐसे करेंगे तो पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं,
1: अच्छा
0: नहीं तो नहीं आ सकते।
1: अच्छा तो
0: वो
1: सोम्या जी चलिए
0: एक
1: फिर से समय हो चला यहाँ पर एक गीत सुनने का, तो ये गीत
0: जी,
1: सुनने के बाद तुरंत लौटते हैं
0: हाँ जी
1: फिर इसी विषय पर बात करने के लिए।
0: जी
1: ठीक है,
0: जरूर।
1: तो बने रहिएगा श्रोता बंधु कार्यक्रम वंदे मातरम में। सोम्या जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं और जरूर सुनेंगे, पर पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma
1: Kumaris. Kabhi beti bankar ghar mein khushiyan lati hai. Kabhi beti bankar ghar mein khushiyan lati hai. Kabhi maa bankar jeevan ki raah dikhati hai. हर रिश्ते को प्यार से सजाती है नारी, हर रिश्ते को प्यार से सजाती है नारी, अपने हौसलों से लिखती है नई कहानी, अपने हौसलों से लिखती है नई कहानी। तो ऐसे ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम आप सुन रहे हैं, और इसमें सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए और भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, आप बता रहे थे कि आपके दादी जी सिर मुंडवा करके ही पूजा कर सकते थे, बाकी नहीं, तो ऐसा उधर रिवाज है?
2: रिवाज है, अपना सामाजिक पद्धति था तब की टाइम, तब की टाइम में, अब तो नहीं है, तब की टाइम था, वो कंपलसरी भी था, उन लोगों को कंपलसरी था। बाद में जो हो गए तो वो नहीं करवाए, मगर उन्होंने करवाए थे।
1: अच्छा, तो फिर तो वो तो रोज ऐसे मुंडवा के रखते थे बाल?
2: हाँ,
1: क्योंकि पूजा तो रोज करनी होती है,
2: रोज करनी होती है। और शालिग्राम रहता है घर में, जहाँ शालिग्राम रहता है वो तो वो पूजा करने वाले एक वैसे लोग चाहिए, सर मुंडन करने वाले, या नहीं तो भाई लोग चाहिए। हम लड़कियाँ तो कर नहीं सकते और बहनें भी कर नहीं सकते शालिग्राम का पूजा, ऐसे सिस्टम था।
1: अच्छा जी जी जी, तो दादी जी तो खुशी खुशी करवाते होंगे?
2: उनको पूजा पाठ में, अध्यात्म में, धर्म में बहुत रुचि थी।
1: जी जी जी, बढ़िया। और आप बता रहे थे कि आप दुकान भी संभालते थे, तब आप कौन सी क्लास की पढ़ाई करते थे?
2: मैं 8th 9th स्टैंडर्ड।
1: अच्छा, तब से आपने दुकान पर जाना शुरू कर दिया?
2: हाँ।
1: जी जी, और स्कूल में कैसा व्यवहार था सखियों के साथ?
2: स्कूल में तो सब मेरे फ्रेंड्स है, ऐसे तो हम स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छे ही थे, फर्स्ट रैंक आते थे हम स्कूल में भी, और टीचर्स बहुत अच्छे अपना प्यार करते थे। जैसे कि टीचर एक बात बोली तो वो मना नहीं करते थे, हम कुछ भी हो जाए मानकर उस पर चल के दिखाते थे।
1: जी जी जी,
2: हाँ, आज्ञा पालक थे
1: जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आपकी स्टूडेंट लाइफ और घर में भी सभी का प्यार मिला, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी बीती। अच्छा, और पढ़ाई के अलावा क्या आपको रुचि थी? जैसे आप बता रहे थे कि भजन भी गाते थे।
2: हाँ।
1: तो दो लाइन सुनाएंगे हमारे श्रोता बंधुओं को?
2: अभी तो बहुत दिन हो गए, वो तो याद ही नहीं है।
1: अच्छा,
2: और हम कन्नड़ लैंग्वेज में गाते थे, कन्नड़ लैंग्वेज का वो पुरंदर दास के वो सब, अभी तो वो आदत ही नहीं है, छूट गई है बहुत दिन के बाद।
1: अच्छा अच्छा, तो और आप क्या करते थे स्कूल में, जैसे गेम्स वगैरह खेलते थे?
2: गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स रहता था ना, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में चैंपियन थे हम।
1: अच्छा।
2: और कैरम बोर्ड में थे।
1: अच्छा।
2: इंडोर वो भी थे, और वॉलीबॉल में थे हम, वॉलीबॉल। अच्छा। अच्छे से खेलते थे।
1: तो कभी आप टूर्नामेंट में गए?
2: गए हैं ना।
1: तो आप किस में गए फिर?
2: डिस्ट्रिक्ट, वो थे वही बैडमिंटन और इसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे, आगे जा नहीं सके क्योंकि टीम वर्क रहता है, टीम हार गई तो वापस आ जाते।
1: जी जी। हाँ। वो तो है बिल्कुल। तो बैडमिंटन में जाते थे?
2: हाँ, बैडमिंटन और वॉलीबॉल।
1: अच्छा, दो गेम्स में जा सकते?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: जा सकते, कितने भी हम जा सकते हैं, नेशनल लेवल तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट रहता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये जोन रहता है।
1: जी।
2: जोनल लेवल तक हम गए थे।
1: अच्छा, और डांस वगैरह?
2: डांस वगैरह कुछ कभी नहीं की है।
1: अच्छा।
2: मगर गाना गाते थे, संगीत सीखे थे बचपन से।
1: अरे वाह।
2: हाँ, गाना गाते थे।
1: तो स्कूल में गाना भी गाते थे?
2: हाँ,
1: कन्नड़ भाषा,
2: कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा।
1: हिंदी में कभी नहीं गाया?
2: हिंदी में कभी कभी गाए थे बचपन में, वो भी अभी याद नहीं है।
1: अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। और

0: टाइम, तब से अपना लाइफ और थोड़ा अंतर्गत, मतलब क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी होने लगे। मम्मी को सीरियस हो गया, उसको बचा के ले आना हमारे लिए एक अच्छा लगा था, मुश्किल भी लगा था तब के टाइम।
1: जी, वो उस समय, आज तो भाई परिपक्व एज है, उस समय तो बच्चे ही थे ना।
0: मैं तो
1: तो
0: 18 साल की थी तब।
1: जी जी जी जी
0: 18 ईयर्स ओल्ड।
1: जी तो उनकी फिर तबीयत में सुधार आया।
0: बाद में सुधार आ गए,
1: अच्छा,
0: बाद में अच्छे भी हो गए, मगर जिम्मेवारी अपनी बढ़ गई
1: जी
0: उनके बाद। जो अपनी बढ़ गई माना पूरा जिम्मेवार ले लिया, रसोई का भी।
1: अच्छा, तो रसोई में तो इतने जने थे बनाने वाले, फिर भी
0: नहीं,
1: आपको
0: बनाने
1: बनाना।
0: वाले थे मगर मम्मी जो बनाती थी, मम्मी का जो काम था वो करना ही था हम लोगों को।
1: अच्छा हाँ, पेशेंट के हिसाब से खाना बना के देना, उनके केयर करना।
0: वो सब था ना।
1: जी। और फिर तो आप बड़े हो जो थोड़ा सा सौम्या जी इमोशनल हो गए हैं, स्वाभाविक है। चाहे माँ का तो बच्चों का बिल्कुल अजीज रिश्ता होता है, बिल्कुल ही करीब होते हैं माँ के। तो सौम्या जी खैर,
0: उस टाइम हम चले गए थे, आपने याद दिलाया, उस टाइम पास्ट में हम चले गए थे ना, उस
1: जी,
0: टाइम क्या क्या हो गया था सब।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसी लाइफ को अभी जी रही हूँ, जैसे
0: हाँ, जैसे
1: याद आ गए सारी
0: हाँ
1: बातें। जी
0: वो
1: जी
0: सब लगने लगा
1: जी
0: था।
1: फिर आपके मम्मी ठीक हो गए
0: हो
1: धीरे
0: गए
1: धीरे?
0: बिल्कुल, अभी बेंगलोर में, अभी तो नहीं है, बेंगलोर में ही है,
1: जी,
0: बेंगलोर में थे।
1: लेकिन हाँ, लेकिन आपकी तपस्या रंग लाई।
0: हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो गए
1: जी,
0: तब, उसके बाद।
1: वापिस उन्होंने संभाल लिया सब
0: हाँ
1: कुछ।
0: जी बिल्कुल।
1: जी। और इतने बड़े देखो घर में साधु संतों का जमावड़ा रहता था, तो उनकी भी दुआएं तो मिलती थी।
0: दिन रात एक होकर करो सेवा करते थे मम्मी।
1: जी जी जी
0: हम तो
1: जी
0: छोटे छोटे उन हाथ में काम करते थे, मगर पूरा जिम्मेवारी उन लोगों की थी ना, बड़ों
1: जी
0: की। तो एक नहीं है तो दूसरों को उसका प्लेस लेना ही पड़ता है, उस
1: बिल्कुल।
0: स्थान में रहकर करना ही पड़ता है, वो प्रेशर ज्यादा होता है।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: हम कभी किए नहीं थे वो सब,
1: जी
0: तो सीख गए और करने लगे।
1: वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी चीज ही ऐसी होती है कि
0: हाँ,
1: कुछ नहीं आता, वो सब कुछ आ जाता है।
0: सिखा देता
1: सिखा,
0: है।
1: जी, समय सिखा
0: हाँ,
1: देता है।
0: सिखा देता
1: से आपका बचपन बहुत अच्छा बीता। कहते ना कि फिर भी संघर्ष तो हर एक के जीवन में रहता ही है। अच्छा सोम्या जी, फिर आपकी शादी कब हुई?
0: 1995 में शादी हो गई,
1: बीकॉम फाइनल हो गया
0: बीकॉम
1: था आपका?
0: फाइनल तब भी हो गया था, उसी में साल में हो गया था, 1995 में शादी हो गई।
1: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: शादी के बाद तो बहुत बदलाव आ गई, क्योंकि शादी के बाद हम दूसरे शहर पे आ गए, तो 30 लोगों से हम दो हो गए, ये
1: अच्छा,
0: बहुत बड़ी बदलाव है।
1: और आपके ससुराल में कोई नहीं है, सास ससुर?
0: ससुराल, सास थी, सासू माँ थे, और इनकी बहनें भी थे, ननद वगैरह थे, उनकी भी शादी हो गई थी। हम दूसरे शहर में रहते थे, वहाँ भी नहीं, मायके में भी नहीं, ससुराल में भी नहीं।
1: अच्छा,
0: जॉब की वजह
1: नाम
0: से
1: बताएंगे
0: दूसरा,
1: आपके ससुराल का, शहर का नाम?
0: ससुराल का नाम है सिरसी, बोलते हैं उसका नाम
1: अच्छा,
0: सिरसी।
1: सिरसी। और
0: हाँ,
1: रहते कहाँ थे?
0: वो सिरसी में ही रहते थे वो लोग,
1: नहीं, आप कहाँ रहते?
0: हम कहाँ दूसरी जगह पे रहते थे। हुबली के पास एक शहर है, छोटा सा तालुका प्लेस है, वहाँ हम लोग बैंक में, श्याम सुंदर मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे, वहाँ हम लोग रहते थे।
1: जी,
0: तो 30 लोगों से, या उस वो भी 10 लोग थे ससुर के घर में, वहाँ से भी हम निकल के आ गए, तो दो के दो हो गए। तब थोड़ा बोर होता था मुझे, मगर श्याम सुंदर भाई आध्यात्म में वो भी रुचि रखते थे, उनके घर में भी ऐसे मेरी सासू माँ वो सब आध्यात्म में बहुत सारे रुचि रखते थे, उनको आसक्ति थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ाया।
1: अच्छा।
0: बचपन का जो मेरे अंदर जो हवस था आध्यात्म का, वो उसमें मैं आगे बढ़ गया, बढ़ा दिया।
1: अच्छा, शादी के बाद आपको,
0: शादी के बाद,
1: आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए, आपको वो तोड़ मिला?
0: शादी के बाद पूरा खत्म ऐसा नहीं हो गया, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ। 2-4 साल उनके बाद साधना की मैंने, उसके
1: अच्छा,
0: उसमें साधना की, जो मुझे मिला वो साधना के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा, जो प्यास थी अंदर अंदर, जो मेरे में एक वैक्यूम रह गया था, खालीपन, वो भरता गया भरता गया भरता गया, वो मुझे एहसास होने लगा।
1: जी बिल्कुल। और जो आपके प्रश्न थे उसका जवाब मिल गया
0: हाँ,
1: आपको?
0: जवाब मिलते चले गए, जवाब मिलते चले गए।

0: वो तो जी जी जी
1: तो चलिए सोमिया जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौटते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी को कमजोर समझने की भूल न करना, उसके हौसलों को कभी धूल न करना। वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, अपने जुनून से इतिहास बना सकती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सोम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सोम्या जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आप बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जो पहले आप धार्मिक प्रवृत्ति में थे तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन शादी के बाद अध्यात्म में जाने से आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया और आपके प्रश्न खत्म हो गए।
3: खत्म होने लगे
2: जी।
3: ऐसा था माहौल दीदी, हम बताएंगे। उस टाइम में भी लड़कियां बहुत सारे जॉब करते थे, मेरी भी जॉब लगी थी एज ए टीचर, मेरी भी जॉब लगी थी। मगर मेरे हस्बैंड जो है वो श्याम सुंदर ने वो नौकरी भी छुड़ाई मेरे से।
2: अच्छा।
3: क्योंकि वो आध्यात्मिक रुचि में थे ना, मैं और वो दोनों साथ में वो सब प्रैक्टिस करते थे हम, ध्यान का वगैरह
2: मेडिटेशन करते थे।
3: हाँ, मेडिटेशन वो सब जो करते थे, उसके दोनों का इंटरेस्ट सेम था हमारा। तो उन्होंने कहा तुम क्यों जॉब करती हो, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने को बच्चा पैदा करके अपने में फंसना नहीं है, अपना स्वार्थ में फंसना नहीं था, हमको दुनियादारी विश्व कल्याण करना था, दुनिया की सेवा करनी थी, दोनों का इरादा वही था। इसलिए हमने जो सोचा और निर्णय किया, खुद का बच्चा न होना नहीं है, भगवान को ही अपना बच्चा मान ले।
2: क्या बात।
3: जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण की पालना करती थी, वैसे ही हमने भी भगवान का सेम टू सेम पालना किया। वैसे ही हमने सब कुछ की, अपने अनुभव से मैं सब कुछ करती थी, कल्पना शक्ति से मैं करती थी, और उसका रिजल्ट भी आज मैं देखती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ, क्योंकि दुनिया वाला जो सृष्टि करता है उसको ही मैं अपना बेटा मान चुकी हूँ।
2: जी जी जी।
3: तो उसी तरह अब हम दोनों उसी मार्ग में चल पड़े, अपना खुद का जिंदगी, अपना खुद का स्वार्थ जो है अपना साइड रखा, विश्व कल्याण की दृष्टि से अब हम आगे बढ़ने लगे।
2: तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया?
3: पहले विरोध किया। मैं हम दोनों मिलकर क्या किया, अपने माता पिता को और सास ससुर को सबको बिठाए, अपने घर में जो बड़े हैं सबको बिठाए, और अपनी मन की जो वो इच्छा थी वो हमने उनके सामने रखा। पहले मना कर दिया, एक बच्चा होने दो, बाद में वो सब करो ये सब। वैसे एक दो घटना हो गई, बच्चे होने के बाद भी कमज़ोर थे या कुछ हो गया, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। इसलिए उन्होंने क्या कहा, तो अपना जिंदगी है ये भी अच्छा है, तुम अपना जिंदगी जी लो, तुमको कैसे चाहिए वैसे जी लो, ऐसे हमको आशीर्वाद देकर उन लोगों ने भेज दिया। हमने किसी का विरोध भी नहीं किया, अभी भी आज भी हम लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में हैं, वहाँ भी हम जाते हैं, बेंगलोर में भी जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं, दो तीन महीना रहकर फिर वापस हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ भी अपना जिंदगी अच्छी चल रही है, वहाँ भी वो जो दिल में एक बार आ गया, अपना बच्चा नहीं हो तो मैं तो माँ बन सकती हूँ, क्योंकि दुनिया सृष्टिकर्ता भगवान को भी माँ बनी, मतलब सबको माँ बन सकती हूँ
2: जी।
3: तो अपने को मैं जगदम्बा रोल समझ लेती हूँ, अपने को सबको पालन देना है।
2: जी जी जी। एक में बंद के नहीं, आप पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सोम्या जी, कहाँ पूरा जीवन आपका बेंगलोर में बिता, अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रह रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छा लगता है? पूरी भाषा आपकी चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, तो यह कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज माना क्या, साउथ से नॉर्थ आना माना विरुद्ध ध्रुव जैसा होता है ना, वैसा हो जाता है ये तो। खाना पीना और वायुमंडल, यहाँ का एयर कंडीशन, पानी हवा सब बदली होती है और लोग बदले होते हैं, मगर सब में क्या रहता है, एक भगवान की नाम, और हर किसी के दिल में भगवान की ऊपर स्नेह और प्यार है, वो जो है आपस में बांधता है हम लोगों को। ये हम दोनों ने अनुभव किया। और पहली बात यह है, मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। 97 में पहली बार आ गए थे हम लोग, 95 के बाद ज्ञान में चलने के बाद, आध्यात्म में चलने के बाद। तो तब आए तो मुझे पहली बार देखा तो यहाँ गेट वो सब एंटर किया, देखा तो पहले मैंने कहीं देखा है, कभी देखा हुआ है, कभी सुना हुआ। तब आते ही क्या हो गया, एक गीत बजा, तब तो गीत बजा। तो मैं अपनी दीदी को बोल पूछ रही थी, ये गीत आपने सेंटर पे लगाई थी क्या, ये गीत मैंने कहीं सुना है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये जो सृष्टि चक्र चलता है, फिरता रहता है, वैसा एहसास मुझे तब हो गया था, ये मैं सुनी सुनी हूँ, देखा हुआ है, मैं पहले मैं रह चुकी हूँ, ये कहाँ हुआ है, ऐसे जिंदगी में कहीं हो गया होगा अपने अपनी इस जिंदगी में। कब हुआ था वो मुझे याद नहीं, वो याद आता रहता था मुझे पहली बार आए। तो बाद में हर साल आने लगे, साल में 2 बार आने लगे, 3 बार आने लगे। बाद में क्या हो गया, VRS लेके कायम अपने यहाँ रहने के लिए आ गए।
2: अच्छा।
3: तो कुछ भी नया लगा ही नहीं हम लोगों को।
2: जी जी, जैसे आपको ऐसा लगा पहले भी आके
3: पहले भी आके रहते थे, अभी भी आ रहे, इसमें क्या बड़ी बात है, सब अपने हैं, अपने भाई बहन है,
2: जी
3: ऐसा
2: जी
3: फील
2: जी।
3: होने लगा, आराम से रहने लगे।
2: जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं आई,
3: कुछ भी नहीं, न खाने
2: अच्छा
3: की, ना पीने की, ना हवा की, कुछ भी दिक्कत
2: आप
3: नहीं।
2: रोड़ा आपको पसंद आ गया?
3: पसंद आ गया।
2: बहुत ही सुंदर अनुभव है सौम्या जी आपके। और कार्यक्रम के अंत में जो हमारे बहनें सुन रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं इस बहने सिर्फ बहनों के लिए नहीं कहती, सभी के लिए कहती हूँ, भाइयों के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कहती हूँ। मैं यहाँ पहले से आती थी, इस मार्ग में मेरे चलने से मेरे अपनों का अनेक प्रश्नों का अनेक उत्तर भी मिले। और यहाँ आने के बाद जो भगवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, वो बचपन में जो पढ़ी थी, सुनी थी, कही थी, वो सब के उत्तर यहाँ मिल गए। यहाँ भगवान कहते हैं सबका सार, में शास्त्रों का सार मैं बताता हूँ, ये सच में ये सारी है, यहाँ मैं सुनने को आ गया, पढ़ने को आ गए यहाँ। और ये एक अजीब सी शांति है यहाँ, मैं बता नहीं सकती, जैसे मीठा खाने के बाद उसकी अनुभव सुना नहीं सकते, वैसे मेरा अनुभव है। यहाँ आने के बाद यहाँ कोई नहीं अपना, मगर सब अपने हैं
2: जी।
3: यह यहाँ की हकीकत है, ये सच है यहाँ की
2: जी।
3: ये हम लोगों ने यहाँ ये अनुभव किया है, मेरी जिंदगी का यही सच है। दुनिया भर में कहीं भी सब जगह पे दुख है, कहाँ नहीं है, सब जगह पे सब तरह की दुख है। सिर्फ हम लोगों को यह ऐसा नहीं लगता, ये युद्ध चल रहा है, ये बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा है, ऐसा नहीं, अपने मन में भी बहुत सारे दुख है, ये ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा, हर किसी के ऊपर भी एक आरोप लगता है सोचे तो उस आरोप, उस दुख की दुनिया, उससे हम बाहर आ गए और अपना मनस्थिति को ऐसा कर दिया, उज्ज्वल कर दिया, निर्मल कर दिया, ये ज्ञान अपना आध्यात्मिक जीवन ऐसा कर दिया हमको, और ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। मैं तो ऐसा समझती हूँ जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता जा रहा है, ऐसे ही मैं यहाँ आकर उड़ रही हूँ।
2: क्या बात है,
3: और ऊपर उड़ रही हूँ मैं।
2: बहुत सुंदर सौम्या जी, बहुत अच्छा अनुभव आपने किया है और बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव सुनाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने अनुभव सुनाया इसके लिए।
3: थैंक यू, आपने बुलाए, आपको भी धन्यवाद।
2: तो श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम सौम्या जी से। सौम्या जी, जो पूरा जीवन आप बेंगलोर में रहे, अभी आपकी 55 साल की उम्र है और अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रहते हैं, लेकिन आपके अनुभव बहुत ही गहरे रहे, आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं और यहाँ आकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खुश है, दुनिया में इतना दुख है लेकिन हम बहुत खुश है, हम उड़ रहे ऐसा महसूस होता है। तो सचमुच ऐसी नारी शक्ति देखिए जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए सोच लिया कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, मैं पूरे विश्व की माँ हूँ, 1 और 2 की नहीं। तो आप निस्वार्थ रूप से सेवा भी करते हैं, दीन दुखियों का मदद करते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव सुनाना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: कार्यक्रम गुलदस्ता लेकर हम आ चुके हैं और आपके दिल में छा भी चुके हैं। चांदनी रात है, तारों की बरसात है, सुरीली मुलाकात है, मशहूर गीत की सौगात है। गीत संगीत की जानकारी रखना भी एक आर्ट है। जैसे खुद से दोस्ती करना एक आर्ट है, वैसे ही गीत संगीत के बारे में नॉलेज रखना भी एक आर्ट है। जिस कार्य को हम शौक से करते हैं, जिसको हम बहुत चाव से करते हैं, वह कार्य हमारे अंदर ग्रो करने लगता है और वही एक दिन आर्ट भी बन जाता है। तो ओल्ड इज गोल्ड आपने सुना ही होगा, तो ओल्ड गीतों के सौगात आप सभी के लिए कार्यक्रम है गुलदस्ता। डोंट मिस दी शो एंड डोंट मिस दी सॉन्ग्स। इन गीतों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और मत भरी एहसास। फिल्म मधुमति का आपने गीत सुना, संगीतकार थे सलील चौधरी और इस गीत को गाया था मुकेश और लता जी ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं स्वर्ण लता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में रेडियो मधुबन पर।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जो अपनी धुन में मगन रहता है वही जिंदगी का असली मजा ले सकता है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज एवर ग्रीन एंड एवर फ्रेश। तो एवर ग्रीन गीत और उसमें कुछ जादुई तड़का, अलग आवाजों का। फ्रेंड्स, अभी आपने सुना किशोर दा की आवाज में एक बहुत ही सुंदर गीत, जिसे सुन करके लगा ना कि इसमें भावनाओं की सरगम बोल रही हैं। तो इन भावनाओं की सरगम को आप कबूल कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ आज के इस सुहावने सफर को। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर, किशोर कुमार की आवाज प्यार और भावनाओं की एक मधुर धारा बनकर बही। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो आज भी हमारे दिलों को दस्तक देता है। तो आज कई आवाजें होंगी और कई फिल्में हैं, एल्बम के गीत भी हैं। इन गीतों को आप कबूल कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। सुनते हुए मुस्कुराते हुए जानकारी के संग आप हैं रेडियो मधुबन पर।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: प्रिय साथियों, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज एवर फ्रेश। जब क्रिएटिविटी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और अननोन सॉन्ग्स आपके सामने पेश होते हैं, ऐसा करते करते मुझे कई बार ये ओल्ड मेलोडी की जो फीलिंग्स है, ओल्ड वाइब्स जो है, उसे मैं बहुत मिस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो श्रोता बंधु जो इस फीलिंग को मिस कर रहे हैं, और जो नए श्रोता बंधु जो आज की जनरेशन के हैं और जिन्हें पता ही नहीं कि हमने कौन से गीत सुने, किन गीतों का आनंद लिया और उन गीतों ने हमें कितनी खुशी दी, उन खुशियों को आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसी मकसद से आज का कार्यक्रम है, तो आप इसे कबूल कीजिएगा दिल से। और जैसा कि हमने कहा, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज एवर फ्रेश, मत भरे एहसास गुलदस्ता कार्यक्रम के फ्रेश एपिसोड में। तो इन एपिसोड्स में हमारा प्यार छुपा हुआ है आपके लिए, दिलो जान से सुनते हुए मुस्कुराते हुए। आइए सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: साथियों, कहते हैं जिंदगी एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। जितना हम आशावादी रहेंगे उतने ही अवसर भी मिलेंगे। ओल्ड एंड स्टेल फीलिंग्स को रिप्लेस कीजिए फ्रेश फीलिंग से। फील फैक्टर एक डस्टिंग की तरह होता है जिसकी नित आवश्यकता होती है, जिसके बगैर बहुत ही फीका सा लगता है घर, है ना। अभी आपने सुना फिल्म आंधी से, इस मोड से जाते हैं, इस मोड से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। तो यह बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसमें जो है पुरानी यादें, इमोशंस, प्यार सब कुछ कैद किया हुआ है। रिश्तों की जो ब्यूटी है, रिश्तों की सुंदरता इस अनफॉरगेटेबल सॉन्ग में है। तो आज के प्रोग्राम में हम ऐसी छोटी छोटी जानकारी के साथ सुन रहे हैं तरोताजा कर देने वाले गीत। और इस गीत से पहले हमने सुना था फिल्म चित्चोर से जब दीप जले आना, जिस गीत को एक हम सेमी क्लासिकल नंबर भी कह सकते हैं। और इस फिल्म में संगीत दिया था रविंद्र जैन ने, और गीत के बोल भी थे रविंद्र जैन साहब के, और गाया था हेमलता के साथ यशुदास जी ने। तो जो लोग इन्हें नहीं जानते उनको आज एक मौका मिल गया इन फनकारों को जानने का, बहुत खूबसूरत लम्हा है। तो शामिल हो जाइए फटाफट जिन्होंने अभी तक ट्यून नहीं किया कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: सावन में और उमंगों की बहारों में आप झूम रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम है गुलदस्ता, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सुनते हुए मुस्कुराते हुए। सावन का रुत चला गया पर आशाओं के सावन में झूमने का तो समय ऑल टाइम है। थ्रू आउट द ईयर आप आशाओं के सावन में झूम सकते हैं। आशाओं के सावन में खुशी के फूल खिलाते जाओ, हौसले की सांस से जीने की आस को बढ़ाए जाओ, उम्मीद के पंख लगाकर उड़ते रहो। वैसे आपने सुना फिल्म आशा से लता जी और रफी साहब की आवाजों को, और इस गीत के बोलों को लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। तो ऐसी ही जानकारी आपके लिए जो आपकी जानकारी के पिटारे को बढ़ाता चला जाएगा, आपको उमंग आएगा कि ये कौन है, उनकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे और समय भी सफल होगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: खूबसूरत गीतों की बरसात हो रही है कार्यक्रम गुलदस्ता में, और आज के कार्यक्रम में ओल्ड वाइब्स है, ओल्ड सॉन्ग के रूप में, ओल्ड मेलोडीज के रूप में, और इसमें गजलें भी हैं, सेमी क्लासिकल नंबर्स भी हैं, तो आपके लिए टोटल पैकेज है एंटरटेनमेंट का। तो सरगम की इन हवाओं को आप कबूल कर रहे होंगे खुशी से और एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा इस कार्यक्रम का जो मकसद यही होता है कि सप्ताह भर जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो घर में आके थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, जो कहीं अपने परिवार से दूर जाके कार्य कर रहे होते हैं वो घर में आकर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ऐसे मुसाफिरों के लिए, ऐसे संगीत के लवर्स के लिए आज का कार्यक्रम है, और थोड़ी बहुत जानकारी भी है ना। सुनते रहिएगा, मुस्कुराते भी रहिए। आपके लिए आ रही है एक बहुत सुंदर कव्वाली।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुलदस्ता कार्यक्रम के गीतों की हवाओं में एक सुरूर है, कशिश है और इन गीतों को और भी सुनने को जी चाहता है ना। यही कमाल है ओल्ड मेलोडीज के कि इनको आप सुनते रहते हैं और इनके बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं थोड़ी थोड़ी। फिल्म का नाम दिल ही तो है और इस फिल्म में संगीत था रोशन का और बोल थे साहिर लुधियानवी जी के। आशा भोसले जी की आवाज में हमने इस गीत को सुना और हम चले गए थे बिल्कुल पुराने दौर में और देखा साथियों कि इसमें उर्दू शब्द भरे पड़े थे और इस गीत को समझने के लिए एक छोटी सी कोशिश करनी होगी कि हमें उर्दू शब्द भी थोड़े थोड़े सीखने होंगे, है ना, क्योंकि ये सारी भाषाएं हमारी ही तो हैं। तो लीजिए पेश है अगला गीत आपके लिए लता जी की आवाज में। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम है गुलदस्ता।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आज के गीतों की कलेक्शन से हम बटोर रहे हैं खुशियां, उम्मीद, आशाएं, खूबसूरती, ताकि कोई भी कठिनाई आए जिंदगी में उसको हम क्रॉस कर सकें। कहते हैं ना, हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, बस देखने की नजर चाहिए। और जब हम कोई भी कार्य में अपने मन को बिजी रखते हैं, जिसको हम कह रहे थे कि गीतों की जानकारी रखना भी एक आर्ट है, और पुराने गीत बहुत खूबसूरत हैं। आज जो आप गीत सुन रहे हैं, चाहे कव्वाली के रूप में, गजलों के रूप में, या फिल्मी गीत के रूप में, या नॉन फिल्मी गीतों के रूप में, क्योंकि गुलदस्ता कार्यक्रम जो है सभी तरह के गीतों को आत्मसात करता है। इसमें हम जो है ईश्वरीय गीत भी शामिल करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो यह खूबसूरत सफर है वह जारी रहेगा गीतों और बातों के साथ। तो अपनी जिंदगी को कभी मुरझाने न दें, जिंदगी को साथी बना लें और जिंदगी से खूब प्यार करें और जिंदगी को अपने घर में आने दें। सो डोंट मिस एनी शो ऑफ गुलदस्ता, कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज स्वर्णलता कह रही है बाय, फिर मिलेंगे।

0: चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो मिलते हैं मीना से, जो रोशनी और सबीना के साथ स्कूल से वापस लौट रही है।
1: मीना, रोशनी, चलो थोड़ी देर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं।
2: ठीक है सबीना। रोशनी, पहले तुम्हारी बारी।
3: आज नहीं मीना, आज मुझे जल्दी घर पहुंचना है।
2: क्यों?
3: क्योंकि आज हमारे घर मधु दीदी आ रही है।
2: मधु दीदी? मधु दीदी कौन है रोशनी?
3: सबीना, मेरे चाचा जी की बेटी है मधु दीदी, पड़ोस के गांव में रहती है। आजकल उनके स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए वो कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। तुम दोनों भी उनसे मिलने जरूर आना।
4: जरूर आना, साथ में खाएंगे खाना।
0: और जब रोशनी दौड़ती हुई अपने घर पहुंची,
3: मधु दीदी कैसे हो रोशनी? मैं तो ठीक हूँ। अभी पता है क्या हुआ?
1: क्या हुआ?
3: मीना और सबीना मुझे खेलने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया आज नहीं, आज मेरी मधु दीदी आने वाली है।
1: अरे मधु दीदी, ये आपके सामान के पेटी के ऊपर क्या रखा है?
3: ये तो एक हारमोनियम है ना?
5: हाँ रोशनी, ये मेरा हारमोनियम है।
1: आपको हारमोनियम बजाना आता है दीदी?
5: हाँ रोशनी, मैं अपने स्कूल में गाना सीखती हूँ और वही मैंने हारमोनियम बजाना भी सीखा।
1: इसे बजाइए ना दीदी।
5: अभी तो माँ, मधु दीदी को कहो ना कि हारमोनियम बजा के सुना है।
6: रोशनी बेटी, पहले मधु को मुँह हाथ तो धो लेने दो।
1: ठीक है माँ। मधु दीदी, आप अपना हारमोनियम हमेशा साथ लेके घूमती हैं?
6: वो मैं बताती हूँ। रोशनी, जब तुम्हारे पिताजी को मधु के यहाँ आने की खबर मिली तो उन्होंने फौरन एक चिट्ठी लिखी और मधु से कहा कि वो अपना हारमोनियम साथ लेकर आए, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को भी संगीत सिखा सके।
1: फिर तो मैं कल ही अपने सब दोस्तों को बताऊंगी।
0: अगले दिन रोशनी ने अपने दोस्तों को मधु दीदी और उनके हारमोनियम के बारे में बताया, और ये सुनते ही मीना, सबीना, सुमी, सुनील और गोलू झट से मान गए मधु दीदी से संगीत सीखने के लिए। फिर शाम को सब रोशनी के घर इकट्ठा हुए।
5: सबसे पहले हम गाएंगे सरगम, जो बनती है सात सुरों से मिलकर।

0: मधु दीदी, मुझे भी आपकी तरह हारमोनियम बजाना है।
1: हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। अब हम सब मिलकर मेरा मनपसंद गाना सीखेंगे जो है सारे जहाँ से अच्छा। तो चलो शुरू करते हैं।
2: चलो शुरू करते हैं, अच्छे गायक बनते हैं।
3: और अगले दिन सुबह जब मीना और रोशनी स्कूल जाते हुए मिले।
4: पता है मीना, मधु दीदी सिर्फ 12 साल की हैं और सब कुछ इतनी चुस्ती से करती हैं। मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है और उन्हीं की तरह गाना भी है।

0: अरे मीना, रोशनी।
1: नरस बहन जी, आप? नमस्ते।
0: खुश रहो मीना, तुम दोनों तो बहुत अच्छा गाती हो।
1: बहन जी, हम रोशनी की चचेरी बहन मधु दीदी से संगीत सीख रहे हैं और उन्होंने ही हमें कल ये गाना सिखाया।
0: अच्छा, जब तुम पूरा गाना सीख लो तो मुझे जरूर सुनाना।
2: जरूर सुनाएंगे नरस बहन जी, परसों तक हम पूरा गाना सीख लेंगे। आप परसों सुबह मेरे घर आइएगा और हम सब आपको पूरा गाना गा कर सुनाएंगे।
0: मैं जरूर आऊंगी बच्चों।
3: नर्स बहन जी के साथ साथ सभी बच्चों ने अपने माता पिता को भी गाना सुनने के लिए बुलाया। और फिर दो दिन बाद।
1: रोशनी, मधु दीदी तैयार है ना?
4: मीना, मधु दीदी पता नहीं कहाँ है। मैंने घर में भी ढूंढा और बाहर भी, पर वो कहीं नहीं मिल रही।
1: नहीं मिल रही? क्या तुमने शौचालय में देखा? हो सकता है वो वहाँ हो।
4: शौचालय में तो मैंने नहीं देखा मीना, चलो वहाँ देखते हैं। मधु दीदी, आप ठीक तो है ना?
5: हाँ रोशनी, बस तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है।
1: नर्स बहन जी आ चुकी है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ।
3: सुमी भाग के नर्स बहन जी को बुला लाई और फिर नर्स बहन जी ने मधु दीदी की जांच की।
5: नर्स बहन जी, आज सुबह से ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कि उल्टी से पहले होती है।
0: मधु, तुमने सुबह से अब तक क्या क्या किया है मुझे बताओ।
5: आज सुबह उठकर मैंने गाने का अभ्यास किया, बकरियों को घास डाली और आंगन की सफाई की, वही सब जो मैं रोज करती हूँ। और हर हफ्ते मैं एक दिन आयरन की गोली खाती हूँ, जो मैंने आज सुबह ही खा ली।
4: मधु दीदी, कहीं ये सब उस गोली की वजह से तो नहीं हो रहा?
5: हो सकता है। नर्स बहन जी, बहुत बार जब मैं आयरन की गोली खाती हूँ मुझे ऐसा ही महसूस होता है।
0: मधु, एक बात बताओ, क्या आज सुबह से तुमने कुछ खाया है?
5: नहीं नर्स बहन जी, वो सब लोग आ रहे थे तो फिर इतने सारे काम भी थे कि कुछ खाने का समय ही नहीं मिला।
0: मधु, क्या तुम हमेशा ही इसी तरह कुछ खाए बिना ही आयरन की गोली खाती हो?
5: हमेशा तो नहीं नर्स बहन जी, पर कई बार जब काम की वजह से खाने का समय नहीं मिलता तो मैं खाली पेट ही गोली खा लेती हूँ।
0: ओहो, अब समझ में आया है कि सुबह से तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है। तुमने आयरन की गोली तो खाई मगर खाली पेट।
5: मैं कुछ समझी नहीं नर्स बहन जी।
0: मधु, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आयरन की गोली हमेशा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। खाली पेट गोली लेने से उल्टी जैसा महसूस होता है, तुम्हारे साथ भी यही हुआ है।
5: ओ, मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था।
4: नरस बहन जी, क्या मधु दीदी को अभी भी हर हफ्ते ये गोली खानी चाहिए? इसे खाने से तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है।
0: रोशनी, मधु अभी 12 साल की है और हर लड़की को 10 साल की उम्र के बाद हफ्ते में एक बार आयरन की गोली जरूर खानी चाहिए। ये उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। देखो, मधु आयरन की गोलियां खाती है तभी तो सब काम चुस्ती से और ध्यान लगाकर कर पाती है। बस ध्यान रहे कि हमेशा इस गोली को खाने के बाद लेना चाहिए, खाली पेट नहीं।
5: मैं आगे से जरूर इस बात का ध्यान रखूंगी नर्स बहन जी।
4: पर मधु दीदी, हम आज के कार्यक्रम का क्या करें?
2: सभी लोगों के आने में अभी थोड़ा समय है रोशनी, तब तक मैं कुछ खा के आराम कर लेती हूँ और फिर हम सब मिलकर लोगों को सुनाएंगे एक सुरीला गाना।
6: एक सुरीला गाना मिट्टू से भी गवाना।
3: भाई वाह, अब तो मैं भी मधु दीदी से गाना सीखूंगा। चलो देखें ये मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं।
6: बात हमेशा याद ये रखना, भूलना इसको जाना।
1: आयरन की गोली लेने से पहले खाओ खाना।
3: क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: गाना तो शानदार था। अब देखें मीना की बहन जी आज क्लास में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है।
1: प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। मैं तुम्हें एक चीज से जुड़ी तीन कड़ियाँ बताऊंगी और तुम्हें बताना है कि वो चीज क्या है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी जी।
1: पहली कड़ी है, आँखों के रहती हूँ पास, नहीं कहीं जाती हूँ दूर।
3: बहन जी, आप जरूर भोलू भैया की बकरी भूरी की बात कर रही हैं, जो कभी उनसे दूर नहीं जाती।
1: पर गोलू, क्या भूरी भोलू की आँखों के पास रहती है? चलो अब अगली कड़ी के साथ बताती हूँ। आँखों के रहती हूँ पास, नहीं कहीं जाती हूँ दूर, गांधी जी की तस्वीर में मुझको पाओगे जरूर।
4: ओह, समझ गई, भारत का झंडा।
1: नहीं रोशनी, भारत का झंडा क्या आँखों के पास होता है? ध्यान से सोचो, जवाब कुछ और है।
3: ऐसी क्या चीज हो सकती है? बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल है।
1: नहीं सुमी, चलो अब तीसरी कड़ी बताती हूँ। नाक पे बैठ के साफ दिखाती, चीज पास हो या हो दूर।
4: ओह, मैं समझ गया बहन जी, इस पहेली का सही जवाब है ऐनक। वही तो है जो आँखों के पास रहती है और जिन लोगों की नज़र कमजोर होती है उन्हें ठीक से देखने में मदद करती है।
5: और हाँ, गांधी जी की जो तस्वीर हमारे स्कूल में है उसमें उन्होंने भी ऐनक लगाई है।
1: बिल्कुल सही जवाब सुनील और रोशनी, शाबाश बच्चों। तो आज के खेल में मजा आया बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? तो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से, अवलदार कड़क, हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 8वां पाठ, मच्छरों की दावत, मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जस खीरत बोली, घर पर तो खूब खेलते होंगे? रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून भी टेस्ट करवाना पड़ा। जस खीरत बोली, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत बोला, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बोली, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोला, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत बोली, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोली, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत बोला, होते तो अलग अलग होंगे। नैन्सी बोली, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत बोला, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहां काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी बोली, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है और क्यों? मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें ली जा रही हैं, जिससे खून की जांच होती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। एक और चित्र है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। पृष्ठ 69। यहाँ रजत ने जो डॉक्टर से जांच करवाई थी उस रिपोर्ट का चित्र छपा है। यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इसमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? रिपोर्ट में लिखा है, नाम रजत, आयु 11 वर्ष, स्त्री या पुरुष? पुरुष। रोग की पहचान, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। एनीमिया क्या है? आरती कहती है, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। सिरिंज यानी इंजेक्शन भरकर खून लिया था। जांच में तो अनीमिया निकला। रजत ने पूछा, वह क्या होता है? आरती बोली, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी बोली, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई खून में लोहा कैसे? जसकीरत बोली, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए बोला, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है। पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। पृष्ठ 70। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007, दिल्ली। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। बताओ, यहाँ आरती के खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। पहली रिपोर्ट है 20 जून 2007 की। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन 8 है और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट 15 सितंबर 2007 की है। इसमें आरती का हीमोग्लोबिन है 10.5 ग्राम और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम। अब आप बताओ, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी? कब और क्यों? पृष्ठ 71। खून टेस्ट से क्या पता चला था? क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? पता करो, किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीजों में लोहा होता है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत बोली, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। पोस्टर में कुछ चित्र हैं, जैसे डिब्बा, कूलर, हैंडपंप और पौधे, जहां आसपास पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पोस्टर में लिखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पृष्ठ 72। रजत बोला, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी बोली, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये देखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती बोली, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी ने कहा, हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। रजत बोला, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोली, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत बोली, मुझे शाजी आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत बोला, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बताओ बताओ, क्या तुमने कोई ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है जिसमें मक्खी मच्छर से बचाव के तरीके बताए हों? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो। सोचो, पानी में मछलियां डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियां क्या क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? पृष्ठ 73। पता करो, मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे दो या तीन समूहों में बंट जाएं। समूहों को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा। स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो। क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नाली?

एक किसकी है? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? लिखो, पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ, अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पानी इकट्ठा होता है साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ। स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ। पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है, यह कौन से दफ्तर में जाएगी। अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। पृष्ठ 74। सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं, आओ इन्हें पढ़ें। समूह एक। हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई कहते हैं, जो एक तरह के पौधे होते हैं। काई से वहाँ फिसलन भी ज्यादा थी, बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। समूह दो। स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है, देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उगाए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है, हमने इसमें लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। बताओ अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है? तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है? क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो, उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उगाए हैं? पानी में और क्या क्या दिख रहा है, सूची बनाओ। यहाँ रोनाल्ड रोज एक वैज्ञानिक की फोटो छपी है। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। पृष्ठ 75। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थीं। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया।

माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थीं, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई, हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। हम क्या समझे, अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए तुम क्या क्या करोगे? कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं? मच्छरों की दावत। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 8वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: मेरी हॉबीज तो बहुत है, जैसे कि डांसिंग, खेलना, कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
3: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को, बहुत सारी चीजें। शिवांशी, आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
4: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
3: आपको खाना खाना, मेरी खाना बनाना है।
5: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव क्रिएटिव शब्द सुनाई दे रहे हैं मुझे।
3: दीदी, आपकी हॉबीज की बातें हो रही हैं।
5: अच्छा, इसीलिए मुझे कभी सुनाई दे रहा है खेलना, कभी आर्ट, कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
6: हॉबीज के बारे में।
5: हॉबीज के बारे में, तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना। जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा, तो आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
4: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
2: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
7: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
8: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
9: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
10: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
5: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे अपनी अपनी दो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
2: ये खाना बनाना।
5: खाना बनाना, और
2: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
5: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा,
9: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है।
11: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
10: दीदी, मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
5: दो बताओ उनमें से।
10: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
5: हंसाने के लिए क्या करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना।
10: जोक सुनाना।
5: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है, है ना। और राघव को क्या पसंद है?
7: आर्ट और डांसिंग।
5: और शिवांशी को?
4: डांस करना और खाना खाना।
5: और राघव क्या बोल रहे थे आप?
7: दीदी, मतलब है ना, जब आप फ्री होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं।
5: सिंगिंग पसंद है आपको, ओके, वेरी नाइस। मजा आना और हॉबी, दोनों में क्या अंतर है?
7: दीदी, हॉबी टैलेंट होता है।
5: वेरी गुड।
7: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है।
5: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है। रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो।
7: दीदी, मेरी एक और हॉबी है।
5: क्या?
7: पियानो बजाना।
5: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है। अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है टैलेंट के बारे में पता चलता है?
7: दीदी, उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। मतलब पहले जब अपा छोटे होते हैं तो अपा धीरे धीरे कम आर्ट कर, फिर अपा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर अपा आर्टिस्ट बन जाते हैं।
5: क्रिएटिविटी बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट।
4: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते
10: हैं। और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताएं तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है।
5: राइट, बिल्कुल।
9: हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते
5: हैं। सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का, बहुत सारे फायदे हैं, है ना। हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए?
7: लॉन्ग टाइम,
4: जिंदगी भर करना,
5: जिंदगी भर करना चाहिए, बिल्कुल। तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
3: दीदी, हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे।
5: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब?
7: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं।
3: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ।
5: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
9: और दीदी, शाम को हम रेडियो आते हैं, उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं।
5: ओके।
9: हमें कुछ सीखना होता है।
4: स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिलता था, उसमें भी कर लेते हैं हम।
5: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी प्रैक्टिस?
9: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं।
5: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
9: रात को।
5: रात को मिलता है, दिन में नहीं मिलता है। ओके।
10: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क।
5: अच्छा, होमवर्क बाद में?
10: हाँ।
5: ओके।
10: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है।
5: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब। ओके।
4: दीदी, पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में।
5: और फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा? फिर
10: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मैम
4: प्लीज।
5: हाँ, अब भाई होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना?
12: हाँ,
5: लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए। अच्छा ये बताओ, हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए? मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज तो बहुत समय से है ना आपकी,
10: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस।
5: आप इस साल मतलब अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ।
8: हम कहीं से सीख भी सकते हैं।
5: कहीं से सीख सकते हैं, ओके।
10: साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं फन के साथ।
5: हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, फन के साथ, ओके।
7: दीदी अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
5: अनुष्का का क्या लगता है?
11: उसमें कुछ नए स्टेप जोड़ दे तो वो और अच्छे बन जाते हैं।
5: हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, उसमें नयापन लेके आना है ना। मान लो अब हम बना रहे हैं ड्राइंग, बहुत समय से सीनरी बना रहे हैं, तो कुछ उसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारी स्किल को और बढ़ाए। आजकल यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो, तो अपनी ड्रॉइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं, और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो, है ना। और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को, किसी और को कुछ लगता है?
4: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने की कोशिश, जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है, अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा।
8: यदि माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना, गुस्सा हो जाते हैं।
5: ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना, अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, लगातार अगर पसंद है तो करते रहना है। और आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग। तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
10: हाँ जी दीदी।
5: क्या करके देखा है बताओ?
10: क्लासिकल डांस।
5: क्लासिकल डांस, ओके ग्रेट। और किसने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो।
4: ट्रेडिशनल आर्ट कर रखे, मंडला आर्ट।
5: मंडला आर्ट, ओके।
10: शास्त्रीय संगीत
5: किसने सीखा?
10: मैंने।
5: आपने?
10: हाँ।
5: सीख रहे हो अभी?
10: हाँ।
5: ओके, क्या सीख रहे हो उसमें?
10: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते पियानो पर।
5: क्या कोई राग होता है उसमें?
10: हाँ।
5: अरे वाह, वेरी गुड। और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, इसमें क्या बात है, अब तो बच्चे हो, अभी बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग, नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो।
7: ये मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की।
5: ओके, हाँ अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
8: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है।
5: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज है ना, खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है लेकिन जरूरत भी है ना, सबको आना चाहिए खाना बनाना। एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो।
7: ज्यादा खाना बनाने में कुछ कम आता है, मतलब ऐसे ही हूँ, जैसे चावल छोंकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीजें।
4: दे थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, बस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में।
8: बनाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ।
5: क्या बनाना आता है आपको?
8: मैगी।
5: मैगी बनानी आती है।
10: दीदी मैं तो नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ, फिर अपने घर में सबको खिलाती हूँ और बाहर भी रेडियो में भी सबको खिलाती हूँ।
5: नई नई डिशेस ट्राई करते तो हो आप।
8: और दीदी मेरी नानी ने खाना बनाना सिखा रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गया है।
5: अच्छा, कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
8: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई।
5: अरे वाह, क्या बात है।
10: दीदी मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है, आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी।
5: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो।
10: हाँ।
5: वेरी गुड। अनुष्का तो अभी छोटी है ना, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे।
7: दीदी लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ।
5: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को।
7: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी मना करते है, इसे पूछता हूँ, ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा होगा इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है इसमें।
5: हाँ, ये तो कोई गलती नहीं है आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो।
7: शिवांशी तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होगा मैं खुद बनाऊंगी। मम्मी तो सो रहे होते हैं तो इसीलिए मना करते हैं, वरना तो मम्मी पी लेते हैं।
5: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
7: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू।
5: अरे वाह, बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है। और
10: दीदी मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया।
5: ओके
3: दीदी, मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बना कर पूरे घर वालों को पिलाती
5: हूँ। सबको पिलाते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
3: सोचोगे नहीं जैसे पापा घर में मुझे तो जन बोलते सबके लिए नींबू पानी बना।
5: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना।
4: पिज्जा से याद आया, कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था।
5: अरे वाह, तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना। मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं तो मेहनत करते हैं, है ना। तो आपकी हॉबीज, एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती है। हमारी हॉबीज कैसे बेनिफिट देती है दूसरों को बताओ?
10: कुकिंग से।
5: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है। अच्छा अच्छा, और हमारी हॉबीज
4: डांस से भी हो सकता है।
5: आर्ट और डांस से क्या हो सकता है दूसरों को?
4: डांस से दूसरों को सिखा सकते हैं, और आर्ट से अगर किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, बना सिखा सकते हैं।
5: हाँ, हम उसको सिखा सकते हैं। और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे है, क्या लगता है आप लोगों को?
8: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बना है।
3: और अगर दीदी उनको डांस सीखना है, कोई स्टेप नहीं आता, तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है।
5: राइट
3: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो
8: हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं।
5: सिखा सकते हैं, है ना, कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं। और हम मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो, तो भी जैसे मंडला आर्ट है, कुछ यूनिक आर्ट है, तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो, है ना, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को।
3: अभी 11 मई को मदर्स डे था, मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
5: मम्मी को। अरे वाह,
8: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था।
3: दीदी आपको पता मैंने कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी।
5: वेरी गुड, क्रिएटिव। तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी हैं, आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे, है ना।
8: पिंक पेपर लिया, उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली, और जब वो खोलते हैं तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे।
5: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना, कितने सारे बेनिफिट्स। तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए।
3: ये तो उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना उससे पता चलता है कि हाँ इनको ये ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा पसंद, तो इनसे सीख सकते हैं हम।
5: हॉबीज से अच्छा दूसरों को तो बेनिफिट हो गया, हमें क्या फायदा होता है हॉबीज होने से?
3: दीदी हमें ये फायदा होता है उससे जो हमारी हॉबी होती है हम खुद सीखते हैं। जैसे मेरे को डांस सीखना तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,
5: कुछ नया नया सीखते रहेंगे,
3: नया नया सीखते रहेंगे। जैसे खाना बनाना होता है, अब खाने में जैसे मेरे को ये चीज नहीं आ रही, जैसे मेरे को पहले सिखाया था उसको थोड़ा याद करके बना लेते हैं।
5: अनुष्का क्या लगता है आपको क्या फायदा होता है हॉबीज का? हमको कोई फायदा होता है? क्या फायदा होता है जो आपको लगे बताओ? कोई बेनिफिट होता है हमें कि मैं डांस करती हूँ या मैं आर्ट करती हूँ, उसका मुझे क्या फायदा है?
7: दीदी हम किसी और को वो जैसे आर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं।
5: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
7: दीदी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हॉबीज और ज्यादा इंक्रीज होगी,
5: क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ।
8: और दीदी हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, तो हम उनको भी सिखा सकते हैं।
5: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो।
3: दीदी डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है।
7: दीदी मान लो
5: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी।
3: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं।
5: राइट।
7: दीदी अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया कि मेरे पास ये हो और उसके उधर कुछ हो रहा है, तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
5: हाँ, कंपटीशन से अपनी हॉबीज को और हम आगे ले जा सकते हैं।
8: और दीदी अगर हमें कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं।
5: बिल्कुल,
10: और दीदी हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते हैं
5: बिल्कुल
7: दीदी. मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं कुछ और देते हैं तो हमको खुशी भी मिलती है.
5: हमको खुद को खुशी मिलती है.
4: दीदी इतना खाना खाना सुन के भूख लग जाएगी.
5: हाँ भूख लगने लगी है तो एक काम करते हैं यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं. चलो तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई हैं और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है उसके बड़े सारे फायदे हैं. है ना मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है बॉडी के लिए फायदेमंद है. खुशी आप खुद भी ले सकते हो दूसरों को भी दे सकते हो कंपटीशन में आगे जा सकते हो है ना क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो कितनी सारी चीजें हैं. तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
12: नहीं कभी नहीं
5: और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ. कभी थोड़ा सा डांस कर लिया गाना गा लिया तो वो हो जाता है छू मंतर. ठीक है तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स. तो फिलहाल रेडियो मधुबन 107.8 FM से लेते हैं इजाजत और हमारे दोस्त को कहते हैं बाय बाय.

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 4, धर्म चक्र प्रवर्तन, पृष्ठ संख्या 49। धर्म चक्र प्रवर्तन, काशी गमन। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चला आ रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा, वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनयपूर्वक बोला, हे अरहत, आप जितेंद्रिय और आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं, लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है, आपका मन शांत है, आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज देदीप्यमान है। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है, इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुंदुभी बजाने काशी जा रहा हूं, किसी सुख या यश की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहां जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु और पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे चला गया। पृष्ठ संख्या 50। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहां वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थीं जैसे दो सखियां मिल रही हों। वे वहां से मृगदाओ मन यानी सारनाथ गए, जहां सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदाओ वन में वे 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। 5ों भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वे आपस में बातें करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भ्रष्ट का अभिवादन नहीं करेंगे, यदि यह हमसे पहले बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। पांचों भिक्षु जब यह परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए पांचों भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर लेते हैं वे तो व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर को कष्ट देने से नहीं अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने कष्ट कर तप और आसक्तिमय भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की है। पृष्ठ संख्या 51। मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है तथा सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है, सम्यक आचरण के उपवन में विहार करता है, सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है, सम्यक व्यायाम या प्रयत्न उसके सेवक हैं, सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान पूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म जरा व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो चार मूलभूत सत्य हैं वे हैं, दुख सुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव किया। दुख है यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूं। महात्मा बुद्ध के इन करुणायुक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिल्य आदि पांचों भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमो, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिल्य ने कहा, हां भंते। इसलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिल्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की कि जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे या कीलक हैं, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं, सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोक शांति प्राप्त कर सकता है। धर्मचक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्यु लोक और देव लोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई, निरभ्र आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। पृष्ठ संख्या 52। दीक्षा दान। काशी के मृगदाओं में धर्मचक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुल पुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधार में मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की। अपने आप आभूषणों से सज्जित होकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी हैं, जितेंद्रिय हैं, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह या जेंडर धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं, वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं, और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पाली है, वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सद्धर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूं। वहां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मत से उन्मत्त काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूं। पृष्ठ संख्या 53। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुंचे। वे वहां से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। तथागत निर्विकार भाव से अग्निशाला में गए और शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय, अक्षुब्ध और शांत बैठा देखकर वह सर्प बाहर आया और उसने फूत्कार की। के विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे रहे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श तक नहीं किया। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनीत भाव से बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए कि यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह काश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिंबसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के वेणु वन में पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। मगधराज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणु वन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनयपूर्वक उनके पास पहुंचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। पृष्ठ संख्या 54। यहां एक चित्र है जहां मगधराज मुनि बुद्ध का अभिवादन कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पाठ। वहां आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर काश्यप से पूछा, भंते, तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? काश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। इसीलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो, तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। यह सुनकर काश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि। इस प्रकार के अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूं। पृष्ठ संख्या 55। यह सब देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए और समवेत स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उनको बताया, जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी है और अभिन्न भी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिंबसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत्य हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजित भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की कांति और शांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजीत को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सौम्य, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजीत ने कहा, इक्ष्वाकुवंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूं। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूं, अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूं, फिर भी संक्षेप में कहता हूं। उन्होंने उपदेश दिया है कि सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अश्वजीत के उपदेशों से ही उपतिष्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वह वेणु वन की ओर जाने लगा। मार्ग में मौद गल्यायन नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपतिष्य के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है? ऐसी शांति और प्रसन्नता अकारण नहीं होती, बताओ क्या बात है? तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मौद गल्यायन को बता दिए। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौद गल्यायन को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन गए। पृष्ठ संख्या 56। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। इनमें से एक ज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है। जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए। तथागत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधु मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशः साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वह निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया। उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदयंगम किया। बाद में इन्हें ही महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। यहां एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध महाकाश्यप और अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 57। अनाथ पिंडद की दीक्षा। एक बार उत्तर की ओर से कोसल देश का एक धनी गृहपति वेणुवन आया। गरीबों को दान देना उसका स्वभाव था, इसलिए वह सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। जब उसने सुना कि महामुनि यहीं निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गया और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तथागत ने उसका श्रद्धाभाव देखकर कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो, दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहां आए हो, इसलिए तुम नैष्ठिक पद के अधिकारी हो। आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं, अतः तुम दान करो, शील और शिष्टाचार का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर सुदत्त गृहस्थ होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सका और जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि तत्व बोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं। उसने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूं, मैं वहां आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूं। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं, फिर भी मुझ पर दया कर आप वहां पधारें और निवास करें। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत्त और उपतिष्य धीरे धीरे कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जेत वन दिखाई दिया जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से वह भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन लेकर उसने वह भूमि बेच दी। जब सुदत्त ने उदारतापूर्वक इस भूमि के लिए प्रभूत धनराशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, इसीलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिष्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। पृष्ठ संख्या 58। पिता पुत्र मिलन। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्धोदन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। शुद्धोदन के पुरोहित और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पुरवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा, अनेक शिष्यों के बीच परिव्राजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है, तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोदन का मन विह्वल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय में पड़कर वे ना तो उन्हें पुत्र कह सके और ना ही भिक्षु। अपने आप को राजसी वस्त्रालंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसी कि किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा शुद्धोदन सोचने लगे, यदि वह मानधाता की भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मांगता फिरता? ऐसी विडंबना है, जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है और चंद्रमा के समान कांतिवान है, वह भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध

आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। पृष्ठ संख्या 59। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक यानी फल और कर्म का आश्रय, चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है और न दुख।

सिद्ध हो गया, वे रोमांचित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया, हे आर्य, आज मैं धन्य हूं, आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया है। हे तात, आपका जन्म सफल है, अब मैं सचमुच पुत्रवान हूं। आपने राजलक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया और मुझ पर कृपा की, यह सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भव चक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोकों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद, क्रिमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृह त्याग किया। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। अत्रि नंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोदन ने भी अपना राज्य भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे। इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पुरवासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पुरवासियों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियों द्वारों और वातायनों की ओर दौड़ी। काशाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूर्य के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगीं और विह्वल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। पृष्ठ संख्या 60। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनि वेश में देख

देखकर तरह तरह से विलाप कर रही थीं। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विह्वल हो गई। किंतु बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और न पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांति पूर्वक धीरे धीरे न्यग्रोध वन जा पहुंचे। वहां वे संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। यहां एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध मार्ग में चलते हुए भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां कुछ स्त्रियां उन्हें भिक्षा देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब सुनते हैं पाठ। जेत वन। कपिल वस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजित के राज्य कोसल देश की ओर प्रस्थान किया। श्रावस्ती पहुंचकर वे जेत वन पहुंचे, जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जेत वन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कोसल नरेश प्रसेनजित उनके दर्शनों के लिए जेत वन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुने, कोसल वासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप यहां पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया है। आप यहां सुखपूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। पृष्ठ संख्या 61। प्रसेनजित की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजर्षि, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी साधुओं में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्ज्वल यश की कामना करते हैं तो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित न कीजिए, पापियों की संगति त्याग कर सुमार्ग का अनुसरण कीजिए। तथागत ने प्रसेनजित को अनेक उपदेश दिए और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजित को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। प्रसेनजित को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साधुओं ने राजा के तत्व बोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करें। राजा प्रसेनजित की प्रार्थना सुनकर तथागत ने साधुओं की शंकाओं का समाधान किया। सभी साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहण की। कोसल से तथागत राजगृह आए। उन्होंने वहां ज्योतिष्क, जीवक, शूर, श्रोण, अंगद आदि को उपदेश दिए और उन्हें अपने संघ में दीक्षित किया। राजगृह से तथागत गांधार देश गए। वहां पुष्कर नाम का राजा राज करता था। पुष्कर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदय हुआ। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। गांधार देश से वे विपुल पर्वत पर आए और वहां हेमवत और साताग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिया। वहां से वे जीवक के आम्रवन में आए और विश्राम किया। वहां से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रमण करते हुए आपण नगर पहुंचे। वहीं क्रूर कर्मों में लगे अंगुलीमाल को अपने धर्म में दीक्षित किया और उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद वे वाराणसी आए, जहां असित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यु से पहले असित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे, अतः कात्यायन ने भगवान बुद्ध के वहां आने पर सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के कारण वह ध्यान और संयम खो बैठा और अनेक अनुचित कार्य करने लगा।
उसने पहले संघ में मतभेद खड़े करने का कुचक्र चलाया, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली तो उसने तथागत को समाप्त करना चाहा। जब तथागत बृद्धकूट पर्वत पर विराजमान थे, तब देवदत्त ने उन पर एक शिलाखंड गिराया, परंतु उससे भगवान को कोई क्षति नहीं हुई। पृष्ठ संख्या 62। देवदत्त को संघ में मतभेद उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली और न ही वह भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजगृह मार्ग से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उसने उन पर एक मदमत्त हाथी छुड़वा दिया। प्रलयकालीन काले बादलों जैसा हाथी आंधी की तरह दौड़ता हुआ राजपथ पर आ गया। जो भी उसके मार्ग में आता वह उसे मारने दौड़ता। चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर से शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे तथा उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगे, परंतु कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सकता था। तथागत की हत्या के लिए वह हाथी उसी की ओर आ रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। अट्टालिकाओं से स्त्रियों और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु तथागत शांत और निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से ही मदमत्त हाथी को आते देखकर पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिष्य भाग गए, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते ही गए। उनके पीछे पीछे केवल उनके परम शिष्य आनंद चलते गए। जैसे वस्तु की प्रकृति वस्तु के साथ रहती है, वैसे ही आनंद उनके साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मदोन्मत्त हाथी एकदम शांत और स्वस्थ हो गया और वह भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। भगवान ने उस हाथ का स्पर्श किया और उसे उपदेश दिए, हे गजराज, निरपराध प्राणियों की क्यों हत्या कर रहे हो? उससे तो दुख ही होगा, किसी को कष्ट मत दो। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध गजराज यानी हाथी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सुनते हैं आगे का पाठ। पृष्ठ संख्या 63। तथागत को देखकर और उनके उपदेश सुनकर हाथी ने शिष्य के समान उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों ओर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी वह और भी दृढ़ हो गई। राजमहल की अट्टालिकाओं पर खड़े सम्राट अजातशत्रु यह सब देख रहे थे। उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया और उनमें उनका पूर्ण विश्वास हो गया। आम्रपाली के उद्यान में कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगधराज के मंत्री वर्षाकार लिच्छियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे। तथागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धन राशि आ रही है तो उन्होंने भविष्यवाणी की, शीघ्र ही यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त करेगा। तब मगधराज के मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में गए और धर्म का उपदेश दिया। कुछ समय वहां रहकर नंदीग्राम गए। वहां किसी कारण अनेक लोग मर गए थे। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिए और सांत्वना दी। वहां वे एक रात रहे, फिर दूसरे दिन वैशाली नगरी के लिए प्रस्थान किया। वैशाली पहुंचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगरवधू आम्रपाली के उद्यान में निवास किया।
जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके उद्यान में निवास कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। उसने अलकतक, अंजन, अंगराग तथा आभूषणों को त्याग दिया। अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किए और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और रथ पर जाने लगी, जहां भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे थे, जिसमें आम्रपाली भगवान बुद्ध के दर्शन कर रही हैं। अब सुनते हैं पाठ, पृष्ठ संख्या 65। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली यहीं आ रही है, तुम सब बोध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना और ज्ञान में स्थिर रहना। तुम प्रज्ञा रूपी वाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करो और स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी रक्षा करो। जब तक आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई, अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है, यही तुम्हारा सच्चा धन है, क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नव युवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता और आशय की पवित्रता थी, इसीलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना। इससे उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गईं और उसे अपनी वृत्ति से घृणा होने लगी। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया, हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आपने संसार को पार कर लिया है, हे साधो, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रश्न 1, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहां और किन्हें दिया? 2, अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। 3, भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? 4, प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? 5, तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोदन को क्या समझाया? 6, आम्रपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? यहां अध्याय 4 समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। ध्वन्यंकन विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज विशेष रोहित सरदाना, इनका जन्मदिन है। पवन कुमार चामलिंग, वी एस श्रीनिवास शास्त्री, शारदा देवी, इन सभी का पुण्य दिवस है। इसके साथ ही आशा लता, मंसूर अली खां, दुर्गा कोठे और नानक देव गुरु, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो वही आज के इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों की बातें तो करेंगे ही, और साथ ही साथ आपसे रूबरू होंगे और आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जिन लोगों के बारे में आपको अगर कुछ पता हो तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। चलिए, आज मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो आइए, अब एक विचार आपको सुनाएंगे। और अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत ही सुंदर विचार आपको हमने सुनाया। इसके साथ ही आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक सुंदर गीत की तरफ। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: पीछे पीछे पीछे चल। वह स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं अब रोहित सरदाना के बारे में। कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आज ही के दिन विशेष रूप से इनका जन्म हुआ था। तो भारतीय समाचार वक्ता थे। वो सिर्फ स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग करने वाले पत्रकार नहीं थे, बल्कि जब भी देश में कोई बड़ी खबर हुई रोहित सरदाना हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहीं से रिपोर्टिंग की। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके सवालों के समक्ष असहज हो जाता था। उन्होंने समाचार चैनल जी न्यूज़ तथा आज तक के लिए एंकरिंग की काम भी किया है। तो आई इनका जन्म आज के दिन 1979 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। उन्हें ताल ठोक के एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी जो कि जी न्यूज़ पर भारत में समकालीन मुद्दों पर चर्चा करता था और ये चीज़ लोगों को और कार्यक्रम बड़ा पसंद किया गया। रोहित सरदाना के पास मनोविज्ञान में कला की डिग्री थी और वर्ष 2000 से 2002 तक उन्होंने गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में जनसंचार में डिग्री हासिल की और अपना शैक्षणिक कार्य पूरा किया। उन्होंने आज तक न्यूज़ चैनल दंगल नाम के एक शो की एंकरिंग की थी। इस शो की तुलना रेडियो रावड़ा से की गई है। 2018 में उन्हें भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और 2018 में उन्होंने ये संपन्न किया था। कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद दिल का दौरा पड़ने से रोहित सरदाना की मृत्यु 30 अप्रैल 2021 को नोएडा उत्तर प्रदेश में हो गई और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्रिकेटर सुरेश रैना, युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई लोगों ने उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर उस समय हुई थी जिसके लिए लोगों ने शोक व्यक्त किया था। तो आइए एक विशेष पत्रकार और एंकर की बातें हम लोग कर रहे थे रोहित सरदाना के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। रोहित सरदाना के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आइए एक राजनीति के बारे में बात करते हैं। पत्रकार के बाद सीधे आपको राजनीति की कहानी बताते हैं। पवन कुमार चामलिंग जी हाँ, 22 सितंबर 1950 को भारत के सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष और 1994 में लगातार सिक्किम की राजधानी में राजनीति में सक्रिय रहे। और पवन चामलिंग ने जब 21 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस समय उन्होंने एक नया रिकॉर्ड रच दिया था। वे भारत के पहले ऐसे राजनीतिक रहे हैं जो किसी राज्य में लगातार 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के संस्थापक सिक्किम के 5वें मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का जन्म आज के दिन 1950 को सिक्किम के एक छोटे और बेहद पिछड़े गांव यांगयांग में हुआ था। पवन कुमार चामलिंग ने केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है, लेकिन 1972 में राजनीति में आने से पहले वो किसान और प्रथम श्रेणी के ठेकेदार रह चुके हैं। पवन कुमार चामलिंग नेपाली भाषा के एक सम्मानीय लेखक भी है। इनका साहित्यिक नाम पवन कुमार चामलिंग किरण है। टीका माया चामलिंग इनकी दूसरी पत्नी है। पवन कुमार चामलिंग राजनीतिक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं और लंबे अरसे से राजनीति में जुड़े होने के कारण पवन कुमार चामलिंग को राजनीति की अच्छी समझ है। और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किए और राज्य के मुख्यमंत्री बने और लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का इनके नाम रिकॉर्ड है। और 2010 में पवन कुमार चामलिंग को पंग लब्सल समिति द्वारा टिकोंग अम्बेसडर ऑफ पीस का सम्मान प्राप्त है। सिक्किम साहित्य परिषद से 2010 में पवन कुमार को भानु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2009 में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा चामलिंग को लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया और 2003 में सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कोलकाता की पोएट फाउंडेशन ने चामलिंग को 2002 में पुरस्कार से नवाजा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक स्टडीज द्वारा पवन कुमार चामलिंग को 1999 में मानव सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया और 1996 में पवन कुमार चामलिंग को भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति उपराष्ट्रपति ने भारत शिरोमणि की उपाधि से सम्मान किया। तो इस तरह से अलग अलग उपलब्धियाँ और योग्यताएं और इनकी साहित्य जगत भी बड़ा अच्छा है और 10 से 12 किताब इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा पवन कुमार चामलिंग निर्माण जो कि साहित्यिक पत्रिका है उसके संपादन और प्रकाशन का काम भी देखते हैं। जल्द ही निर्माण पब्लिकेशन के निर्माण के प्रकाशन का काम अपने हाथ में ले लिया और पिछले 19 वर्षों से ये प्रकाशन संस्था नए लेखकों के अलावा कई प्रसिद्ध और लोकप्रिय लेखकों की 100 से अधिक किताबों का प्रकाशन कर चुकी है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें पवन कुमार चामलिंग के बारे में। आपके नाम आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमाईचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चामलिंग के बारे में सुनने के बाद आइए एक और विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो खास समाज सेवा करते हुए इन्होंने अपने विशेष समय को व्यतीत किया है। तो आइए एक समाज सेवी के बारे में बात करते हैं और ये है उदारवादी राजनीतिक और इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशन शासन के दौरान देश विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर काम किए। अपनी जीवन वृत्ति स्कूल शिक्षा के रूप में आरंभ की थी लेकिन सार्वजनिक मुद्दों में गहरी रुचि और अपनी वाक पटुता के कारण जल्द ही वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। जीवन परिचय की अगर बात करें तो श्रीनिवास शास्त्री का पूरा नाम वामिंगम शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री था। इनका नाम ग्राम वाइलिंगम वाइलिंगमन जिला तंजौर कर्नाटक में 22 सितंबर 1869 में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्राम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंभकोणम के पास है जहां हर साल 12 वर्ष बाद विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे और इनकी माता जी भी अति धार्मिष्ठ थी और इनका बचपन धार्मिक कहानियां और भजन सुनते हुए भी था। इनके मन पर गहरा प्रभाव हुआ और इन संस्कारों का उनके भावी जीवन में बहुत उपयोग भी हुआ। तो वही इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। शिक्षा दीक्षा अत्यंत अनुराग होने के कारण वे वहीं पर नेटिव स्कूल हाई स्कूल में पढ़ने के लिए पैदल ही जाते थे और 1884 में मैट्रिक करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी से एमए किया। फिर इसके बाद अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाते हुए लोगों को छात्रों के साथ लोकप्रिय हुए और अनूठी शिक्षण शैली के कारण इनकी उन्नति होती गई और ये म्युनिसिपल कॉलेज में उप प्राचार्य भी बने। श्रीनिवासन फिर एजुकेशन सिस्टम में ही काम करते हुए आगे बढ़े क्योंकि ये बोलते अच्छे थे और फिर इस तरह से इनकी प्रसिद्धि के साथ साथ राजनीति का भी ऑफर इनको मिला और गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिले तो उन्होंने अपना गुरु मनाया और गुरु मान लिया तो फिर देश की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया और माय मास्टर गोखले नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी और इनकी शुरू से जीवन की सामाजिक समस्याओं में बड़ी रुचि थी और उन्हें ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते रहे। श्रीनिवास शास्त्री समाज सुधारक बने इसलिए सरकार ने उन्हें 1922 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और कनाडा की यात्रा पर भेजा जो उन देशों में रहने वाले भारतीयों की दशा को सुधारने का एक प्रयास था और 1926 में उन्हें इसी कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया और 1927 में उन्हें वहाँ एजेंट जनरल नियुक्त किया गया और भारतीय सरकार ने उन्हें मलाय में भारतीय मजदूरों की दशा पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया और 1930 और 1931 के दौरान उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा किया। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी की और 1935 और 1940 के दौरान वह मद्रास में अन्नामलाय विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने रहे। तो ये थी उनकी बातें और देश और विदेश में सबसे बसे भारतीयों की सेवा करने के लिए समर्पित जीवन श्रीनिवास शास्त्री का रहा और 76 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 1946 को मद्रास में इनका देहांत हुआ। तो वही ऐसे विशेष देश सेवा करने वाले शास्त्री जी को सलाम करते हुए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम अभी सुनते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, आप इनकी कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। और ये आध्यात्मिक जीवन शैली से जुड़ी विशेष रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगनी शारदा देवी के बारे में बात करते हैं। 6 वर्ष की शारदा मणि का 23 वर्ष के रामकृष्ण परमहंस के साथ विवाह हुआ था। कुछ वर्ष बाद रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी को दिव्य माता की प्रतिमूर्ति मानने लगे और इस तरह से रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगनी शारदा देवी का जन्म आज ही के दिन 1853 को हुआ था। उनका बचपन का नाम शारदा मणि था। उनके पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय पुरोहिताही करने वाले साधारण ब्राह्मण थे और रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्ति में इतने मगन रहते थे कि लोग उन्हें पागल समझने लगे। उनकी वृद्ध माता चंद्रमणि पुत्र की यह दशा देखकर चिंतित हुई। वह ये सोचकर उन्हें अपने गांव कमारपुर लिए आई कि विवाह हो जाने से पुत्र की मानसिक स्थिति बदल जाएगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शारदा देवी का जिस समय विवाह हुआ था उस वक्त शारदा देवी की उम्र 6 वर्ष और रामकृष्ण परमहंस की 23 वर्ष की थी। 14 वर्ष की शारदा का द्वारगमन हुआ और वे अपनी ससुराल आई। रामकृष्ण ज़्यादातर समय दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्ति में लीन रहते थे और शारदा वापस अपने पिता के गांव जयराम भारी आ जाती है। किसी तरह 4 वर्ष गुजारे वो और एक बार शारदा देवी रामकृष्ण की अवस्था का समाचार सुनकर सीधे दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए जब वो बीमार थे और स्वामी जी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की और शारदा के रहने की

व्यवस्था अलग से कमरे में कर दी थी। फिर इस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने शारदा देवी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और फिर एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दिव्य माता दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और दुर्गा के लिए बने आसन पर शारदा देवी को बिठाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर बोले, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी दिव्य माता की प्रतिमूर्ति हो। इस प्रकार शारदा देवी माँ शारदा बन गई। उन्होंने अपने स्वामी का मार्ग अपनाया और 1888 में परमहंस के स्वर्गारोहण के समय तक वे उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करने में समर्थ हो गए। दिव्य माता का प्रतिमूर्ति शारदा देवी ने 20 जुलाई 1920 को देह त्याग दिया। तो ये थी कहानी माँ शारदे की आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जाते वक्त जो है एक बड़ी घटना जो है हमेशा सुनाई जाती है, शारदा देवी और रामकृष्ण परमहंस के बीच में अंतिम समय में जो बातचीत हुई थी। रामकृष्ण परमहंस जब उनको पता चल गया था कि अब हम रहेंगे नहीं, तो उन्होंने शारदा देवी को कहा था कि भाई मैं अगर इस शरीर से निकल भी गया तो मैं तो शाश्वत हूँ, आत्मा हूँ, तो आप अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं करना, बस जैसे जो चीज़ें आपको अभी तक आप करते आए हैं उन चीज़ों को करते रहना। आप चूड़ियाँ तोड़कर हाय तोबा मत मचाना, आप चूड़ियाँ पहने रहना, आप जो भी चीज़ें करते हैं कपड़े लत्ते, वो चीज़ें हमेशा आप इसी तरह बने रहना, ये मुझे वचन दो। तो उन्होंने इनसे वचन लेकर इस तरह की जो बातें हैं, और क्योंकि अध्यात्म का एक चरम अनुभूति उनको हुई थी और उनको जाने के पहले भी उनका साक्षात्कार हो गया था कि आप जाना है, तो इस तरह से ये जो जीवन की शैली है, जब अध्यात्म ज्ञान में जन्म और मृत्यु का जो आनंद है वो अपने आप में अनूठा है। और हम सभी लोग जन्म लेते भी है दुख से और मरते भी है दुख से, है ना, लेकिन एक अध्यात्म शख्सियत जो है, जन्म भी उनका उत्सव है तो मृत्यु भी उत्सव हो जाता है, है ना, कमाल की बात। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, हमारे सभी श्रोता मित्र जैसे कि विभा जी और हर्षिता जी और जैनाब जी और सुगना बहन और हमारे बहुत सारे बहनें हैं, उन सभी को याद करते हुए सुरेश जी एंड कंपनी और सुरेश जी जोटाना, सुरेश जी पिंडवाड़ा, सुरेश जी अहमदाबाद और सुभाष जी जलगांव से, कोपराम जी कोटा से और कंचन भाई मंदाली से और हमारे दयाराम जी लाखनी से, सभी को याद करते हुए रमेश जी राधनपुर वाले, आपको भी बहुत बहुत याद। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगा। आशा करूंगा आप सभी रेडियो सुन रहे हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का, और जाते जाते आपके लिए एक सुंदर कहानी मैं बताने वाला हूँ। कहानी जब भी हम लोग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और एक कहानी है लोमड़ी और अंगूर। बहुत दिन पहले की बात है और ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसने पूरी जंगल में छान मारा, लेकिन उसे कहीं पर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इतनी मेहनत से खोज करने के बाद भी उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वो खा सके। अब एक बार हुआ, अंत में जैसे ही वो उसका पेट गड़बड़ाहट करने लगा, वह एक किसान की दीवार से टकरा गया। दीवार के टकराने के बाद देखा ऊपर, शीर्ष पर पहुंचकर उसने अपने सामने बहुत से बड़े रसीले अंगूर को देखा। वो भी सभी अंगूर देखने में काफ़ी ताजे और सुंदर थे। लोमड़ी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे खाने के लिए तैयार है। अंगूर तो पहुंचने के लिए लोमड़ी को हवा में ऊंची छलांग लगानी पड़ी। कूदते ही उसने अंगूर पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह चूक गया। लोमड़ी ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर चूका। उसने कुछ देर बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंत में लोमड़ी ने फैसला किया कि वो अब और कोशिश नहीं कर सकता और उसे घर चले जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच लिया। जब वो चला गया तो वो मन में ही मन बुदबुदाने लगा, मुझे यकीन है कि अंगूर वैसे भी खट्टे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास नहीं है उसका कभी तिरस्कार ना करें। कुछ भी आसान नहीं आता और आसानी से कोई भी चीज़ मिलता नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है और जी जान से मेहनत करने के बाद ही उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ता है। तरकीब के साथ अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मिल जाता। अगर लोमड़ी जंप करने से साथ साथ अगर थोड़ा सा किसी लकड़ी के सहारा लेकर उसे मार देता तो गिर जाते, कुछ खा भी लेता, ऐसा भी हो सकता था। कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं तो कुछ नहीं मिलता, तो तरकीब का इस्तेमाल, बुद्धि इसलिए ईश्वर ने दी है, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप सुने हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। चलिए, जाते जाते एक और सुंदर विचार के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्यों मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। चाणी के की ये बात याद रखिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सफर इस कार्यक्रम को। चलिए, आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी खुशियां, बहुत बहुत प्यार। सुनते रहो।

0: रुके रुके रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं। आम कार्यक्रम है युवा मंच। युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी बात युवाओं की आती है तो एक चीज है जो हम सब चाहते हैं कि हो, और वो है उनका आगे बढ़ना, उनका सीखना, उनका जानना, उनका सपनों को पूरे करना। लेकिन उन सपनों को पूरे करने के लिए चाहिए होती है जानकारी, साथ साथ सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता, और एक ऐसी विल पावर जो गलतियों से सिखाने में सक्षम हो। लेकिन वो कैसे आती है, और क्या यूथ के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस जर्नी में उन्हें मदद कर सकती हैं? दोस्तों, अभी ऐसा ज़रूर होता है कि भाई बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। हम जब फ़ोन उठाते हैं, 10 तरह के पॉपअप्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, और जोक्स और पता नहीं क्या क्या आते हैं। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तो उनको एक देखना शुरू करते हैं और फिर देखते जाते हैं, और एक घंटा दो घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कहते हैं कि ये वो समय होता है जिसका आपको हर एक सेकेंड सफल करना होता है, उसको फ़ायदा उठाना होता है। और वो कैसे उठा सकते हैं? सीख कर। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं इस राह में आपके अपने सपनों को पूरा करने में? आइए जानते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि सपनों को साकार कैसे किया जाए। एक बड़ी रुकावट जो सपनों को साकार करने में आती है, एक बड़ा सपोर्ट जो सपनों को साकार करने में आता है, आपको पता है वो सेम हो सकता है? जी हाँ, बस वो कैसा है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे दोस्ती की, यानी फ्रेंडशिप की। अच्छे दोस्त हों जो आपको मोटिवेट करते हैं तो आपको आसमान पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त हों जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गलत सलाह देते हैं, गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, तो आपके सपनों से आप और दूर चले जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। ये एक ऐसा जादू है जो आपको कहीं और ले भी जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो सही रास्ते पर चल रहा हूँ, एकदम मुझे दिख रहा है, मगर आपकी आंखें एक्चुअली बंद हो चुकी होती हैं। इसीलिए मैंने कहा ये आपके सपनों को नज़दीक भी ले जा सकता है और दूर भी कर सकता है। समझना ज़रूरी है कि जो दोस्ती है वो आपकी टॉक्सिक तो नहीं है। आपका जो दोस्त का सर्किल है पूरा, वो आपको सपोर्ट करता है या नहीं। चलिए आइए जानते हैं कौन से ऐसे मापदंड हो सकते हैं, कौन से ऐसे गारंटीड आपको बताए जा सकते हैं तरीके जिससे आप ये परख सकें। मुझे लगता है ये हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं दोस्ती में कुछ भी करेंगे, दोस्त का साथ नहीं छोड़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दोस्ती हमें कहाँ लेकर जा रही है ये जजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। साथ देना है लेकिन गलत को सही लेकर आना है, सही को भी गलत नहीं बना देना है। दोस्त भी अगर गलत है तो उसको भी सही करना है, लेकिन पहले खुद तो समझें कि सही गलत क्या है। और ऐसा नहीं है कि हम बाकी चीज़ों में परखते नहीं, लेकिन दोस्ती में वो एक अलग तरीके का जो एक अट्रैक्शन होता है, हमें जो भावनाएं महसूस होती हैं वो हमें कई बार परखने नहीं देती हैं। तो आइए सही दोस्त और टॉक्सिक पीयर कैसा होता है जानते हैं। सहयोग के माध्यम से
1: So now it's time to introduce our experts and they have joined us. First, I would like to say hello and very good evening, Dr. Pragya Singh. Pragya ma'am, namaste, swagat hai aapka.
2: Thank you ma'am, thank you for inviting me.
1: Yes, namaste. Aur we have that other guest also, Dr. Parvesh Lata ji. Parvesh Lata ji, she is Associate Professor in Regional Institute of Education, NCERT Ajmer. Namaste madam, swagat hai aapka.
3: धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए।
1: बिल्कुल, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर है हमारी मैडम परवेश लता जी और प्रैक्टिसिंग काउंसलर है प्रज्ञा सिंह। सो बोथ द गेस्ट्स आर देयर इन द यू नो इन दिस सेशन। एंड डियर व्यूअर्स, इफ यू वांट टू टॉक टू आवर काउंसलर, यू हैव अदर नंबर आल्सो वेयर यू कैन डायल द नंबर। नंबर इज 844-844-0632. So there are two numbers, you can contact both the numbers. So now it's

0: time to ask some questions, and you can also send your query, your questions here in live chat box. So the first question is about what makes a friendship healthy, meaningful and emotionally supportive. So Parvesh ma'am, hum log ek dosti ki baat karte hain ki meaningful yani sarthak dosti bahut important hai aur ek jo sahyog kare supportive hona bhi bahut zaruri hai. To aap isko kaise define karenge ma'am, kyunki aajkal ek sarthak aur achhi dosti milna bada mushkil sa sawal hai aur khas taur par jo hamare bacche hain, teenager bacche hain, hamare jo adolescents hain unke liye thoda sa mushkil ho jata hai kyunki badi changing age hai ye, bahut badalta hua daur hota hai unke liye.
1: यस मैम, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. और मैं कहना चाहूँगी आपके सवाल के साथ कि जैसे आपने पूछा है कि व्हाट मेक्स अ फ्रेंडशिप हेल्दी एंड मीनिंगफुल एंड इमोशनली सपोर्टिव फॉर अ स्टूडेंट. एक स्वस्थ मित्रता वह होती है जिसमें दोनों ही मित्र जो हैं बहुत ही सुरक्षित, सम्मानित, महत्वपूर्ण और स्वीकार अपने आप को महसूस करते हैं. और मित्रता सिर्फ ये नहीं है कि वो केवल मौज मस्ती करने का ही नाम है, बल्कि ये भी है कि हम कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें. तो सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहूंगी कि दे शुड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फीलिंग्स एंड चॉइसेस, यानी कि हम एक दूसरे की भावनाओं का और हम पसंद का सम्मान करें. एक अच्छा मित्र यह समझता है कि हमारी रुचियां और पसंद अलग अलग हो सकती हैं, तो वह हमें अपनी तरह सोचने या हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं करता है. और दूसरा मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी, जहां पर हम बात करते हैं ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी की, या हम कहें कि विश्वास और ईमानदारी, तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में कि मित्रों के बीच एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए और वो कैसे जो है एक दूसरे से ईमानदारी से अपनी बात कह सके. और ईमानदारी जो हमेशा वो जो है दयालुता या संवेदनशीलता के साथ व्यक्त की जानी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. और तीसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि लिसनिंग विदाउट जजिंग, यानी कि हम कई बार जज कर लेते हैं सामने वाले पर्सन को, तो समटाइम्स अ फ्रेंड मे सिंपली नीड समवन हु विल लिसन. कई बार हम भी अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि हमें कोई सुनने वाला हो, सो वी डोंट ऑलवेज हैव टू गिव एडवाइस और फाइंड अ सॉल्यूशन. समटाइम जस्ट सेइंग कि आई अंडरस्टैंड, आई एम हेयर फॉर यू, अगर सिर्फ आपको कोई ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको समझ सकती हूँ, तो दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. एंड मैं आपको फोर्थ चीज ये आपको ये कहना चाहूंगी कि सपोर्ट ड्यूरिंग बोथ गुड एंड डिफिकल्ट टाइम. अच्छे और कठिन समय दोनों हमारे जीवन में आते हैं और एक सच्चा मित्र हमारी उपलब्धियों पर खुश होता है, लेकिन जब हम निराश या चिंतित या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तब भी वह हमारा साथ देता है. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समानता और निष्पक्षता, जिसको हम फेयरनेस कहते हैं. फ्रेंडशिप हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मित्रता है आपकी वो वन साइडेड हो. बोथ पीपल दे शुड गेट अ चांस टू स्पीक, दे शुड शेयर देयर फीलिंग, दे शुड मेक देयर चॉइसेस, एंड वन पर्सन फीलिंग दैट शुड नॉट ऑलवेज डोमिनेट द रिलेशनशिप. एंड नो डाउट कि फ्रेंडशिप में कोई फन नहीं होता है, काइंडनेस ही होती है एंड एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए. एंड वी शुड बी एबल टू लव टुगेदर, एन्जॉय द एक्टिविटीज टुगेदर. यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि गुड फ्रेंड मेक्स यू फील सेफ एंड यू कैन से वैल्यूड एंड कंफर्टेबल. हाँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल इस तरीके के देना चाहूंगी. जैसे मान लीजिए कि यू गेट ए स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, सो आपका फ्रेंड जो है, आपका मित्र जो है, जेन्युइनली जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जेलस और ट्राइंग टू पुट यू डाउन. एंड सपोज आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो आपके मित्र, हम ये कह सकते हैं कि इट्स ओके, सो लेट्स सी वेयर वी कैन इम्प्रूव, आई कैन स्टडी विद यू, रादर देन मेकिंग फन ऑफ यू. कई बार ऐसा होता है कि हम जो स्टूडेंट्स जो हैं या विद्यार्थी जो मित्र जो हैं आपस में एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं. सो ऐसा भी हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. सो आप एक फ्रेंड के मित्र के तौर पर आप कह सकते हैं कि आई डोंट एग्री विद यू बट आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. एंड इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि यू आर अपसेट एंड बट यू डोंट टू टॉक. सो यहाँ पर भी जो आपका मित्र है या आप एज अ फ्रेंड गिव्स यू सम स्पेस एंड सेज दैट वेन एवर यू फील कंफर्टेबल आई एम हेयर टू लिसन. कई बार जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स ही आपको काफी कंफर्टेबल फील कराती हैं. कई बार ऐसा नहीं होता है कि मित्रता में हमारे हम मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है और हमसे गलतियां होती हैं. यू मेक अ मिस्टेक सो योर फ्रेंड करेक्ट्स यू प्राइवेटली एंड रिस्पेक्टफुली रादर देन एम्बेरसिंग यू इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी वन. एंड कई बार हमारे दूसरे मित्र भी होते हैं और इस चीज से भी विद्यार्थियों में ये जेलसी होती है कि मुझसे ज्यादा मित्रता है. सो योर फ्रेंड रिस्पेक्ट योर अदर फ्रेंडशिप ऑल्सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ यू आर रियली माई फ्रेंड यू कांट बी फ्रेंड्स विद देम. कई बार ऐसा भी होता है. एंड सिचुएशन मान लीजिए इस तरीके की है कि यू कांट हेल्प योर फ्रेंड बिकॉज यू हैव एन एग्जामिनेशन. सम टाइम इट हैपेंस आल्सो. सो दूसरा मित्र जो है वो उसको समझे और ये कहे कि नो प्रॉब्लम स्टडी योर एग्जाम फर्स्ट वी कैन टॉक लेटर. तो हमारे नो कहने के तरीके भी अलग अलग हमारे होते हैं. एंड कई बार हम जो है अपनी पर्सनल चीज जब दो मित्र होते हैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी व्यक्तिगत चीज़ें भी वो आपस में शेयर करते हैं. सो यहाँ पर मित्र का जो दायित्व है वो ये है कि योर फ्रेंड रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड डजेंट शेयर इट विद योर क्लासमेट्स और पोस्ट इट ऑनलाइन. तो यहाँ पर अगर हम आज भी अपनी लाइफ में ये सोचे हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कोई हमारे जीवन में ऐसा मित्र है जो हमें सेफ फील कराता है या रिस्पेक्टेड फील कराता है एंड यू आर फीलिंग सपोर्टेड विद देम. सो इस तरीके से हम अगर हम अपना व्यवहार रखें तो हम ये हेल्दी फ्रेंडशिप जो है हम आपस में क्रिएट कर सकते हैं.
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या होता है मित्रता और इमोशनली और आपको समझना और सपोर्टिव फ्रेंड कौन होते हैं. मित्र सिर्फ ये नहीं कि जो अच्छे मित्र हैं वही हैं आपके. कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो कई बार देर से समझ आती है उनकी मित्रता कि वाकई में ये हमारे सही वाले मित्र थे. तो एक पीरियड के बाद एक समय देना बहुत जरूरी होता है. और फिर बात आती है कि दोस्तों को पहचानना कि जेन्युइन फ्रेंड कौन सा है मेरा और सिर्फ एक दोस्त कौन सा है. तो प्रज्ञा मैम, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ कैन स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज अ जेन्युइन फ्रेंड एंड ओनली अ फ्रेंड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स?
2: बेशक मैम. देखिए मैम, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल या कॉलेज लाइफ में हमारे पास फ्रेंड्स बहुत होते हैं. हम ग्रुप में रहते हैं, साथ लंच करते हैं, साथ घूमते हैं. मैम कैन वी हैव दिस स्लाइड ओनली? तो साथ लंच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, साथ में बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं या जोक शेयर कर रहे हैं और नेचुरली हमें लगता है कि यह सब हमारे क्लोज फ्रेंड है. लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या हर फ्रेंड जेन्युइनली सपोर्टिव फ्रेंड होता है? तो ये जरूरी नहीं है. कभी कभी हमें फ्रेंडशिप को समझने के लिए यह देखना पड़ता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब ही नहीं बल्कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो तब सामने वाला कैसा बिहेव करता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मैम ने अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया. मैम ने बताया कि आपको अगर अच्छे मार्क्स मिले हैं तो आपका फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है. फिर साथ ही साथ ये भी जरूरी है बच्चों समझना कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए और उसके मार्क्स ज्यादा आए, तो क्या वो बच्चा आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर वो आपका मजाक बना रहा है? ये भी जरूरी है. तो एक जेन्युइनली सपोर्टिव फ्रेंड हमारी सक्सेस में ही नहीं बल्कि हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी प्रेजेंट होता है. आप अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं या कोई पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एक सपोर्टिव फ्रेंड एटलीस्ट इतना जरूर करेगा कि वो आपसे पूछे आकर के कि आर यू ओके. हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए और ऑनेस्टली फ्रेंड का हर प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है. समटाइम्स सपोर्ट सिंपली मींस लिसनिंग, आपकी बात सुनना, आपका यू नो बिना इमीडिएट आपको जज करे हुए आप अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो बस वो इतना कह दे आकर के कि ठीक है आज बहुत बुरा फील हो रहा है और वो सब कुछ छोड़ करके आपके बात को सुने, तो ये एक हेल्दी फ्रेंडशिप है. तो हेल्दी फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी और लिसनिंग विदाउट जजिंग, ये चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्राइवेसी. अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई पर्सनल बात बताई है तो उस इन्फॉर्मेशन को वो दूसरे ग्रुप में इंटरटेनमेंट के लिए तो शेयर नहीं कर रहा. इमेजिन यू टोल्ड समथिंग टू योर फ्रेंड, बहुत ही पर्सनल, और नेक्स्ट डे 5 लोग ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं. देन एट दैट टाइम यू शुड आस्क योर सेल्फ कि वॉज दैट पर्सनल पर्सन रियली रिस्पेक्टिंग योर ट्रस्ट. या एक सपोर्टिव फ्रेंड आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा, सिमिलरली एक हेल्दी फ्रेंडशिप आपकी दूसरी फ्रेंडशिप को भी रिस्पेक्ट करेगी.

0: आप पॉजिटिव सिचुएशन देखिए, अ गुड फ्रेंड जैसे अभी हमने बात करी, तो अगर हम एक ऑपोजिट सिचुएशन की बात करें तो एक गुड फ्रेंड ओनली फ्रेंड का बिहेवियर कैसा हो सकता है, जस्ट उसका उल्टा.
1: बिल्कुल
0: वो आपसे तभी इंटरेक्ट करेगा जब उसको आपसे कुछ चाहिए होगा, जैसे
1: जी.
0: नोट्स दे दो, असाइनमेंट करवा दो, होमवर्क कर लो. लेकिन जब आपको चाहिए तो सडनली वो बिजी हो जाएगा. सो जब या जब आपके डिफिकल्ट फेस होंगे तो वो इग्नोर करने लगता है. तो कभी कभी ऐसे फ्रेंड्स हमारी प्रॉब्लम का मजाक भी बनाते हैं. और एक और साइन हो सकता है जेलेसी. आपका अचीवमेंट पर जेन्युइनली हैप्पी होने की बजाय वो आपको अननेसेसरी पुट डाउन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने कुछ अवार्ड मिला, तो वो सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको मिलता है, इस तरह के वर्ड्स को यूज करना. सो
1: बिल्कुल सही
0: आपका
1: बात है.
0: जो एप्रिसिएशन है उसको वो इमीडिएटली आपके अचीवमेंट को बिल्कुल स्मॉल करते हैं. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कंक्लूड विद दैट कि कभी कभी ये भी अपने आप से पूछिए कि वॉट काइंड ऑफ, सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपके दोस्त कैसे हैं, एक क्वेश्चन खुद से ये भी पूछिए कि वॉट काइंड ऑफ फ्रेंड आई एम टू अदर्स. क्योंकि सहयोग का मतलब सिर्फ सपोर्ट
1: लेना
0: करना ही
1: नहीं,
0: नहीं है,
1: देना भी
0: सपोर्ट
1: है.
0: देना भी है.
1: बिल्कुल
0: ओवर टू
1: सही
0: यू
1: बात
0: नाउ.
1: है. बिल्कुल प्रज्ञा मैम, आपने बहुत सही बात की. हम सिर्फ दूसरे में अपना एक सपोर्ट ढूंढते हैं. हम कितने सपोर्टिव हैं सामने वाले के लिए, ये पहले अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है. हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने वाले से और खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते, या हमारी भी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं दोस्ती में भी. तो मैम, परवेश मैम, आपसे एक और प्रश्न उठता है यहाँ पे कि हाउ कैन स्टूडेंट सेट देयर बाउंड्रीज फॉर फ्रेंडशिप. एक होता ना कि हमें पता है कि हमारी क्या क्या सीमाएं हैं, एक दोस्त के साथ कैसे अपनी सीमाओं को बांध के रखना है, या कहाँ हम उड़ान भर सकते हैं, तो कैसे सेट की जाए ये बाउंड्रीज. हालांकि बाउंड्रीज होती नहीं है दोस्ती में, लेकिन फिर भी बच्चों को समझदारी से काम लेना होता है जस्ट टू फाइंड आउट अ जेन्युइन फ्रेंड.
2: यस मैम, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मुश्किल भी है सेटिंग बाउंड्रीज की. जब हम बात कर रहे हैं तो
1: जी
2: सीमाएं निर्धारित करने का अर्थ यह नहीं है कि हम असभ्य बनने जा रहे हैं या हम स्वार्थी हैं या हम मित्रता के प्रति उदासीन हैं. सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि सेटिंग बाउंड्री नेवर मीन्स, इट डजेंट मीन्स डैट वी आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग सेल्फिश और वी आर बीइंग अनफ्रेंडली. सो अ बाउंड्री इज सिंपली अ, वी कैन से इट्स अ रिस्पेक्टफुल लिमिट दैट प्रोटेक्ट समथिंग इंपॉर्टेंट टू अस. सो ये जो सीमाएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, सीमाएं निर्धारित करने की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सीमाएं हमारा समय, हमारे व्यक्तिगत स्थान को, भावनाओं को, निजता या व्यक्तिगत जो हमारी वस्तुएं हैं, बिलोंगिंग्स हैं, या फिर जो हमारी ऑनलाइन अकाउंट्स या मैसेजेस भी हैं, उनकी रक्षा कर सकती है. इसमें विद्यार्थी जो है स्वस्थ सीमाएं, हम हेल्दी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मेथड है जिसको हम कह रहे हैं क्लियर एंड काइंड स्टेप. तो आप क्लियरली बताइए कि से क्लियरली दैट व्हाट हैपन, आप पोलाइटली विनम्रता से बताइए, अगर आपका किसी ने कोई प्राइवेट मैसेज शेयर किया है, दैट यू शेयर्ड माई प्राइवेट मैसेज विद अदर्स. आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है. कई बार हम मित्रता में हम ये नहीं बता पाते हैं कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपकी इस तरह की बात से, तो दैट आई फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड अनकंफर्टेबल. क्लियरली स्टेट वट यू नीड. आप क्लियरली बताइए कि हमें क्या आवश्यकता है. कि अगर हम ये कहते हैं कि प्लीज डू नॉट शेयर माई प्राइवेट मैसेज विद एनीवन, तो हम ये बात कह सकते हैं अपने मित्र से, और दैट वी शुड नीड टू अ फ्रेंड नीड टू स्टे काम एंड फर्म ऑल्सो. आप उस पर चिल्लाइए मत, आर्ग्यू मत कीजिए, और फील गिल्टी फॉर एक्सप्रेसिंग अ रीजनेबल बाउंड्री. बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं, आप मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी डाले हैं, आप देखिएगा प्लीज. लाइक हम इस तरह के बाउंड्री फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं, नो थैंक यू, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, प्लीज आप मुझसे कोई भी चीज लेने से पहले मुझसे पूछिए, एंड आई नीड सम स्पेस ऑल्सो, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, आई नीड टू स्टडी नाउ एंड आई विल कॉल यू व्हेन आई विल फिनिश माय टास्क, एंड प्लीज मेरी अगर फोटोग्राफ आप पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप मुझसे पूछिए. तो इस तरह से हम बाउंड्री फ्रेजेस जो हैं हम यूज कर सकते हैं. मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, जैसे सपोज अ फ्रेंड आस्क यू आस्क फॉर यू योर फोन पासवर्ड. सो हमारा रिस्पांस कैसे होना चाहिए, पूछते हैं बच्चे आपस में. सो अभी एक मित्र जो है वो रिस्पांस कर सकता है कि मुझे आपकी मित्रता की बहुत कदर है, आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, बट आई डोंट शेयर माई पासवर्ड.

0: एनीवन, हम बहुत पोलाइट तरीके से उसे कहें। अगर कोई मित्र जो है आपकी प्राइवेट चैट पढ़ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माय प्राइवेट मैसेजेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सपोज आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं और एक फ्रेंड जो है, एक मित्र जो है आपको कॉल किए जा रहा है, सो आप ये कह सकते हैं कि आई नीड टू स्टडी नाउ एंड आई विल कॉल यू व्हेन आई विल फिनिश। सपोज आपसे कोई मित्र जो है कोई चीज आपसे बिना पूछे भी ले लेते हैं, अगर आपको बुरा लगता है कि मुझसे बिना पूछे उस वस्तु को उसने ले लिया है, देन यू कैन से कि प्लीज आस्क मी बिफोर टेकिंग माई थिंग्स। मैं हर बार जो है इस तरह से कंफर्टेबल, यानी कि बी क्लियर। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड जो है, मित्र जो है, आपस में प्रेशराइज करते हैं टू डू समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट टू डू, तो आप ये कहें कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू डूइंग दैट एंड आई एम गोइंग टू स्टे आउट ऑफ इट। एंड सपोज एक मित्र है, वो चाहता है कि आप ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान करें, बट कई बार जो ऐसा भी होता है कि आपके पास हर समस्या का समाधान नहीं होता है, देन यू कैन से कि मुझे आपकी केयर है, आई केयर अबाउट यू, बट आई कांट ऑलवेज बी अवेलेबल, आई ऑल्सो नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। और कई बार ऐसा होता है कि आपके आपस में फोटोग्राफ्स, आप कहीं घूमने गए हैं, किसी मित्र को ये अच्छा ना लगे कि मेरी जो पोस्ट है वो ऑनलाइन आए, तो इफ अ फ्रेंड वांट टू पोस्ट योर फोटोग्राफ ऑनलाइन, देन यू कैन से दैट प्लीज आस्क मी बिफोर पोस्टिंग माय फोटोग्राफ। एंड समटाइम्स यू नीड आल्सो सम पर्सनल स्पेस, सो आप जो है यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आई नीड टाइम अलोन एंड वी कैन टॉक लेटर। सो कई बार ऐसा भी होता है जब आप किसी कार्य के लिए मना करते हैं तो आपका मित्र नाराज भी हो जाता है एंड ही गेट अपसेट। सो यहाँ आप कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि आपको मेरी इस बात का बहुत आप डिसअपॉइंट हुए हैं, बट आई स्टिल नीड टू से नो। तो इस तरीके से हम अगर अपनी बातों को रखें और एक हेल्दी मैनर में, तो मैं आपको एक यहाँ पर जो मैं आपको की मैसेज जो मैं सब स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी वो ये देना चाहूंगी कि नो इज नॉट अ बैड वर्ड। नहीं, किसी को मना करना कोई ये बैड वर्ड नहीं है। और रिस्पेक्टफुल नो दैट कैन बी अ हेल्दी बाउंड्री।
1: बिल्कुल,
0: आप रिस्पेक्ट, यस। सो अ हेल्दी बाउंड्री डजंट बिल्ड अ वॉल बिटवीन द फ्रेंड्स, इट बिल्ड द रिस्पेक्ट विद इन द फ्रेंडशिप। मैं ये कहना चाहूंगी।
1: बहुत अच्छी बात कही है आपने आखिर में, और ये जो फ्रेजेस दिखाए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कई बार हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करते कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर वो आपका सच्चा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, समझदार है, तो वो कभी बुरा नहीं मानेगा। और यही घनिष्ठता होनी बहुत जरूरी है कि अच्छाइयों के साथ साथ कभी कभी हमें उसकी कमियों को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रज्ञा मैम, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, अब आपसे आखिरी प्रश्न जानना चाहती हूं कि व्हेन ए स्टूडेंट इज bullied, mocked और excluded, अगर उसे निकाल दिया जाए तो how to respond? ऐसे में वो कैसे respond करेगा, उसे कैसे react करना चाहिए, ये tips जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार दोस्त group बनाते हैं और किसी एक को कहते हैं ना कि उसको bully करना या फिर उसको बिल्कुल अलग कर देना group से, तो उस समय वो कैसे react करे, उसे कैसे मतलब पेश आना चाहिए अपने दोस्तों के साथ।
2: देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी किसी में कि अगर किसी स्टूडेंट को रिपीटेडली मॉक किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है या जानबूझकर एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो उसे सिंपली इग्नोर करो कह देना इनफ नहीं है। यूजुअली एक ये स्टेटमेंट बहुत ही कैजुअली निकल ही जाता है कि उसको इग्नोर करो। हमें स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्टेप्स देने चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, बिकॉज जब हम खुद सिचुएशन में होते हैं उस टाइम माइंड में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, जैसे एंगर, एम्बैरेसमेंट, फियर, सैडनेस, कंफ्यूजन। तो आप सोच सकते हैं कि मैं क्या बोलूँ, अगर मैंने टीचर को बता दिया तो सब मुझे वीक समझेंगे, या अगर मैंने रिस्पॉन्ड किया तो सिचुएशन वर्स हो जाएगी। इसलिए सिंपल सा है ये प्लान, याद रखो बच्चों आप लोग, स्टॉप फर्स्ट, स्टे काम एंड मूव टूवर्ड सेफ पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, मॉक करता है या एक्सक्लूड करता है, तो हर्ट होना नेचुरल है, बट इमीडिएटली एंगर में रिएक्ट करके फाइट करना सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना सकता है। सो फर्स्ट टेक yourself away from unsafe situation. अगर कुछ स्टूडेंट आपको कॉरिडोर में मॉक कर रहे हैं तो उनके सामने आर्ग्यूमेंट ना करें, अपने फ्रेंड्स की तरफ जाएं, टीचर के पास जाएं, काउंसलर, क्लासरूम, ऑफिस, किसी भी सेफ प्लेस पे जाएं। देन सेकेंड इज टेल द पर्सन टू स्टॉप, बट ओनली इफ इट फील्स सेफ. जैसे कि मैम ने बहुत सारे डू नॉट वर्ड्स के बारे में बताया, फ्रेजेस के बारे में बताया, तो उनका यूज करें, लेकिन तब जब वो आपको सही लगता है, सेफ लगता है. सही लगता है मतलब सेफ लगता है. आपको लॉन्ग आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सिचुएशन में डायरेक्टली कन्फ्रंट करना नेसेसरी नहीं होता है. अगर सामने वाला एग्रेसिव है, ग्रुप में है, या आपको अनसेफ फील हो रहा है, देन डोंट कन्फ्रंट.
1: बिल्कुल मैम,
2: आपकी सोच से सबसे पहले आती है
1: जी प्रज्ञा मैम.
2: व्हाट इज ऑब्टेन हेल्प फ्रॉम अ ट्रस्टेड एडल्ट. और स्टूडेंट प्लीज पॉइंट को सीरियसली लेना, टीचर को बताओ, काउंसलर को बताओ, या पेरेंट्स को बताना ये वीकनेस नहीं है. एक्चुअली हेल्प लेना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप है. एंड द लास्ट इज पी, प्रिजर्व एविडेंसेस. अगर बुलिंग ऑनलाइन हो रही है, मैसेजेस, कॉमेंट्स, पोस्ट, फेक अकाउंट, कुछ भी आपके पास में है, अगर एप्रोप्रिएट है तो आप स्क्रीनशॉट को सेव करिए या अदर एविडेंसेस को रखिए.
1: मुझे भी लगता है
2: अकाउंट्स को ब्लॉक करके रखिए. एंड लास्टली मैं बस ये कहना चाहती हूँ बच्चों, asking for help is not a sign of weakness, it is a sign that you are taking care of yourself. और अगर आप किसी और को ऐसी सिचुएशन में देखें तो सहयोग का रियल मीनिंग वही है. डोंट जस्ट वॉच, डोंट लाफ, डोंट रिकॉर्ड, स्टैंड बिसाइड देम, इंक्लूड देम एंड सीक हेल्प ओवर टू यू मैम.
1: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत अच्छे से आपने अंतिम स्टॉप का मीनिंग बता के और आज के सत्र को विराम दिया है. तो डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हमारे साथ जुड़ी रही डॉक्टर परवेश लता जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर रही, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद.
2: थैंक यू मैम,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच मैम,
1: थैंक यू डॉक्टर परवेश मैम, थैंक यू. तो प्यारे दर्शकों और सभी बच्चों, आपसे कहना चाहते हैं कि सहयोग में बस समझदारी से काम लेना है, दोस्ती को भी समझना है, लेकिन हमारे जो सहयोग के बाद अगले दिन कौन कौन से कार्यक्रम हैं उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत होती है योग शक्ति के साथ. तो 8 बजे हमारा योग शक्ति का ये सत्र रहेगा. उसके बाद सभी सत्रों के साथ आप लगातार जुड़े रहेंगे हमारे कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे तक. तो फिलहाल सहयोग में बस.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा x-ray है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं। अहम कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, जाते जाते आपको ये अपडेट तो दे दें कि भाई एशियन गेम्स जो कि 4 साल में एक बार होते हैं, एशिया की सभी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप सभी जानते हैं बहुत टफ होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। उसमें इंडिया का कंटिंजेंट जो गया, यानी इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन गए हैं, वो बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स लेके आने वाले हैं। इस बार इंडियन क्रिकेट टीम जो है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, उन्होंने आज इंडिया को पहला गोल्ड अपना मेडल दिलवाया है। जी हाँ, फाइनल में जीता है, श्रीलंका को 140 से ऊपर रन से हराया है, कमाल एकदम करके दिखाया है, हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो बहुत मजेदार ये परफॉर्मेंस रही है आज। और इसके साथ साथ शूटिंग में भी 4 या 5 सिल्वर मेडल्स मिल चुके हैं। और आप अगर देखेंगे तो और भी गेम्स हैं जिसमें मेडल तालिका की जो बढ़ने की गति है वो बहुत फास्ट होने वाली है, चाहे वो बॉक्सिंग की बात हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग की बात हो, चाहे हॉकी की बात हो, चाहे बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है, ऐसे कई मैच हैं। कबड्डी में भी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स पे भी वैसे तो दिखाया जा रहा है, या फिर जहां भी और आप देख सकें जरूर देखें। बच्चों को भी दिखाएं, स्पोर्ट्स में उनकी रुचि और बढ़ानी चाहिए ताकि वो भी हो सकता है किसी स्पोर्ट को देख के इंस्पायर हो जाएं और कुछ आगे अच्छा करके दिखाएं। आप कई बार हम लेट सोचते हैं इस बारे में, लेकिन स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है जिसमें आपका फोकस, मेहनत सब कुछ रंग लाती है। हाँ, कभी कभी थोड़ा समय जरूर लगता है, वो तो किसी करियर में लगता है, लेकिन आपकी बॉडी भी फिट रहती है, माइंड भी हेल्दी रहता है, तो बहुत अच्छा करियर भी हो सकता है, बहुत अच्छा एक हॉबी भी हो सकती है जो आपको मदद करे आपके दूसरे करियर में। लेकिन आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स को जब देखते हैं परफॉर्म करते हुए देश के लिए, तो एक देशभक्ति की भावना, गर्व की भावना भी जरूर उमड़ के आती है। तो जरूर देखिए एशियन गेम्स, जैसे मैंने आपको बताया 4 साल में एक बार होते हैं, जैसे ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होते हैं, वैसे ही एशियन गेम्स भी 4 साल में एक बार होते हैं। इस बार जापान में हो रहे हैं, तो सुबह सुबह 6:15 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे से ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है और फिर आपको शाम तक कुछ कुछ इवेंट्स अकॉर्डिंगली शेड्यूल रहते हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगा। कल भी बहुत अच्छा होने वाला है, शूटिंग भी है और साथ साथ वेट लिफ्टिंग के मैच भी हैं, आपके बैडमिंटन का सेमीफाइनल है मेंस टीम का, जो कि आज बहुत अच्छा करके दिखाया जापान के साथ, बैडमिंटन टीम इंडिया का परफॉर्मेंस था, मैच था, बहुत ज़्यादा कठिन मैच थे, लेकिन चाहे आपके चिराग शेट्टी हो, सात्विक रंकी रेड्डी हो, या फिर आयुष शेट्टी जो कि एक बहुत ही यंग एथलीट है, सभी ने बहुत कमाल करके दिखाया है। तो हम सब उनके लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं रेडियो मधुबन की ओर से। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: डस्टबिन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि अपने आसपास भी करना सीखें। साथ ही साथ आप कोई भी चीज बस ट्रेन इत्यादि में खाते हैं तो उस वहां पर डस्टबिन का तो इस्तेमाल करें, या फिर आप बस में हैं तो प्लीज उसे घर तक लेकर आए और सही जगह पर उसे कचड़े में डालें। ऐसे नहीं कि बस के खिड़की से ही बाहर फेंक दिया या बस के सीट के नीचे ही कचड़ा डाल दिया। गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं और आपके लिए कुछ बेहतरीन गीत, सवाल, साथ ही साथ अमेजिंग जानकारी और तो और कहानी कविता सब कुछ लेकर आई हूं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, सुनते रहना।

इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। चलिए दोस्तों, इस गीत के बाद मैं मोना वापस आ गई हूँ और अमेजिंग जानकारी, हाँ कल जोड़ के रखा था नदियों के साथ, तो आगे बढ़ते हैं। नदी हमेशा नीचे ही क्यों बहती है? ये सवाल मेरे और आपके कई लोगों के दिमाग में जरूर रहता है। नदियों का पानी हमेशा ढलान और समुद्र की ओर बहता है। ऐसा इसलिए, यह है कारण ग्रेविटी का, जो पानी को ऊंचे स्थान से नीचे की ओर खींचता है, जिससे नदी का प्रवाह बन जाता है। नदी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ही क्यों चलती? जमीन पर हर जगह एक जैसा सपाट रास्ता उसे मिलता नहीं। कहीं पहाड़ मिल जाते, कहीं घाटियां, तो कहीं ढेर ढलान भी। पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता और जमीन की बनावट के अनुसार अपना रास्ता बनाते चलता। इसी वजह से नदी सीधी रेखा में नहीं चलती, वह मुड़ती है, घूमती है, कभी चौड़ी होती, कभी संकरी भी होती है। और तो और, ऊपर से नीचे गिरते नदी का बहाव तेज होता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो फोर्स के साथ नीचे बहता। तेज बहता हुआ पानी रास्ते में आने वाली मिट्टी, चट्टानों की सतह को काटकर अपने साथ बहा ले जाता है। इसी प्रक्रिया को अपरदन या रिवर एरोशन कहा जाता है। इससे ही गहरी और वी आकार की घाटियां भी बनती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी बहुत है। चलिए दोस्तों, आज का सवाल आप दोस्तों के लिए, इनमें से किस राज्य का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? इनमें से किस राजा का साम्राज्य वर्तमान में, जो बिहार राज्य है, वहां तक फैला हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी सम्राट अशोक, सी टीपू सुल्तान। सिर्फ सही जवाब एक है, झटपट देना आप 9414151415 पर, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अगली आवाज आपके लिए है खास हरीश मोयल जी की मीठी।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं?

वेल दोस्तों, पुनः आज का सवाल दोहरा देते हैं। इनमें से किस राजा का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी सम्राट अशोक, सी टीपू सुल्तान। झटपट जवाब दे सकते हैं 9414151415 पर दे सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बहाव बनकर मैं निकलती हूँ, पर्वतों की छाती चीरकर, राह अपनी खुद बनाती हूँ, चट्टानों से पांव लड़ाकर। यह है प्यारी सी कविता आज की इस उड़ान कार्यक्रम में, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। कल कल करती आगे बढ़ती, प्यासों की हर प्यास बुझाती, बंजर धरती को सींच सींच कर नया जीवन मैं उपजाती। ना कोई मेरा अपना पराया, सबको मैं देती हूँ पानी, सागर से मिलने की धुन में बहती जाती हूँ मनमानी, बहती जाती हूँ मनमानी। कहते हैं बहुत सुंदर है ये नदी, कहते हैं बहुत सुंदर है नदी, कल कल करती झरने जैसी बहती ये खूबसूरत नहती। हिमालय की गोद से निकलती ये नदी, अपने साहस से पहाड़ों को तोड़ती ये नदी, सरल भाव से बहती ये नदी, लेकर चलती वो सबको साथ ये नदी। चाहे कंकड़ हो या झाड़ हो, बंजर को भी उपजाऊ बनाती ये नदी, प्यासे की प्यास बुझाती, कल कल करते वो बहती नदी। कहीं पर गहरी कहीं पर उथली, सदा अविरल रहती नदी, सदा अविरल रहती नदी। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन गीत आप तक पहुंचा रहे थे मैली चादर ओढ़ के।

0: बिल दोस्तों, इस गीत के साथ साथ पुनः एक बार और सवाल दोहरा देती हूँ। इनमें से किस राजा के का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, सी टीपू सुल्तान। हमारे श्रोता कॉल जरूर कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है, मुझे कारण तो नहीं पता। नमस्कार।
1: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज जी, बताइए बताइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू। हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बस एकदम बच्चे हैं। और आज का जवाब है ऑप्शन बी, अशोक सम्राट। ओम शांति।
0: अशोक सम्राट, ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। हमारे जो फिरोज जी हैं पालनपुर से, उन्होंने तो आज के सवाल का जवाब दिया। शायद एक और साथी भी कॉल कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार,

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन पे बहुत बहुत स्वागत है।
1: कीजिए, आवाज आ रहा है अभी।
0: ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए। बताइए आज कौन से सवाल, इस सवाल का क्या
1: जा रहा है?
0: हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए।
1: वो ओम शांति, गुड इवनिंग सभी को,
0: आपको भी।
1: और मैंने मैसेज भी भेज दिया है।
0: ओके,
1: आज का सवाल का जवाब ऑप्शन बी है।
0: ऑप्शन बी
1: मैसेज भेज दिया।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: थैंक यू।

प्रियं भारतम सदा सर्वदा दर्शनीयम। सिर्फ इसी विषय पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारे भारत देश में ब्रिक का एक सम्मेलन हुआ, जहां पर देश विदेश से बड़े बड़े नेता या फिर उस देश के रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में आए, इससे भारत देश का गौरव बढ़ा। साथ ही साथ हमारी सेना, हमारे जो पूरे हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है, उससे भी हमारे देश का गौरव बढ़ता है। और साथ ही भारत देश के जो प्लेयर्स हैं, अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई चीज़ें वो मेडल्स जीतते हुए आ रहे हैं, इससे भी भारत देश का गौरव बढ़ रहा है। तो हर एक नागरिक देश का गौरव बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कार्य कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, नुकसान मत कीजिए, कोई किसी के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाइए यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन हर नागरिक अपने आप में हर छोटे छोटे कार्य को भी अंजाम देकर, अच्छे कामों को कर कर भी वो इस देश को सुरक्षित समृद्ध दोनों बना सकता है। अरे, मज़ेदार चुटकुला मेरे सामने आया है। एक लड़के ने हलवाई सिख की दुकान पर जाकर पूछा, कहा, भाई हलवाई साहब, आधा किलो जलेबी लेकर खाई और बिना पैसे दिए जाना लगा। दुकानदार ने कहा, अरे जलेबी के पैसे तो देकर जाओ, लड़के ने हलवाई की दुकान से तो खा ली थी। लड़का ने कहा, पैसा तो है नहीं। इस पर दुकानदार ने लड़के की खूब पिटाई की। पीटने के बाद लड़का उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, इसी भाव में 1 किलो और तोल दो। मतलब उसे चोट ही नहीं लगी, दोस्तों से चोट ही नहीं लगी। खैर, मैं तैयार हूं कहानी के लिए, सच्चा दान। पर उससे पहले ये पूरा गीत सुन लेते हैं।

0: नमस्कार, हमारे बीच एक और श्रोता है, बात कर लेते हैं। हेलो,
1: ओम शांति देवी।
0: हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं? अलीगढ़ से?
1: बढ़िया है जी। जी अलीगढ़ से क्या ज्यादा बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है, काफी दिनों बाद आपसे पुनः बात हो पा रही है, खुशी है आप हमारे जी, साथ जुड़ गए। बताइए आज के सवाल का क्या जवाब ढूंढ के लाए हैं?
1: बी ऑप्शन
0: मतलब सम्राट अशोक। क्यों आपको नहीं लगता है कि सम्राट अब ये महाराणा प्रताप पहुंचे थे?
1: वही लगता है वहां तक जो
0: सम्राट अशोक
1: के वहां से सारनाथ के।
0: ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सवाल का जवाब देने के लिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए।
2: सत्ता, पुण्य अर्जन और दानवीर के रूप में उनका नाम चारों तरफ फैला देना।
3: देखो मंत्री, राजा रुद्रसेन दीन दुखियारों को दान नहीं करते, ये बदनामी सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। देखो, अगर मेरा नाम नहीं होगा तो फिर किस वजह से ये दान धर्म करूँ मैं? जाओ मंत्री जाओ, अब ब्राह्मणों को अर्थ वस्त्र वितरण करने के लिए जल्दी आयोजन करो।
2: उसी राज्य में श्री हरि नाम का एक ब्राह्मण रहता था। योग साधना में वो ऐसी सिद्धि प्राप्त किए थे कि वो किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते थे। जिस दिन राजा रुद्रसेन ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, उसी दिन वहाँ हाजिर हो गए श्री हरि।
3: क्या हुआ, कोई बाकी रह गया क्या? कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा।
4: जय हो महाराज की जय हो।
3: तो फिर सब लोग खुश तो हो ना।
5: आप जैसा दानवीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है महाराज।
2: आपके दान धर्म का नाम हर देश में फैल चुका है महाराज, जिसकी सब जय जयकार करते हैं।
3: लेकिन ये क्या, आपके हाथ खाली क्यों है ब्राह्मण? आपको दान सामग्री नहीं मिली क्या?
6: आप चिंतित मत होइए महाराज, मैं दान ग्रहण करने नहीं आया हूँ। आपके दान धर्म के बारे में जो सुना है वो वास्तव में सच है कि नहीं, वही देखने आया था।
3: ठीक है, तो फिर क्या देखा आपने?
6: देखा कि दानवीर के रूप में आपने अच्छा नाम कमाया है महाराज, लेकिन जो दान सिर्फ नाम कमाने के लिए किया जाए उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता।
2: ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ब्राह्मण?
3: एक साधारण ब्राह्मण जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है और चला है मुझे दान का महत्व समझाने, ऐसे वक्त आप मेरी सभा से निकल जाइए।
2: राजा रुद्रसेन से अपमानित होने के बाद ब्राह्मण श्री हरि कभी ये गांव तो कभी वो गांव घूमते घूमते एक दिन माधवपुर गांव में आकर हाजिर हो गए।
5: चलो चलो, गांव में जो योगी बाबा आए हैं उनकी सेवा में फल और मिठाइयां देकर आते हैं।
6: तुम्हारे प्यार और अतिथि भाव ने मुझे मुग्ध कर दिया है।
5: आप यहाँ आए हैं इसलिए हम सब धन्य हो गए हैं बाबा।
7: आप अपने आशीर्वाद से हमें वंचित मत कीजिए बाबा।
6: नहीं नहीं, तुम लोगों के लिए जितना मेरे लिए संभव है वो मैं जरूर करूँगा।
8: आखिर इस ताबीज से क्या होगा बाबा?
6: ये धारण करने से शरीर और मन में सुख शांति कायम रहेगी।
7: वाह वाह,
8: लेकिन हमारे रामनाथ का क्या होगा?
9: आप बस बैठे बैठे मिट्टी में लकीरें खींचते रहो।
10: क्यों, आखिर क्या बात है?
9: सुनिए, गांव में एक योगी ब्राह्मण आए हैं।
10: उससे मुझे क्या?
9: पहले पूरी बात तो सुनिए। बाबा हर किसी को तावीज दान कर रहे हैं और उस तावीज को पहनने से मन को शांति मिल रही है।
10: सच में?
9: सुनिए ना, आप उस योगी ब्राह्मण से मिलकर आइए ना, आपकी समस्या के बारे में बताइए ना उन्हें।
10: तो फिर मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ।
6: क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? बोलो, निसंकोच होकर बोलो।
10: बाबा, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरा दुख कैसे कम होगा, बस इतना ही।
6: ठीक है, तो फिर इस ताबीज को रख लो, जरूरत पड़ने पर ये ही तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम चाहो तो इसे महाराज के पास ले जा सकते हो।
10: महाराज के पास जाकर मैं भला क्या करूँगा? आखिर खामखा वो मुझसे मिलने क्यों आएंगे?
6: नहीं, वो जरूर मिलेंगे, वो काफी दान धर्म करते हैं। उनसे जाकर कहो कि ब्राह्मण का दान किया हुआ इस ताबीज के बदले तुम्हें जो चाहिए वही देने के लिए, उसके बाद ही देखना क्या होता है।
10: मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा, फिर तो महाराज के पास जाना ही होगा, पहले महाराज उसके बाद बाकी सारा काम।
3: ठीक है, मैंने सबकी शिकायतें सुन ली है, मैं मंत्री के साथ बात करके सबका समाधान करने की कोशिश करूंगा।
10: आज की बैठक यहीं खत्म कर दें क्या महाराज?
3: हाँ हाँ, अब मैं आराम करूंगा।
10: लेकिन अब मैं क्या करूंगा महाराज?
3: अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यों, अब तक तो तुमने कुछ भी नहीं बोला।
10: अभी अभी बोलता हूँ महाराज, दरअसल मेरे पास ब्राह्मण का दिया हुआ एक कीमती ताबीज है, उसके बदले आप अगर मुझे कुछ दे दें तो अभी के लिए मेरा काम हो जाएगा।

0: कल सुबह ही आयोजन कर देता हूँ।
1: आज मैं बैठक की शुरुआत ही करूँगा दान करके।
0: महाराज, सारा इंतजाम कर दिया है मैंने, यहाँ खजांची भी तैयार है।
1: ठीक है, तो फिर इस व्यक्ति को उसके ताबीज के वजन के हिसाब से सोना दे दिया जाए।
0: ताबीज का वजन कुछ ज्यादा मालूम पड़ता है, और थोड़ा सा सोना देने से बराबर हो जाएगा। ये क्या लगता है, ये काफी नहीं है।
1: इस बार भी तो ताबीज की तरफ कांटा भारी है।
2: सोना तो वजन में कम पड़ रहा है महाराज, अभी भी ताबीज का वजन ही भारी है।
3: ये तो अजीब बात है, आखिर हो क्या रहा है?
0: ये क्या, मेरी मांग पूरी करने के लिए तो आपकी हालत खराब हो रही है महाराज।
3: नहीं, अरे मंत्री, अब क्या किया जाए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कोषागार खाली हो जाएगा।
0: एक उपाय तो जरूर निकाला जा सकता है, फिलहाल ये नाप तोल का काम बंद करना पड़ेगा। क्या हुआ मंत्री जी, क्या सोना कम पड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी दोपहर के भोजन का समय है, भोजन के बाद हम फिर से वजन करेंगे।
4: ठीक है फिर।
0: महाराज की मेहमान नवाजी का इंतजाम कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सोना वजन करने का सिलसिला कब शुरू होगा पता नहीं। ये देखिए, इसीलिए तो मैं ये तराजू लेकर आया हूँ।
4: लेकिन खाने के साथ इस तराजू का क्या संबंध है?
0: है संबंध है, तभी तो लेकर आया हूँ। महाराज ने तय किया है कि अन्न दान करेंगे तो वो भी उस तावीज के वजन के बराबर ही करेंगे।
4: ये क्या बात हुई?
0: हाँ, तुम कितने मात्रा में चावल खाओगे, कितना खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम ये सोच लो। ये देखो, हो गया। एक पाव चावल तराजू के एक तरफ रखने से ये ताबीज के बराबर का वजन हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो फिर इतना ही चावल बनाने को कह देता हूँ फिर। देख लिया महाराज, इस व्यक्ति ने एक पाव चावल खाकर कैसे संतुष्टि से डकार ले रहा है।
1: देख रहा हूँ मैं, तो फिर समस्या आखिर क्या है?
0: महाराज, मुझे लगता है कि उस ताबीज का वजन इस व्यक्ति की आकांक्षाओं या इसकी इच्छाओं पर निर्भर है, इसीलिए चावल के वजन के बराबर हो गया है। लेकिन उस मात्रा के सोने से इसकी आकांक्षा पूरी नहीं होगी, कितना भी सोना दे दें वो ताबीज के वजन के बराबर बिल्कुल नहीं होगी।
1: ये तो चिंता का विषय है, अब मैं क्या करूँ बताओ? इस व्यक्ति को तो मैं वादा कर चुका हूँ कि इसकी इच्छा अनुसार मैं दान करूँगा, वादे के मुताबिक अगर दान नहीं कर पाया तो मेरा नाम बहुत ही बदनाम हो जाएगा।
2: प्रणाम महाराज।
1: ये क्या, आप?
2: हाँ, रामनाथ को मैंने ही ताबीज दान की है, तो अब आप समझ गए ना कि दान करना कोई आसान काम नहीं है।
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, तो फिर अब क्या करने से मुक्ति मिलेगी मुझे, ये भी बता दीजिए आप।
2: रामनाथ, तुम्हें जो ताबीज दी थी मैंने वो कितनी काम की है वो अब तक तुम जरूर समझ गए होगे।
4: आप क्या बोल रहे हैं बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
2: तुमने खुद ही देख लिया ना कि तुम्हारे इस ताबीज के बराबर के सोने की मात्रा कितनी है, और इतने मात्रा का सोना लेकर अगर लौटोगे और ये बात सबको पता चल गई तो चोर डकैत चोरी कर लेंगे, उसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है।
4: ये आपने बिल्कुल सही कहा, तो अब मैं क्या करूं?
2: मेरी बात सुनो, सोने के बदले अब से तुम हर दिन राजमहल में एक पाव चावल और साथ में तरह तरह के व्यंजन खाना शुरू कर दो। सोना तो एक दिन खर्च हो जाएगा, पर ये इंतजाम जिंदगी भर चलता रहेगा।
0: अच्छी बात है, तो फिर कल से मैं अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर आऊंगा।
1: सच में आपके आगे स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ब्राह्मण दान के आगे मेरा दान तो कुछ भी नहीं है। आज से मैं और नाम कमाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रजा के मंगल के लिए दान करूंगा।

0: अरे देखो नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
1: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
2: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
0: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वेल दोस्तों, वक्त इशारा कर रहा है आप सभी से विदाई लेने का, लेकिन जाने से पहले आज के सवाल का जवाब भी तो देते जाएं। सवाल था, इनमें से किस राज्य का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? उस दौरान उसे मगध का साम्राज्य कहते थे, और ये था सम्राट अशोक। हमने ऑप्शन दिया था महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक और टीपू सुल्तान, और सही जवाब है सम्राट अशोक। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रात के 12 बज चुके थे। पूरा महल सो रहा था, मगर खजाने वाले कमरे के बाहर मशाले जल रही थी। उस कमरे में था हिंदुस्तान का सबसे अनमोल हीरा, नूरे खास। कहते हैं ये हीरा जिसके पास होता है उसकी किस्मत बदल जाती है।
1: बचाओ, कोई है खजाने में कोई घुस आया है।
0: पहरेदार दौड़े, दरवाजा तोड़ा गया और जो मंजर सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। दो पहरेदार बेहोश पड़े थे, ताला टूटा नहीं था, खिड़कियां बंद थी और तिजोरी खाली थी। नूरे खास गायब हो चुका था।
2: ये नामुमकिन है। कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था, चाबी सिर्फ खजांची के पास थी, फिर हीरा गया कहां?
0: सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई। सम्राट अकबर का दरबार आज गुस्से से तप रहा था।
3: मेरे खजाने से हीरा चोरी हो जाए और मेरे पहरेदारों को खबर तक ना हो, ये मेरी हुकूमत का अपमान है। तोड़ुरमल, बताओ, चाबी हर वक्त तुम्हारे पास रहती है, फिर हीरा कैसे गायब हुआ?
4: जहांपना, मैं रात भर अपने कक्ष में ही था, चाबी मेरे तकिए के नीचे थी, मुझे कुछ नहीं पता। कसम से।
3: कसमें बाद में खाना। अगर 3 दिन के अंदर हीरा नहीं मिला तो इस महल के हर पहरेदार को, हर नौकर को मौत की सजा दी जाएगी, समझे?
5: अब तो जान पर बनाई, बीरबल भाई कुछ करो।
6: जहांपना, घबराइए मत, जिसने भी ये चोरी की है वो इंसान है, भूत नहीं, और इंसान की चाल में हमेशा ये गलती छूट जाती है। मुझे सिर्फ 3 दिन नहीं, 3 घंटे दीजिए, खजाने वाले कमरे में जाने की इजाजत दीजिए।
3: ठीक है बीरबल, मगर याद रखना, अगर तुम भी नाकाम हुए तो इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा।
0: बीरबल सीधे खजाने वाले कमरे में पहुंचे, कमरे को गौर से देखा, दीवारें, खिड़कियां, फर्श, हर कोने की जांच की।
6: दरवाजा तोड़ा नहीं गया, ताला भी सही सलामत है, तो चोर अंदर आया कैसे? ये देखो।
0: बीरबल को फर्श पर एक हल्की सी नमी और मिट्टी के निशान दिखे जो खिड़की की तरफ जा रहे थे।
6: तो चोर बड़ा नहीं, छोटे कद का या दुबला पतला था। और ये मिट्टी, ये सिर्फ महल के पिछले बाग में मिलती है, जहां रात को कोई आता जाता नहीं, सिवाय
1: पहरेदारों की बदली के वक्त। हुजूर, रात के 2 बजे नया पहरेदार फरहान वहीं से गुजरता है।
6: फरहान? दिलचस्प, उसे दरबार में हाजिर करो।
0: फरहान को पेश किया गया, उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था।
7: हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपनी ड्यूटी पर था।
6: अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या बात है? बताओ, कल रात तुम बाग के पास क्यों गए थे?
7: हुजूर, मेरी बहन बीमार है, उसकी दवा के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं बाग में एक आदमी से मिलने गया था जिसने मुझे उधार देने का वादा किया था, मगर मैंने हीरा नहीं चुराया, ये सच है।
0: दरबार में सन्नाटा छा गया, सबको लगा राज खुल गया, मगर बीरबल की आंखों में अब भी एक सवाल था।
6: वो आदमी कौन था जिससे तुम मिले?
7: मुझे नहीं पता हुजूर, उसका चेहरा नकाब से ढका था।
8: झूठ बोल रहा है ये। जहांपना, इसे तुरंत कैद कर दिया जाए।
6: ठहरिए सेनापति जी, सिर्फ बाग में जाना जुर्म का सबूत नहीं। अगर फरहान ने हीरा चुराया होता तो वो आज दरबार में इतनी आसानी से हाजिर होता, भागने की कोशिश करता। यहाँ कुछ और छुपा है।
0: बीरबल ने अपनी जांच का रुख महल के अंदर की तरफ मोड़ा। उन्हें पता चला कि उस रात रानी की दासी चांदनी भी देर रात तक जागी हुई थी।
6: चांदनी, तुम कल रात इतनी देर तक कहाँ थी?
9: मैं रानी साहिबा की सेवा में थी हुजूर।
6: रानी साहिबा तो कल रात जल्दी सो गई थी, ये मुझे पता है, सच बताओ वरना।
9: रुकिए हुजूर, मैं सच बताती हूँ, मैंने तोड़रमल जी को रात को चुपके से खजाने की तरफ जाते देखा था, अकेले बिना किसी पहरेदार के।
0: पूरा दरबार सन्न रह गया, खुद खजाची तोड़रमल?
3: तोड़रमल, ये सच है?
4: जहांपना, मैं सिर्फ चाबी बदलने गया था, हीरा चुराने नहीं।
6: चाबी बदलने, रात के 2 बजे? तोड़रमल जी, या तो पूरा सच बताइए या फिर मुझे अपने तरीके से सच निकालना पड़ेगा।
0: बीरबल अपने कक्ष में बैठे दोनों गवाहियां बार बार दोहरा रहे थे, फरहान की और चंदनी की। कुछ था जो मेल नहीं खा रहा था।
6: फरहान कहता है रात के 2 बजे वो बाग में एक नकाबपोश आदमी से मिला जिसने कर्ज का वादा किया, और चांदनी कहती है ठीक उसी वक्त के आसपास तोड़रमल अकेले खजाने की तरफ जा रहे थे। 2 अलग-अलग घटनाएं एक ही रात एक ही वक्त, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता।
0: बीरबल ने तोड़रमल को दोबारा बुलवाया मगर इस बार सवाल का ढंग बदल दिया।
6: तोड़रमल जी, आपने कहा आप चाबी बदलने गए थे, मगर चाबी अच्छी भली थी, फिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी ने आपसे कुछ कहा था क्या?
4: हाँ हुजूर, शाम को एक सिपाही आया था, चेहरा दिख नहीं रहा था अंधेरे में। बोला खजाने के दरवाजे का ताला ढीला लग रहा है, फौरन जाकर देख लीजिए वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं डर गया इसलिए रात को अकेले ही जाकर चाबी और ताला बदलने चला गया ताकि किसी को पता ना चले कि मैं कितना लापरवाह हूं।
6: एक सिपाही जिसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिखा, और ठीक उसी रात फरहान को भी एक नकाबपोश आदमी मिला बाग में। तोड़रमल जी, वो आदमी कितना लंबा था, उसकी आवाज कैसी थी?
4: लंबा चौड़ा था हुजूर, आवाज में एक रोब था जैसे किसी हुकूमत करने वाले की हो।
6: रोब भरी आवाज, लंबा चौड़ा कद, दरबार में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जो इतनी आसानी से हुकूमत भरे लहजे में बात करता है।
0: बीरबल सीधे अकबर के पास गए, महल के बाहर बाग के एकांत कोने में जहाँ कोई सुन ना सके।
6: जहाँ पना, मुझे यकीन हो गया है कि ये पूरी चोरी एक ही आदमी की साजिश है, और उसने बड़ी चालाकी से 2 अलग-अलग लोगों को अपने मोहरे बनाया।
10: समझाओ बीरबल।
6: जहाँ पना, गौर से सुनिए। नकाबपोश आदमी ने पहले फरहान को ये कहकर बहलाया कि उसे कर्ज का पैसा एक तय जगह पर मिलेगा, बाग के उस पार। मगर जब फरहान वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ सुनसान जंगल था, कोई नहीं, यानी वो कोई असली मुलाकात थी ही नहीं, सिर्फ एक बहाना था ताकि फरहान अपनी असली ड्यूटी वाली जगह से हटकर दूर खाली जंगल में भटकता रहे और खजाने के पास का रास्ता खुला छूट जाए। और ठीक उसी शाम उसी नकाबपोश ने तोड़रमल जी के पास जाकर झूठी खबर दी कि खजाने के कमरे का ताला और चाबी ढीली पड़ गई है। उसे पता था कि तोड़रमल जैसे जिम्मेदार खजानची ये सुनकर घबरा जाएंगे और जल्दबाजी में अपने पास पहले से रखा एक स्पेयर ताला चाबी लेकर अकेले बिना पहरे के रात को खुद ताला बदलने चले जाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात जहां पना, उस नकाबपोश ने पहले से ही उस असली ताले की एक नकल चाबी अपने पास बना रखी थी। अब सोचिए जहां पना, ऐसी सटीक जानकारी कि तोड़रमल जी के पास स्पेयर चाबी रहती है, कि फरहान की ड्यूटी कहां लगती है, कि खजाने के ताले की बनावट कैसी है, ये सब सिर्फ महल के अंदर का हर छोटी बड़ी बात से वाकिफ कोई भरोसेमंद आदमी ही जान सकता है। और तोड़रमल जी ने खुद बताया कि उस नकाबपोश की आवाज में एक हुकूमत भरा रोब था। ऐसी आवाज इस दरबार में सिर्फ एक ही शख्स की है जहां पना, सेनापति मान सिंह।
10: मान सिंह? मगर उसी ने तो सबसे पहले फरहान पर उंगली उठाई थी।
6: बिल्कुल जहां पना, यही तो सबसे बड़ी चाल थी। अपराधी हमेशा सबसे तेज शोर मचाता है किसी और की तरफ ताकि उसकी ताले की झूठी खबर लेकर गया था। रात को जो नकाबपोश फरहान को झूठे बहाने से जंगल में भटका कर ले गया और जो बाद में खजाने में घुसा, तीनों जगह एक ही कद एक ही रोब भरी आवाज, आपकी आवाज सेनापति जी, और सिर्फ आप ही हैं जो इस महल की हर बारीकी जानते हैं।
11: तुम बहुत होशियार निकले बीरबल। हाँ, मैंने ही सब किया, बरसों से इस दरबार में दूसरे दर्जे का सेनापति बनकर रह गया।
12: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्कार, मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आंगनबाड़ी केंद्र मुंगथला में पहुंचे और यहां के जो मुंगथला के जो गतिविधि आज आपको पास रखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको सबको विदित है कुछ दिन पहले से ये चल रहा है। इस महीने को हम पोषण माह के नाम पे घोषित किए हैं और पोषण माह के तहत पोषण क्या क्या फायदा दिलाता है और खासकर बच्चे को जब पोषण मिलता है तो सुपोषित होते हैं तो हमारा बच्चे हुष्ट पुष्ट रहते स्वास्थ्यवान रहते हैं। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम आंगनबाड़ी में पहुंचे यहाँ के कार्यकर्ता महोदया को स्वागत करते हैं और बच्चों को कविता का माध्यम से क्या क्या पाठ कराते हैं वो चीज़ से रखेंगे, किस तरह सिखाते हैं खेल खेल में, भाषा का साथ साथ उनका एक्शन का माध्यम से आज आपका पास रखने जा रहे। तो सभी को, सभी बच्चों को और सभी ग्रामवासियों को स्वागत करते, खासकर हमारे मैडम जी को भी स्वागत करते इस कार्यक्रम में, किस तरह बच्चों को सिखाते। तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आपका संक्षिप्त परिचय।
1: मेरा नाम सविता सैनी है, मैं आंगनवाड़ी केंद्र मुंगथला फर्स्ट से हूँ और कार्यकर्ता के पद पर हूँ। आज मैं बच्चों को कविता सिखा रही हूँ, हमारी थीम चल रही है पानी
0: जी जी।
1: उसके बारे में मैं कविता करवा रही हूँ। एक बहुत बड़ा पेड़ था, सब करो, एक बहुत

0: ताली बजाएं सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बच्चों को इस तरह सिखाते हैं, एक डेमो देखा है और हमें भी खुशी हुई बच्चे इस तरह सीखते हैं। हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी इस समय सुन रहे हैं और हमारा बच्चे आगे जाकर इस तरह सीखते हैं और आगे जाकर सिखाएंगे, घर में भी हम उनका मम्मी पापा को सिखाते होंगे। आज मैम जो जो सिखाते हैं तो वो जाकर घर में भी बोलते होंगे कविता, तो बहुत अच्छा लगा मैडम। और यहाँ के नामांकन कितना है ये बच्चों का?
1: सर नामांकन तो अभी 26 का है।

0: नमस्कार, अल्प विराम का बाद हम मिल रहे हैं। अच्छा, जानकारियाँ हो रहा है बच्चों का साथ जो हुई प्रोग्राम, अभी अपना अपना बात को तोतली तोतली आवाज़ में, मीठा आवाज़ में जो सीखें आंगनबाड़ी में, वो चीज़ आपके पास रखें। तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ इस कार्यक्रम में खास चार चांद लगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उपस्थित है। और किस उद्देश्य से लेकर आज बच्चों को और खासकर धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और किशोरियों को बुलाए हैं, और इस कार्यक्रम में खासकर बहुत सारा व्यंजन है जो पौष्टिकता है, तो उसको बनाकर आज आए हैं। किन पोषण मेला चल रहा है जिसका चलते वैरायटी जो व्यंजन है जो बच्चे धात्री महिला और गर्भवती महिला को देते हैं, या इसका ऊपर में थोड़ा बताने के लिए हमारा साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित है, उनको पहले स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में अच्छा लगा क्योंकि सबका सहयोग से और यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि मुंगथला ग्राम पंचायत में 5 चलता है लेकिन 4 आज उपस्थित है और आने वाले हैं। तो मैडम आपका स्वागत, आपका पूरा नाम और आंगनबाड़ी का नाम।
1: मेरा नाम शांता परियार है और केंद्र का नाम मुंगथला सेकंड।
2: मेरा नाम शीला नायक है, मैं मीरगढ़ से हूँ।
3: मीरगढ़, ओके।
4: मैं सविता सैनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुंगथला फर्स्ट से हूँ। मेरा नाम कुसुम जामर।
0: तो बहुत अच्छा अपना अपना परिचय दिए, सभी को पुनः स्वागत करते हैं। और खासकर जो आंगनबाड़ी में ये कार्यक्रम चलता है उसका कार्यकर्ता आज कुछ बताएंगे पोषण का ऊपर में, खासकर जो व्यंजन आज बनाकर लाए हैं। पहले तो क्या क्या व्यंजन का नाम तो पहले ले लेते हैं। मैडम आपका स्वागत पुनः, और क्या क्या व्यंजन आज रखे?
4: ये पूरी है और गुड़ चना है, नमकीन चावल है, हलवा है, पंजीरी है और मीठे भुजिए हैं और दलिया है मीठा, और वो मट्टी टाइप बने हुए हैं आटे की।
0: सभी लोग मिलकर?
4: हाँ, ये सभी की सहायता से बनाया गया है। और ये मेनू हम हमारे बच्चों द्वारा यहाँ पोषण दिया जाता है, इसी सभी आंगनबाड़ियों पे दिया जाता है
0: जी जी।
4: और ये डेली पोषण है, जो गर्म पोषण है ये डेली वाला है हमारे, जैसे पूरी है, नमकीन चावल है, ये जो दलिया है, ये मीठा जो भी व्यंजन है ये हमारा डेली वाला है। और ये नाश्ते में हम चना गुड़ देते हैं, हमारे साप्ताहिक मेनू बने हुए हैं। पहले दिन हम जैसे देते हैं नाश्ते में बच्चे को, सुबह में चावल और गुड़ और चना, ये हम नाश्ते में देते हैं। उसके बाद में लंच टाइम में हम बच्चों को खिचड़ी देते हैं, नमकीन चावल और दाल की बनी हुई, वो ये हमारे डेली पोषण है जो गर्म बच्चों को इधर दिया जाता है। ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन मीठा दलिया और एक दिन नमकीन चावल बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा और ये नाश्ते में भी ऐसे जैसे चावल ममरा और गुड़ है, फिर चना गुड़ है दूसरे दिन, तीसरे दिन ये पंजीरी या हलवा जो भी है, जैसे सोमवार को चावल ममरा और गुड़ और चना गुड़, मंगलवार को, बुधवार को जैसे

0: जीरिया हलवा ये हम बच्चों को नाश्ते में देते हैं। और जैसे सोमवार है तो उसमें हम नमकीन खिचड़ी देते हैं बच्चों को, और मंगलवार में दलिया देते हैं, ऐसे ही बुधवार में चावल खिचड़ी और दलिया, ऐसे मेनू चलता रहता है हमारे सप्ताहिक। और फिर जो बच्चे सेंटर पे नहीं आते, 0 से 3 दात्री माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उसके अलावा 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं जो हमारे सेंटर पे सप्ताह में एक बार आते हैं, उनको हम घर के लिए ये सूखा पोसार देते हैं। जैसे गर्भवती महिला है, दात्री महिला है, उसको 930 ग्राम, और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 750 ग्राम का ये पैकेट घर के लिए दिया जाता है साप्ताहिक।
1: इसे हर महीना कितना पकड़ आपके पास आते
0: हैं? ये हम ग्रुप द्वारा लेते हैं और ये लाभार्थियों के हिसाब से हम ये पैकेट लेते हैं।
1: जी जी बहुत अच्छा।
0: समथिंग 50-60 के हिसाब से तो हम ले लेते हैं, एवरेज मिनिमम हमारे एवरेज के हिसाब से। और ये मेनू हमारे डेली चलते हैं, जो भी है जो केंद्र के बच्चों को खाने से पहले, जैसे बच्चों को हाथ धुलवाना है, फिर उसके बाद में ये लंच हम देते हैं, और लंच के बाद में दोपहर का खाना है। जैसे आज शनिवार है तो आज हम दलिया देंगे बच्चों को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पोषण को लेकर आज सभी तो मैम ने अपना बात को रखे और किस तरह बच्चों को ध्यान देते हैं और उनका पौष्टिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं, और बच्चों को जो चीज़ घर में नहीं मिल पाता है पौष्टिकता यहाँ पर आते हैं तो बच्चे,
0: और जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, गंभीर कुपोषित, उनको हम डबल पोषाक देते हैं, ये पैकेट डबल देते हैं, और मेडिकल की सभी हम उनको सेवाएँ देते रहते हैं। हमारे महीने में 1st गुरुवार को हमारे यहाँ टीकाकरण होता है महिलाओं का, बच्चों का।

0: नमस्कार, अल्प विराम का बाद हम मिल रहे हैं अच्छा जानकारी के साथ, क्योंकि पोषण माह चल रहा है और हम अपना बात को किस तरह हमारा बच्चे पोषित रहेंगे, कोई कुपोषित नहीं रहेंगे, उसी संदर्भ में आज जब आंगनबाड़ी केंद्र मंगथला में पहुंचे, सभी बच्चों का आवाज़ का साथ साथ पोषण संबंधित कुछ बात रखें, जो आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी लोग का अंगुली सहयोग मिल रहा है, और जिसका चलते हमारा गांव और अंचल में कोई कुपोषित नहीं रहेंगे, माता हो चाहे धात्री माता हो चाहे गर्भवती महिला हो चाहे किशोरियाँ, और हमारा बच्चे सभी होशियार हैं, क्योंकि आगे जाकर बड़े होकर कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, तो उन सभी का सहयोग से आज इस कार्यक्रम हो रहा है। खासकर पोषण हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है और पोषण को लेकर हमें विश्वास है आगे कोई कुपोषित नहीं रहेंगे, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हम देते हैं, किस तरह अपना आंगनबाड़ी में संचालन करते हैं, क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं, और खासकर पोषण को लेकर धात्री महिला गर्भवती महिला और किशोरों को क्या सलाह देते हैं सुनेंगे। तो आपको स्वागत है दीदी, आप अपना बारे में और जैसे किस तरह आप आंगनबाड़ी को चलाते हैं वो बात कर रखी।
1: हम सुबह जैसे आंगनबाड़ी पे 7:30 बजे आ जाते हैं, 8 बजे आते, फिर हमारे बच्चे 8:00 बजे आ जाते, 8 बजे के बाद में बच्चों को हम सबको सफाई के बारे में पूछते हैं, सफाई देखते हैं, फिर बच्चों को सब बताते हैं, फिर उनको प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना के बाद में उनको खेल कविता करवाते हैं, फिर उनको 9 बजे नाश्ता देते हैं, चने मुरमुरे और गुड़ और सोमवार को ये देते, उसके बाद में जैसे अलग अलग मेनू के हिसाब से देते, मंगलवार को गुड़ चने देते, बुधवार को हलवा देते, ऐसे हमारे मेनू साप्ताहिक चलता रहता है। उसके बाद में हम बच्चों को और कोई रंग के बारे में बताते हैं, छोटे बड़े आकृति के बारे में बताते, कम पतले मोटे के बारे में बताते, कम ज़्यादा के बताते, उनके बारे में कम ज़्यादा के बारे में बताते हैं उनको, सब बच्चों को हम ये गतिविधि सिखाते हैं। उसके बाद में कोई कलर वलर भरवाते हैं, चित्र उनके उंगलियों के मांसपेशियों का विकास होता है उसके कारण उनको चित्र किताबों में भी रंग भरवाते हैं, को बना के भी हम उनको उसके थीम के हिसाब से बना के चित्र बना के उसमें उनको देते हैं हम, जो बच्चे कलर भरते हैं, फिर उनको लिखने की करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, जैसे फिर उनको 11 बजे उनको पोस्टर बांटते हैं, उसके बाद में हम उनको खेल खिलवाते हैं, खेल खिलवाने के बाद में 12 बजे उनकी छुट्टी कर देते हैं।
0: किसमें ज़्यादा रुचि बच्चों को सिखाने में, कौन सा जैसे खेल खेल में चाहे कविता में चाहे चित्र में, किसमें आपको ज़्यादा रुचि है जो बच्चों को प्यार से दिल से एक्शन का माध्यम से सिखाता विशेषता है?
1: अच्छा, बच्चों को हम खेल खेल में उनको खेल खेल में कविता के माध्यम से उनको गिनती सिखाते हैं, कविता के माध्यम से गिनती सिखाते हैं, कविता के खेल खेल में उनको हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को खेल, तो उनको बच्चों को भी आनंद आता है और हमको भी आनंद आता है, बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करते हैं, और उनको जो बच्चों को चित्र भरने में उनको रुचि है बच्चों को ज़्यादा, और हमको भी रुचि है बच्चों को चित्र वो कलर रंग भरवाते हैं उसमें बच्चों को रुचि है और हमको भी रुचि है, और इसके बारे में खेल खेल में हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं।
0: एक डेमो किसी में भी एक सुना जैसे बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से कविता के माध्यम से हो तेज रंग कैसे भरते हैं, सुना
1: गिनती सिखाते हैं, तो हम जैसे बोलो बच्चे, एक एक एक नाक हमारी एक,
0: नाक हमारी एक,
1: दो दो दो,
0: दो दो दो,
1: आँख हमारी दो,
0: आँख हमारी दो,
1: तीन तीन तीन,
2: जोर जोर से बोलो
0: सभी बोलो,
1: टेम्पो के पहिए तीन, चार चार चार,
0: चार चार चार,
1: गाय के पैर चार,
0: गाय के पैर चार,
1: पाँच पाँच पाँच,
0: पाँच पाँच पाँच,
1: हाथ की उंगली पाँच,
0: हाथ की उंगली पाँच,
1: छः छः छः,
0: छः छः छः,
1: मक्खी के टांगे छः,
0: मक्खी के टांगे छः,
1: सात सात सात,
0: सात सात सात,
1: सतोलिए की गोटी सात,
0: सतोलिए की गोटी सात,
1: आठ आठ आठ,
0: आठ आठ आठ,
1: मकड़ी की टांगे आठ,
0: मकड़ी की टांगे आठ,
1: नौ नौ नौ,
0: नौ नौ नौ, बोलो सभी,
1: नवरात्रि के दिन नौ,
0: नवरात्रि के दिन नौ,
1: दस दस दस, दशहरे के दिन दस,
0: दशहरे का दिन
1: दस, ऐसे करके ऐसे ऐसे गीत के माध्यम से हम इनको गिनती सिखाते हैं।
0: बहुत अच्छा। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए और एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनको स्वागत करते हैं। आज उनका दिल में भी कुछ बोलने के लिए इच्छा है। मैडम, आप अपना आंगनबाड़ी में किस तरह कार्यक्रम करते हैं, जैसे दीदी ने बताया उससे हट के थोड़ा बताओ।
3: जी हाँ जी हाँ जी। अब जैसे सभी शांता जी ने बताया है, माध्यम के मांसपेशियों के माध्यम के हिसाब से कलर के बारे में जानकारी दी है और नाश्ते के बारे में बोला करवाया है। अब हम ये करते हैं कि बच्चों से खिलौने भी बनवाते हैं, मिट्टी के बच्चे शौक से बनाते हैं खिलौने और उन रुचि ज़्यादा इन्हों में खिलौने में भी है। और जैसे कविता के बारे में, भाई एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी के जाल में जाके फंसा, दूसरे को हाथी सारे से बुला, इधर आ इधर आ इधर आ, पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची
4: चार।
3: जोर से बोलो चार। पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची कितनी, जोर से बोलो कितनी बची। हाँ, पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची
4: दो।
3: जोर से बोलो बच्चों,
4: दो।
3: पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे,
4: एक चिड़िया उड़ गई
3: बाकी बची
4: एक।
3: पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची
4: जीरो।
3: ताली बजाओ जोर से, जोर जोर से ताली बजाओ बच्चों। जैसे बच्चों को इनमें रुचि आती है, गिनती भी सीख पाते बच्चे और इनका मतलब वो, हाँ, और खिलौने के बारे में, मिट्टी के खिलौने भी ये बना सकते हैं, इस शौक से बनाते हैं बच्चे। जी हाँ।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते

0: ब्रेक का बाद हम मिल गए, सभी को स्वागत करते पुनः।
1: आज खासकर पोषण माह के अंतर्गत कुछ जानकारियाँ ले रहे थे और उसके साथ साथ जब गीत भजन न हो तो हमें खुशी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब गांव और अंतर में जाते भजन हमारे लिए भोजन और भजन दोनों आवश्यकता है। तो चलिए माता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हो, उनको साथ देने के लिए बहुत सारे धात्री महिलाएं और कार्यकर्ता हैं, बच्चे सब उपस्थित हैं, उन सभी को आज सुनेंगे। तो आज आपका परिचय थोड़ा दीजिए, आपका नाम क्या है? और
2: मेरा नाम रेखा देवी है।
1: तो आज का भजन सुनाइए।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को साथ दिए हाथ बढ़ाए जिसका चलते हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रही है और सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं, अच्छा जानकारी हो रही है। और खासकर न्यूट्रिशन यानी पोषण को लेकर जब ये कार्यक्रम चल रहा है, अभियान चल रहा है, सभी जागरूक होए, क्योंकि पोषण होगा तो हम रोशन करेंगे। सही पोषण देश रोशन, हमारा आंगनबाड़ी तब रोशन होगा जब हमारा साथी सहयोगी कार्यकर्ताओं को लेकर जो काम हो रहा है ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, चार चार सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, बहुत सारा चीज़ आंगनबाड़ी में होता है, जिसमें कार्यकर्ता है आशा सहयोगी और सहायक को लेकर और ANM भी आते हैं स्वास्थ्य जांच करने के लिए। तो चार लोग का जो संगठन पे संगठित रूप में, तो कार्यकर्ता को जो हेल्प करते हैं आशा सहयोगी, किस तरह उनका ड्यूटी रहता है और क्या क्या उनका एक्टिविटीज रहता है, क्या सुबह से शाम तक जो यहाँ पर रहते हैं और उनका जो चलता है कार्य, उसका बारे में जानकारी लेने के लिए एक आशा सहयोगी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं ग्रामवासियों और अंचलवासियों की तरफ से, और ख़ासकर महिला और बाल विकास परियोजना अब्रोड के CDPO साहब का तत्वावधान में, जो उनका जो इच्छा है कोई कुपोषित न रहे, सभी सुपोषित रहें और हमारा गाँव और अंचल हरा भरा रहे, आदर्श बने, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए।
1: मेरा नाम रुक्मिणी खंडेलवाल है, मैं मुंगला से हूँ, आशा सहयोगिनी हूँ।
0: और आपका जो आते हैं, आपका सेवा क्या रहता है?
1: हमारे हर रोज है ना 10 घरों का भ्रमण करना रहता है। और जैसे हम घर में भ्रमण करने जाते हैं, पहली बात तो हम पूछते हैं कि भाई आपके घर में कोई नया मेहमान तो कोई नहीं है, कोई नई शादी तो दाम्पत्य तो नहीं है। फिर हम अगर कोई होता है, गर्भवती होती है, तो उसको हम पहले महीने से उसको जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि भाई आपके कितने दिन छेड़े या क्या वो पता, तो उससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि भाई इसके गर्भ धारण ठहरा या नहीं ठहरा। फिर उसके बाद हम आंगनवाड़ी आके उसके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पहले महीने। जब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर हम तीसरे महीने में उसका टीका लगवाते हैं अपने हॉस्पिटल से, सब सेंटर से। टीका लगवाने के बाद उसको है ना हम गोलियाँ भी देते हैं। फिर उसको ना खाने के अंदर हम बोलते हैं कि भाई हरी सब्जियाँ, दाल, रोटी, चावल वो सब खाइए। फिर उसके बाद हम वापस उसका वजन, हाइट सब लेते हैं तीसरे महीने में। फिर उसके बाद फिर 2 महीने के बाद वापस उसका वजन लेते हैं, हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। फिर उसको अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो तो हम हॉस्पिटल तुरंत लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे हम आयरन सुक्रोज का वो ड्रिप चढ़वाते हैं, तीन डोज के अंदर होता है, तो 3 बार लगवाते हैं, एक दिन फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे में, कोई ज़्यादा जरूरत हो तो 4th डे भी होता है आयरन सुक्रोज। फिर उसके बाद उसको हम उसकी गोलियाँ देते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की वो देते, 5वें महीने से कैल्शियम भी देते हैं। फिर है ना उसको 7वें महीने में वापस टेस्ट होता है, वही रिटर्न वापस। फिर उसको देखते हैं कि हेमोग्लोबिन उसका बढ़ा या नहीं, अगर नहीं बढ़ा हो तो वापस उसको है ना वो टैबलेट जो वो है होती है, तो क्या उसको वापस हम थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम फिर 9वें महीने में, जब 9वें महीने में उसको हम बोलते हैं कि अभी तेरे है ना 9वां महीना लग गया है, अब तुझे है ना तैयारी करनी है, कौन से क्या है हॉस्पिटल की, हम गाड़ियों की, एम्बुलेंस की, सब जो भी सुविधा है वो हमारे पास नंबर रखते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे ही जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस को 104 पे हम एम्बुलेंस वालों को बुलाते हैं। और डिलीवरी अगर प्राइवेट, अगर सरकारी होती है तो हम गवर्नमेंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी एकदम नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। और अगर कोई इच्छा हो कि नहीं हमको तो प्राइवेट जाना है तो हम प्राइवेट भी लेके जाते हैं, उसको प्राइवेट में नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं। फिर उसको जैसे ही डिलीवरी होने के बाद पहले उसको है ना BCG का टीका लगवाते वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर, BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। फिर 1.5 महीने के बाद उसके अंदर पेंटाफर्स्ट, IPV और पोलियो के पिलाते। फिर 2 महीने में 2.5 महीने का हो जाता है, फिर उसको है ना पेंटासेकंड लगवाते हैं। फिर पेंटासेकंड, फिर वापस 3.5 महीने का होता है, उसको पेंटाथर्ड भी लगवाते हैं। फिर पेंटाथर्ड के बाद उसको है ना फिर 9वें महीने में उसको इसका मिजल्स का लगवाते हैं। अभी मिजल्स के बदले अभी रूबेला चालू हो गया है, तो रूबेला भी चालू, तो रूबेला और विटामिन ए का वो होता है। फिर हर 6 महीने के बाद विटामिन सेकंड डोज वापस चालू होता है। ऐसे करते 5 साल तक उसको हम इसके विटामिन की डोज हर 6 महीने में हम देते हैं उसको। फिर 3 साल का जब तक बच्चा नहीं होता है तब हम उसको धीरे धीरे उसको आंगनवाड़ी के लिए हम प्रयास करते हैं कि भाई अभी आपका बच्चा 3 साल का हो गया, आंगनवाड़ी उसको भेजो, धीरे धीरे आंगनवाड़ी के साथ ना उसको ना सही होगा, आपका बच्चा खेलते कूदते सीखेगा, कुछ भी बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, हर चीज़ एक्टिविटी सीखेगा अब बच्चों के साथ खेल में। फिर वो धीरे धीरे माँ को हम प्रवेश करते कि भी आप अपने बच्चे, वो मना करते तो भी हम उसको बार बार उसको उनको बच्चों को लेने जाते घरों में कि आपके बच्चों को आप भेजो, आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, हर चीज़ का करेगा। फिर वो माँ 3 साल तक, फिर हम आंगनवाड़ी में जब 3 साल का बच्चा आता है तब उसे हम पूरा सूखा उसको खिचड़ी, दलिया वगैरह सब हम देते हैं उसको। जब 5 साल का हो जाता है फिर हम नामांकन स्कूल में उसका करवाते हैं। दात्री महिलाएं ना तो 6 माह से उसको तो ऊपरी हार भी चालू करवा देते हैं 6 माह के बाद। फिर 5 साल के बाद उसको टीटी का टीका लगता है। और अभी है ना जो रुबेला चालू हुआ अभी तो 9 माह से लेके 15 साल का भी वो हमारा वो चला था प्रोग्राम चला था। हमने उसको 15 साल बाद तक के बच्चों और लड़की और लड़कों को सबको भी रुबेला का टीका लगवाया अभी। और साप्ताहिक पोषण भी मनाते हैं, पोषण प्रवेश उत्सव भी मनाते हैं आंगनवाड़ी के अंदर। और प्रवेश उत्सव में जो नया बच्चा होता है 3 साल के अंदर बच्चा आता था, हम उसको आंगनवाड़ी में लाके उसका ना उसको माला पहना के उसका प्रवेश उत्सव करते हैं आंगनवाड़ी में लाके उसको। और अन्नप्राशन भी होता है जो 6 माह के बाद उसको जो 7 महीने में लगता है तो उसको खिचड़ी से अपने यहाँ से शुरू करते हैं आंगनवाड़ी बुला के कि भाई आपका बच्चा अभी 6 माह का पूरा हो गया 7 माह से आप अपना भी आज से ऊपरी हाथ चालू कर दो।
0: बहुत अच्छा जानकारी देखो स्टोरी जैसे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक।

0: योजना चला सर, तो हम जिसको जितना भी पहले डिलीवरी थी 2017 की, तो हमने उनको सबको भी मातृवंदना का सबको भी लाभ दिलवा दिया सर। जिसके भी आधार कार्ड नहीं है मातृवंदना के, तो हम उसको ना हमको बोलते हैं कि भाई आपके बाबा फर्स्ट किस्त के लिए तो 1000 मिलता है, फिर सेकंड किस्त के लिए 2000, और जब जबकि वो मातृवंदना तीसरा पूरा तीसरे किस्त में दो, इसको बच्चे को तीन भी टीके पूरे हो जाते हैं, पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड, तो उसको वापस 2000 मिलते हैं। ऐसे करके 5000 टोटल उसको मातृवंदना में मिल रहे हैं सर।
1: बहुत अच्छा बात बताया। और ऐसे आपका जानकारी में किसको किस फायदा दिया मातृवंदना जो योजना प्रधानमंत्री?
0: सर मेरे यहाँ से मैंने 18 लोगों को मैंने मातृवंदना का वो दिलाया।
1: तो 8 का तो नाम बता सर?
0: हाँ, तो एक तो देखो सर कुशबा दिनेश, वो चली गई गांव की है सर, सेकंड है इसको अभी सेकंड किस्त दिलवाई है सर, दो किस्त हो गई है सर, सविता महेंद्र
1: हाँ
0: मुंगतला की है सर, अभी थर्ड किस्त बाकी है क्योंकि इसके बच्चे के टीकाकरण नहीं हुआ है,
1: पहला बच्चा
0: है सर।
1: और
0: ना फिर उसके बाद रमीला किशन है, वो अभी सेकंड डिलीवरी के घर अपने मायके चली गई है सर।
1: 20 नाखून लगा कर सेवा करते हैं, सबको याद रखते हैं और पूरा जी जान देकर काम करते हैं।
0: हाँ सर, हीना जितेंद्र है, मिटकी ललित है, फिर है ना रेखा मिथुन, पूजा प्रकाश, ऐसे बहुत सारे नाम है सर।
1: आप ऐसे जो काम कर रहे हैं दुआएं मिलती
0: है? हाँ सर दुआएं भी मिलती है उनके साथ, हम रात में डिलीवरी होती है सर, रात को भी बुलाते हैं तो हम उसके साथ जाते हैं सर, पूरी सेवा जितनी होती है उसको हम पूरी सेवा देते हैं।
1: ऐसे आपका पीरियड में कोई तकलीफ आया तो बताओ?
0: तो सर ऐसे तो एक मेरे पीरियड के अंदर हुआ था सर, जैसे कि डिलीवरी भी हुई, डिलीवरी नॉर्मल हुई, उस समय उस औरत को है ना ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो ब्लीडिंग तो फिर हमने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमको आगे के आप आगे रेफर कर दिया। मैंने क्या किया तुरंत उसको गाड़ी वाले को बोल के से हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लेके गए, मगर वो फिर हमने वहाँ पे भी लेके गए, डॉक्टर ने बोला उसको ब्लड की तुरंत जरूरत है, हम ब्लड बैंक में गए, मगर अपना ब्रह्मा कुमारी के अंदर ऐसा होता है सब, हम लेने जाते हैं तो ब्लड हमको मिलता भी नहीं है सर तुरंत, फिर क्या आपके डोनेट करो उस समय तुरंत हाथों हाथों, बाद में तो हम डोनेट भी किसी के हाथ से करवा देते, उस समय तो हमको कुछ सोचता नहीं, मगर हमको वहाँ पे हमको जो सुविधा चाहिए वो हमको सुविधा वहाँ पे मिलती नहीं है सर।
1: आप अपना ऊपर अधिकारी को ये बात को रखें?
0: हाँ सर रखिए, हाँ सर रखिए, क्योंकि है ना हमारे साथ
2: मैंने
0: प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ऐसे प्रॉब्लम बहुत होती है सर, कि हम ब्लड लेने जाते हैं तो हमको उनको थोड़ा तो फ्री करना चाहिए कि भाई ब्लड आपने डिलीवरी औरतों को ब्लड तो तुरंत आपने डोनेट करना ही चाहिए सर, उस समय कोई देने वाला और डोनेट करने वाला होता है, कोई नहीं भी होता है तो फिर हम क्यों समझता हूँ, तो कोई सब तो मेरे हाथ से उसकी मृत्यु मैंने अपने हाथों से देखी है सर।
1: ओके, तो जो भी जो अधिकारी सुन रहे हैं इसमें हम तो यही चाहेंगे जितना जरूरत है जहाँ पर जरूरत है इमरजेंसी,
0: हाँ सर इमरजेंसी के लिए
1: तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका दुआ है किसका जीवन बच्चे, इसलिए तो ब्लड बैंक का काम ही यही है। और जो भी सुन रहे हैं और जो प्रशासन इसमें जिसके रोटरी क्लब है वो सारा क्लब डोनेट करते हैं, तो उनका जो कार्ड वगैरह रहता है उनसे भी कभी कभी संपर्क करिए, तो वो लोग का भी उनका जो कार्ड होता है कभी भी वो दे सकते हैं, जो डोनर दे चुके हैं।
0: सर मैंने डोनर को भी फोन, मेरे पास नंबर है, 2-3 लोगों के डोनर के भी फोन थे मेरे सर, उस समय जो फोन डोनर के फोन होते हैं तो स्विच ऑफ बंद हो जाते सर, कोई मिलता भी नहीं है सर,
1: सबका प्रयास करने के इसके बाद उनका भाग्य हम
0: ट्राई करते हैं,
1: ट्राई करना, इसके बाद जो पाप जो कुछ हुआ तो रेस्पॉन्सिबल हमारा काम हम कर ली, वो नहीं दिया उनका भाग्य में वो नहीं जमा हुआ,
0: और
1: उसका जो पाप लगेगा उनको लगेगा आपको नहीं लगेगा।
0: अभी एक
1: निश्चिंत होकर आप अपना काम जारी रखिए, हो सकता कभी ना कभी
0: एक अभी मेरे अभी जो भी 2-4 दिन पहले एक डिलीवरी हुई है सर 7 माह के अंदर ही, उसके घर पे डिलीवरी हो गई, बच्चा एकदम फ्री टाइम से पहले हो गया, मैंने उस रात उसी उसको बच्चे को लेके उसको जो कवर होता है कवर को फाड़ के बच्चे को लेके मैं तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल गई, NICU में भर्ती भी करवाया तुरंत, और अभी आज वो बच्चा जिंदा है सर, और उस माँ की दुआएं बहुत मिली है सर।
1: कहते प्रयास हमारा एक कदम, मदद करने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई मदद कर लेते, लेकिन हम
2: दिल से काम करते हैं तो दुआ लगती है,
1: हमारा भी कुछ कमी होगा जिसका चलते हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम दूसरे को दोष देने में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें हमको खुद को जांच करना चाहिए हमारा क्या कमी है आगे के लिए इस तरह प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पर हम विफलता मिलता है हमको कोई भी जैसे आप ब्लड का,
0: हाँ सर,
1: तो उसका पहले हम अपने को पहले देखें किसको दोष, सबको तो दोष देने में तो अंगुली आगे कर जाता है, ना हम पहले
0: पहले चार उंगली अपने तरफ पे
1: करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और उसको रेडी ये होगा तो हम क्या क्या
0: पहले से
1: करेंगे तो बेटर होगा, फिर भी ट्राई करना हमारा काम है। बहुत अच्छा बात है, हिम्मत आपका जो साहस उमंग उत्साह देखकर मुझे भी खुशी लगा, क्यों हमारे श्रोता मित्र ग्रामवासी अभी सुन रहे थे जो आपका जो आवाज को इस तरह जो उमंग उत्साह रहेगा तो कोई ना कोई दाता दान दाता हमेशा, और कोई डोनर कमी नहीं यहाँ पे, सिर्फ हमारा भावना होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो परमात्मा
0: तो
1: वो तो कुछ लेता नहीं, उसका नंबर कोई जरूरत नहीं, आप दिल से
2: आंगनवाड़ी
1: एक सेकंड में।

0: सेकंड से उसको पूरा याद करो, आज तुम्हारा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, ऐसे सोच कर उसको समर्पित कर दो, पूरा समर्पित, तो जरूर वो मदद करेगा।
1: सही बात,
0: उनका काम है,
2: उनका काम है।
0: इसलिए द्रौपदी का कहानी आप लोग सुने होंगे।
1: हाँ सर सुनिए,
0: निस्वार्थ से,
1: निस्वार्थ से तो करेंगे
0: तो एक सेकंड में हाजिर होगा आपका सामने। तो सही में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, करने वाला तो करा रहा है, जो होना है वही होगा, फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते और एक हमारा साथ एक कार्यक्रम सजाने के लिए और एक आशा कर्मी है, आशा सहयोगी, तो उनको भी थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी है मीन्स आशा सहयोगी और कार्यकर्ता और सहायिका, नाम ही कितना सुंदर है, सहायिका, जो सहायता देते हैं उसको का सहायिका,
1: सहायिका,
0: और जो आशा को परिपूर्ण करते हैं वो आशा सहयोगी, सहयोगी, और तो कार्यकर्ता सब लेकर कार्य कराते हैं
1: तो वो कार्यकर्ता।
0: चलिए और एक आशा सहयोगी को हम सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा बात को रख रहे हैं, क्योंकि बात हो तो ऐसे जो कुछ सीख मिले और हमारा जीवन में काम में आए। क्यों नहीं तो हम क्यों सुने। हमारा श्रोता मित्र के पास तो समय ऐसे थोड़े, आपका बात उनका जीवन में कुछ प्रेरणा मिले, है ना। इसी आशा को लेकर आज आंगनबाड़ी केंद्र मूंगथला में पहुँचा, और मूंगथला जब आए तो इतना चार चार पाँच पाँच आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी और सहायिका सब मिलकर एक कार्यक्रम को सजा रहे। मैं बहुत खुशी और नाजे इस तरह गांव को हरा भरा करने के लिए पोषण को लेकर, खासकर हमारा सभी अंचलवासियों को और उनका जो आने वाले बच्चे हो जो आ चुके उन सभी को ध्यान देते हैं, ये कम बात नहीं। और आशा सहयोगिनी का जो काम है डोर टू डोर जाकर विजिट करना, फिर उनका जैसे अभी पहले सुन रहे थे शुरू से लेकर जब से पता चलता है जो आने वाला बच्चा है, 3 महीने 4 महीने से शुरू करते हैं तो 9 महीने तक, फिर उनका डिलीवरी, फिर उसको देखभाल, फिर हॉस्पिटल, फिर यहाँ पर पहुँचाना, आंगनबाड़ी में ज्वाइन करना, फिर यहाँ पर इतना शिक्षा देते हैं, इसके बाद उसको एडमिशन कराते हैं बड़ा स्कूल में। तो ये तो सराहनीय है कि जितना भी नाम ले कम ही पड़ेगा, फिर भी समय को देखते हुए और एक आशा सहयोग नहीं हमारे साथ, उनका परिचय लेंगे। आपका शुभ नाम, आपका परिचय।
1: मेरा शुभ नाम पुष्पा, मीरगढ़ से हूँ, आशा सहयोग नहीं। जैसे ही पता चलता है 3 माह से, जैसे गर्भवती से, जैसे हम फिर 3 माह से टीके लगवाते हैं गर्भवती महिलाओं को और गर्भवती माताओं को, हम ऐसे बोलते हैं हरी भरी सब्जियाँ खाओ, फल फ्रूट खाओ और अपना शरीर का ध्यान रखो। टीकाकरण के बाद उनको हम जाँचें करवाते हैं और आयरन सिरप की दवाइयाँ देते हैं और आयरन सूरज भी चढ़वाते हैं हम हॉस्पिटल जाकर। और जैसे ही 7 माह होता है वैसे ही वापस दूसरे टीके की तैयारी करते हैं। जैसे टीका लगवा के उसको पोषण अभियान होता है, उस दिन गुरुवार के दिन उनको सूखा पोषण दिलवाते हैं, यानी उनको बोलते हैं कि समय समय साफ सफाई के बारे में भी बोलते हैं हम, साफ सफाई से रहने का, हाथ धोने का, खाना खाने का उनको। फिर वापस जैसे ही 9 महीने हो जाते हैं उनका डिलीवरी का टाइम आता है, वैसे बोलते जैसे ही 104 बुलवाते हैं।
0: साफ सफाई को लेकर और खासकर भोजनों का बारे में बताते, बहुत अच्छा काम करते। ऐसे आप जो गांव में जाते डोर डोर घर घर
1: फील्ड में
0: जो जाते हैं, तो आप किसका दबाव में काम करते हैं ना, आप में खुशी से काम करते हैं?
1: किसी के दबाव में नहीं, हमारे खुशी से काम करते हैं।
0: करते ऐसे कोई ऑब्जेक्शन होता है कि घर वाले
1: नहीं, कोई
0: घर में आए क्यों पूछताछ कर रहे, ऐसे कोई
1: नहीं? कोई नहीं सर,
0: कोई नहीं, सब सहयोग देते।
1: हाँ, सब सहयोग देते गाँव वाले।
0: आप अपना यूनिफॉर्म में जाते हैं, सिंपल ड्रेस में जाते हैं?
1: नहीं, हमारे साड़ी है, यूनिफॉर्म है।
0: यूनिफॉर्म में जाते तो आपको पहचानते लोग?
1: हाँ, यूनिफॉर्म में भी जाते हैं, सिंपल में भी जाते हैं, पहचानते हैं हमारे गांव में लोग।
0: गांव वाले आपको बढ़िया से जानते हैं, इसीलिए दिक्कत नहीं।
1: ऐसे बोलते मैडम आए, ऐसे बोलते हैं आशा बहन जी।
0: आप जब जाते कोई अज्ञान जो जानते नहीं, पहला बार आप उनका घर में गए तो किस तरह उनसे बातचीत करते?
1: हम पहली बार उनके घर में गए, नमस्ते जी हम ऐसे बोलते, नमस्ते काकी, नमस्ते ऐसे सास होती है तो हम जो हमारे से बड़े होते हैं उनको काकी बोलते हैं, यानी तो नमस्ते जी। और हम उनको ऐसे बोलते हैं, हम क्या तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान है क्या, तो बोले हाँ तो अभी हुआ है बोले, तो हम उनको ऐसे बोलते कि टीके लगवाने चलो, तो उसको स्तनपान के बारे में भी बताते, हाथ धो के बच्चे को लेने का, यानी साफ सफाई करके हाथ धो के फिर उनको दूध पिलाने का।
0: आपको आंगनबाड़ी में जो काम करते हुए कितना साल हुआ?
1: 2011 में लगी थी सर।
0: 2011, तो कम से कम 8 साल?
1: 8 साल हो गए सर।
0: इसी 8 साल में आपका जीवन में उतार चढ़ाव आता होगा, ऊपर नीचे होता होगा काम में, तो इस तरह कभी ऐसे कोई केस आया जो आपके ऊपर बहुत असर पड़ा?
1: सर ऐसा मेरे तो कोई अभी तक कोई केस नहीं आया।
0: सब बराबर?
1: हाँ सब बराबर क्या है सर।
0: आपको इस तरह काम करने के लिए
1: खाली वो आयरन सुग्रन के बाले में चढ़ाया, फिर उसके घर पे ही डिलीवरी हो गई, 4 चढ़वा के उसके घर पे ही बोले भाभी चलो 108 बुलवाई, तो भी वो पेशेंट नहीं गया, भाभी मेरे घर पे ही हो गई बोले।
0: बहुत अच्छा, आपका सहयोग मिला। और आपको इस तरह काम करने में कौन सहयोग देते हैं, और खासकर जब बचपन कभी सोचे थे जे मैं आंगनबाड़ी में जाकर आशा सहयोगिनी होंगी, किस तरह आप आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी हुए, कैसे?
1: सर कभी भी नहीं सोचा था कि हम आशा सहयोगिनी बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, हमको तो हमारे ससुर ने बोला कि खेती में काम नहीं कर सकती, तो हम सर लग गए।
0: कहाँ तक पढ़ाई की?
1: नाइन्थ तक
0: पढ़ाई।
1: हाँ सर।
0: तो आपको चांस मिला तो आप चांसलर बन गए?
1: हाँ सर।
0: खुशी राज्य से कर।
1: और हमारे यहाँ मैडम थी, हमारे पास में आंगनवाड़ी चलती थी, तो हमारे मैडम बोले तू कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैंने बोला नवीं तक पढ़ी हुई है। तो क्या लग जा, तो मैडम ने मेरे को साथ दिया, फिर मैं आगे बढ़ी।
0: ओ, मैडम अभी कहाँ पे?
1: ये बैठे में हमारे मैडम।
0: क्या नाम?
1: शीला नायक।
0: ओ, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए।
1: हाँ।
0: उनके लिए ताली। आपको यहाँ तक पहुँचाए है कि नहीं?
1: हाँ।
0: तो क्योंकि हमको कोई रास्ता बता देता है तो वो रास्ता में हम चल पड़ते हैं।
1: चल पड़ते हैं सर।
0: तो दुआएं तो हम देते रहेंगे और भूल
1: हाँ।
0: नहीं पाएंगे।
1: नहीं, कभी हम नहीं भूलते शीला मैडम।
0: जो होता है ना घर में तो रोजी रोटी बनाने का भी रास्ता बता, भाई तुम भी करो।
1: वो
0: कर रहे हैं, दूसरों को कराते हैं,
1: दूसरों को भी कराते हैं।
0: पुनीत काम है,
1: पुनीत काम है।
0: तो जिसका चलते ऐसे सभी दूसरों को आप समान बनाए, जिसका चलते हमारा कहाँ ना कहाँ दुआएं प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, बहुत अच्छा बात बताया, धन्यवाद देते।
2: क्लास है 7:30 बजे सेंटर ऊपर आते हैं, सफाई करते हैं, बच्चे लेने को जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, उनको हाथ मिले धुलाते हैं, 9 बजे नाश्ता देते हैं बच्चे को, पोस्टर बनाते हैं।
0: अच्छा।
2: 11 बजे पोस्टर बांटते हैं उनको।
0: अच्छा।
2: बच्चे
0: रेखा दीदी, आप इतना काम जो कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। ऐसे कोई बच्चे रो रो कर आती तो
2: इधर आके चुप होते, ऐसे प्यार देते।
0: 4-5 रो रहे एक ही साथ, तो आप कैसे संभालते?
2: कोई चॉकलेट देते, कोई गोई देते, कोई नमकीन देते, ऐसा चल
0: नहीं। पहले से रेडी रखते हैं क्या?
2: सब रेडी रखते हैं। नहीं, चॉकलेट भी रखते हैं।
0: हाँ। तो आप अपना जो कार्य कर रहे हैं सहाय का, उसमें आप खुशी राजी रहते हैं ना, किसका दबाव में?
2: नहीं,
0: आपका इच्छा नहीं, आपका ससुर बोला नहीं करना ही पड़ेगा, आपका पति देव बोलता होगा करना पड़ेगा। माल जो आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, आशा सहायक भी नहीं है, ऑफिशियल काम में गए हैं, तो आपको संभालना पड़ेगा 3 घंटा। तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सा सीनियर को सम्मान देना सीखती है, और हमको भी सिखाते कहेंगे जो सीनियर रहता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अपना जो पहले तो झिझक करती थी, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अच्छा से बोली, बहुत अच्छा बात बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ता पहले से आए, उनको स्वागत करते। आप कार्यकर्ता तो क्या क्या कार्य करते हैं वो बताओ।
3: हम सब 7:45 पे सेंटर पे जाते हैं, फिर बच्चे आते हैं, सहायिका बुलाती है, बच्चों को बैठाते हैं, फिर प्रार्थना बुलाते हैं, फिर प्रार्थना बोल के थोड़े व्यायाम कराते हैं, और इस वो फिर बच्चे को 9 बजे वो खाना नाश्ता बांटते हैं। नाश्ता बांटने के बाद फिर किताब, मतलब सोमवार को किताबें का काम करवाते हैं, और बुधवार को किताबों का, और शुक्रवार को किताब का काम करवाते हैं, फिर और थोड़ी फिर 11 बजे फिर पोसार बांटते, फिर 11:30 बजे बच्चों को खिलाते, फिर 12 बजे छुट्टी हो जाती है। एक तो चने, गुड़, मुमरा।
0: प्रसव होने का पहले आप क्या क्या जाँच कराते हैं?
3: वो तो गर्भवती मतलब होती है ना, तो वो तो आशा सहयोगिनी जाती है तो पता करती है, गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद उनको सेंटर पे बुलाती है, टीका लगवाते हैं, फिर उनको हर गुरुवार को 930 ग्राम ठेली देते हैं, और टीका लगाने के बाद उनकी जांच होती रहती है जब तक डिलीवरी नहीं होती।
0: आप पंजरी वितरण करते हैं?
3: हाँ।
0: पंजरी में क्या क्या पौष्टिकता कैसे बनता है?
3: उसमें गेहूँ होता है, उसको सेकते, सेकने के बाद उसको पिसवाते, और शक्कर डालते, सोयाबीन डालते, और दाल डालते।
0: आप बनाते हैं ना?
3: समूह वाली बनाती है।
0: पूरा पता है?
3: हाँ।
0: आप पूरा जैसे आप बना रहे हैं ऐसे पता है?
3: नहीं।
0: लेकिन कोई बनाए तो आप उसको पूछते हैं, उसको जानकारी है?
3: हाँ हाँ, बुलाते हैं, पंचायत में बुलाते हैं।
0: तो आप क्या बात करते हैं जाकर?
3: कोई भी समस्या आती है वो लिखवाते हैं पंचायत में।
0: कोई समस्या ऐसे लिखा है आज तक?
3: हाँ, पानी की लिखवाई है।
0: पानी क्या, बोरी?
3: नहीं, नल, कुछ भी हो।
0: आंगनबाड़ी में कितना बच्चे?
3: अभी तो रजिस्टर में 13 लड़कियाँ, 14 लड़के, पहले कोई नहीं थी, नई खोली है।
0: कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए पूरा सबको बुलाया है, इतना सुंदर रूप में सजाए, तो उनको भी थोड़ा स्वागत करें, जो आज का गतिविधि और इतना लोग को जो बुलाए, खासकर बहुत माताएं आए थे, और सभी साथी सहयोग अपना आप समान हम जिन्स उनको भी बुलाएं। तो आज का गतिविधि का ऊपर में थोड़ा बताइए।
3: आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सुबह जब आए तो हमने ये पोषण संबंधी जो भी थी ये डिश वगैरह तैयार करी और हमारी बहनें सब आई और पोषण जो ही पोषण मेला चल रहा है इसी के बारे में सभी बहनों ने अपनी अपनी जानकारी दी और आज का कार्यक्रम मतलब बहुत ही अच्छा रहा, कहने का मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रहा और आगे भविष्य में कामना करते हैं कि ऐसी हमारे सेंटर पर कार्यक्रम होते रहे और सब अपनी अपनी भागीदारी निभाते रहे।
0: आज जो कार्यक्रम इतना सुंदर इतना सजा है, किसको धन्यवाद देना चाहिए?
3: हम सभी बहनों को ही देना चाहिए धन्यवाद तो सर, और सर्वश्रेष्ठ तो आप ही है। आप ही का सहयोग से हुआ है ना सर, आप नहीं होते तो हम इतना नहीं कर पाते। आपने जो हमारे को मौका दिया, नहीं हम कभी बोल नहीं पाते हैं सर, दूसरी जगह हमारे को कहीं बोलने का बोला तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे सर। अभी तो लोग बहुत विश्वास करते हैं सर गांव वाले,
0: और सबको धन्यवाद दिए हैं और सबका सहयोग से ही ये काम सक्सेस हुआ।
4: जी खूब अच्छा लगा हमारे आज पोषण दिवस के बारे में, आपकी सहायता भी अच्छी रही हमारे साथ में, सब भाई बहने वहने सब हमारे साथ में अच्छा रहा, और आप बोलोगे तो हम तो और करने को तैयार है सर, आप सहयोग देते रहेंगे, हमारे सेंटर भी आओ हम तो और खुश है। जी हाँ, हाँ वो भी है ना, अलग पहचान बन जाएगी और बोलने की भी झिझक हमारी खुल जाएगी सर। हाँ
5: मेरा नाम शांता परियार है, मुंगला सेंटर केंद्र मुंगला सेकंड है, और आज का आपके वजह से आपने प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा रखा।
6: मीटिंग के अच्छी लगी, खूब अच्छी, हमारे ऐसे हमेशा मिलते रहे जो हमारे ऐसे रोज प्रोग्राम पोषण का है तो मिलते रहे तो हमारे ऐसे नव नव सीखवा मिले एक बार मिले नव नव ऐसे प्रोग्राम हमारे हमेशा होता रहे।
0: तो सभी को नान का सा धन्यवाद आज के लिए जो सुंदर रूप में सजाए जानकारियाँ प्राप्त हुई, खासकर पोषण माह को लेकर, क्योंकि सही पोषण देश रोशन और आंगनबाड़ी रोशन, हमारा बच्चों का भविष्य भी रोशन उसी में ही होता है। तो इस कार्यक्रम को जिन्होंने सजाया सभी को नाम के साथ पुनः बार बार दिल से आभार, और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, ये था आंगनबाड़ी केंद्र मुंगथला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना यहाँ पर फाइव तक है, तो बहुत खुश लगा सभी का सहयोग आज रहा, और खासकर बहुत मिष्टान और भावना युक्त प्रसाद मैंने जो बच्चों को खिलाते हैं वो भी हमको देखने को मिल रहा है, और बच्चों को खिलाएंगे कब पता नहीं अभी तक। तो सबको धन्यवाद आभार, चलिए हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।
7: अभी बजे हैं शाम के 8, स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

0: चिरागों से अगर अंधेरा दूर होता तो हर कोई उजाले का मसीहा होता। बातें तो हर कोई कर लेता है यहाँ, पर जो दिल से दिल को जोड़ दे वही सच्चा साथी होता है। और सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, और चलिए करते हैं सबसे पहले उनसे बात। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार भाऊ जी।
0: नमस्कार
1: आ जाते हो, हमारी ऐसी खुशियां खा जाती है। बात मत पूछो, सब्जी के बिना खाए रोटी खा लेते हैं।
0: क्या बात है, सब्जी के बिना रोटी खा लेते, रोटी के बिना सब्जी
1: चाय पी लेते हैं, के बिना चाय पी लेते हैं, ऐसा टेस्ट आ जाता है।
0: क्या बात है,
1: जब आपकी ऐसी ऐसी वाणी आ जाती है, क्या कहना है, हमारे के साथ में खुशियां खा जाती है।
0: वाह क्या बात है,
1: पल भर के लिए, पल भर के लिए कोई प्यार हमें कर दे।
0: क्या बात है,
1: ये गाना है सर
0: जी,
1: पल भर के लिए कोई प्यार कर दे।
0: चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए ये प्यार भरा नगमा हम आपको सुनाएं, और पल भर के लिए कोई

0: चुड़ाओगे तो हम सुन सुन के मजबूत बन जाएंगे।
1: चलिए कोशिश करते हैं।
0: सभी साथियों को मेरा प्यार मेरा नमस्कार। सुरेश भाई है वो क्या वो महाराष्ट्र भाई का क्या नाम सुमेर भाई
1: सुभाष भाई
0: और जयराम जी है बरन भाई है सुरेश भाई है सभी साथियों को मेरा प्यार प्यार बड़ा नमस्कार।
1: चलिए बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया और आपको जो भी सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको भी प्यार भरा नमस्कार नमस्ते जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों तो ये थे हमारे सुरेश भाई और बहुत ही प्यारा इन्होंने गाना हमें सजेस्ट किया है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। लेकिन शो की शुरुआत करना बड़ा ज़रूरी है तो शो का आगाज करते हैं लेकिन उससे पहले फिर से एक और बार हमारी जो शायरी थी चिराग से अगर अंधेरा दूर होता तो हर कोई उजाले का मसीहा होता बातें तो हर कोई कर लेता यहाँ पर जो दिल से दिल को जोड़ दे वही सच्चा साथी होता है। फिर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे चलिए करते हैं उनसे बातें। हेलो
2: हाँ बुराराम बोल रहे हो।
1: बुराराम जी नमस्कार कैसे हैं आप?
2: बस आपको फिर मैं बोल रहा मेरे को अभी आपको पहले राम राम करो और सबको मेरे साथी भाइयों को राम राम है
1: जी
2: और भूरे लाल जी आए तो भूरा राम भी आएंगे जरूर।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूरी है
2: और सबको सुरेश भाई जोटाना वाले सुभाष भाई और मदन भाई और सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम
1: जी।
2: और आज तो हमारे इधर विठल भगवान का बोले तो बैठक है भजन मंडली है।
1: अच्छा
2: तो अभी खाना खा के जाएंगे उधर मंदिर में पूरी रात बैठ के भजन मंडली में जाऊंगा।
1: अच्छा क्या बात है।
2: और एक गाना मेरा सुनाएंगे तो अच्छा है।
1: बिल्कुल बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे।
2: हेलो
1: हाँ जी बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे।
2: हाँ अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में जाने तुझे को खबर कब होगी ऐसे करके गाना है
1: जी। चलिए कोशिश करते हैं आपका ये जो आपने हमें नगमा फरमाइश के रूप में दिया है हम सुनाने की कोशिश करें।
2: ओके
1: सर। ओके नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम चो की कैन हो मैं हूं आपका दोस्त और हमराही और आप सुन रहे आपका अपना सबका प्यारा रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जी हां दोस्तों आज है 22 सितंबर 2026 की खूबसूरत सुहानी शाम और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास शो खुशी के नगमे दिल की बात। आज के सफर में हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी दिल की बातें और ढेर सारी बातें करने की आगाज शुरुआत तो हो ही चुकी है। हमारे बुरीलाल जी बुराराम जी ने हमें कॉल भी किया है और उन्होंने हमें बहुत से प्यारे प्यारे फरमाइश भी हमें उन्होंने दे दी है हम उनकी फरमाइशों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बात है यहाँ पे कि हम जो बात कर रहे थे कि बहुत बहुत जो भी आज हमारे दिन भर की भाग दौड़ काम काज थकान दुनिया की उलझनों के बाद ये शाम का वक्त ही तो होता है कि जब हम खुद से मिलते हैं अपनों से मिलते हैं और जब चाय की हर एक चुस्की के साथ दिल की बंद कॉपियां खुलने ही लगती है और बातें बहने लगती है। जी हाँ दोस्तों बातें हैं तो बहाने के लिए हम आते हैं और आप सभी से अपनी बातें अपने दिल की बातें हम शेयर करते हैं। आज के इस सफ़र में हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी दिल की बातें कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों को कुछ अपनों की बातें थोड़ी सी रूहानी ठंडक और ढेर सारी खुशियों के नगमे क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है और जब बातें दिल से निकलती है तो सीधे दिल तक पहुंचती है। तो चलिए अपने दिल के सारे बोझ को दरकिनारे कीजिए चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और इस शाम को बनाइए यादगार। शो का आगाज करते हैं एक ऐसे ही खुश मिजाज और दिलकश नगमे के साथ सुनिए और महसूस कीजिए खुशियों के तराने। जी हाँ दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: तू जरा साथ देने का वादा तो कर, तू जरा साथ देने का वादा तो कर, मैं हवाओं का रुख भी बदल दूँ। फासले तो बस नज़रों के होते हैं, तू कह के तो एक पल में सदियाँ सवार दूँ। दोस्तों, कुछ गाने महज संगीत नहीं होते, जब वो एक एहसास होते हैं, एक एहसास भरोसे जो दिल दिलों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जब भी इस भरोसे और मोहब्बत की बात होती है तो साल 1967 में आई बी आर चोपड़ा साहब की मशहूर फिल्म हमराज का एक गाना अनायासी होठों पर आ जाता है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पे चलिए हमारे कॉलर से हम करते हैं बात। हेलो,
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्कार,
1: गुड
0: इवनिंग। एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बहुत मुझे अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: बढ़िया एकदम,
1: बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं। अब तो हमारी छुट्टी थी तो घर पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपसे।
0: अच्छा, ओके, क्या बात है? आज किस बात की छुट्टी?
1: सर आज आज दोपहर के बाद हमारे बाजार बंद रहे, क्योंकि आज कृष्ण भगवान है, पूरे गाँव में परिक्रमा करते हैं।
0: अच्छा,
1: आज के दिन क्या है, आज भगवान बाहर निकलते हैं और पूरा गांव में हमारे शोभा यात्रा निकलती है।
0: ओके,
1: तो आज खुद भगवान सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं मंदिर में से।
0: अच्छा,
1: तो आज हम भी साथ में थे, भगवान के साथ, भगवान का जो शोभा यात्रा निकले तो साथ थे।
0: ओके,
1: तो 4 बजे से 7 बजे तक भगवान के पास पूरा गाँव में घूमे और भगवान का दर्शन करवाया सबने किया। तो बस पूरे साल हम मंदिर जाते हैं, आज भगवान खुद बाहर आते हैं।
0: क्या बात है, ओके, मतलब आज के दिन भगवान की प्रतिमा को हम मंदिर से बाहर निकाल करके,
1: जेल जी ने 11 बोलते हैं, सभी जगह पे आज जो शोभा यात्रा निकलती है भगवान की।
0: गॉट इट, ओके, सही,
1: बहुत अच्छा दिन था आज सर।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे बिल्कुल पास में एक मेला भी लगता है, बड़ा मेला भी रामदेव त्रिखा लगता है।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो मेले में भी जाके आए और घूम के आए।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि मेला तो सर ऐसा है कि हम बड़े हो छोटे होता है कुछ भी हो, लेकिन मेला तो मेला ही होता है,
0: मेला मेला ही होता है। और हमारे भी वो बचपन के दिन याद आ जाते, तो ऐसा लगता है कि हाँ, चलिए एक बार
1: मेला तो सर सर क्या कि हम बचपन जो छोटे थे तब जाते थे, तो अभी भी मेला, बस छोटे हैं बड़े हैं फिर भी मेला में तो
0: अब बच्चों के लिए चाहिए। अब बच्चों के लिए लेके जाते हैं ना, बच्चों के बच्चे, बच्चों को
1: लेके, अब बच्चे को लेके जाते हैं, हमारे बेटे के बेटी को लेके जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पहले हमारे पिताजी लेके हमको जाते थे, बाद में हम हमारे बेटे लेके जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: तो बस अच्छा रात, अच्छा दिन जय किया, भगवान का भी दर्शन सभी ने किया, मेला का आनंद लिया, पूरा दिन अच्छा रहा आज।
0: क्या बात है,
1: सभी हमारे मित्रों को, हमारे, क्योंकि मैंने अभी अभी रेडियो ज्वाइन किया है।
0: अच्छा,
1: पता नहीं हमारे भुरीलाल जी शायद आ गए होंगे।
0: भुरीलाल जी आज सबसे पहले आके गए, भुराराम जी भी आकर के, भुराराम जी ने तो ये भी कह दिया कि भुरीलाल जी आए तो भुराराम जी को तो आना ही है। मैंने बोला वाह क्या बात है, भुरीलाल जी है तो भुराराम जी भी है।
1: सही है, हमारी तो एक कहते ना, हमारा परिवार है, तो परिवार को तो
0: बिल्कुल
1: आना ही चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: परिवार नहीं आए तो हमारा जो घर कैसा सुना हो जाता है, तो हमारा जो रेडियो मधुबन हमारा घर है, तो घर सुना होना ही नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलो अच्छा है। तो आज एक गाना, बस अच्छा ही गाना सुना है कि आज जो किशन भगवान की आज जो हमारी शोभा यात्रा निकली, तो ऐसा एक गाना मैं देता हूँ, सरगम फिल्म का गाना है।
0: सरगम
1: कि हाँ, कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही है, थोड़ा अवसर अवतार अलग हो गया, पहले रामचंद्र भगवान का अवतार था, वही अवतार कृष्ण भगवान का।
0: बिल्कुल,
1: तो बस यही गाना हम सुनना चाहते हैं आज, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
0: चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए गाना भी हम आज प्ले करें और आपको सुनाएं।
1: सभी हमारे सुभाष भाई है, हमारे पुराराम जी है, गिरिलाल जी है, राम राम पुराराम जी को भी, हमारा मदनलाल जी है
0: जी,
1: हमारा राम जी भाई है, हमारा सभी फिरोज भाई है, सभी हमारे सभी पीछे को हमारे तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी।
1: नमस्ते,
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका कॉल करने के लिए, और आपका दिन शुभ रहे। और दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे थे इस गाने की, सबसे पहले जो अभी हमने गाना सुना, साहिल लुधियानी साहब ने लिखे वो जादुई बोल, रवि साहब का सुरीला संगीत, और महेंद्र कपूर साहब की वो बुलंद और रूहानी आवाज़, जब पर्दे पर सुनील दत्त साहब और मिमी जी पर यह नगमा फिल्माया गया तो इतिहास बन गया। आमतौर पर इन दिनों में, यानी उन दिनों में, जब भी कोई रूमानी या रोमांटिक गाना बनता था तो पहली पसंद मोहम्मद रफी साहब हुआ करते थे, लेकिन संगीतकार रवि साहब और निर्देशक बी आर चोपड़ा को महेंद्र कपूर साहब की आवाज पर अटूट विश्वास था। महेंद्र कपूर साहब ने इस गाने में जो एहसास, जो गहराई, वो जो ठहराव दिया है, उसने ये साबित कर दिया कि ये गाना उन्हीं के लिए बना था। इस गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक, मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला गया। साहिर साहब ने इन बोलों में एक आशिक के दिल का सबसे प्यारा अरमान भी रोया कि अगर हम सफ़र का साथ हो तो रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है, इसी दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है, तो बस एक वादे की दरकार होती है। और चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला नगमा जो है हमारे बुरीलाल जी ने हमें फरमाइश के रूप में दिया था कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, तो चलिए सुनते हैं इसे। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

सच्चा प्यार मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, पर कभी कभी एक पल की मुलाकात भी पूरी जिंदगी का मजा दे जाती है। दिल बहलाने का बहाना ही सही, चलो आज किसी की झूठी हंसी पर ही दिल हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 FM, और ये जो हमने फरमाइश सुनी अभी हमारी भूरीलाल जी की तरफ से हमारी फरमाइश थी, 70 के दशक की बात ही कुछ अलग थी, यानी कि 70 के दौर जब पर्दे पर देवानंद साहब का वो अनोखा स्टाइल और हेमा मालिनी जी के दिलकश अदाएं सामने आती थी तो सिनेमा घरों में तालियां बजना तय था, और जब उसमें जुड़ जाता था कल्याण जी आनंद जी के धमाकेदार संगीत तो गाना अमर हो जाता था। जी हाँ, 1970 की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गाना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। जी हाँ, आज भी जब गाना में पड़ता है तो चेहरे पे अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। आनंद बख्शी साहब के लिखे इन बोलों की सादगी देखिए, एक आशिक की मासूम सी गुजारिश है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे प्यार सच्चा प्यार नहीं करते, कम से कम पल भर के लिए थोड़ा सा दिखावा ही कर लो, हम उसी में खुश हो लेंगे। जहाँ किशोर कुमार साहब ने उसी मस्ती नटखटपन और अंदाज के साथ इस गाने को गाया है, और गाने का वो जो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो हर खिड़की के आर पार देवानंद साहब का अम्मा जी को चिढ़ाना और रिझाना है, और इसी सीन को बॉलीवुड का सबसे यादगार सीन भी बना देता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं एक और अगला फरमाइश नगमे की और। अगली जो नगमा फरमाइश है बहुत ही प्यारा सा हमें दिया है हमारे बुराराम जी ने, चलिए सुनते हैं इसे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: कुछ रिश्ते इतने पावन होते हैं कि दर्द भी इबादत बन जाता है, जहाँ खो जाने में भी एक अजीब सी खुशी छुपी होती है। जब संपूर्ण सच हो तो इंसान सब कुछ हार कर भी जीत जाता है। दोस्तों, जब भी देश प्रेम और त्याग की बात होती है तो साल 1965 में आई ऐतिहासिक फिल्म शहीद के नाम सबसे पहले आता है। देशभक्ति के रंगों से सजी इस फिल्म में एक से पढ़कर एक अमर गीत था, लेकिन इस फिल्म के बीच एक ऐसा नगमा भी है जो निश्चल प्रेम, विरह और समर्पण के जज्बात का बेहद सादगी से बयां करता है। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जी हाँ, अभी जो हमने गाना सुना, प्रेम धवन साहब के लिखे और संगीत बंद किए इस खूबसूरत गीत को लता मंगेशकर जी ने अपनी मखमली और वेदना से भरी आवाज में अमर कर दिया। पर्दे पर जब वैजयंती माला जी के रूप में इस लोक धुन पर आधारित गीत की भावुकता सामने आती है तो सुनने वाले हर शख्स उस दौर के सीधे साधे और पवित्र प्यार में खो जाते हैं। यहाँ इस गाने की सबसे बड़ी खासियत उसके ठेठ देहाती और लोकगीत यानी कि फोक म्यूजियम का ढांचा है। जोगी शब्द यहाँ केवल एक वैरागी के लिए नहीं बल्कि प्रियतम के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसकी लगन में मन सब कुछ भूल बैठता है। प्रेम धवन साहब ने इसमें एक प्रेमिका के बेबस लेकिन खूबसूरत समर्पण को इतनी सादगी से पिरोया है कि यह सीधा रूह की रूह को छू लेता है। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अब एक और अगले नगमे की। और हमारे ये जो अभी जो हमने गाना सुना इससे पहले, अभी जो हम कह रहे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, ये गाना हमें भूरा राम जी ने फरमाइश के रूप में दिया था, तो ये भूरा राम जी की फरमाइश थी। अब अगली जो फरमाइश है हमारी सुरेश जी की तरफ से, राम जी की निकली सवारी, तो चलिए सुनते हैं इसे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: राम जी की निकली सवारी, अरे राम जी की लीला है न्यारी। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हमने जो गाना सुना, बचपन में जब भी ये गाना हम सुनते थे तो हम रास्ते चलते दौड़ते दौड़ते बस यही गाना एक पूरे दिन मुंह में चलता रहता था, बस राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जी हाँ, इन्हीं गानों के साथ पूरा समय हम खेलते गाते करते, और ये जो गाना अभी हमने सुना सरगम मूवी से था, और हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे, पहले करते हैं उनसे बातें। हेलो।
2: हेलो,
1: यस मदन लाल जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ, और आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं कि भाई ये जब हम भी छोटे गाना दिन भर गाते थे।
1: जी बिल्कुल
2: जी,
1: गाना ही कुछ ऐसा था कि
2: गाने चराते थे
1: जी,
2: और उस टाइम में ये गाना बहुत गाते थे, राम जी की निकली चहारी और राम जी की लीला है न्यारी
1: जी।
2: तो बहुत उस टाइम में भी गाते थे, गाय चराते थे, होटल में रहते थे, जब भी गाना बहुत गाते थे
1: जी,
2: और ही सुनते थे।
1: तो
2: बहुत अच्छा सुना है, आज हनुमान जी का वार भी है
1: जी,
2: तो राम जी के ऊपर ही सुनाना है। हमारे जब सभी दोस्त सुन रहे हैं, नमस्कार है आपको, नमस्कार है, और जो दूर दूर से सुन रहे हैं सभी को नमस्कार, और गाना गाते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुनाइए।
2: रोते रोते हंसना सीखो, हंसते

घर है अपना घर का कोना कोना सोते होते माटी को बसते रोशनी बदले तो अब

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही प्यारा आपने हमें ये गाना गा के सुनाया।
0: बहुत जी, आपने भी बहुत अच्छी बात सुनाई है, हमका हमारी भी पुरानी यादें याद दिला दी आपने, मजा आ गया।
1: बिल्कुल शुक्रिया,
0: थैंक यू सर।
1: थैंक यू। ओम शांति। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना अभी हमारे मदन लाल जी ने हमें गा के सुनाया, और इसी तरह से अभी ये गाना जो भी हमने सुना था, राम जी की निकली सवारी सरगम मूवी से था, मोहम्मद रफी साहब जी की इसकी आवाज़, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे अपना संगीत दिया था, और आनंद

रफी साहब इसके गीतकार थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और प्यारे से नगमे की और। अगला जो नगमा है और बहुत ही प्यारा सा है, और सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

दर्द भी कितना हसीन होता है जब वो किसी अपने की देन हो, तन्हाई में भी एक मीठी सी हलचल मचा देता है। इश्क में जो दर्द मिले वो भी किसी नेमत से कम नहीं, जिंदगी को जीने का एक नया अंदाज सिखा देता है। यहाँ दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ खुशियाँ और मुस्कुराहट का नाम नहीं है, इश्क की असली गहराई तो उस मीठे दर्द में छुपी होती है जो इंसान को अंदर तक निखोर देती है। जब इस खूबसूरत दर्द को सुरों का लिबास पहनाया जाता है तो जन्म लेता है साल 1968 की फिल्म हमसाया। हमसाया का ये अमर नगमा, वो हसीन दर्द दे दो इसमें गले लगा लूँ, जी हाँ, मैं मजरूर सुल्तानपुरी साहब की लिखी यह नज़्म और ओपी नैयर साहब का लाजवाब संगीत और आशा भोसले जी की वो मखमली आवाज़ पर्दे पर, जब शर्मिला टैगोर जी और जोया मुखर्जी पर यह गाना फिल्माया गया तो हर सुनने वाले का दिल थम सा गया। मशहूर संगीतकार ओपी नैयर साहब के बारे में जब जानते हैं कि उनका अपना एक खास रिदम और अंदाज था, जैसे कि टांगे की ताल, जो कि मैंने कई बार बताया है, ये तेज रफ्तार धुन, लेकिन जब फिल्म हमसाया की बात आई तो नैयर साहब ने उसे साबित कर दिया कि वो सिर्फ तेज तर्रार धुन के ही उस्ताद नहीं, बल्कि जब वो संजीदा और भावुक धुन बनाते हैं तो सीधे रूह में उतर जाते हैं। कहा जाता है कि आशा भोसले जी ने जब इन गानों की रिकॉर्डिंग की थी तो ओपी नैयर साहब ने इसमें बहुत कम वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया था ताकि मजरूल साहब के लिखे शब्दों की गहराई और आशा जी की आवाज़ की नज़ाकत कम ना हो। इस गाने में गिटार और वाइब्रेशन की जो हल्की फुल्की धुन बैकग्राउंड में बजती है तो वो इस गाने के दर्द और रूहानियत का कई गुना बढ़ा देती है। मजरूल साहब ने क्या खूब लिखा है, दर्द का भी हसीन कहना है, उसे गले लगाने की तमन्ना करना है, यह सिर्फ एक आशिकी की कर सकता है जो अपने महबूब की दी हुई हर चीज को इबादत समझता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नगमे की ओर। अगला जो नगमा है अभी मदन लाल जी ने गा के हमें सुनाया और मदन लाल जी की ये फरमाइश के ऊपर ये गाना है, तो आशा करते हैं कि आपको ये गाना भी पसंद आएगा। और हमारे फिरोज जी ने भी अभी अभी हमें कॉल किया था, फिरोज भाई का भी कॉल आया था और उन्होंने भी सभी को याद किया है, पूरे रेडियो मधुबन की परिवार को भी उन्होंने याद दिया है। और उस वक्त गाना चल रहा था तो हमने फिरोज भाई को ऑफलाइन में गाने में लिया था और फिरोज भाई की भी एक फरमाइश है रोटी कपड़ा मकान की। और फिरोज भाई, हम अगर आप हमें सुन रहे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये कल यानी कि बुधवार को ये गाना हम आपको सुनाएं, क्योंकि आज के समय का समय को देखते हुए इसके बाद की जो हमारी फरमाइश है उसे देखते हुए और वक्त को देखते हुए शायद हम आपका ये गाना ना बजा सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए गाना कल फिर से बजाए। तब तक के लिए आप इसे रेडियो में सुनते रहिए, रेडियो में बने रहिए और अगले दिन के लिए सुनते रहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की और अगला जो नगमा है प्यारा सा उसे हम सुनते हैं तब तक के लिए, और सॉरी हम लेते हैं आपसे विदा, बिकॉज अगला जो गाना है वो लंबा है, बड़ा है और शायद उसके बाद हमें वो वक्त मिले नहीं कि हम आपके साथ वो बातें कर सके। तो आप सुनते रहिए रेडियो, अगला जो कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य का और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, खम्मा गणी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। हम सभी के मंगल की कामना भारत में करते आए हैं। ये प्राचीन शांति मंत्रों में से एक है। जब हम सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के बाद ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई दुख न हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति, संसार का हर एक जीव निरामय हो या स्वस्थ हो, इस बात की कामना करते हैं। प्रार्थना में तो हम ये कामना करते हैं, मगर क्या हम अपने जीवन में इस कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ कार्य करते हैं? क्या सिर्फ हम भगवान से अपने और दूसरों के मंगल और स्वस्थ रहने की कामना मात्र से काम हो जाएगा, या स्वस्थ बने रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की जरूरत है? अगर प्रार्थना से ही काम बन जाता होता, अगर हम कुछ न करके सिर्फ प्रार्थनाओं से ही काम चला रहे होते, तो शायद आज इतने ज्यादा संख्या में अस्पतालों और चिकित्सकों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। जरूर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, ईश्वर भी हमारी आस्था अटूट है, परंतु हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हम प्रार्थना तो निरामय होने की कर रहे हैं, मगर अपने आप को बीमार करने के लिए कुछ ऐसे कार्य और कर्म कर रहे हैं जिससे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम स्वस्थ बने रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अब भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा, ये भारत के सबसे मशहूर प्रार्थनाओं में से एक है कि हम विश्व के, संसार के हर एक जीवी के मंगल के लिए कामना करते हैं, हर एक जीव जंतु का मंगल हो, इसके लिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, ये बात कहते हैं। और इसके साथ अगली ही लाइन सर्वे संतु निरामया, यानी सर्व सभी के सभी निरामय हो, रोग मुक्त हो, वो सभी स्वस्थ हो, ये कामना करते हैं। प्रश्न उठता है कि जब हम प्रार्थना तो करते हैं स्वस्थ रहने की, क्या सिर्फ प्रार्थना मात्र से काम होगा, या स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की और कर्म करने की जरूरत है जो हमें स्वास्थ्य लाभ दे?
1: सबसे पहले तो देखिए, आपने जो बात की वो ये बता रही है कि हम भारतीयों की कितनी अच्छाई है कि हम अपने बारे में न सोच के हम सबके बारे में सोच रहे हैं, और ये हमारी देश, हमारी परंपरा की अच्छाई है कि हम सब लोगों ने मैं को हम से रिप्लेस किया है, और हम जो प्रार्थना भी कर रहे हैं वो सब निरोगी हो इसकी बात कर रहे हैं। और इस प्रार्थना का जो मूल है उसमें ये कहीं भी नहीं बात कोई है कि सबको पैसा मिल जाए या मुझको पैसा दे दो भगवान। हमने स्वास्थ्य की बात की है, हमने हेल्थ की बात की है। इंग्लिश में भी कितनी सारी बातें हैं, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी अ हेल्दी नेशन, मतलब सारी हेल्थ की ही बात की है। और ये माना गया है कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने देश की सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने समाज की सुरक्षा भी कर लेंगे। तो सबसे ऊपर इसीलिए हेल्थ को रखा गया है, स्वास्थ्य को रखा गया है। हमने प्रार्थना तो कर ली कि हम स्वस्थ रहें, पर कहते नहीं है कर्म भी करना पड़ेगा। हम लोग रोज भगवान के सामने अगर बैठे, सुबेरे सुबेरे नहा धोकर अगरबत्ती जला लें, पुष्प चढ़ा दें, उनको प्रसाद चढ़ा दें कि हे प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे दो, हे प्रभु मुझे ये दुनिया दिखा दो, हे प्रभु मुझे यहाँ भेज दो, और मैं चुपचाप कमरे में वापस जाके सो जाऊं, तो मुझे कैसे कुछ मिलेगा? इसमें एक छोटा सा जोक भी है भैया, मुझे बताया जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति रोज लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम करता था, हे लक्ष्मी मां मुझे लॉटरी जिता दो, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो। तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो तीसरे चौथे महीने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी अवतरित हुई, बोली मूर्ख तुम रोज मुझसे कह रहा है कि मुझे लॉटरी जिता दो, पर क्या तुमने लॉटरी खरीदी?
0: लॉटरी टिकट तो खरीदना पड़ेगा।
1: तो अगर हम टिकट खरीदेंगे नहीं तो लॉटरी कैसे जीत सकते हैं? और अगर हम स्वास्थ्य की बात अगर हम करेंगे तो हमें शरीर से भी कुछ करना पड़ेगा। हमें टहलना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा, हमें अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, हमें संयम से भोजन करना पड़ेगा और संयम से रोज भोजन करना पड़ेगा, संयम से रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम आज करें और कल ना करें। तो मेरा ये कहना है कि आपको सब काम ठीक से करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको उचित कसरत और भोजन पर संयम करनी पड़ेगी और अपने मन के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें।
0: प्रायः यही चीज देखने को मिलती है डॉक्टर साहब। हम चाहते तो हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, मगर हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। प्रायः हम जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा सोच रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अक्सर जब ये चीजें कही जाती लोग ये कह देते अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है। जब ये चीज कहा जाता है कि नहीं थोड़ा सलाद खा लो, ये खा लो, तो बोलते अरे सलाद बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लोग रीजंस दे देते हैं, और क्या ये रीजंस जो देते हैं, जो वजह बताते हैं कि भाई इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या इसकी वजह से हम बीमार पड़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं?
1: हाँ, हम बहाना बनाने में हम पूरे आदमी, हम सब लोग बहुत तेज हैं। हाँ, कहना नहीं चाहिए, भगवान की सर्वोत्तम अगर कोई रचना है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य अपने लिए सबसे ज्यादा लाचार व्यक्ति है। और मतलब हमसे ज्यादा सजग तो प्राणी है। जिन भी लोगों के घर में अगर कुत्ता या बिल्ली जिन्होंने पाल रखे होंगे, वो ये देखेंगे कि अगर वो बीमार पड़ेगा तो सबसे पहले खाना छोड़ देगा। आप ये देखिए, आज हमारे पास हर विधा, हर ब्रांच के डॉक्टर हैं। जो जंगल में शेर रह रहे हैं, हाथी रह रहे हैं, बंदर रह रहे हैं, हिरन रह रहे हैं, मगरमच्छ रह रहे हैं पानी में, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? जो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी छोटी छोटी मछलियां समुन्द्र में तैर रहे हैं, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? प्रकृति ही उनकी माँ है और वो प्रकृति के ही हिसाब से चल रहे हैं। वो आप देखिए ना, जंगल में कौन सा जानवर प्रोसेस्ड फूड खा रहा है या पैक्ड फूड खा रहा है? वो तो वही खा रहा है जो उसे प्रकृति दे रही है। और हम भैया, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर हमारी तो ये मानसिकता है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। आप कह दीजिए जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना, कल से करेंगे। इस समय अगर बहुत ठंडक है तो लोग कहेंगे यार कौन सुबेरे सुबेरे रजाई से निकलेगा, कहीं निकले तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये ठंड है भाई, रजाई में भी थोड़ा पड़े रहते हैं, जब ठंड कम होगी तब टहलने निकलेंगे। भैया अगर वातावरण सुबेरे का टेम्परेचर 10 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी आज 74 साल की उम्र में बिना चप्पल के नंगे पैर मट्टी पर टहलने रोज जा रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, सुबेरे सुबेरे का भी अगर जो टेम्परेचर हो 28 डिग्री 30 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी नंगे पैर मिट्टी पे घूमने जा रहे हैं। वो रोज जा रहे हैं, सिर्फ बारिश में नहीं जा पाते हैं क्योंकि बारिश में मिट्टी पे नहीं चला जाता, आपके फिसलने का डर है, तो वो घर पे टहलते हुए मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि वो कोई भी चीज जो मतलब उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया है, वो कोशिश करते हैं कि वो हल्का भोजन करें, वो कोशिश करते हैं रोज एक्सरसाइज करें। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें रोज एक्सरसाइज, रोज संयम से भोजन करना पड़ेगा।
0: संयम और भोजन, एक्सरसाइज या हमारी कसरत, इन चीजों पर जब हम ध्यान देते हैं और इन चीजों को हम हर दिन एक रूटीन बनाते हैं, तब हम स्वास्थ्य की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए जाते हैं। हर दिन स्वास्थ्य के लिए मंगल की कामना करना, निरामय रहने की प्रार्थना करना अच्छी बात है, मगर उस प्रार्थना को कार्यान्वित करना भी हमारे हाथ में है, और उसे कैसे किया जाता है आपने चीज बताई। पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो आप ये बता रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन को अगर हम सही समय पर सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उससे अलग कॉम्प्लिकेशंस शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। आपने पाइल्स की बात की, बावासीर की बात कही थी, इसी विषय पर मैं कुछ और जानकारियां लेना चाहता हूं। आप ये बात कह रहे थे कि पाइल्स को जब व्यक्ति जब उसको समझ में आता है उसको पाइल्स हुआ है, तो बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करते हुए नजर आते हैं कि कई लोग कई तरह की चीजें कराने के लिए ये चीज देखते हैं। एलोपैथी में अक्सर लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए भी लोगों को कहा जाता है कि नहीं, पहले आप दवाइयां लीजिए, उससे आप इसे ठीक कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा, इत्यादि चीजें बोली जाती हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बवासीर या पाइल्स को ठीक करने के लिए इलाज के तरीके क्या हैं, क्या क्या अलग अलग चिकित्सीय पद्धतियां इस बात पर कहती हैं।
1: सबसे पहले पाइल्स जो है वो मोटा मोटी दो तीन तरह की होती है, एक जो अंदर और एक जो बाहर। बाहर वाली को पकड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब आप अपना गुदा द्वार साफ करते हैं तो आपको महसूस होता है कुछ है वहां पे और आपको तुरंत मालूम चल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो ब्लीडिंग, मतलब जिनसे खून निकल रहा था, खूनी बवासीर जिसे कहते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, उसको भी पकड़ना आसान है, क्योंकि जिस दिन खून निकलता है और आदमी को जब अपना खून दिखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, गरीब बाप रे खून निकल गया। वो मस्से को अवॉइड करता रहता है, मगर जैसे ही खून देखता है तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। और ये हमारी देखिए प्रकृति की कितनी अच्छाई है कि वो जैसे ही खून देखेगा, खून से जो भय होता है वो तुरंत, और आदमी के मन में आता है अरे बाप रे खून बह गया, अब तो मैं मर ना जाऊं, चलो तुरंत डॉक्टर के पास। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको मस्सा महसूस हो रहा है या खून निकल रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आपने उपचार की बात की, तो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि बवासीर रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। और सबसे कॉमनली ये जो है वो अगर आपको लंबा कॉन्स्टिपेशन हो तब हो रहा है। और जो पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो हम हो सकता है कि तुरंत बवासीर को भी ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहला इलाज, अगर हर पैथी को हटा दीजिए, हर विधा को हटा दीजिए, वो है पानी पीना। अगर आप ठीक से पानी पिएंगे तो आपका जो मल है वो कड़ा नहीं होगा, उसमें ताकत आपको नहीं लगानी पड़ेगी और आपका जो पेट है वो ठीक से साफ हो जाएगा। और जहां वो नॉर्मली साफ होने लगेगा आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, आप जोर नहीं लगाएंगे। अब कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, आप पहली बात तो जोर ज्यादा लगाते हैं तो मसों में उन मांसपेशियों में ताकत, मतलब वो अपनी जगह से हिलती खुलती बंद होती है। और दूसरा, जब पानी कम हो जाता है तो आप जो कड़ा मल है वो रगड़ते हुए चीजों को बाहर निकलता है। तो सबसे पहला काम कि आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, मतलब ज्यादा खुज्जे वाला भोजन आपको करना चाहिए। बवासीर में हम बोलते हैं हाई फाइबर की जगह कंट्रोल्ड फाइबर का भोजन करना चाहिए, कि इतना भी हम फाइबर न ले लें कि जिससे वो भी उस क्षेत्र को रखड़ने लगे। एक सबसे सिंपल बात ये समझिए कि जब प्राकृतिक चिकित्सा एक बात और बोलती है कि जब आंतों में बहुत गर्मी आ जाए तो भी आपको बवासीर हो जाएगा। आंतों में गर्मी क्यों आ गई, आप ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादा क्या काम कर रहे हैं, आप आंतों को रोज कह रहे हैं धक्का दो, निकालो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, और हो ही नहीं रहा है। तो आंतों की गर्मी को शांत करना भी बहुत जरूरी है। और इसका सबसे जो प्रकृति चिकित्सा में है वो है मिट्टी की पट्टी पेट पे रखने से आंतों की गर्मी शांत होती है। पुराने प्राकृतिक चिकित्सालयों में गुदा द्वार पे भी मिट्टी को गोला बना के रखा जाता था, पर इसे मॉडर्न मेडिसिन ने इसका एक सिंपलर तरीका बताया है कि मिट्टी में इंफेक्शन ना हो जाए, उसमें गंदगी, कैसी मिट्टी मिली आपको, और आजकल साफ सुथरी अच्छी मिट्टी मिलना बड़ी मुश्किल चीज हो गई है। तो वो है आपको पानी में बैठना, इसको इंग्लिश में सिट बाथ का कहते हैं। और एक बड़ा सिंपल है कि आप किसी भी टब में ठंडा पानी या नॉर्मल पानी डालकर उसमें बैठिए, और आप जैसे ही उसमें बैठेंगे, आपकी गुदा द्वार की सिकाई होगी, और जहां आपकी गुदा द्वार की सिकाई होगी वहां आपको आराम मिलने लगेगा। कुछ लोग इसमें हल्का गुनगुना पानी भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आप नॉर्मल वाटर या हल्का गुनगुना पानी लेकर अपने जो मल का द्वार, आप एक पानी को एक टब में लेकर आप उसमें बैठ सकते हैं। बहुत से लोगों को बवासीर कोई एक पर्टिकुलर फल या कोई एक पर्टिकुलर सब्जी खाने से भी होता है जो उनको परेशान करती है। अगर हम देखें तो मैं किसी फल का नाम और किसी सब्जी का नाम यहां लेना नहीं चाहूंगा, उसका सिर्फ ये रीजन है कि कल से अगर आदमी को शक पैदा हो जाएगा कि शायद मुझे इसकी वजह से हो तो नहीं हो रहा है, तो आप खुद ढूंढिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर फल या एक पर्टिकुलर आप सब्जी खा रहे हैं और उसको खाने से आपको अगर परेशानी हो रही है तो आपको उसका त्याग थोड़े दिनों के लिए कर देना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक चीज और देखी है कि चोकर समेत आटे की रोटी खाने से बवासीर में और कॉन्स्टिपेशन में आराम होता है, और कुछ लोग जब इसको नहीं खा पाते हैं तो उन्हें हम गेहूं का दलिया खिलाते हैं। बहुत अच्छे से अगर हरी सब्जियां उन्हें खिलाएं, जैसे पालक है, बथुआ है, तरोई है, परवल है, पात गोभी है, मूली है, पपीता है, पका केला है, खरबूजा है, फलों में खरबूजा, सेब, नाशपाती, दूध पिलाने से इनसे भी कॉन्स्टिपेशन में और बवासीर में आराम मिलता है। हम लोग वैसे चिकित्सा में दालों को अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि दालें थोड़ी गर्मी पैदा करती हैं, तो उस गर्मी से कभी कभी बवासीर उभर जाता है। तो जो सबसे अच्छा चीज है जो कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स दोनों में आराम देता है वो है मुनक्का, अंजीर और किशमिश। इसको जितना आपने मुनक्का लिया इससे इसको दुगने या तिगुने पानी में इसको अच्छे से धोकर इसको रखिए, ये 12 से 14 घंटे तक भिगाइए, सुबेरे भिगा दीजिए और शाम को आप इसको खा सकते हैं। अगर आप इसको खाएंगे तो ये ताकत भी देता है, आपको अच्छा फाइबर भी देगा, और इससे आपको जो है आपकी जो समस्या है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बहुत सारे लोगों में इसबगोल की भूसी भी हम लोग इस्तेमाल करने को कहते हैं, पानी में इसबगोल मिला सकते हैं। आप छाछ में मतलब दूध, पानी और दही थोड़ा सा मिलाकर आप अगर इसका प्रयोग करिए तो वो आपको आराम देगा। प्रकृति चिकित्सा में आंतों को ठंडक पहुंचाना, गुदा द्वार को ठंडक पहुंचाना, और भोजन में कंट्रोल्ड फाइबर या ऐसी चीजें जिससे आपको हेमरॉइड या पाइल या बवासीर हो सकता है उसको हटा देना आपका इलाज है। जब ये सारी चीजें करके आपको नहीं आराम मिलता है तो फिर हम उपवास कराने की बात करते हैं, क्योंकि जब पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो आपकी आंतें जो हैं वो अगर मिट्टी की पट्टी और एनिमा आपको दिया जाएगा तो आपकी आंतें को कम काम करना पड़ेगा, उनको ताकत कम लगेगी और वो अपने आप हील कर पाएंगे। तो अगर आप सप्ताह में एक दो दिन का उपवास कर लें और मिट्टी की पट्टी एनिमा ले लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन एवं बवासीर दोनों में आराम मिलेगा। ये सारी बातें जो हैं वो प्रकृति चिकित्सा एवं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी में जब ये आउट ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग होने लगती है या वो मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो गुदा द्वार को जो है वो ढकने लगता है और बहुत परेशान करने लगता है, तब उसमें इस जो मसा है उसको सर्जरी से हटाया जाता है, मसे की गर्दन को एक रबर के बैंड से बंद करके उसको हटाया जाता है, या उसको जो कॉटरी से मतलब हम लोग उसको वहां से हटाकर जो उसकी समस्या है जो लोकल है उसको हटा देते हैं। मगर उसके बाद भी ये बोला जाता है कि आप भोजन पे कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छा हाई फाइबर डाइट लेंगे और आप कोई भी ऐसा चीज नहीं खाएंगे जो बहुत प्रोसेस्ड हो, बहुत लो फाइबर हो, मैदा बहुत हो, जो चीजें आपकी आंतों के मूवमेंट को कम करती हैं उसको आप एकदम नहीं खाएंगे अगर आपको बवासीर की समस्या हो चुकी है।
0: ये बात समझ में आ रही है कि जब हम समस्या के कारण को समझते हैं तो उसके निवारण को समझना भी आसान है। इलाज के लिए पहले तो हम उन्हीं चीजों को ठीक करें जो इस समस्या को ले आने का कारण बनती हैं। और इस तरीके से जब हम अपने इलाज के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम न सिर्फ उस समस्या से उस समय के लिए निजात पाते हैं, मगर आगे वो समस्या लौट कर हमारे पास आए ही नहीं, वो बीमारी हम तक पुनः आए नहीं, इसलिए भी हम अपने आप को सुधार लेते हैं। इस सुधार से स्वस्थ रह पाना संभव है, ये चीज समझ में आती है। आज बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है जिसमें हम ये बात समझ रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के संबंधित अनेक जो बीमारियां देखते हैं उसका इलाज हमारे पास हमारे हाथों में है, और बहुत ही सरलता से और सहजता से इस चीज को हम समझकर अपने स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को हम सहजता से पा भी सकते हैं। घड़ी इशारा करती है कि यहां रुकना होगा, मगर आज आप सभी श्रोता मित्रों को बवासीर और कॉन्स्टिपेशन कब्ज से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कैसे किया जाता है इस पर सही मार्गदर्शन डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी है वो सिर्फ जानकारी मात्र नहीं है, ये अनुभव कर अपने जीवन में लागू करने वाली चीजें हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से परेशान है तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करें, उन्हें मदद पहुंचाएं और बिना हिचकिचाहट के अपनी बीमारियां या समस्याओं को बताने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं लेकर आपके फेवरेट शो को, जिसका नाम है
2: सपनों की सैर।
3: तो बच्चों, गणपति बापा के दिन चल रहे हैं, मजा आ रहा है ना, सब सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। नए नए जगह पर आप गणपति देखने भी जा रहे होंगे, कितना अच्छा डेकोरेशन किया होता है।
1: हाँ, और इस समय माहौल में भी अलग सी धूम होती है, मजा होता है।
3: हाँ बच्चों, और गणेश जी भी हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं। फिर जब हम उनको विसर्जन करने जाते हैं तब बड़ा दुख होता है।
1: हाँ सही कहा, और फिर घर भी खाली खाली लगने लगता है।
3: हाँ बच्चों, तो चलो आज सुनेंगे फिर से गणपति बापा की नई कहानी।
1: हाँ, गणेश जी और महाभारत के बारे में।
3: बच्चों, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का विचार किया। उन्होंने गणेश जी से उसे लिखने में सहायता मांगी।
1: और पता है गणेश जी ने क्या कहा? मैं लिखूंगा, लेकिन आप बिना रुके बोलते रहेंगे तब।
3: हाँ बच्चों, और वेदव्यास जी ने एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे।
1: हाँ, और इस प्रकार गणेश जी ने पूरी एकाग्रता और बुद्धिमत्ता से महाभारत लिखने में सहायता की।
3: तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें क्या समझाती है? किसी भी कार्य को एकाग्रता, धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए।
1: हाँ बच्चों, तो देखा, रोज गणेश जी हमें नई नई शिक्षा देते हैं।
3: हाँ, और गणेश जी तो प्रतीक है ना बुद्धिमानी का।
1: सही कहा परी। तो बच्चों, अभी तो आगे और भी बातें करनी है, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद।
3: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आ जाओ बच्चों, रेडियो के पास कहानी शुरू हो रही है, जल्दी से वॉल्यूम लाउड कर लो। आज शेर की कहानी सुनेंगे। एक घंघोर जंगल था, उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन रीछ, भेड़िया, लोमड़ी और शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। बच्चों, शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला करके उसको मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के चार हिस्से किए।

लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। बच्चों, रीढ़, भेड़िया, लोमड़ी ने तो चार हिस्से शेर को दे दिए और वहाँ से चुपचाप खिसक गए। देखा बच्चों, कहानी कैसे हमें समझाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना बच्चों। लेकिन कभी भी बच्चों अहंकार में आकर हमें ऐसे किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमने मिलकर काम किया है तो बराबर हिस्से में बांटना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सप्तद्वीप नौखंड अर्थात विजयनगर के पड़ोसी राज्य के बारे में, जो कि बहुत ही सुंदर था, पहाड़ियों से भरा हुआ बहुत ही संपन्न राज्य। लेकिन वहाँ के राजा विचित्र भानु ने बहुत से तरह के शुल्क और कर लगा दिए, जिससे वहाँ की प्रजा अब सुखी नहीं रह गई। तो अब इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो महाराज विचित्र भानु ने आसपास के राज्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए गुप्तचर भेजे और 6 माह की अवधि में जो सप्तद्वीप नौखंड के गुप्तचर थे वे पड़ोसी राज्यों से लौटे और सभी सूचनाएं महाराज विचित्र भानु को बताई, और जिससे उसे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य जो विजयनगर है वो सबसे वैभवशाली राज्य है, वहाँ की प्रजा खुशहाल है और वहाँ के राजा महाराज कृष्णदेव राय अपने राज्य में तो सर्वाधिक लोकप्रिय है ही, साथ ही आसपास के राज्यों में उनके जैसा लोकप्रिय राजा भी कोई नहीं है। तो इन सब सूचनाओं के निष्कर्ष से वो जो महाराज विचित्र भानु था वो थोड़ा दुखी हुआ और उसके अभिमान को ठेस पहुंची, और अब वह यह जानने को उत्सुक हो गया कि विजयनगर में ऐसा क्या है जिससे वहाँ के लोग खुशहाल हो गए। फिर से उसने अपने गुप्तचरों को भेजा और गुप्तचरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि विजयनगर के लोग परिश्रमी हैं और प्रायः प्रत्येक घर में रोजगार का कोई ना कोई साधन है। कपड़े बुनने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, चांदी का काम करने वाले हैं, लोहे का सोने का काम करने वाले हैं, वहाँ पर कुटीर और लघु उद्योगों का जाल बिछा है, खेत खलिहान में भी काम करने वाले लोगों के पास कोई ना कोई धंधा अवश्य है। तो इस तरीके से महाराज कृष्णदेव राय के पास भी समृद्ध गौशाला है, दुग्ध उत्पाद की प्रचुरता है, उपलब्धता है, सभी तंदुरुस्त हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हाथियों से भी टक्कर लेने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इस प्रकार से विचित्र भानु ने जब विजयनगर के बारे में ये सब सुना तो उसका मन बहुत चिंतित हो गया बच्चों, और उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। अब चलो भाई अब आगे क्या होगा, अब ये महाराज विचित्र भानु क्या करने वाले हैं विजयनगर के साम्राज्य के विरुद्ध, वो तो अब हम जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास, फिर से मनी दीदी और परी आ गए हैं अंतिम कड़ी को लेकर के। पिछली कड़ी में हमने पहेली पूछी थी, याद है ना? ना रंग मेरा ना कोई गंध, जीवन में मेरा बड़ा संबंध, नदियों बादल और सागर में रहूं, बताओ मैं कौन हूँ।
2: बच्चों इसका सही जवाब है पानी, यानी ना तो कोई रंग है नहीं कोई गंध है, और जीवन में बड़ा संबंध होता है। पानी के बिना तो गुजारा ही नहीं होता, नदियों बादल और सागर में भी तो पानी ही होता है ना, तो सही जवाब है पानी।
1: हाँ बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। कीचड़ में मैं खिलता हूँ, फिर भी बड़ा सुंदर दिखता हूँ, भारत का हूँ मैं राष्ट्र फूल, बताओ मेरा नाम क्या है।
2: हाँ बच्चों, तो कीचड़ में खिलने वाला कौन सा फूल होता है, वही फूल है इसका जवाब। तो चलो सही जवाब हमें 9914151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
1: हाँ बच्चों, क्योंकि आज की पहेली तो बहुत ही आसान है, और साथ में क्या करना है याद है ना?
2: भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना है। तो चलो जल्दी से करो और हम भी करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर
1: सपनों की

बोल झूला झूले, झूला झूले रे सांवरिया, आगी ग्यारस की रमजोल। तो जल चुलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि प्राप्त कर लेती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, साबुदाना हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है और कौन सी बीमारियां ठीक करता है आप जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो भाई आज मैं आपको रेसिपी में फराली आइटम सिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज है जलनी झुलनी एकादशी और बहुत सारे भाई बहन आज के दिन उपवास करते हैं, तो फराली रेसिपी सिखाऊंगी, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी को जलजुलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशाना कार्यक्रम में स्वागत है फिर से आप सभी का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का सुंदर सा विचार है मिट्टी का प्रभाव। पढ़ता ही है, जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि प्राप्त कर लेती है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। मार्कंडेय पुराण में एक दृष्टांत आता है। एक बार की बात है, राम लक्ष्मण सीता जी जब वन में प्रवास कर रहे थे, मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कई ने तो वनवास राम जी को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था। 2-3 दिन यही क्रम चलता रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो लक्ष्मण जी ने इसका कारण राम जी से पूछा। श्री राम जी ने कारण बताते हुए कहा, भाई तुम्हारे मन में इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहां पर सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी की किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में तो झगड़ने वाले हैं नहीं, अतः अमरता के अहंकार में वो देवों को सताना उन्होंने शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन करके उन असुरों के पास भेजा। सुंद और उपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए। तुम मेरी हो और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों आपस में लड़के मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की ये मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया है लक्ष्मण, इसलिए तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ है। इसीलिए कहा जाता है जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। यह हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, साबुदाने पर। साबुदाना किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारी ठीक करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करता है जानेंगे आप। देखिए, साबुदाने की पतली खिचड़ी बनाकर उसमें थोड़ा सा घी, जीरा और सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट के कारण ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो साबुदाने की आप पतली खिचड़ी बनाइए, उसमें थोड़ा घी, जीरा और सेंधा नमक डाल करके आप खाइएगा। इससे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके कारण ऊर्जा मिलती है, कमजोरी नहीं रहेगी। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। साबुदाना अच्छी तरह भिगो करके पतली खिचड़ी या दलिया जैसा बना लीजिए। बहुत अधिक तेल मिर्च मसाला नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हमारे जो पाचन क्रिया है उसको ठीक रखेगा। साबुदाना खिचड़ी में मूंगफली और थोड़ा दही मिलाकर खाइएगा, इससे भोजन और भी अधिक पौष्टिक हो जाता है। फिर साबुदाने की पतली खीर या मांड जैसा हल्का व्यंजन आप ले सकते हैं, लेकिन पानी की कमी में मुख्य रूप से पर्याप्त पानी और जरूरत पड़ने पर ORS जरूरी है। यदि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बता रही हूँ, यदि उन्हें हल्का भोजन चाहिए तो अच्छी तरह पका हुआ नरम साबुदाना थोड़े से घी के साथ दिया जा सकता है। इन्हें खाने में कोई चिकित्सीय मनाई नहीं होती है। अगर कोई भी प्रकार की ऐसे बीमारी है, तकलीफ है, भारी भोजन नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह ले सकते हैं आहार में। और कमजोरी, थकान में इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, इसलिए ऊर्जा जल्दी मिल जाती है। तो साबुदाना खाने का ये फायदा है। हल्की खिचड़ी या साबुदाना पानीदार रूप में कुछ लोगों को आसानी से पच सकता है, पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। और देखिए, वजन बढ़ाने की जरूरत, कैलोरी अधिक होने के कारण भोजन में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और डायबिटीज में साबुदाना सीमित मात्रा में लेना है, क्योंकि इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट काफी होता है। और किसी बीमारी का इलाज केवल साबुदाने या घरेलू नुस्खे से करने के बजाय आप डॉक्टर की सलाह भी लीजिएगा। लेकिन आहार में आपको साथ ही साथ इसलिए नॉलेज देते हैं कि आप ऐसी चीजें हल्के फुल्के खा सकते हैं, ताकि दवा और दुआ दोनों ही काम करे। और बाकी साबुदाना कमजोरी, गैस, डायबिटीज, वजन, ये इन सब का सवाल हो तो उसमें मतलब सीमित मात्रा में आपको लेना है। वजन भी बढ़ाता है, बाकी ये जल्दी से पच जाता है और भारीपन नहीं आता है। ठीक है, और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, जल झुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: जल की लहरों में भक्ति का रंग गुल जाए, जल की लहरों में भक्ति का रंग गुल जाए, मन के आंगन में प्रभु का प्रेम खिल जाए। जल जुलने एकादशी का पावन त्योहार हर जीवन में लाए खुशियां अपार। जय श्री हरि, मंगलमय हो ये दिन, जय श्री हरि, मंगलमय हो ये दिन, भक्ति से मैं के हर पल और हर क्षण। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में पुनः आप सभी को जलजुलनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम रेडियो मधुबन में भी जलजुलनी एकादशी का त्योहार ही मनाएंगे। भाई ये तो त्योहार ही है ना, भले ये तिथि है, एकादशी तो हर महीना आती है। आप सोचते होंगे कि अरे महीने में दो एकादशी आती है, फिर भी उषा दीदी झलझुलनी एकादशी मना रहे हैं रेडियो में। पर भाई झलझुलनी का तो अपना ही महत्व है ना, याद करिए झलझुलनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, कौन जुड़ेंगे और बताएंगे। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या है, वो सारे नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए और विषय में जुड़ने के लिए, झलझुलनी एकादशी मनाने के लिए जुड़ सकते हैं आप रेडियो मधुबन से। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी रेडियो मधुबन में जुड़ करके झलझुलनी का त्योहार मना सकते हैं। आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है आज ये त्योहार ऐसा है कि सुबह से चहल पहल शुरू हो जाती है। और भाई आज तो चलिए क्यों मनाई जाती वो हम ही बता देते हैं। जैसे कि हम श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते जन्माष्टमी, तो कहते कि आज के दिन श्री कृष्ण जी को नीलाया जाता है, वो भी देखिए किवन दीतिया है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, वो भी नदी के किनारे तालाब पर इस तरह के जहाँ पानी का स्थान है वहाँ जा करके उनको स्नान कराया जाता है। तो और ऐसे भी कहते हैं कि यशोदा मैया पोतड़े धोने जाती है श्री कृष्ण जी के नदी के किनारे, इसलिए भी ये झलझुलनी एकादशी मनाई जाती है। खैर जो भी है, लेकिन हम तो खुशी मनाए ना भाई, हर त्योहार का आनंद लीजिए आप। हमारा भारत देश ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में भी पूरा एंजॉय करता है, पूरा आनंद लेता है, और अच्छा है ना। इसी बहाने जीवन में खुशियां बनी रहे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हल्की सी उदासी आई नहीं कि कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, फिर मन खुशी से भर जाता है, मन में यही विचार चलता है जाने दो छोड़ो ये सारी बातें, जो पुरानी पर बिंदी लगा दो, नई शुरुआत करो, हमें सोचना ही नहीं क्यों त्योहार के दिन हमारा मूड खराब करे। ऐसा सोचते है ना, मूड भी चेंज हो जाता है, खुशियां भी आ जाती है, और मूड अच्छा रहता है तो पूरे घर का माहौल अच्छा रहता है। जैसे घर के मुखिया है, मान लीजिए दादी दादा मम्मी पापा जो भी है, एक का भी मूड खराब होगा तो पूरे घर में उसकी दहशत छाई रहेगी, है ना। सभी ये सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, अरे मम्मी का मूड अच्छा नहीं, बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, कहीं मम्मी का गुस्सा हमारे ऊपर ना उतर जाए। पति को भी थोड़ा लगेगा अरे पत्नी कहीं दो चार भजन न सुना दे। पति का मूड खराब होगा तो पत्नी सहमी सहमी रहेगी, बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, ना वो घर में अच्छी तरह खुश रह पाएंगे, और ना ही बाहर निकलेंगे तो भी संकल्प यही चलेगा अरे आज तो भाई पतिदेव नाराज है, पता नहीं बाहर जाऊं ना जाऊं, कितने तरह के संशय आ जाते हैं। और जैसे ये त्योहार आता है सबका मूड अच्छा हो जाता है कि जाने दो भाई क्यों आज त्योहार के दिन, और पत्नी भी थोड़ी हक से कह देती है पति को अरे त्योहार के दिन भी मूड क्यों खराब कर रखा है। पति भी कह देता है अरे क्या हुआ, त्योहार है उसका आनंद लो ना, क्यों मूड खराब कर रखा है। तो फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता है, सादे दिन में बोल तो देखे दो चार बातें आपको सुनने को मिल जाएगी। इसलिए अपना भारत देश बहुत अच्छा है कि थोड़े थोड़े दिन में त्योहार आ जाते हैं, ताकि गिले शिकवे नाराजगी सारी समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी शिकायतें खत्म हो जाती है और फिर से परिवार में खुशियां छा जाती है। बाकी घर में जो भी बड़े एक का मूड अपसेट होता है तो सभी अपसेट हो जाते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण जी का आज के दिन बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। भक्त लोग नाचते गाते अभील गुलाल रंग उड़ाते हुए तालाब पर जाते हैं। और पता है आप सभी को, जितने भी मंदिरों की पालकियां होती है वो पालकियां एक जगह इकट्ठी होती है, मेन जो बाजार होता है ना, सारी पालकियां वहां इकट्ठी होती है बैंड बाजा के साथ। भक्त जन नाचते गाते फिर सभी पालकियों को साथ में लेके जाते हैं, कलर डालते एक दूसरे ऊपर, और महिलाएं अच्छे अच्छे भजन गाती जाती है। वैसे तो बैंड बाजा की आवाज में आवाज ही दब जाती है, कहते हैं कि बाकिया की आवाज में पुपाड़ी की कौन सुने। फिर भी महिलाओं को शौक रहता है भजन गाने का, क्योंकि वही एक भक्ति का आनंद ही एक अलग ही है। तो भले बैंड बाजा बजे लेकिन महिलाएं पीछे पीछे, पालकियों के आगे तो पुरुष लोग चलते हैं, पालकियों के पीछे महिलाएं चलती है, वो भी भजन कीर्तन करती जाती है, नाचती गाती है, और पुरुष लोग भी नाचते गाते मंदिरों में जो पालकियां एक जगह इकट्ठी की हुई होती है वो जहाँ भी अपने गांव की व्यवस्था के अनुसार लेके जाते हैं। कहीं नदी की व्यवस्था है, कहीं तालाब की व्यवस्था है, तो वहाँ पर लेके जाते हैं। और क्या बात है, आज मैं ही मैं बोली जा रही हूँ, क्या मैं अकेली मनाऊंगी क्या? अरे जलजुल्ले एकादशी का मेला लगता है जगह जगह, मेरे को लगता है हमारे श्रोता बंधु मेले में पहुंच गए, गड़बोड़ धाम पहुंच गए क्या? चार भुजा जी में बहुत सुंदर मेला लगता है। मेवाड़ के तीन तीर्थ, चार तीर्थ ऐसे है जहाँ पर इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। आप श्रीनाथ द्वारा चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है। आप चित्तौड़ जिले में भातसोड़ा तहसील में सांवलिया सेठ चले जाइए, सांवलिया धाम, वहाँ पर भी जबरदस्त मेला लगता है। और आप गाणेराव सादड़ी के पास गड़बोड़ धाम है, चार भुजा जी का धाम है, वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत जबरदस्त मेला लगता है। आज के दिन कोई घूम जाए, किसी का हाथ छूट जाए बच्चों का, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में ऐसा होता है, एक धक्का आता है आप आगे पहुंच जाते हो, दूसरा धक्का आता है पीछे चले जाते हैं, तो बिछुड़ना ही है। इसलिए बच्चों को बहुत ही सोच समझ करके ऐसी जगह लेके जाना है, ठीक है? और लेके गए हैं तो बच्चों को छोड़ना नहीं है, ठीक है? बच्चों का हाथ पकड़ के रखना है और भीड़ भाड़ में घुसना ही नहीं, किनारे चलिए, ताकि न बच्चे बिछुड़ेंगे और ना ही टेंशन आएगा। भाई अपना ध्यान अपने को रखना है, अपनी सावधानी अपने को रखनी है। बाकी देखिए गुजरात में भी, जो राजस्थान के लोग रहते हैं, तो गुजरात में भी जगह जगह इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में तो जबरदस्त परंपरा है जलजुलनी एकादशी मनाने की। दूसरी जगह का तो पता नहीं, क्योंकि हम तो राजस्थान की मिट्टी में बड़े हुए हैं, पले बड़े, तो पता है कि इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। जो आँखों से देखा है और जीवंत इस जीवन को जिया है तो भूल नहीं सकते। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, हमारी प्यारी बहन उषा जी।
0: हाँ जी, दयाराम जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी दादियों की, बहनों की, सभी आज भाइयों की, मेरे प्यारे मित्रों की, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ, क्लियर से आवाज आ रही है।
0: अच्छा, चलिए, अच्छी बात है।
1: बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आते ही आपने पेश किया, नुस्खे भी बहुत सुंदर दिए और विचार भी बहुत सुंदर सुनाया।
0: थैंक यू।
1: प्रश्न भी बहुत सुंदर है और विषय भी बताइए आप थोड़ा।
0: जी विषय यही, आज जलजुलनी एकादशी है तो जगह जगह इसका मेला लगता है, तो कैसे मनाते हैं आप इस दिन को, खास कैसे करते हैं?
1: जी जी जी जी बिल्कुल, जो ये हमारा पवित्र माह चल रहा है, जो भाद्रवा और इससे पहले श्रावण मास था, तो ये दोनों मास तो पवित्र होते हैं, तो इसमें हम दर्शन के लिए ज्यादा जाते आते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं तो गुजरात में अंबाजी है, तो वहाँ इस भाद्रवी पूनम का बहुत बड़ा मेला लगता है, कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जाते।

0: हाँ जी, यहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है बहुत जगह पे। राजस्थान में जो रामदेव पीर है जनुजा, वहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है लाखों की संख्या में
1: जी।
0: तो हम जाते हैं तो एक साथ रहते हैं, और हमारा मोबाइल होता है तो कहीं गम हो जाती है तो हम डायरी में उसका नंबर एक दूसरे के लिख के रखते है, ताकि हमारा कुछ मोबाइल मोबाइल हमारे साथ से कोई छीन ले, कहीं गिर जाए तो एक दूसरे को हम संपर्क कर पाए, तो इस तरह का हम रखते है। और एक बार मैं भी गया था तो बहुत बड़ा, पिछले साल महाकुंभ हुआ था उसमें गया था तो हमारे एक साथी एक दो हमारे से बिछड़ गए थे, तो कहीं हमें एक दूसरे को फल भी नहीं लग रहा था। तो हम मैं तो वैसे जानकार था तो आप जैसे गुरुओं ने मुझे बहुत शिक्षा दी थी, तो मैं उस वक्त चला गया और जो पुलिस वाले होती है तो उसके पास जो माइक लगा भी होता है
1: जी।
0: तो मैं वहाँ जाके माइक में बोला, उसको बताया हमारा एक साथी छूट गया पता नहीं कहाँ है, तो वहाँ ऐसी जगह है जो माइक लगे होती है जो लाउड स्पीकर लगा होता है, तो वहाँ एक जगह बोलते है तो सभी जगह हमारी सुनाई देती है
1: जी।
0: तो कहीं कोई हमारा साथी या जो बच्चा है कहीं छूट जाए तो पुलिस का संपर्क करे, कार्यालय में जो माइक लगा हुआ है उसको हम जाके माइक्रोफोन से अपनी आवाज बोलिए, आप बताइए कि हम पहले कहाँ जाए पिए रहे थे, कहीं नाश्ता कर रहे थे, कहीं हम उतरे थे, वहाँ आप आ जाइए, हम आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा मिल जाएगा, कोई भी साथी है बच्चा है खोया हुआ मिल जाएगा और हम एक साथ हो जाएंगे
1: जी।
0: और सभी सुनने वाले प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, दीदी आपको प्रणाम है,
1: बहुत बहुत आभार दयाराम जी।
0: सवाल तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा।
1: अच्छा, थैंक यू,
0: धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे दयाराम जी रामपुरा से, बहुत सुंदर बात आपने भी बताई है कि देखिए इस त्योहार का कैसे आनंद लेते, खैर जगह जगह मेला लगता है, अभी अंबाजी में भी लगेगा, वो अंबे माता का मेला लगेगा, लेकिन आज के दिन जो लगता है ये मेला झलझुली एकादशी का लगता है, और ये 5 दिन का मेला रहता है, ये जैसे 8वीं-9वीं से शुरू हो जाता है तो ये 13 के दिन खत्म हो जाएगा। वैसे तो आज का दिन खास रहता है, फिर धीरे धीरे श्रद्धालु अपने घर पर जाना शुरू कर देते हैं, 13 के दिन तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत धूमधाम से आज के दिन, तो क्या बताऊं आपको, बहुत मतलब जहां मेला नहीं लगता ना उन गांवों में भी आप जाके देखिए, उन शहरों में उन कस्बों में भी आप जा करके देखिएगा क्या चहल पहल रहती है, और मेले जैसा ही माहौल आपको दिखाई देगा, क्योंकि भाई हर एक गांव में कितने सारे मंदिर होते हैं, जहां पर भी जैसे नारायण का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, चार भुजा जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, तो वहां की सारी पालकियां एक जगह एकत्रित होती है, और एक गांव में कितने मंदिर होते हैं वो आप समझ सकते हैं, जैसा गांव वैसे मंदिर, भाई छोटा सा गांव है तो 2-4 मंदिर तो होंगे, कस्बा है तो 25-30 मंदिर होंगे, शहर है तो फिर पूछिए मत कितने मंदिर होंगे, तो बड़े बड़े शहरों में तो एक जगह सारे पालके लाना मुश्किल होता है, क्योंकि कम से कम 100-150 मंदिर होते हैं, तो फिर उनका भी स्थान फाइनल होता है कि 40-50 एक जगह इकट्ठे होते हैं, जो एरिया में पानी के व्यवस्था होती है वहाँ वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन कस्बों में तो आप देखिएगा 25-30 मंदिर की पालकियाँ एक जगह इकट्ठी होती है, और भक्तजन अपने मंदिर, अपने जैसे मोहल्ले के मंदिर है तो उस मोहल्ले के सभी महिलाएं पुरुष सभी मंदिर पहुँच जाते हैं, फिर धूमधाम से घासते बाजते पालकी को लेके जाते हैं और एक मेन बाजार में लेके आते हैं, फिर सारी पालकियां धीरे धीरे धीरे धीरे इकट्ठी होती है। हेलो,
2: ओम शांति दीदी।
1: हाँ जी अभय सिंह जी, नमस्कार, ओम शांति, कैसे हैं आप?
2: ज्ञानेंद्र भाई।
1: ओहो ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र भाई कैसे हैं आप?
2: कैसे हैं?
1: हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: अच्छे हैं
1: जी।
2: और जल जीवनी एकादशी को ब्राह्मण एकादशी या देव जीवनी एकादशी भी कहा जाता है।
1: अच्छा,
2: हेलो।
1: हाँ जी, सुन रही हूँ सुन रही हूँ। और आज के दिन क्या कर रहे हैं खास?
2: हमारे यहाँ मनाई नहीं आती, बस तो रहते हैं।
1: अच्छा, नहीं मनाते आपके वहाँ?
2: नहीं।
1: अच्छा अच्छा, तो उपवास तो करते हैं?

0: हाँ फास्ट करते हैं मैडम, मैं नहीं करता।
1: हाँ वो तो कोई बात नहीं, एकादशी तो खैर बहुत जने करते हैं, बहुत जने नहीं करते, लेकिन इस त्योहार को मनाते नहीं है उधर, है ना?
0: जी, हमारे यहाँ जी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार आता है तो उसके वाइब्रेशंस तो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं। भले ये त्योहार हम इधर मना रहे हैं, लेकिन इसके वाइब्रेशंस तो आप सभी तक पहुंच ही रहे, तो भी मन में खुशियां आ जाती है ना, मन खुशियों से भर जाता है। जी, और बाकी सब बढ़िया?
0: हाँ, बढ़िया।
1: अच्छा, और इस त्योहार को, इस तिथि को कौन से महीने में मनाया जाता है?
0: ये भाद्रपद में,
1: कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, क्या?
0: कृष्ण पक्ष में मनाया,
1: कृष्ण पक्ष में। चलिए ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। आप सुनिएगा कार्यक्रम, हम कार्यक्रम के अंत में जवाब देंगे। अच्छा जी, ओम शांति, बहुत बहुत आभार आपका ज्ञानेंद्र जी। तो ये थे ज्ञानेंद्र जी, और आइए अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
3: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
2: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
3: बस बहन जी, खेत में अभी अभी आए, खेत में सुबह सुबह में 6 बजे 6:30 बजे जाना पड़ता है, गर्मी बहुत पड़ती है तो सुबह में जाते हैं तो अभी आ गए, करीबन 10:30 बजे आए
2: जी
3: घर पे।
2: अच्छा, वो कहते झूले में भी राजे प्रभु सजे फूलों की बहार, भक्तों के मन में गूंजे भक्ति का जयकार, जल की शीतल धारा दे मन को शांति अपार, झलझुलनी एकादशी लाए सुख समृद्धि हजार, प्रभु की कृपा से हर मन मुस्काए, हर घर में प्रेम और खुशहाली आए। तो झलझुलनी का त्योहार मना रहे हैं रेडियो में, आप कैसे मनाते हैं, आज के दिन को कैसे खास करते हैं बताएंगे?
3: वाह, हमारे यहाँ एकादशी सभी बहने करते हैं बहन जी, सभी एकादशी करते हैं। आज भी एकादशी मेरे घर से और इन्होंने की है, तो अभी 12 बजे यहाँ मंदिर है, गुरु जी का आश्रम है, तो सभी बहने आएंगे और भजन कीर्तन का करते हैं 3 बजे तक, और फिर प्रसाद करते हैं, ये सब करते हैं हर एक एकादशी को
2: जी, जी।
3: सोमवार गुरुवार एकादशी बीज को यहाँ बहने ये भजन कीर्तन करते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे जो राजस्थान में मनाते हैं ऐसे तो हमारे यहाँ गुजरात में, तो हमारे गांव में तो नहीं मनाते, गुजरात में शायद मनाते होंगे, ठीक है?
2: हाँ जी हाँ जी, राजस्थान में तो इसको धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही जोर शोर से।
3: हाँ जी
2: जी, चलिए बहुत अच्छी तो बात है, फिर भी एकादशी का उपवास तो खैर करते ही है।
3: हाँ, वो एकादशी का उपवास करते हैं सभी बहने करते
2: हैं जी,
3: हमारे गांव में ऐसा एकादशी मनाते।
2: हाँ जी हाँ जी, ठीक है,
3: सवाल का जवाब तो मैं थोड़ा ये करके दूंगा
2: जी, जी जी जी जी, ठीक है।
3: सभी दोस्तों को आपको एकादशी की जरूरत है। एक गीत है मुझे याद आ गया, जन एकादशी एकादशी करिए तू
2: ब्रज सुख पामिए,
3: ए बजा सुना ना एकादशी।
2: अच्छा ठीक है,
3: वो भी गीत आए बहने गाते हैं ना तो मुझे याद है
2: जी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार आपका।
3: हाँ सभी दोस्तों को आपको नमस्कार
2: जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में झलझुलनी एकादशी मना रहे हैं आज हम सभी मिलकर के, और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है जिसको भी दोहरा रही हूँ, झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या क्या है, जरूर बताइएगा। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 94-14-15-14-15। आज का प्रश्न बहुत सरल है और आज का विषय भी बहुत सुंदर है। देखिए खुशियां मनाते हैं लेकिन जब सभी मिलकर के मनाते हैं उसका आनंद ही अलग होता है। एक तो देखो इंडिविजुअल आप एक दो जने मनाओ, एक सभी मिलकर के मनाते हैं उसका आनंद अलग होता है ना, तो आज के दिन यही होता है, सभी मिलकर के इस खुशियों को मनाते हैं, क्या भक्तों की चहल पहल रहती है। हेलो हेलो नमस्ते।
4: आप बुरा राम बोल रहा हूँ सर जी।
2: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
4: बस आपकी दया से बैठे, आके खेत में बैठे, जब अभी फोन चालू किया था आपका फोन चालू था, मैं बोला मेरे को राम राम तो कर दूँ सर जी को।
2: जी जी बहुत अच्छा किया और क्या कर रहे हैं आज झलझुलनी एकादशी है, आप क्या कर रहे हैं?
4: एकादशी झूलने बोले तो देखो, हमारे जितने भी ये 12 महीने में लोग जिनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है, उनका मंदिर में जाके, हमारा विठल भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ 15-16 मंदिर है इधर, तो पूरा सूर्य देव का, न विष्णु देव का, न महादेव का, न गणेश का, न ऐसे करके 16 मंदिर है, और विठल भगवान का बड़ा मंदिर है इधर, तो वहाँ जाके रात को दिया जलाते है उनके
2: जी,
4: दिया जी। जला के फिर सत्संग करते, सब बैठ के बोलते हैं, नया आदमी ने सब बैठ के भजन करते, और पूरी रात निकालते, सुबह फिर अपने अपने घर पे जाते। मित्रा, आज ऋषिकेश का मेला आपके शांति भवन के पीछे मंगले में, वहाँ भी मेला है आज
2: जी, तो जी, जी।
4: ग्यारस का एकादशी को भरता है मेला, तो ये होगा कि घर पे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर मंदिर पे जाएंगे, आज का ये कार्यक्रम है।
2: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया।
4: और
2: बस, और तो इसी त्योहार को मना रहे हैं, और आज का प्रश्न है जो मैं दोहरा रही हूँ, झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है और इसका दूसरा नाम क्या है?
4: ये तो बहन जी अपने को इतना अभी तो मालूम नहीं है, फिर भी एक बच्चे को पूछ के बोलता हूँ, ऐसा ये बच्चे लोगों को मालूम पड़ेगा।
2: ठीक है, झलझुलनी एकादशी कौन से महीने में मनाई जाती? ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है वो आप देखिएगा और जवाब दीजिएगा।
4: ये तो भाद्रवा महीना चल रहा है, भाद्रवा महीना है,
2: तो आज के दिन त्योहार मना रहे हैं, तो आप सोचिएगा ये कौन सा महीना है, उतरता पकवाड़ा है, चढ़ता पकवाड़ा है, क्या है पकवाड़े का नाम पूरा बताना है, क्योंकि प्रश्न सरल है तो उसका जवाब भी अच्छी तरह देना है। ठीक है,
4: अच्छा मैं बोलता हूँ, और मेरा ये कहो फरमाइश है, एक भजन वो कभी माँ पिता की सेवा की नहीं है, तो वो ऐसा करके गाना भजन है वो सुनाएंगे तो बहन जी अच्छा करेंगे।
2: जी जी जी, हम
4: कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ऐसा करके है भजन।
2: जी जी जी जी, हमें मिलता है तो हम जरूर देंगे।
4: ओके सर,
2: ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, हाँ जी। तो ये थे भूराराम जी ओर से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और विषय में भाग लेते हैं। हेलो, चलिए तो देखिए, झलझुलनी एकादशी का त्यौहार पूरे राजस्थान में मनाते हैं, लेकिन देखिए वो भी सभी का अपना अपना है ना, छोटे छोटे गांवों में वो उस हिसाब से मनाते हैं, बड़े बड़े शहरों में कस्बों में अपने हिसाब से मनाते हैं, लेकिन ये मेला ज़बरदस्त लगता है। और पता है आपको, सांवलिया धाम में जो मेला लगता है आज चार बजे जी का, यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। श्रीनाथ जी में मेला लगता है आज के दिन, इसमें गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। और चार भुजा जी गढ़बोर धाम में मेला लगता है, वहाँ पर राजस्थान के लोग ही ज़्यादा आते हैं, जगह जगह से आते हैं, जैसे गुजर समाज के है, बनिया समाज के है, जाट समाज के है, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। खाती जो मिस्त्री काम करते हैं वो लोग है, सबसे ज़्यादा इनकी भीड़ रहती है, और बनिया लोग तो सबसे ही ज़्यादा। हेलो
5: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई,
2: हम अच्छे हैं सुरेश भाई, आप सुनाइए आप कैसे हो?
5: बस अच्छे, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि हम आज के दिन तो क्या, हमारे पास में 2 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, वहाँ रामदेव जी का जो मंदिर पड़ा है, वहाँ हम तो आज के दिन जो हम घोड़ा बनाते हैं वो भगवान के वहाँ देने के लिए जाते हैं, और तो घोड़ा को वहाँ मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है इसके पास रखते हैं, पूरा साल तक इसकी पूजा होती है।
2: जी जी जी,
5: वहाँ गए थे 9 बजे से, तो अभी आए हैं।
2: अच्छा,
5: तो आके, हाँ अभी आके देखा तो सबका फोन चल रहा था, मैंने सोचा चलो मैं बात कर लूँ आपसे।
2: जी जी,
5: फोन बिजी आता था, तुम्हारे कंसर्न भाई ने बात की हमारे,
2: फर्स्ट लिंक में तो कोई जुड़े नहीं ज्ञानेंद्र जी के अलावा, मैंने कहा अभी सब कहाँ बिजी हो गए।
5: आज मैंने सुना नहीं था, मैं कि मंदिर गया था इसीलिए।
2: जी जी,
5: पैदल गया, पैदल आया, और गर्मी भी बहुत है, थोड़ी देर लगी।
2: अच्छा,
5: चलो अच्छा विषय, आज जल्दी 11 से आप देती हमारे, बताओ तो हमारे गांव में भी आज भगवान निकलेंगे पूरी गांव की परिक्रमा करने के लिए। दोपहर को 2 बजे सुबह यात्रा निकलती है और रात को 6-7 बजे मंदिर में वापस जाते हैं भगवान
2: जी।
5: और पूरा गांव तक वो घूमेंगे भगवान आज के दिन
2: जी।
5: और कई सारे लोग साथ में, पूरा गांव भी साथ में होंगे
2: जी।
5: तो बड़ा मेला भी लगता है, लेकिन मेला हमारे पास पास के गांव में है तो वहाँ मेला भी लगेगा। शाम को हम वहाँ भी जाएंगे रात को
2: जी,
5: मेले में राम देवी का मंदिर है वहाँ, जब मुकोड़ो हम चढ़ाने गए थे वहाँ, वहाँ मेला रात को पड़ता है।
2: अच्छा
5: जी, तो बस भगवान आज चेतन सबको भगवान घर घर दर्शन देने के लिए निकलते हैं आज। तो ऐसा तो देखो आज भगवान, हम भगवान के पूरा साल हम भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान हमारे सबके घर आके सबको दर्शन करवाते हैं, कितनी भाग्य की बात है।
2: जी जी जी जी,
5: तो बस अच्छा है जितनी भगवान का जो दर्शन हो जाए, भगवान सबकी कृपा बनी रहे, ऐसी तो हम सब कामना करते हैं सबसे, सबका जीवन अच्छा जाए, पूरा साल अच्छा जाए और सबको भगवान का अच्छा दर्शन करने का लावा मिले
2: जी।
5: और जॉब तो आप चाहो को दे दो, वरना मैं ऑफलाइन में दूंगा।
2: ठीक है, भले वो फिर दीजिए, भले आप मुझे मैसेज के द्वारा भी दे सकते हैं।
5: हाँ ठीक है, मैं बाद में दूंगा
2: जी। बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। और देखिए आपने भी बताया कि आपके भी गांव में बहुत ही अच्छा मेला लगता है, घर घर में ठाकुर जी दर्शन देने आते हैं, मनाते सभी है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि कहीं पर घर घर में जाते हैं, कहीं पर क्या है कि सारी मंदिरों की पालकियां बाजार में इकट्ठी होती है, भक्तजन नाचते नाचते अपने मोहल्ले से आते हैं अपने मंदिर की पालकी लेकर के, अच्छा सा श्रृंगार करके, और फिर जब मेन बाजार में ला करके सारी पालकियाँ इकट्ठी करते तो सभी भक्त यहाँ पर भी बहुत नाचते हैं, कोई अपना टैलेंट शो भी दिखाता है, किसमें कोई विशेषता है वो भी वहीं पर होता है। और फिर एक दिन ऐसा भी फाइनल किया जाता है जिस दिन उनको पारितोषिक भी दिया जाता है, क्योंकि टैलेंट शो, कोई टैलेंट होगा तो ही वो बता पाएंगे। तो इस तरह सभी भक्तजन देखते हैं, चारों तरफ घूम जाते, बीच में जगह रखते हैं वहाँ पर, जिनमें जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। और फिर ऐसे सुबह से पालके इकट्ठी होना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने मंदिरों से लाते, घंटा डेढ़ घंटा तो उसी में ही लग जाते हैं, भक्त लोग नाचते गाते लेके आते उसी में। तो ऐसे सारी पालके इकट्ठी होती है, फिर 3 बजे सारी पालकियाँ 3 बजे से पहले इकट्ठी हो जाती है, फिर सारी पालकियों को या तो नदी, अपने गांव में जो भी व्यवस्था है, नदी या तालाब, वहां लेके जाते हैं, फिर वहां पर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। स्नान कराकर वहां फिर वापस उनका श्रृंगार किया जाता है, वहीं पर आरती होती है, फिर भक्तों में प्रसाद वितरण होता है। अभी तो कहते हैं ना कि दानवीर भी बहुत है समाज में, बहुत सारे इकट्ठे साबुदाने की खिचड़ी बना के लाएंगे, कोई आलू टमाटर की सब्जी बना करके लाएंगे, मतलब प्रसाद लेके आएंगे, पेड़े और ये मिश्री मावा कलाकंद, ये तो टू मच सभी बांटते हैं, बहुत जने बांटते हैं और अच्छी तरह क्वांटिटी में, हजारों की संख्या होती है लेकिन फिर भी अच्छी तरह देते हैं। जैसे डिस्पोजल कप है, दोने हैं, उनमें देते हैं, ताकि क्या है कि भक्तजन सुबह से नाच रहे गा रहे हैं तो उनको भूख भी लगती है, और जैसे अपने अपने मंदिरों से लाते हैं ना, तो मंदिरों में भी मोहल्ले वाले क्या करते हैं, अपने मोहल्ले के मंदिर में जो भी सेठ साहूकार है या सामर्थ्य अनुसार, वो भी सभी भक्तजनों को मंदिर में ला करके कोई साबुदाने की खीर पिलाता है, कोई फ्रूट बांटता है, फिर वहाँ थोड़ा सा खा पी करके फिर वो नाश्ते खाते मेन बाजार में आते हैं। मेन बाजार में भी जिनको जो बांटना हो बांटो, क्योंकि वहाँ पर तो 2 घंटा 2.5 घंटा यहाँ पर भी नृत्य और टैलेंट शो होता है, और जिसको जो बांटना हो वहाँ पर भी बांटते हैं भक्तों को, वो भी खाते, कोई वेपर्स के पैकेट पैक करके लाते हैं, केले के वेपर्स तो आलू के वेपर्स ऐसे सभी को देते हैं, और फिर वहाँ से वापस मन पानी के स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर भी ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद भोग लगाते हैं, और इस तरह पेट भर के जैसे साबुदाने की खिचड़ी है, मुरैया है, और जिसको जो देना हो वहाँ पर देते हैं। आज के दिन भक्तों को अपने घर पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती फराल, क्योंकि पहले से फाइनल होता है मोहल्ले में से कौन बना रहे, भाई हम मोहल्ले वालों को तो थोड़ा दे ही देना, तो अपने मोहल्ले में तो बांटते हुए फिर पालकी लेके जाते हैं, और फिर ठाकुर जी को वापस स्नान ध्यान करा के, आरती करा के, वापिस भक्त जब नाचते गाते अपने अपने मंदिरों में पहुँचते हैं, फिर मेन मार्केट में नहीं जाते हैं, अपने अपने मंदिरों में पहुँचते हैं, फिर वापिस ठाकुर जी को वहाँ स्थापित कर देते हैं, फिर संध्या आरती होती है मंदिरों में। तो इस तरह इस त्योहार को मनाया जाता है। अभिल गुलाल उड़ाते हैं जैसे होली आ गई हो, इतना कलर भी एक दूसरे पर डालते हैं। फिर भक्तजन भी स्नान करते हैं ठाकुर जी को नहलाने के बाद, क्योंकि अब सभी कलर वाले हैं और ठाकुर जी की आरती करनी है तो वापिस स्वच्छ तो होने चाहिए। तो भक्तजन भी स्नान करते हैं और वो भी कपड़े चेंज करके अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे धुले हुए, फिर ठाकुर जी के इस तरह आरती करते हुए वापस अपने अपने मंदिरों में जाते हैं। इस तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। चार भुजा जी में दूध तलाई ले जाया जाता है ठाकुर जी को। हेलो,
6: राम राम मुसा बेन, आपने राजस्थान में केड़े बोले गणपति ने उत्सव साइले रहे होते
2: सु कहो छो जसमत भाई?
6: हां गणपति ने उत्सव केवा साइले रहे होते गणपति दादा मोरिया ने उत्सव?
2: हां सारू चाले छे, दरेक त्यौहार मनावे छे राजस्थान में, गणपति नो सारू चाले छे। हां
6: हमारे यहाँ गुजरात में बेन धामधूम की उत्सव साइले रहे होते, बधाए गणपति दादा ना लाडवा बनावे छे, पंचेदी बनावे छे, અને ખૂબ દાંડિયા રાસ ને બધું રમે છે।
2: અહીંયા પણ એવું છે, અહીંયા પણ કાયમ ડીજે ની આવાજ સંભળાવવામાં આવે છે અને ભક્તો નાચે છે। પર આજે જો જસમતભાઈ, આજે આપણે ગણપતિ દિવસ નથી મનાવતા, એ 10 દાડા ચાલે છે તો આપણે મનાવી છે ઓર મનાવીશું અનંત ચૌદશ ના દાડે। આજે જલજુલ ની એકાદશી છે, તમે જલજુલ ની એકાદશી કરો છો?
6: હા બેન, અમે હું તમને તમે કાલ ફોન કર્યો તો મને કાલ તમે હલો ઉષા બેન,
2: હા
6: કાલે તમે ફોન કર્યો તો મને,
2: હા
6: બરોબર 6 વાગે હાલ ના,
2: હા
6: બરોબર,
2: હા એક કામ હતું એટલે, પણ તમારી આવાજ નથી સાંભળવામાં આવી, બહુ
6: આજનું
2: પ્રશ્ન છે, જલજુલ ની એકાદશી કયા મહિનામાં આવે છે અને એનું બીજો નામ બતાવો।
6: હવે કયા મહિનામાં એનો જવાબ આપવું છે, ભાદરવા મહિના ની
2: કૃષ્ણ પક્ષ માં આવે છે, શુક્લ પક્ષ માં આવે છે, ક્યારે આવે છે? ચાલો ઠીક છે જસમતભાઈ,
6: અને એનો આપણે રથ ઢોગો લઈ ને ભગવાન ના જળ જીલવા જાય એવું કઈ માનતા છે, જાગી નથી માહિતી, પણ ગામ માં એવો પાલ થી એવું નીકળે છે હાલ ના છ વાગે એવું બધું થાય।
2: અચ્છા ઓકે, ઠીક છે જસમત ભાઈ, હો
6: આભાર,
2: હા બહુ બહુ આભાર તમને। ઓર બસ અભી ઇસ વિષય કો યહી સમાપ્ત કરેંગે ઓર સમય હો ચલા એક ગીત સુનને કા, તો ગીત સુન લેતે હૈ કભી પ્યાસે કો પાણી પિલાયા નહીં, ઉસકે બાદ પુનઃ લોટ રહે હૈ, તો બને રહીએગા કાર્યક્રમ આશિયાના મેં, સુનતે રહો મુસ્કરાતે રહો રેડિયો મધુબન 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज मैं आपको साबुदाने की खिचड़ी बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि साबुदाना की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, पेट भी भर जाता है और जल्दी पच भी जाता है। मोरैया जल्दी नहीं पचता है, वो भी लाइट खुराक है एकदम। मोरैया भी जैसे हम बीमारी में थुल्ली खिचड़ी खाते हैं, ऐसे मोरैया भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन साबुदाने की खिचड़ी सिखा रही हूँ आपको। सामग्री में ले लीजिए साबुदाना, मूंगफली के दाने, आलू, जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक और तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को। साबुदाना, आलू, सिंगदाने को मूंगफली के दाने कहते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक, जीरा और तेल। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। आप साबुदाने ले रहे हैं, पहले साफ कर लीजिए। साफ करके एक बार धुलाई करके फिर आप इसको भिगोइए। तरमा पानी रखना है, साबुदाने डूब जाए, हल्का सा पानी ऊपर रहे थोड़ा सा, क्योंकि साबुदाने सारा पानी पी जाता है। तो ऊपर रखिएगा पानी, थोड़ा तरमा रखिए, ठीक है? और इतने में 2 घंटा आपको कम से कम भिगोना है साबुदाने को। उसके बाद ही आप खिचड़ी बनाइए, तो ही खिचड़ी स्वादिष्ट बनेगी और साबुदाना अच्छी तरह गल जाएगा। फिर ऐसे गल जाएगा तो ये नहीं है कि आपको एकदम ही खिचड़ी पका देनी है, मतलब बिल्कुल ही साबुदाना दिखे नहीं। नहीं, साबुदाना साबुत रहेगा लेकिन गलेगा अच्छा। फिर आलू बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके उसके छिलके निकाल दीजिए और इसको मैश कर दीजिए। पहले आप जो भी चाकू से काटना चाहे काट लीजिए। सिंग दाने सेक लीजिए, सेक करके इसके छिलके हटा दीजिए और इसको भी अतकचरा। अगर बुजुर्ग है घर में तो वो क्या है कि सिंग दाने चबा नहीं पाएंगे, तो फिर आप मिक्सर में बारीक पीस लीजिए। अगर बुजुर्ग नहीं है तो फिर आप अतकचरा रखिए, क्योंकि खाने में जब सिंगदाने का टेस्ट आता है तो साबुदाने की खिचड़ी का और भी स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब 2 घंटे हो गए साबुदाने को भिगे हुए, तो वो पानी वैसे ही जज्ब हो जाएगा साबुदाने में, ठीक है? फिर भी अगर आपको लग रहा है कि साबुदाने में पानी ऊपर अभी तक तैर रहा है तो उस पानी को निकाल दीजिए आप। और अब रखिए आप कढ़ाई गैस पर, गैस चालू कर दीजिए, तेल डालिएगा। तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का लगा दीजिए, हरी मिर्च धुलाई करके काट लीजिए। जब जीरा पक जाए तो आप हरी मिर्च डाल दीजिए, ठीक है? और हरी मिर्च के साथ आप मीठा नीम का पत्ता तो डाल ही सकते हैं, ठीक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर आप अब इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक डालने के बाद अब आप डाल दीजिए सिंग दाने का जो अतकचरा कूट रखा है, ये आप डाल दीजिए कूटे हुए सिंग दाने। अब आप आलू डाल दीजिए, साबुदाने डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको हिला दीजिए खिचड़ी को, ठीक है? जब मसाला सब तरफ से मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर गैस बंद करके हरा धनिया डाल दीजिए और थोड़ी देर थाली ढक दीजिए। उसके बाद आप साबुदाने की खिचड़ी का पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हैं ठाकुर जी को भोग लगा करके। तो इस तरह साबुदाने की खिचड़ी बनाई जाती है। अब फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: माँ जी, ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर सोचिएगा, विचार करिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए, साबुदाना कैसे फायदा करता है। और जो हमने आज आशाना कार्यक्रम में झलझुलनी एकादशी का त्यौहार मनाया है उसका आनंद तो जरूर आपने लिया होगा। और रेसिपी में जो साबुदाने की खिचड़ी बनाई है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि झलझुलनी एकादशी किस महीने में मनाई जाती है, तो जवाब दिया है हमारे श्रोता बंधुओं ने, नीलम जी, नीलम राठी आबुरा से, दीपा सोमानी कपासन से, प्रवीणा जी मुंबई से, और मीना सोमानी अहमदाबाद से, दयाराम जी रामपुरा से। ज्ञानेंद्र जी ने गलत जवाब दिया है, कृष्ण पक्ष में नहीं ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। आधा जवाब सही है आधा गलत है। कंचन भाई मंडाली से आपने जवाब नहीं दिया है। सरला जी बाड़मेर से आपका जवाब सही है। भूरा राम जी ओर से आपने जवाब नहीं दिया है। अलका सोमानी कपासन से आपका जवाब सही है। जसमत भाई ने जवाब नहीं दिया है। शोभा सोमानी, सुरेश भाई जोटाना से आपका जवाब सही है। और नंबर भेजे हैं, मैसेज आया है 6352888 एक नंबर इसमें मिस हो गया, 6353238588 आपका जवाब भी सही है। तो पहले तो मैं तालियां बजाना चाहूंगी, उसके बाद ही आपको जवाब दूंगी। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उनके लिए ढेर सारी तालियां। और जो विषय में जुड़े हैं उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। तो देखिए, नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी ने एक नाम भेजा, किसी ने दो नाम भेजा, पर देखिए आज के एकादशी को पद्या एकादशी भी कहते हैं, पार्श भी कहते हैं, पार्श एकादशी, जयंती एकादशी, डोल एकादशी, वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी। तो इतने सारे नाम हैं और झलझुलनी तो कहते ही हैं। अब आज का मीठा मोती है, हाथों के द्वारा दिए जाने वाले दान से अधिक श्रेष्ठ दान मन के द्वारा दिए जाने वाला शुभ भावना का दान है। अब मैं आपको झलझुलनी एकादशी पर ही प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM। झलझुलनी एकादशी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुरली वाले सांवरा तेरी मुरली नेक बजाए।

सारी आगी ग्यारस की रमजोल, ग्यारस की रमजोल आगी झूलन की रमजोल, झूला झूले झूला झूले रे नंदलालो आगी ग्यारस की रमजोल। दादुर मोर पपी हरे बोले।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
3: दीदी मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी, और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
4: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
3: Okay.
4: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना? सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं, तो ब्लंटली जवाब देता है। जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया, तो उसने कहा क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
3: अनकंफर्टेबल होते हैं,
4: अनकंफर्टेबल. किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं
3: जी.
4: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है. सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ. वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है.
3: ओके.
4: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है. लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा. पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है. सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए.
3: okay.
4: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है. सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा. दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है. तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना. सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था. तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि उस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया. उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं, तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल.
3: ओके.
4: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल. सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं. कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
3: छोटा होल.
4: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
3: नहीं है.
4: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते.
3: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है. ओके. तो जैसा आपने बताया, वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है. जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ, उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया. ओके. यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है.
4: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया.
3: जी जी.
4: जो सवाल था आपका, उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं.
3: हाँ जी. तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं.
4: तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी.
3: ओके. कैसे?
4: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो. और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है. वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो.
3: ओके.
4: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो. ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है. हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो. जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप. है ना. या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं, या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं.
3: ओके.
4: क्योंकि
3: इंटरेस्टिंग है.
4: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा. है ना. और एक्सेप्ट भी करेगा. परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं. तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना, लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ.
3: okay.
4: कि राइट अ लेटर टू गॉड. गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड. उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज. एंड वो इतने उदार दिल है, कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी है.
3: ओके, तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है.
4: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस. तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स फीमेल्स हैं, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत. या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो सप्रेशन में चली जाती है. और सप्रेस की हुई फीलिंग्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे, प्रेशर दे, तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे

0: है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसे ही होता है, दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाए, क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को।
1: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा, जैसा आपने कहा। इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं। एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
1: ओके,
0: हाँ, सो वो कैसे बना? तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था
1: जी।
0: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया है किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे। तो मैंने आगे आके कहा कि मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए। फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है, बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए, और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है।

0: दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना। उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए। उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होंगे, मेरे सिंपल होंगे लेकिन स्वच्छ होंगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी। तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ। हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।
1: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। और कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
0: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
1: जी,
0: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
1: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, देखो कि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं क्या, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
0: देखिए एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
1: जी,
0: तो मुझे आप बताओ उनको ही पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या।
1: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसा
0: ग्रुप में शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
1: जी,
0: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते हैं।
1: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
0: यस यस, ये फेक मी है,
1: इसमें न्यू मी नहीं है।
0: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
1: मुझे अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है।
0: लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझमें ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ।
1: सेम जरूरी नहीं है,
0: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूँ, उसके साथ जिंदा रहूँ, वो है रियल एंड न्यू मी।
1: बहुत सुंदर डेफिनेशन है। और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है। मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए और मी, जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं, उसको रियल ही रखें।
0: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को वो रोल प्ले करते। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूँ, रियल हूँ। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखिए, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार हैं, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस ले, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलू। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आंगनबाड़ी केंद्र मुंगथला में पहुंचे और यहां के जो मुंगथला के जो गतिविधि आज आपको पास रखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको सबको विदित है कुछ दिन पहले से ये चल रहा है। इस महीने को हम पोषण माह के नाम पे घोषित किए हैं और पोषण माह के तहत पोषण क्या क्या फायदा दिलाता है और खासकर बच्चे को जब पोषण मिलता है तो सुपोषित होते हैं तो हमारा बच्चे हुष्ट पुष्ट रहते स्वास्थ्यवान रहते हैं। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम आंगनबाड़ी में पहुंचे यहाँ के कार्यकर्ता महोदया को स्वागत करते हैं और बच्चों को कविता का माध्यम से क्या क्या पाठ कराते हैं वो चीज़ रखेंगे, किस तरह सिखाते हैं खेल खेल में, भाषा का साथ साथ उनका एक्शन का माध्यम से आज आपका पास रखने जा रहे हैं। तो सभी को, सभी बच्चों को और सभी ग्रामवासियों को स्वागत करते, खासकर हमारा मैडम जी को भी स्वागत करते इस कार्यक्रम में, किस तरह बच्चों को सिखाते। तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आपका संक्षिप्त परिचय।
1: मेरा नाम सविता सैनी है, मैं आंगनवाड़ी केंद्र मुंगथला फर्स्ट से हूँ और कार्यकर्ता के पद पर हूँ। आज मैं बच्चों को कविता सिखा रही हूँ, हमारी थीम चल रही है पानी
0: जी जी।
1: उसके बारे में मैं कविता करवा रही हूँ।
2: एक बहुत बड़ा पेड़ था, सब करो, एक बहुत

0: ताली बजा सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बच्चों को इस तरह सिखाते हैं, एक डेमो देखा है और हमें भी खुशी हुई बच्चे इस तरह सीखते हैं। हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी इस समय सुन रहे हैं और हमारा बच्चे आगे जाकर इस तरह सीखते हैं और आगे जाकर सिखाएंगे, घर में भी हम उनका मम्मी पापा को सिखाते होंगे। आज मैम जो जो सिखाते हैं तो वो जाकर घर में भी बोलते होंगे कविता, तो बहुत अच्छा लगा मैडम। और यहाँ के नामांकन कितना है बच्चों का?
1: सर नामांकन तो अभी से 26 का है।

0: नमस्कार, अल्प विराम का बाद हम मिल रहे हैं। अच्छा, जानकारियाँ हो रहा है। बच्चों का साथ जो हुई प्रोग्राम, अभी अपना अपना बात को तोतली तोतली आवाज़ में, मीठा आवाज़ में जो सीखें आंगनबाड़ी में, वो चीज़ आपके पास रखें। तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ इस कार्यक्रम में खास चार चांद लगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उपस्थित। और किस उद्देश्य से लेकर आज बच्चों को और खासकर धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और किशोरियों को बुलाए हैं, और इस कार्यक्रम में खासकर बहुत सारा व्यंजन है जो पौष्टिकता है, तो उसको बनाकर आज आए हैं। कि पोषण मेला चल रहा है, जिसका चलते वैरायटी जो व्यंजन है जो बच्चे धात्री महिला और गर्भवती महिला को देते हैं, या इसका ऊपर में थोड़ा बताने के लिए हमारा साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित है, उनको पहले स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में अच्छा लगा क्योंकि सबका सहयोग से और यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि मुंगथला ग्राम पंचायत में पांच चलता है लेकिन चार आज उपस्थित है और आने वाले हैं। तो मैडम, आपका स्वागत। आपका पूरा नाम और आंगनबाड़ी का नाम?
1: मेरा नाम शांता पदियार है और केंद्र का नाम मुंगथला सेकंड।
2: मेरा नाम शीला नायक है, मैं मीरगढ़ से हूँ।
0: मीरगढ़, ओके।
3: मैं सविता सैनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुंगथला फर्स्ट से हूँ। मेरा नाम कुसुम
0: उपली जामर। तो बहुत अच्छा अपना अपना परिचय दिए, सभी को पुनः स्वागत करते हैं। और खासकर जो आंगनबाड़ी में ये कार्यक्रम चलता है, उसका कार्यकर्ता आज कुछ बताएंगे पोषण का ऊपर में, खासकर जो व्यंजन आज बनाकर लाए हैं। पहले तो क्या क्या व्यंजन का नाम तो पहले ले लेते हैं। मैडम, आपका स्वागत है पुनः। और क्या क्या व्यंजन आज रखे हैं?
3: ये पूरी है और गुड़ चना है, नमकीन चावल है, हलवा है, पंजीरी है और मीठे भुजिए हैं और दलिया है मीठा, और वो मट्टी टाइप बने हुए हैं आटे की।
0: सभी लोग मिलकर?
3: हाँ, ये सभी की सहायता से बनाया गया है। और ये मेनू हमारे बच्चों द्वारा यह पोषण पोषार दिया जाता है, इसे सभी आंगनबाड़ियों पे दिया जाता है।
0: जी जी।
3: और ये डेली पोषार है, जो गर्म पोषार है ये डेली वाला है हमारे, जैसे पूरी है, नमकीन चावल है, ये जो दलिया है, ये मीठा जो भी व्यंजन है ये हमारा डेली वाला है। और ये नाश्ते में हम चना गुड़ देते हैं, हमारे साप्ताहिक मेनू बने हुए हैं। पहले दिन हम जैसे देते हैं नाश्ते में बच्चे को, सुबह में चावल और गुड़ और चना, ये हम नाश्ते में देते हैं। उसके बाद में लंच टाइम में हम बच्चों को खिचड़ी देते हैं, नमकीन चावल और दाल की बनी हुई, वो ये हमारे डेली पोषार है जो गर्म बच्चों को इधर दिया जाता है। ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन मीठा दलिया और एक दिन नमकीन चावल बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा और ये नाश्ते में भी ऐसे जैसे चावल ममरा और गुड़ है, फिर चना गुड़ है दूसरे दिन, तीसरे दिन ये पंजीरी या हलवा जो भी है, जैसे सोमवार को चावल ममरा और गुड़ और चना गुड़, मंगलवार को, बुधवार को जैसे पंजीरी या हलवा, ये हम बच्चों को नाश्ते में देते हैं। और जैसे सोमवार है तो उसमें हम नमकीन खिचड़ी देते हैं बच्चों को, और मंगलवार में दलिया देते हैं, ऐसे ही बुधवार में चावल, खिचड़ी और दलिया, ऐसे मेनू चलता रहता है हमारे सप्ताह में। और फिर जो बच्चे सेंटर पे नहीं आते, 0 से 3 धात्री माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उसके अलावा 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं जो हमारे सेंटर पे सप्ताह में एक बार आते हैं, उनको हम घर के लिए ये सूखा पोषार देते हैं। जैसे गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, उसको 930 ग्राम और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 750 ग्राम का ये पैकेट घर के लिए दिया जाता है साप्ताहिक।
0: इसे हर महीने कितने पकड़ आपके पास आते हैं?
3: ये हम ग्रुप द्वारा लेते हैं और ये लाभार्थियों के हिसाब से हम ये पैकेट लेते हैं।
0: जी जी, बहुत अच्छा।
3: समथिंग 50-60 के हिसाब से तो हम ले लेते हैं, एवरेज मिनिमम हमारे एवरेज के हिसाब से। और ये मेनू हमारे डेली चलते हैं, जो भी है जो केंद्र के बच्चों को खाने से पहले, जैसे बच्चों को हाथ धुलवाना है, फिर उसके बाद में ये लंच हम देते हैं, और लंच के बाद में दोपहर का खाना है, जैसे आज शनिवार है तो आज हम दलिया देंगे बच्चों
0: को। बहुत बहुत धन्यवाद सर को लेकर आज सभी का मैंने अपना बात को रखें, और किस तरह बच्चों को ध्यान देते हैं और उनका पौष्टिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं, और बच्चों को जो चीज़ घर में नहीं मिल पाता है पौष्टिकता यहाँ पर आते हैं तो बच्चे,
3: और जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, गंभीर कुपोषित, उनको हम डबल पोषाक देते हैं, मतलब ये पैकेट डबल देते हैं, और मेडिकल की सभी हम उनको सेवाएँ देते रहते हैं। हमारे महीने में 1st गुरुवार को हमारे यहाँ टीकाकरण होता है महिलाओं का, बच्चों का।

0: नमस्कार, अल्प विराम का बाद हम मिल रहे हैं अच्छा जानकारी के साथ, क्योंकि पोषण माह चल रहा है और हम अपना बात को किस तरह हमारा बच्चे पोषित रहेंगे, कोई कुपोषित नहीं रहेंगे, उसी संदर्भ में आज जब आंगनबाड़ी केंद्र मुंगथला में पहुंचे, सभी बच्चों का आवाज़ का साथ साथ पोषण संबंधित कुछ बात रखें, जो आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी लोग का अंगुली सहयोग मिल रहा है, और जिसका चलते हमारा गांव और अंचल में कोई कुपोषित नहीं रहेंगे, माता हो चाहे धात्री माता हो चाहे गर्भवती महिला हो चाहे किशोरियाँ, और हमारा बच्चे सभी होशियार है, क्योंकि आगे जाकर बड़े होकर कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई कार्यकर्ता भी बन सकते हैं, तो उन सभी का सहयोग से आज इस कार्यक्रम हो रहा है। खासकर पोषण हमारे जीवन में कितना आवश्यकता है और पोषण को लेकर हमें विश्वास है आगे कोई कुपोषित नहीं रहेंगे, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हम देते हैं, किस तरह अपना आंगनबाड़ी में संचालन करते हैं, क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं, और खासकर पोषण को लेकर धात्री महिला गर्भवती महिला और किशोरों को क्या सलाह देते हैं सुनेंगे। तो आपको स्वागत है दीदी, आप अपना बारे में और जैसे किस तरह आप आंगनबाड़ी को चलाते हैं वो बात कर रखी।
1: हम सुबह जैसे आंगनबाड़ी पे 7:30 बजे आ जाते हैं, 8 बजे आते, फिर हमारे बच्चे 8:00 बजे आ जाते, 8 बजे के बाद में बच्चों को हम सबको सफाई के बारे में पूछते हैं, सफाई देखते हैं, फिर बच्चों को सब बताते हैं, फिर उनको प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना के बाद में उनको खेल कविता करवाते हैं, फिर उनको 9 बजे नाश्ता देते हैं, चने मुरमुरे और गुड़ और सोमवार को ये देते, उसके बाद में जैसे अलग अलग मेनू के हिसाब से देते हैं, मंगलवार को गुड़ चने देते, बुधवार को हलवा देते, ऐसे हमारे मेनू साप्ताहिक चलता रहता है। उसके बाद में हम बच्चों को और कोई रंग के बारे में बताते, छोटे बड़े आकृति के बारे में बताते, कम पतले मोटे के बारे में बताते, कम ज़्यादा के बताते उनके बारे में, कम ज़्यादा के बारे में बताते हैं उनको, सब बच्चों को हम ये गतिविधि सिखाते हैं। उसके बाद में कोई कलर वलर भरवाते हैं, चित्र उनके उंगलियों के मांसपेशियों का विकास होता है उसके कारण उनको चित्र किताबों में भी रंग भरवाते हैं, को बना के भी हम उनको उसके थीम के हिसाब से बना के चित्र बना के उसमें उनको देते हैं हम, जो बच्चे कलर भरते हैं, फिर उनको लिखने की करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, जैसे फिर उनको 11 बजे उनको पोस्टर बांटते हैं, उसके बाद में हम उनको खेल खिलवाते हैं, खेल खिलवाने के बाद में 12 बजे उनकी छुट्टी कर देते हैं।
0: किसमें ज़्यादा रुचि बच्चों को सिखाने में, कौन सा खेल खेल में चाहे कविता में चाहे चित्र में, किसमें आपको ज़्यादा रुचि है जो बच्चों को प्यार से दिल से एक्शन का माध्यम से सिखाता विशेषता?
1: अच्छा, बच्चों को हम खेल खेल में उनको खेल खेल में कविता के माध्यम से उनको गिनती सिखाते हैं, कविता के माध्यम से गिनती सिखाते हैं, कविता के खेल खेल में उनको हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को खेल, तो उनको बच्चों को भी आनंद आता है और हमको भी आनंद आता है, बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करते हैं, और उनको जो बच्चों को चित्र भरने में उनको रुचि है बच्चों को ज़्यादा, और हमको भी रुचि है बच्चों को चित्र वो कलर रंग भरवाते हैं उसमें बच्चों को रुचि है और हमको भी रुचि है, और इसके बारे में खेल खेल में हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं।
0: एक डेमो किसी में भी एक सुनाओ, जैसे बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से कविता के माध्यम से हो चाहे रंग कैसे भरते हैं, सुनाओ।
1: गिनती सिखाते हैं तो हम जैसे बोलो बच्चे, एक एक एक नाक हमारी एक,
0: नाक हमारी एक,
1: दो दो दो,
0: दो दो दो,
1: आँख हमारी दो,
0: आँख हमारी दो,
1: तीन तीन तीन,
2: जोर जोर से बोलो
0: सभी बोलो,
1: टेम्पो के पहिए तीन, चार चार चार,
0: चार चार चार,
1: गाय के पैर चार,
0: गाय के पैर चार,
1: पाँच पाँच पाँच,
0: पाँच पाँच पाँच,
1: हाथ की उंगली पाँच,
0: हाथ की उंगली पाँच,
1: छः छः छः,
0: छः छः छः,
1: मक्खी के टांगे छः,
0: मक्खी के टांगे छः,
1: सात सात सात,
0: सात सात सात,
1: सतुल्य की गोटी सात,
0: सतुल्य की गोटी सात,
1: आठ आठ आठ,
0: आठ आठ आठ,
1: मकड़ी की टांगे आठ,
0: मकड़ी की टांगे आठ,
1: नौ नौ नौ,
0: नौ नौ नौ, बोलो सभी,
1: नवरात्रि के दिन नौ,
0: नवरात्रि के दिन नौ,
1: दस दस दस, दशहरे के दिन दस,
0: दशहरे का दिन
1: दस, ऐसे करके ऐसे ऐसे गीत के माध्यम से हम इनको गिनती सिखाते हैं।
0: बहुत अच्छा। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए और एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनको स्वागत करते हैं। आज उनका दिल में भी कुछ बोलने के लिए इच्छा है। मैडम, आप अपना आंगनबाड़ी में किस तरह कार्यक्रम करते, जैसे दीदी ने बताया उससे हट के थोड़ा बताओ।
3: जी हाँ जी हाँ जी। अब जैसे सभी शांता जी ने बताया है, माध्यम के मांसपेशियों के माध्यम के हिसाब से कलर के बारे में जानकारी दी है और नाश्ते के बारे में बोला करवाया है। और हम ये करते हैं कि बच्चों से खिलौने भी बनवाते हैं, मिट्टी के बच्चे शौक से बनाते हैं खिलौने, और उनको रुचि ज़्यादा इन्हों में खिलौनों में भी है। और जैसे कविता के बारे में, भाई एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके फंसा, दूसरे को हाथी सारे से बुला, इधर आ इधर आ इधर आ, पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची
4: चार।
3: जोर से बोलो चार। पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची कितनी, जोर से बोलो कितनी बची। हाँ, पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची
4: दो।
3: जोर से बोलो बच्चों,
4: पांच छोटी चिड़िया
3: बैठी थी अनार पे,
4: एक चिड़िया उड़ गई,
3: बाकी बची
4: एक।
3: पांच छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची
4: जीरो।
3: ताली बजाओ जोर से, जोर जोर से ताली बजाओ बच्चों। जैसे बच्चों को इनमें रुचि आती है, गिनती भी सीख पाते बच्चे, और इनका मतलब वो, हाँ, और खिलौने के बारे में, मिट्टी के खिलौने भी ये बना सकते हैं, ये शौक से बनाते हैं बच्चे। जी हाँ,
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते।

0: ब्रेक के बाद हम मिल गए सभी को स्वागत करते पुनः।
1: आज खासकर पोषण माह के अंतर्गत कुछ जानकारियां ले रहे थे और उसके साथ साथ जब गीत भजन न हो तो हमें खुशी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब गांव और अंतर में जाते भजन हमारे लिए भोजन और भजन दोनों हो सकता है। तो चलिए माता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हो, उनको साथ देने के लिए बहुत सारे छात्र महिलाएं और कार्यकर्ता हैं, बच्चे सब उपस्थित हैं, उन सभी को आज सुनेंगे। तो आज आपका परिचय थोड़ा दीजिए, आपका नाम क्या है? और
2: मेरा नाम रेखा देवी है।
1: तो आज का भजन सुनाइए।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को साथ दिए हाथ बढ़ाए जिसका चलते हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रही है और सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं, अच्छा जानकारी हो रही है और खासकर न्यूट्रिशन यानी पोषण को लेकर जब ये कार्यक्रम चल रहा है, अभियान चल रहा है, सभी जागरूक होए क्योंकि पोषण होगा तो हम रोशन करेंगे, सही पोषण देश रोशन। हमारा आंगनबाड़ी तब रोशन होगा जब हमारा साथी सहयोगी कार्यकर्ताओं को लेकर जो काम हो रहा है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो केंद्र है चार चार सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, बहुत सारा चीज़ आंगनबाड़ी में होता है जिसमें कार्यकर्ता है आशा सहयोगी और सहायक को लेकर और ANM भी आते हैं स्वास्थ्य जांच करने के लिए। तो चार लोग का जो संगठन पे संगठित रूप में तो कार्यकर्ता को जो हेल्प करते हैं आशा सहयोगी, किस तरह उनका ड्यूटी रहता है और क्या क्या उनका एक्टिविटीज रहता है, क्या सुबह से शाम तक जो यहाँ पर रहते हैं और उनका जो चलता है कार्य, उसका बारे में जानकारी लेने के लिए एक आशा सहयोगी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनको तहे दिल से स्वागत करते ग्रामवासियों और अंचलवासियों की तरफ से और खासकर महिला और बाल विकास परियोजना अब्रोड के CDPO साहब का तत्वावधान में जो उनका जो इच्छा है कोई कुपोषित न रहे, सभी सुपोषित रहें और हमारा गाँव और अंचल हरा भरा रहे, आदर्श बने, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए।
1: मेरा नाम रुक्मिणी खंडेलवाल है, मैं मुंगला से हूँ, आशा सहयोगिनी हूँ।
0: और आपका जो आते हैं आपका सेवा क्या रहता है?
1: हमारे हर रोज है ना 10 घरों का भ्रमण करना रहता है, और जैसे हम घर में भ्रमण करने जाते हैं पहली बात तो हम पूछते हैं कि भाई आपके घर में कोई नया मेहमान तो कोई नहीं है, कोई नई शादी तो दाम्पत्य तो नहीं है, फिर हम अगर कोई होता है गर्भवती होती है तो उसको हम पहले महीने से उसको जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि भाई आपके कितने दिन छेड़े या क्या वो पता, तो उससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि भाई इसके गर्भ धारण ठहरा या नहीं ठहरा। फिर उसके बाद हम आंगनवाड़ी आके उसके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पहले महीने, जब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर हम तीसरे महीने में उसका टीका लगवाते हैं अपने हॉस्पिटल से, सब सेंटर से। टीका लगवाने के बाद उसको है ना हम गोलियां भी देते हैं, फिर उसको ना खाने के अंदर हम बोलते हैं कि भाई हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल वो सब खाइए। फिर उसके बाद हम वापस उसका वजन, हाइट सब लेते हैं तीसरे महीने में। फिर उसके बाद फिर दो महीने के बाद वापस उसका वजन लेते हैं, हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, फिर उसको अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो तो हम हॉस्पिटल तुरंत लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे हम आयरन सुक्रोज का वो ड्रिप चढ़वाते हैं, तीन डोज के अंदर होता है तो तीन बार लगवाते हैं, एक दिन फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे में, कोई ज़्यादा जरूरत हो तो फोर्थ डे भी होता है आयरन सुक्रोज। फिर उसके बाद उसको हम उसकी गोलियाँ देते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की वो देते, पाँचवें महीने से कैल्शियम भी देते हैं। फिर है ना उसको फिर सातवें महीने में वापस टेस्ट होता है वो के वही रिटर्न वापस, फिर उसको देखते हैं कि हेमोग्लोबिन उसका बढ़ा या नहीं, अगर नहीं बढ़ा हो तो वापस उसको है ना वो टैबलेट जो वो है होती है तो क्या उसको वापस हम थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम फिर नवे महीने में उसको हम बोलते हैं कि अभी तेरे है ना नवा महीना लग गया है, अब तुझे है ना तैयारी करनी है कौन से क्या है हॉस्पिटल की, हम गाड़ियों की, एम्बुलेंस की, सब जो भी सुविधा है वो हमारे पास हम नंबर रखते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे ही जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस को 104 पे हम एम्बुलेंस वालों को बुलाते हैं, और डिलीवरी अगर प्राइवेट अगर सरकारी होती है तो हम गवर्नमेंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी एकदम नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, और अगर कोई इच्छा हो कि नहीं हमको तो प्राइवेट जाना है तो हम प्राइवेट भी लेके जाते हैं उसको, प्राइवेट में नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं। फिर उसको जैसे ही डिलीवरी होने के बाद पहले उसको है ना BCG का टीका लगवाते वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर, BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। फिर डेढ़ महीने के बाद उसके अंदर पेंटाफर्स्ट, IPV और पोलियो के पिलाते। फिर दूसरे महीने में ढाई महीने का हो जाता है फिर उसको पेंटा सेकंड लगवाते हैं, फिर पेंटा सेकंड, फिर वापस साढ़े तीन महीने का होता है उसको पेंटा थर्ड भी लगवाते हैं। फिर पेंटा थर्ड के बाद उसको फिर नवे महीने में उसको इसका मिजल्स का लगवाते, अभी मिजल्स के बदले अभी रूबेला चालू हो गया है तो रूबेला भी चालू, तो रूबेला और विटामिन ए का वो होता है। फिर हर छः महीने के बाद विटामिन सेकंड डोज वापस चालू होता है, ऐसे करते पाँच साल तक उसको हम इसके विटामिन की डोज हर छः महीने में हम देते हैं उसको। फिर तीन साल का जब तक बच्चा नहीं होता है तब हम उसको धीरे धीरे उसको आंगनवाड़ी के लिए हम प्रयास करते हैं कि भाई अभी आपका बच्चा 3 साल का हो गया आंगनवाड़ी उसको भेजो, धीरे धीरे आंगनवाड़ी के साथ ना उसको सही होगा, आपका बच्चा खेलते कूदते सीखेगा, कुछ भी बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, हर चीज़ एक्टिविटी सीखेगा अब बच्चों के साथ खेल में। फिर वो धीरे धीरे माँ को हम प्रेवेस करते कि भी आप अपने बच्चे, वो मना करते तो भी हम उसको बार बार उसको उनको बच्चों को लेने जाते घरों में कि आपके बच्चों को आप भेजो, आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, हर चीज़ करेगा। फिर वो माँ 3 साल तक हम आंगनवाड़ी में जब 3 साल का बच्चा आता है तब उसे हम पूरा सूखा उसको खिचड़ी, दलिया वगैरह सब हम देते हैं उसको, जब 5 साल का हो जाता है फिर हम नामांकन स्कूल में उसका करवाते हैं। धात्री महिलाएं ना तो 6 माह से उसको तो ऊपरी हार भी चालू करवा देते हैं 6 माह के बाद। फिर 5 साल के बाद उसको टीटी का टीका लगता है। और अभी है ना जो रुबेला चालू हुआ अभी तो 9 माह से लेके 15 साल का भी वो हमारा वो चला था प्रोग्राम चला था। हमने उसको 15 साल बाद तक के बच्चा और लड़की और लड़कों को सबको भी रुबेला का टीका लगवाया अभी। और साप्ताहिक पोषण भी मनाते हैं, पोषण प्रवेश उत्सव भी मनाते हैं आंगनवाड़ी के अंदर। और प्रवेश उत्सव में जो नया बच्चा होता है 3 साल के अंदर बच्चा आता है तब हम उसको आंगनवाड़ी में लाके उसका ना उसको माला पहना के उसका प्रवेश उत्सव करते हैं आंगनवाड़ी में लाके उसको। और अन्नप्राशन भी होता है जो 6 माह के बाद उसको जो 7 महीने में लगता है तो उसको खिचड़ी से अपने यहाँ से शुरू करते हैं आंगनवाड़ी बुला के कि भाई आपका बच्चा अभी 6 माह का पूरा हो गया 7 माह से अपना भी आज से ऊपरी हाथ चालू कर दो।
0: बहुत अच्छा जानकारी देकर स्टोरी जैसे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक।
1: थैंक यू
0: जैसे पता चलता है ये गर्भवती महिला रहा है तो उसी दिन से आप लग जाते हैं।
1: हम उसी दिन से उसके पीछे लग जाते हैं।
0: फिर उसको पैदा करना उसके बच्चे को 3 महीना तक उसको 6 महीना तक फिर 3 साल तक उसका पीछे रहते हैं।
1: फिर
0: तीन साल आंगनबाड़ी में जब आता है
1: नामांकन हो जाता है फिर
0: उसको भी
1: और फिर 5 साल तक 5 साल तक उसके साथ रहते हैं। 5 साल के बाद फिर हम उसके ना स्कूल में जाके उसका नामांकन करवाते हैं अभी 5 साल का पूरा हो गया आपके स्कूल के अंदर नाम।
0: सही में कितना तारीफ करे कितना धन्यवाद दे।
1: और अभी ये ना मातृ योजना भी चला 2017 से मातृ वंदना योजना चला सर। तो हम जिसको जितने भी पहली डिलीवरी थी 2017 की तो हमने उनको सबको भी मातृ वंदना का सबको भी लाभ दिलवा दिया सर। जिसके भी आधार कार्ड नहीं है मातृ वंदना के तो हम उसको ना हमको बोलते हैं कि भाई आपके फर्स्ट किस्त के लिए तो 1000 मिलता है फिर सेकेंड किस्त के लिए 2000 और जबकि वो मातृ वंदना तीसरा पूरा तीसरे किस्त है दो इसको बच्चे को 3 भी टीके पूरे हो जाते हैं पेंटा फर्स्ट पेंटा सेकंड पेंटा थर्ड तो उसको वापस 2000 मिलते हैं। ऐसे करके 5000 टोटल उसको मातृ वंदना में मिल रहे हैं सर।
0: बहुत अच्छा बात बताया। और ऐसे आपका जानकारी में किसको किसको फायदा दिया मातृ वंदना जो योजना
1: सर मेरे यहाँ से मैंने 18 लोगों को मैंने मातृ वंदना का वो दिलाया
0: है। 8 का तो नाम बता सर।
1: 8 हाँ तो एक तो देखो सर कुशबा दिनेश वो चली गई गांव की है सर। सेकंड है इसको अभी सेकंड किस्त दिलवाई है सर 2 किस्त हो गई है सर। सविता महेंद्र
0: हाँ
1: मुंगतला की है सर। अभी थर्ड किस्त बाकी है क्योंकि इसके बच्चे के टीकाकरण नहीं हुआ है
0: पहला बच्चा
1: है सर।
0: और
1: ना फिर उसके बाद रमीला किशन है वो अभी सेकंड डिलीवरी के घर अपने मायके चली गई है सर।
0: 20 नाखून लगा कर सेवा करते हैं सबको याद रखते हैं और पूरा जी जान देकर काम करते हैं।
1: हाँ सर हीना जितेंद्र है मिटकी ललित है फिर है ना रेखा मिथुन पूजा प्रकाश ऐसे बहुत सारे नाम है सर।
0: आप ऐसे जो काम कर रहे हैं दुआएं मिलती
1: है। हाँ सर दुआएं भी मिलती है उनके साथ हम रात में डिलीवरी होती है सर रात को भी बुलाते हैं तो हम उसके साथ जाते हैं सर। पूरी सेवा जितनी होती है उसको हम पूरी सेवा देते हैं।
0: ऐसे आपका पीरियड में कोई तकलीफ आया तो बता।
1: तो सर ऐसे तो एक मेरे पीरियड के अंदर हुआ था सर जैसे कि डिलीवरी भी हुई डिलीवरी नॉर्मल हुई उस समय उस औरत को है ना ब्लीडिंग बहुत हो रही थी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी तो ब्लीडिंग तो फिर हमने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमको आगे कि आप आगे रेफर कर दिया। मैंने क्या किया तुरंत उसको गाड़ी वाले को बोल के से हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लेके गए मगर वो फिर हमने वहाँ पे भी लेके गए डॉक्टर ने बोला उसको ब्लड की तुरंत ज़रूरत है। हम ब्लड बैंक में गए मगर अपना ब्रह्मा कुमारी के अंदर ऐसा होता है सब हम लेने जाते हैं तो ब्लड हमको मिलता भी नहीं है सर तुरंत फिर क्या आपके डोनेट करो उस समय तुरंत हाथों हाथों बाद में तो हम डोनेट भी किसी के हाथ से करवा देते उस समय तो हमको कुछ सोचता नहीं मगर हमको वहाँ पे हमको जो सुविधा चाहिए वो हमको सुविधा वहाँ पे मिलती नहीं है सर।
0: आप अपना ऊपर अधिकारी को ये बात को रखें।
1: हाँ सर रखिए सर। हाँ सर रखिए क्योंकि है ना हमारे साथ प्रेग्नेंट औरतों को बहुत है ना ऐसे प्रॉब्लम बहुत होती है सर कि हम ब्लड लेने जाते हैं तो हमको उनको थोड़ा तो फ्री करना चाहिए कि भाई ब्लड आपने डिलीवरी औरतों को ब्लड तो तुरंत आपने डोनेट करना ही चाहिए सर उस समय।

0: को भी फोन, मेरे पास नंबर है, दो तीन लोगों के डोनर के भी फोन थे मेरे सर। उस समय जो फोन डोनर के फोन होते हैं तो स्विच ऑफ बंद होता था सर, कोई मिलता भी नहीं है सर।
1: सबका प्रयास करने के इसका बाद उनका भाग्य, हम
0: ट्राई करते हैं,
1: ट्राई करना। इसके बाद जो पाप जो कुछ हुआ तो रेस्पॉन्सिबिल, हमारा काम हम कर ली, वो नहीं दिया उनका भाग्य में वो नहीं जमा हुआ।
0: और
1: उसका जो पाप लगेगा उनको लगेगा, आपको नहीं लगेगा।
0: अभी एक
1: चिंता होकर आप अपना काम जारी रखिए, हो सकता कभी ना कभी।
0: एक अभी मेरे अभी जो भी दो चार दिन पहले एक डिलीवरी हुई है सर, 7 माह के अंदर ही उसके घर पे डिलीवरी हो गई, बच्चा एकदम यानी फ्री टाइम से पहले हो गया। मैंने उस रात उसी उसको बच्चे को लेके उसको जो कवर होता है कवर को फाड़ के बच्चे को लेके मैं तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल गई, NICU में भर्ती भी करवाया तुरंत, और अभी आज वो बच्चा जिंदा है सर। और उस माँ की दुआएं बहुत मिली है सर।
1: कहते प्रयास हमारा एक कदम, मदद करने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई मदद कर लेते, लेकिन हम
2: दिल से काम करते हैं तो दुआ लगती है।
1: हमारा भी कुछ कमी होगा जिसका चलते हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम दूसरे को दोष देने में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें हमको खुद को जांच करना चाहिए हमारा क्या कमी है, आगे के लिए इस तरह प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर हम विफलता मिलता है हमको कोई भी, जैसे आप ब्लड का तो उसका पहले हम अपने को पहले देखें किसको दोष, हमको तो दोष देने में तो अंगुली आगे कर जाता है, ना हम पहले
0: पहले चार उंगली अपने तरफ पे
1: करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और उसको रेडी ये होगा तो हम क्या क्या
0: पहले से
1: करेंगे तो बेटर होगा। फिर भी ट्राई करना हमारा काम है, बहुत अच्छा बात है। हिम्मत आपका जो साहस उमंग उत्साह देखकर मुझे भी खुशी लगा कि वो हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी अभी सुन रहे थे जो आपका जो आवाज़ को इस तरह जो उमंग उत्साह रहेगा तो कोई ना कोई दाता दान दाता हमेशा, और कोई डोनर कमी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमारा भावना होना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो परमात्मा
0: तो
1: वो तो कुछ लेता नहीं, उसका नंबर कोई जरूरत नहीं। आप दिल से एक सेकंड से उसको पूरा याद करो, आज तुम्हारा बच्चा है मेरा बच्चा नहीं, ऐसे सोच कर उसको समर्पित कर दो, पूरा समर्पित तो जरूर वो मदद करेगा।
0: सही बात,
1: उनका काम है,
2: उनका काम है।
1: इसलिए द्रौपदी का कहानी आप लोग सुने होंगे।
0: हाँ सर सुनिए,
1: स्वार्थ से
0: नहीं, स्वार्थ से तो
1: करेंगे तो एक सेकंड में हाजिर होगा आपका सामने। तो सही में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, करने वाला तो करा रहा है, जो होना है वही होगा, फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते और एक हमारा साथ एक कार्यक्रम साधने के लिए और एक आशा कर्मी है, आशा सहयोगी, तो उनको भी थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी है मीन्स आशा सहयोगी और कार्यकर्ता और सहायिका, नाम ही कितना सुंदर है सहायिका, जो सहायता देते हैं उसको का सहायिका,
0: सहायिका
1: और जो आशा को परिपूर्ण करते हैं वो आशा सहयोगी सहयोगी, और तो कार्यकर्ता सबको लेकर कार्य कराते हैं
0: तो वो कार्यकर्ता।
1: चलिए और एक आशा सहयोगी को हम सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा बात को रख रहे हैं, क्योंकि बात हो तो ऐसे जो कुछ सीख मिले और हमारा जीवन में काम में आए। क्यों नहीं दम क्यों सुने, हमारा श्रोता मित्र के पास तो समय ऐसे थोड़े, आपका बात उनका जीवन में कुछ प्रेरणा मिले, है ना। इसी आशा को लेकर आज आंगनबाड़ी केंद्र मूंगथला में पहुँचा, और मूंगथला जब आए तो इतना चार चार पाँच पाँच आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी और सहायिका सब मिलकर एक कार्यक्रम को सजा रहे। हमें बहुत खुशी और नाज है इस तरह गांव को हरा भरा करने के लिए, पोषण को लेकर खासकर हमारा सभी अंचलवासियों को और उनका जो आने वाले बच्चे हो जो आ चुके उन सभी को ध्यान देते हैं, ये कम बात नहीं। और आशा सहयोग इनका जो काम है डोर टू डोर जाकर विजिट करना, फिर उनका जैसे अभी पहले सुन रहे थे शुरू से लेकर जब से पता चलता है जो आने वाला बच्चा है, 3 महीने 4 महीने से शुरू करते हैं तो 9 महीना तक, फिर उनका डिलीवरी, फिर उसको देखभाल, फिर हॉस्पिटल, फिर यहाँ पर पहुँचाना, आंगनबाड़ी में ज्वाइन करना, फिर यहाँ पर इतना शिक्षा देते हैं, इसके बाद उसको एडमिशन कराते हैं बड़ा स्कूल में। तो ये तो सराहनीय है कि जितना भी नाम ले कम ही पड़ेगा, फिर भी समय को देखते हुए और एक आशा सहयोग ने हमारे साथ उनका परिचय लेंगे। आपका शुभ नाम, आपका परिचय।
1: मेरा शुभ नाम पुष्पा, मीरगढ़ से हूँ, आशा सहयोग ने। जैसे ही पता चलता है 3 माह से, जैसे गर्भवती से, जैसे हम फिर 3 माह से टीके लगवाते हैं गर्भवती महिलाओं को और गर्भवती माताओं को, हम ऐसे बोलते हरी भरी सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ और अपना शरीर का ध्यान रखो। टीकाकरण के बाद उनको हम जांचें करवाते हैं और आयरन सिरप की दवाइयां देते हैं और आयरन सूरज भी चढ़वाते हैं हम हॉस्पिटल जाकर। और जैसे ही 7 माह होता है वैसे ही वापस दूसरे टीके की तैयारी करते हैं। जैसे टीका लगवा के उसको पोषण अभियान होता है, उस दिन गुरुवार के दिन उनको सूखा पोषण दिलवाते हैं, यानी उनको बोलते कि समय समय साफ सफाई के बारे में भी बोलते हैं हम, साफ सफाई से रहने का, हाथ धोने का, खाना खाने का उनको। फिर वापस जैसे ही 9 महीने हो जाते हैं उनका डिलीवरी का टाइम आता है वैसे बोलते जैसे ही 104 बुलवाते हैं।
0: साफ सफाई को लेकर और खासकर भोजनों का बारे में बताते, बहुत अच्छा काम करते। ऐसे आप जो गांव में जाते डोर डोर घर घर
1: फील्ड में
0: जो जाते हैं, तो आप किसका दबाव में काम करते हैं ना, आप में खुशी से काम करते हैं?
1: किसी के दबाव में नहीं, हमारे खुशी से काम करते हैं।
0: करते ऐसे कोई ऑब्जेक्शन होता है कि घर वाले
1: नहीं, कोई
0: घर में आए क्यों पूछताछ कर रहे, ऐसे
1: कोई नहीं? कोई नहीं सर,
0: कोई नहीं सब सहयोग देते।
1: हाँ सब सहयोग देते गाँव वाले।
0: आप अपना यूनिफॉर्म में जाते हैं, सिंपल ड्रेस में जाते हैं?
1: नहीं, हमारे साड़ी है, यूनिफॉर्म है।
0: यूनिफॉर्म में जाते, तो आपको पहचानते लोग?
1: हाँ, यूनिफॉर्म में भी जाते हैं, सिंपल में भी जाते हैं, पहचानते हैं हमारे गांव में लोग।
0: गांव वाले आपको बढ़िया से जानते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं।
1: ऐसे बोलते मैडम आए ऐसे बोलते हैं, आशा बहन जी।
0: आप जब जाते कोई अज्ञान जो जानते नहीं, पहला बार आप उनका घर में गए तो किस तरह उनसे बातचीत करते?
1: हम पहली बार उनके घर में गए, नमस्ते जी हम ऐसे बोलते, नमस्ते काकी, नमस्ते ऐसे सास होती है तो हम जो हमारे से बड़े होते हैं उनको काकी बोलते हैं, यानी तो नमस्ते जी। और हम उनको ऐसे बोलते हैं, हम क्या तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान है क्या, तो बोले हाँ तो अभी हुआ है बोले, तो हम उनको ऐसे बोलते कि टीके लगवाने चलो, तो उसको स्तनपान के बारे में भी बताते, हाथ धो के बच्चे को लेने का, यानी साफ सफाई करके हाथ धो के फिर उनको दूध पिलाने का।
0: आपको आंगनबाड़ी में जो काम करते हुए कितने साल हुआ?
1: 2011 में लगी थी सर।
0: 2011, तो कम से कम 8 साल?
1: 8 साल हो गए सर।
0: ऐसे 8 साल में आपका जीवन में उतार चढ़ाव आता होगा, ऊपर नीचे होता होगा काम में, तो इस तरह कभी ऐसे कोई केस आया जो आपके ऊपर बहुत असर पड़ा?
1: सर ऐसा मेरे तो कोई अभी तक कोई केस नहीं आया।
0: सब बराबर?
1: हाँ सब बराबर क्या है सर।
0: आपको इस तरह काम करने के लिए
1: खाली वो आयरन सुग्रन के बाले में चढ़ाया, फिर उसके घर पे ही डिलीवरी हो गई, 4 चढ़वा के उसके घर पे ही बोले भाभी चलो 108 बुलवाई, तो भी वो पेशेंट नहीं गया, भाभी मेरे घर पे ही हो गई बोले।
0: बहुत अच्छा, आपका सहयोग मिला। हाँ। और आपको इस तरह काम करने में कौन सहयोग देते हैं, और खासकर जब बचपन कभी सोचे थे जे मैं आंगनबाड़ी में जाकर आशा सहयोगिनी होंगी, किस तरह आप आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी हुए, कैसे?
1: सर कभी भी नहीं सोचा था कि हम आशा सहयोगिनी बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, हमको तो हमारे ससुर ने बोला कि खेती में काम नहीं कर सकती, तो हम सर लग गए।
0: कहाँ तक पढ़ाई की?
1: नाइन्थ तक
0: पढ़ाई।
1: हाँ सर।
0: तो आपको चांस मिला तो आप चांसलर बन गए?
1: हाँ सर।
0: खुशी राजशेखर।
1: और हमारे यहाँ मैडम थी, हमारे पास में आंगनवाड़ी चलती थी, तो हमारे मैडम बोले तू कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैंने बोला नवीं तक पढ़ी हुई, तो के लग जा। तो मैडम ने मेरे को साथ दिया, फिर मैं आगे बढ़ी।
0: ओ मैडम अभी कहाँ पे?
1: ये बैठे मैं, हमारे मैडम।
0: क्या नाम?
1: शीला नायक।
0: ओ, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए।
1: हाँ।
0: उनके लिए ताली। आपको यहाँ तक पहुँचाए है कि नहीं?
1: हाँ।
0: तो क्योंकि हमको कोई रास्ता बता देता है तो वो रास्ता में हम चल पड़ते हैं।
1: चल पड़ते हैं सर।
0: तो दुआएं तो हम देते रहेंगे और
1: हाँ।
0: भूल नहीं पाएंगे।
1: नहीं, कभी हम नहीं भूलते।
0: जो होता है ना घर में तो रोजी रोटी बनाने का भी रास्ता बता, भाई तुम भी करो। वो कर रहे हैं, दूसरों को कराते हैं,
1: दूसरे को भी कराते हैं।
0: उन्नीत काम है। तो जिसका चलते इसे सभी दूसरों को आप समान बनाए, जिसका चलते हमारा कहाँ ना कहाँ दुआएं प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, बहुत अच्छा बात बताया, धन्यवाद देते।
2: क्लास है 7:30 बजे सेंटर ऊपर आते हैं, सफाई करते हैं, बच्चे लेने को जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, उनको हाथ मिले धुलाते हैं, 9 बजे नाश्ता देते हैं बच्चे को, पोस्टर बनाते हैं।
0: अच्छा।
2: 11 बजे पोस्टर बांटते हैं उनको।
0: अच्छा।
2: बच्चे को।
0: रेखा दीदी, आप इतना काम जो कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। ऐसे कोई बच्चे रो रो कर आती तो
2: इधर आके चुप होते, ऐसे प्यार देते।
0: 4-5 रो रहे हैं के साथ, तो आप कैसे संभालते?
2: उनको कोई चॉकलेट देते, कोई गोई देते, कोई नमकीन देते, ऐसा चल
0: नहीं। पहले से रेडी रखते हैं क्या?
2: सब रेडी रखते हैं। नहीं, चॉकलेट भी जी रखते हैं ना।
0: तो आप अपना जो कार्य कर रहे हैं सहाय का, उसमें आप खुशी राजी रहते हैं ना, किसका दबाव में?
2: नहीं,
0: आपका इच्छा नहीं, आपका ससुर बोला नहीं करना ही पड़ेगा, आपका पति देव बोलता होगा करना पड़ेगा। माल जो आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, आशा सहायक भी नहीं है, ऑफिशियल काम में गए हैं, तो आपको संभालना पड़ेगा 3 घंटा। तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सा सीनियर को सम्मान देना सीखती है, और हमको भी सिखाते कहेंगे जो सीनियर रहता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अपना जो पहले तो झिझक करती थी, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अच्छा से बोली, बहुत अच्छा बात बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ता पहले से आए, उनको स्वागत करते। आप कार्यकर्ता तो क्या क्या कार्य करते हैं वो बताओ।
3: हम सब 7:45 पे सेंटर पे जाते हैं, फिर बच्चे आते हैं, सहायिका बुलाती है, बच्चों को बैठाते हैं, फिर प्रार्थना बुलाते हैं, फिर प्रार्थना बोल के थोड़े व्यायाम कराते हैं, और इस वो फिर बच्चे को 9 बजे वो खाना नाश्ता बांटते हैं। नाश्ता बांटने के बाद फिर किताब, मतलब सोमवार को किताबें का काम करवाते हैं, और बुधवार को किताबों का, और शुक्रवार को किताब का काम करवाते हैं, फिर और थोड़ी फिर 11 बजे फिर पोसार बांटते, फिर 11:30 बजे बच्चों को खिलाते, फिर 12 बजे छुट्टी हो जाती है। एक तो चने, गुड़, मुमरा।
0: प्रसव होने का पहले आप क्या क्या जाँच कराते हैं?
3: वो तो गर्भवती मतलब होती है ना, तो वो तो आशा सहयोगिनी जाती है तो पता करती है, गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद उनको सेंटर पे बुलाती है, टीका लगवाते हैं, फिर उनको हर गुरुवार को 930 ग्राम ठेली देते हैं, और टीका लगाने के बाद उनकी जांच होती रहती है जब तक डिलीवरी नहीं होती।
0: आप पंजरी वितरण करते हैं?
3: हाँ।
0: पंजरी में क्या क्या पौष्टिकता कैसे बनता है?
3: उसमें गेहूँ होता है, उसको सेकते, सेकने के बाद उसको पिसवाते, और शक्कर डालते, सोयाबीन डालते, और दाल डालते।
0: आप बनाते हैं ना?
3: समूह वाली बनाती है।
0: पूरा पता है?
3: हाँ।
0: पूरा जैसे आप बना रहे ऐसे पता है?
3: नहीं।
0: लेकिन कोई बनाए तो आप उसको पूछते हैं, उसको जानकारी है?
3: हाँ, बुलाते हैं, पंचायत में बुलाते हैं।
0: तो आप क्या बात करते जाकर?
3: कोई भी समस्या आती है वो लिखवाते हैं पंचायत में।
0: कोई समस्या ऐसे लिखा है आज तक?
3: हाँ, पानी की लिखवाई है।
0: पानी का बोरी
3: नहीं, नल कुछ भी हो।
0: आंगनबाड़ी में कितना बच्चे?
3: अभी तो रजिस्टर में 13 लड़कियाँ, 14 लड़के, पहले कोई नहीं थी, नई खोली है।
0: कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए पूरा सबको बुलाया है, इतना सुंदर रूप में सजाए, तो उनको भी थोड़ा स्वागत करें, जो आज का गतिविधि और इतना लोग को जो बुलाए, खासकर बहुत माताएं आए थे, और सभी साथी सहयोग अपना आप समान हम जिन्स उनको भी बुलाएं। तो आज का गतिविधि का ऊपर में थोड़ा बताइए।
3: आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सुबह जब आए तो हमने ये पोषण संबंधी जो भी थी ये डिश वगैरह तैयार करी और हमारी बहनें सब आई और पोषण जो ही पोषण मेला चल रहा है इसी के बारे में सभी बहनों ने अपनी अपनी जानकारी दी और आज का कार्यक्रम मतलब बहुत ही अच्छा रहा, कहने का मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रहा और आगे भविष्य में कामना करते हैं कि ऐसी हमारे सेंटर पर कार्यक्रम होते रहे और सब अपनी अपनी भागीदारी निभाते रहे।
0: धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम इतना सुंदर इतना सजा है किसको धन्यवाद देना चाहिए?
3: हम सभी बहनों को ही देना चाहिए धन्यवाद तो सर, और सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हैं। आप ही का सहयोग से हुआ है ना सर, आप नहीं होते तो हम इतना नहीं कर पाते। आपने जो हमारे को मौका दिया, नहीं हम कभी बोल नहीं पाते हैं सर, दूसरी जगह हमारे को कहीं बोलने का बोला तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे सर। अभी तो लोग बहुत विश्वास करते हैं सर गांव वाले,
0: और सबको धन्यवाद दिए हैं और सबका सहयोग से ही ये काम सक्सेस हुआ
4: जी। खूब अच्छा लगा हमारे आज पोषण दिवस के बारे में, आपकी सहायता भी अच्छी रही हमारे साथ में, सब भाई बहने वहने सब हमारे साथ में अच्छा रहा, और आप बोलोगे तो हम तो और करने को तैयार है सर, आप सहयोग देते रहेंगे, हमारे सेंटर भी आओ, हम तो और खुश है जी। हाँ हाँ वो भी है ना, अलग पहचान बन जाएगी और बोलने की भी झिझक हमारी खुल जाएगी सर। हाँ
5: मेरा नाम शांता परियार है, मुंगला सेंटर केंद्र मुंगला सेकंड है, और आज का आपके वजह से आपने प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा रखा।
6: मीटिंग की अच्छी लगी, खूब अच्छी, हमारे ऐसे हमेशा मिलते रहे जो हमारे ऐसे रोज प्रोग्राम पोषण का है तो मिलते रहे तो हमारे ऐसे नव नव सीखवा मिले एक बार मिले नव नव ऐसे प्रोग्राम हमारे हमेशा होता रहे।
0: तो सभी को नान का सा धन्यवाद आज के लिए जो सुंदर रूप में सजाए, जानकारियाँ प्राप्त हुई खासकर पोषण माह को लेकर, क्योंकि सही पोषण देश रोशन और आंगनबाड़ी रोशन, हमारा बच्चों का भविष्य भी रोशन उसी में ही होता है। तो इस कार्यक्रम को जिन्होंने सजाया सभी को नाम का साथ पुनः बार बार दिल से आभार, और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, ये था आंगनबाड़ी केंद्र मुंगथला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना यहाँ पर फाइव तक है, तो बहुत खुश लगा सभी का सहयोग आज रहा, और खासकर बहुत मिष्टान और भावना युक्त प्रसाद मैंने जो बच्चों को खिलाते हैं वो भी हमको देखने को मिल रहा है, और बच्चों को खिलाएंगे कब पता नहीं अब तक। तो सबको धन्यवाद आभार, चलिए हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।
7: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाना चाहूंगी जिनका नाम है सौम्या रेवणकर। आप बेंगलोर के रहने वाले हैं और 5 वर्षों से आप राजस्थान आबू तलेटी में रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं है। आपने बीकॉम फाइनल तक पढ़ाई की हुई है और आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। आप सभी के साथ हिल मिल करके प्यार से रहते हैं और बहुत ही आपका व्यवहार सौम्य व्यवहार है। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं जो आपके द्वारा ही जानेंगे, तो ऐसी नारी शक्ति से आप सभी को मिलवाना चाहूंगी। देखिए, वंदे मातरम स्पेशल नारी शक्ति पर आधारित है कि महिलाओं के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो ऐसे तो पता ही नहीं चलता है कि इनके अंदर क्या विशेषता है, लेकिन रेडियो मधुबन के जरिए आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में क्या नहीं है। तो आइए हम आपको मिलवाएंगे। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू
0: जी। सौम्या जी, आपकी स्माइल बता रही है कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आकर।
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं। आज आपके अनुभव हम सुनेंगे। तो आपकी उम्र वैसे 55 वर्ष की है, 55वां अभी लगा है।
1: अच्छी।
0: तो चलिए, 55 में बचपन को याद कर लेते हैं।
1: जी जरूर जरूर करेंगे
0: जी।
1: हम तो बचपन से ही बेंगलोर से ही पैदा है, कर्नाटक बेंगलोर से ही है हम लोग। हम यहाँ अभी 5 साल हो गया, मगर बचपन में हम अध्यात्म में और धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि थी। हम जब से पैदा हो गए दादी के साथ ही हम रहते थे। दादी पूजा पाठ में बहुत चलती थी।
0: अच्छा, तो दादी जी की वजह से आपको भी ऐसे ईश्वर में रुचि होने लगी।
1: हाँ जी।
0: तो आप बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के।
1: हाँ जी।
0: तो दादी जी क्या करते थे, मंदिर वंदिर जाते थे या घर में पूजा पाठ करते थे?
1: दादी जी मंदिर भी जाते थे, मंदिर भी बनवाए थे। हम बचपन से दादी के साथ ही पले बड़े हैं। हमारे घर धार्मिक प्रवृत्ति है और बड़ा घराना था वहाँ हमारा, वहाँ बेंगलोर में। तो आने जाने वाले भी बहुत सारे थे, स्वामी लोग भी बहुत सारे आते थे, साधु संत आते थे, ऋषि मुनियों का आना जाना रहता था। मेरा दादी सबको एक आश्रिता दाता जैसे वो रहती थी। इसके उनके बाद में मेरे पिताजी और मम्मी दोनों ऐसे उसी रास्ते में चल पड़े थे।
0: अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य, संयुक्त परिवार था?
1: हाँ, जॉइंट फैमिली थी हमारी। हमारी फैमिली में वैसे तो हम 23-24 लोग तो हमेशा घर में रहते थे और आने वाले वो लोग भी रहते थे। 30 तक हमारा घर में रोज सुबह शाम खाना बनता था।
0: अच्छा, तो उसमें आपके चाचा चाची,
1: चाची बड़ी माँ बड़ी पापा सब थे, और जॉइंट फैमिली होने के कारण कजिन ब्रदर्स कजिन सिस्टर्स बहुत सारे थे
0: जी। तो कहाँ समय बीतता पता ही नहीं चलता।
1: नहीं,
0: क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो सभी भाई बहन साथ में हिल मिल करके रहे होंगे।
1: इसका एक रिजल्ट ऐसा है हमारे जिंदगी में, सबके साथ जुल मिलकर कैसे रहना ये भी हमको आसानी से आ गई। और सब काम करने की तरीका, साथ में मिलकर काम कैसे करे, वो एक करे हम एक दूसरे करे कैसे कर सकते हैं, वो सब हमको सीखने को मिला, बचपन से ही सीखने को मिला। आज अपनी जिंदगी में वो सब आ रहा है, वो सब काम आ रहा है।
0: जी जी, वो तो देखो बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन के जो हमने प्राप्ति की है ना, वो लाइफ टाइम चलती है। तो बहुत ही सुंदर की आपके दादी जी चाचा चाची उनके बच्चे 30 लोगों का परिवार था।
1: 30 लोगों का परिवार था।
0: आप रियल भाई बहन कितने थे?
1: हम रियल भाई बहन 4 लोग हैं, 2 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे ऊपर, मतलब बड़ी मैं ही हूँ, मेरे पीछे सब लोग हैं। तो जिम्मेवारी भी मेरी ज्यादा ही थी, और मम्मी पापा को देखना, वो सब वो जो कहते वो सब काम करना, और पूजा पाठ में उनका समय देना, उसको रेडी करके जो पूजा करते थे वो रेडी करके देना, वो सब हमारी जिम्मेवारी थी।
0: घर में सबसे बड़ी बेटी आप ही थे?
1: हाँ जी।
0: बाकी चाचा के सबके छोटे?
1: वो सब छोटे ही थे।
0: बड़ों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती है। तो आपके दादाजी भी थे?
1: दादाजी नहीं थे।
0: अच्छा, आपके दादी जी बहुत धार्मिक?
1: दादी जी हाँ,
0: तो
1: बहुत धार्मिक,
0: सभी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे।
1: सभी
0: जी,
1: सभी हमारी एरिया में वो तो बड़ी दादी नाम के, बड़ी नाम से वो पुकारते थे वो लोग। हमारे वहाँ श्रृंगेरी शारदा पीठ है शंकराचार्य से जो स्थापित किया हुआ है, वहाँ से जो स्वामी जी आते थे वो हमारे घर में आकर रुकते थे। उनका प्रवचन चलता था 7 दिन 8 दिन ऐसा, भागवत वगैरह सब। और उसके बाद में हमारा साउथ इंडिया के जो कंची हम अभी जानते हैं कंची कामाक्षी नाम से, वो भी शंकराचार्य पीठ से ही हो गया, शंकराचार्य के हाथों से ही वो भी स्थापित हो गया।
0: अच्छा, तो ये सत्संग आपके घर में होते हैं या आप लोग अरेंज करते हैं?
1: नहीं, अपने घर में। अपना तो बड़ा वाड़े जैसा घर था।
0: अच्छा, बहुत बड़ा।
1: हाँ,
0: था।
1: बहुत बड़ा था। दो हॉल थे ऐसे, 50 के लोग आराम से बैठ सकते थे हम, ऊपर और नीचे। ऐसे आंगन भी बड़ा था हमारा, इसीलिए हमारे घर में ही ज्यादातर चलते थे और मंदिरों में भी चलते थे, हम उधर भी चले जाते थे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। तो वो तो कहते हैं ना कि जब बड़े इस तरह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए तो छोटों पर तो प्रभाव उसका पड़ना ही है। तो आप भी ऐसे?
1: हाँ, और हर महीना हमारे घर में एक तो यज्ञ या होम हवन चलता ही था हर महीना।
0: जी जी जी
1: हाँ।
0: तो साधु संतों का तो आना जाना चालू था। तो आप जैसे बच्चे लोग है और साधु संतों को तो बहुत ही स्वच्छता और वो उनका ध्यान रखना पड़ता था,
1: पड़ता है।
0: तो भाई इतना बड़ा परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से कभी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ कि कोई साधु संत थोड़े भड़क गए?
1: नहीं, संस्कार ऐसे हो गए थे ना हमारे, इसलिए ऐसे ही हो गए थे हम। उनको जैसे चाहिए इसलिए हमारे घर को सिलेक्ट करते थे वो सब लोग।
0: और उनके रहने के लिए भी एक्स्ट्रा
1: अलग से कमरा, उनका आने जाने के लिए। उनके साथ वो भी शिष्य लोग भी आते थे, उनके चेला लोग भी आते थे, उनके लिए भी रहना। और अपना तो क्या है, वो बड़े जमींदारी ऐसा था ना, सर्वेंट्स तो हमेशा मैं अपने घर में रहते ही थे, दिन रात चलता था वो सब, तो चलता था। मेरे पापा और बड़े पापा दोनों मिलकर करते थे वो सब।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी जी। तो आपके क्या बिजनेस था या?
1: हाँ, हमारी बिजनेस थी, नहीं बिजनेस थी, पापा की अपना जमींदारी थे, तो जमीन था, वो जमीन में वो पैदा उगा करते थे चावल वगैरह वो सब। और अपना बिजनेस भी था, पिताजी का साड़ी का, दादाजी का ये था, साड़ी का दुकान था, होलसेल दुकान था।
0: अच्छा।
1: तो वो सब करते थे, हम भी जाते थे साथ में, वो भी सिखाते थे हमको।
0: अच्छा।
1: लड़कियां पीछे नहीं हटना है, सब चीजें सीखे लड़कियां, आगे कौन सी वक्त आता नहीं पता नहीं है, निडर होके आगे चलने के लिए क्या चाहिए वो सब सिखा दिए मेरे पापा।
0: जी जी जी जी। हर प्रकार का कार्य आपने किया?
1: हाँ, जैसे भाई लोग करते हैं, भाई और बहन अलग से देखा ही नहीं अपने घर में, हर किसी को नहीं देखा, ये भाई बहनों का काम है, ये भाइयों का काम है, ये करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिताजी अपने साथ हम लोगों को, लड़कियों को मतलब अपनी बेटियों को साथ में लेके जाते थे, सुनो परखो करो ये सब निर्णय ले लो कि तुम करती तो क्या होता, तुम होती तो क्या करती, वो सब सोचो, वो सिखा दिए, बचपन से ही सिखाते आए पिताजी हमको।
0: जी जी जी जी।
1: पालना बहुत अच्छी मिली है बचपन से हमें।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो इस तरह आप भी जैसे बिजनेस में भी माहिर हो गए।
1: हाँ।
0: और अध्यात्म में तो थी।
1: आगे होकर अपना खुद का बिजनेस भी मैंने खड़ा कर दिया था।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: बताएंगे क्या बिजनेस खड़ा किया?
1: मैंने साड़ी का ही बिजनेस खड़ा कर दिया था। शादी हो गई, शादी होने के बाद ये हमारे हस्बैंड वो बैंक मैनेजर थे, तो बैंक मैनेजर माना उसका क्या होता है, काम सुबह से रात तक होती है, तो अकेले घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। और हमारे अपने घर में मायके में तो इतने सारे लोगों के साथ रहकर ये अकेला टाइम बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे को
0: जी।
1: तो मैंने भी साड़ी का बिजनेस शुरू कर दिया। पिताजी ने थोड़े बहुत मुझे अपने दुकान के साड़ी दिए थे, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। नाम के 5,000 रुपये की माल लेके आई थी मैं बस, तब से लेकर 14-15 लाख तक अपने बिजनेस को बढ़ाया। घर बैठे ही मैंने बिजनेस भी की करती थी और आध्यात्म के रुचि रखती थी, आध्यात्म में भी यहाँ भी टाइम देती थी और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते चली थी मैं।
0: क्या बात है। आपकी शादी की बात तो हम जरूर करेंगे, अभी
1: हाँ
0: आपके बचपन की बातें चल रही है
1: जी।
0: तो चलिए हम यहाँ पर एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे, आपके अनुभव जरूर सुनेंगे
1: जी,
0: लेकिन सुन लेते एक गीत
1: जी।
0: तो कहीं भी जाइएगा नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, सौम्या जी के अनुभव बहुत सारे बाकी है और आप देख रहे हैं कितने सुंदर अनुभव है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। उसके हौसले के आगे फीका हर वार। ममता भी है, शक्ति भी है, साहस की पहचान। नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान, नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान। तो ऐसे ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के बचपन के अनुभव हमने सुने हैं कि किस तरह आप बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: तो आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे। हाँ, आप बता रहे थे कि देखिए आप पढ़ाई भी करते थे, अध्यात्म में आप बहुत ही गहरी रुचि रखते थे, परिवार भी पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो आप हर प्रकार की मदद करते। फिर आपने बताया कि दुकान पर भी चालू किया आपने जाना, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जाना शुरू किया या पढ़ते
2: नहीं,
1: समय?
2: बचपन से पढ़ते समय भी हमको उस पर भी ध्यान देते थे ज़्यादातर। अभी दिवाली आती है तो ग्राहक लोग ज़्यादा रहते हैं, कस्टमर लोग, तो सर्वेंट्स कितने भी होते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी चाहिए। और गल्ला जो हम बोलते हैं पैसा लेने की बिलिंग जगह होती है, वहाँ पर पिटाते थे हमको। बिलिंग का भी हम करते थे, पैसे लेन देन करना। बिजनेस थोड़ा बड़ा था
1: जी।
2: तो 1 घंटा 2 घंटा दिन में जाकर हम बैठ जाते थे दुकान में।
1: अच्छा, तो सभी का साथ में ही था, जैसे बड़े पापा?
2: हाँ,
1: के और आपके?
2: सभी का साथ में,
1: जी
2: सभी
1: जी
2: का, सब मिलकर। यहाँ पर अपना राइस मिल था, जमींदारी थी और दुकान था। 3
1: अच्छा,
2: भाई, हाँ, बड़े पापा और चाचा और अपना पिताजी का, सबका वही था।
1: तीनों भाई?
2: तीनों भाई साथ में थे।
1: जी जी जी जैसे आप बता रहे थे कि संतों का आना जाना शुरू रहता था, तो आपने गुरु किया होगा उस समय?
2: हाँ, उस टाइम गुरु किए, मगर मन में एक अजीब सी एक प्यास थी, मतलब और कुछ हमें चाहिए। जो मैं उनसे प्रश्न पूछती थी, प्रश्न से उनको उलझाती थी, वो ऐसा कैसे करते हैं, ये पूजा कैसा क्यों करना है, ये क्यों करने से क्या फ़ायदा होता है, ये देवी ऐसे करने से हमको प्राप्ति, इससे वर मिलता है क्या, ऐसे मैं उसे जिज्ञासु होकर मैं उनसे प्रश्न पूछती थी।
1: तो आपके दादी

0: डांटते नहीं थे कि क्या पूछ रही है तू?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे बड़े पापा डांटते थे क्योंकि दादी तो स्कोप देती थी, कितना अपना बुद्धि को बढ़ाना चाहती हो बढ़ा दो, अपना प्रश्न को उनसे निवारण कर लो तो तब भी तुमको तसल्ली मिलती है। और अपने तो भजन वो सब गाते थे, भजन में भी अपने दादी के साथ बैठकर ही हम गाते रहते थे, वो प्रश्न आता था उसमें भजन गाने से भी, अब भज गोविंदम ये सब गाते हो, गोविंद का नाम इतना क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कृष्ण को यहाँ आप वृंदावन में क्यों लाए, वो तो महाराजा होने वाला था, राजा होने वाला था, ऐसा प्रश्न तो मन में आता था, दादी को भी बोलते थे, पूछते थे और अपने गुरु लोगों से भी मैं पूछती थी तब तो, मगर उत्तर वो क्या समझते थे, उनको क्या समझ में आता है वो बताते थे, या अपनी उम्र के हिसाब से वो बता देते थे, मगर तसल्ली नहीं होती थी,
0: जी, हाँ,
1: बिल्कुल तसल्ली नहीं होती थी। मैं अपने पापा को बोलती थी ये जो बोल रहे हैं ना ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, मुझे अपने मन के अंदर लगा रहता था कुछ और चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, ये है नहीं, ये जो बता रहे हैं वो मेरे लिए है नहीं, कुछ और चाहिए, ऐसा मुझे होता था। और थोड़ा और आगे होने के बाद अपने घर में किराए पे एक चिन्मयानंद मिशन वाले आ गए किराए
0: जी
1: पे रहने के लिए, तो वो तो सुबह और शाम दो वक्त उपनिषदों का वो क्लास कराते थे, इतने उपनिषद थे, 8 उपनिषद थे, उप उपनिषद थे, वो सब उपनिषद का क्लास के लिए मैं सुबह और शाम दोनों उनके साथ बैठती थी, क्लास में जाती थी,
0: जी
1: कॉलेज जाते समय, स्कूल का टाइम अलग था, कॉलेज का टाइम में सुबह शाम उसको सुनना, मगर वो आत्मा के बारे में चैतन्य के बारे में क्या बोलते थे वो सही लगता था, मगर परमात्मा के बारे में जो वो बोलते थे, अद्वैत सिद्धांत बता देते थे शंकराचार्य का वेदांत के बारे में, ये सब मुझे ना थोड़ी सी अजीब सी लगती थी, घर में तो धार्मिक प्रवृत्ति रहते हुए भी मुझे वो अब मानने के लिए मैं रेडी नहीं थी, ये कुछ
0: जी
1: दूसरा है, ये कुछ और बोल रहे, जो चीज़ वो दूसरा है वो अपने हाथ में नहीं था, देखने के लिए भी नहीं, सुनने के लिए भी नहीं और समझने के लिए भी नहीं है, वो क्या है, वो क्या है, अंदर अंदर ये जिज्ञास होता बहुत सारा था मेरा।
0: जी जी जी लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान फिर आपको मिला कि नहीं मिला?
1: मिला ना आगे जिंदगी में जरूर मिला,
0: अच्छा, उस
1: हाँ
0: समय नहीं मिला
1: उस समय नहीं मिला,
0: तो
1: मैं
0: आपको
1: वो
0: एक
1: कंची श्री से मैं एक बार प्रश्न पूछी थी भगवान के बारे में, भगवान माना क्या है, कौन है, भगवान के बारे में सही सही बताइए, मगर वो बोले थे अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैं 16-17 साल की थी तब तो छोटी है, और तुम ये सब तुमको ये सब सोचना नहीं है क्योंकि
0: अच्छा
1: लड़कियां हैं,
0: जी
1: लड़कियों को एक पाबंदी रहती है, दिन महीने में 4 दिन का वो रहता है ना,
0: जी
1: इसलिए पाबंदी रहती, ये सब तुम नहीं कर सकती, ऐसे बोले थे, मुझे अंदर से एक फेमिनिज्म ये स्त्री शक्ति के बारे में ये अपमान कर रहे, ऐसा लगा था उस टाइम लगा था, मगर उनकी बुद्धि शक्ति और उनकी नॉलेज उतनी ही थी, तो वो तो उस टाइम के वो जो बताए वो उनके लिए सही था, वो मैं गलत नहीं कहती हूँ,
0: जी, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं
1: हाँ
0: और हमको ऐसा लगता है कि अरे नारी होना क्या गुनाह है क्या?
1: हाँ ऐसा लगता था मेरे को,
0: सही है, क्या नारी भक्ति नहीं कर सकती, क्या
1: कर
0: नारी
1: सकती है ना,
0: आगे
1: क्यों
0: नहीं बढ़
1: नहीं कर
0: सकती, वो
1: सकती,
0: सारे प्रश्न आपके अंदर घूमे
1: हाँ
0: होंगे।
1: वो तो मैं हमेशा, मेरे पिताजी बोलते थे वीर शक्तियाँ उनके बारे में बताते थे, और गार्गी और ये सब जो है मुक्ता ये सब है, और मीराबाई के बारे में तुम आगे बढ़ सकते हो, पिताजी का मम्मी और अपने दादी का बहुत स्कोप, माना बहुत स्कोप था हमको,
0: जी,
1: कितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ सकती हो बढ़ो, कितना
0: जी
1: आगे बढ़ सकते हो पढ़ो, तुम्हारा है, हम तो छूट दे दिए पढ़ने के लिए जाने के लिए, कभी फर्क नहीं किए,
0: जी जी जी जी एक अच्छा माहौल मिला। और भाई
1: हेल्दी,
0: बहने आपस में कैसे रहते थे? जी
1: बहुत फ्रेंडली अभी भी है, बहुत फ्रेंडली है,
0: हाँ, तो कभी ऐसे तू तू मैं तो नहीं होता था।
1: नहीं, बड़ी होने के कारण क्या होता था, जो भी मिलता है पहले छोटों को बाद में मेरे को,
0: अच्छा
1: ऐसा सिस्टम था हमारे घर में, जो छोटे लोग पहले चूज करते हैं वो चुन लेते, पहले उनके अधिकारे बाद में तुम्हारा, बड़ी माना संभल के जाना है, उनको भी संभालना है तुमको।
0: अच्छा तो मतलब बड़ा होना तो ऐसे हो गया बस त्याग करो शुरू से ही?
1: नहीं ऐसा तो नहीं है, जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी उठाना तब से शुरू हो गई
0: जी।
1: थी।
0: तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पसंद का था लेकिन उसने ले लिया,
1: नहीं मेरे
0: मन मार
1: पसंद
0: के कोई चीज आपने ली हो?
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, वो वापस हमको ही देते थे बाद में, जो मुझे पसंद है वो मेरे भाई बहनों को भी पता रहता था, वो चीज छोड़कर वो दूसरा ले लेते थे।
0: जी जी जी
1: जैसे मैं उनका ख्याल रखती हूँ वो भी ऐसे मेरे ख्याल रखते थे।
0: जी जी जी वो स्नेह, वो प्यार दिखाई देता है, वो त्याग भी दिखाई देता है दोनों का।
1: तो वो पता चलता था, लेते ही तो भी वापस कर लेते थे।
0: जी जी जी और जैसे आप कह रहे थे कि पूजा की सारी तैयारी आप करके रखते थे, मान लीजिए कभी कोई ऐसे गड़बड़ हो गई हो तो दादी जी से डांट भी खाई कभी?
1: नहीं, दादी तो कभी नहीं डांटी, ऐसे तो हमने छूटा नहीं है, मगर बड़ी मम्मी जो थी ना वो डांटती थी कभी कभी।
0: अच्छा वो क्यों डांटते थे?
1: वो क्यों, इसलिए मैं पूजा करना पसंद नहीं करती थी, पूजा की तैयारी करती थी मैं, जो जो चाहिए वो सब पूजा की तैयारियां करती थी। तो बेलपत्र फूल वगैरह सब लाना होता है, कलरफुल करना होता है, वो देवी के हिसाब से, इस देवी के हिसाब से ये कलर का होता है, लाल कलर का होता है, शंकर के नाम से सफ़ेद फूल रहते हैं, शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र रखना चाहिए, वो सब उनके जो रीति रिवाज होता था उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी,
0: जी जी
1: ज़्यादातर
0: जी
1: नहीं।
0: जी जी जी बिल्कुल, बड़े हैं थोड़ा सा डांट भी देते हैं और बच्चे हैं तो कभी गलतियां हो
1: और
0: ही जाती है।
1: सब लोगों को क्या होता है उस टाइम पूजा करना होता है, लड़कियों को भी पूजा करना होता था, सारी मेरी सिस्टर्स कजिन सिस्टर्स पूजा करती थी, मैं अकेली नहीं करती थी, इसके लिए भी कभी कभी डांट पड़े हैं।
0: जी जी जी तो आपको कोई हेल्प करने वाला होता था, भाई बहन या फिर
1: हाँ
0: आप?
1: करते थे, अपने सर्वेंट्स भी थे, ये छोटे भाई बहन भी करते थे।
0: जी जी जी तो भाई इतना बड़ा परिवार है, इतने साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, तो सर्वेंट भी हर
1: होते
0: प्रकार
1: थे।
0: से हेल्प
1: हाँ
0: करने में रहे होंगे,
1: हाँ जी,
0: तो किचन में भी हेल्प लेते थे?
1: किचन में कभी नहीं लिया,
0: जी जी जी
1: किचन में अलाउ ही नहीं था। हमारा
0: जी
1: साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी, मतलब हम एक ब्राह्मण्स है, एक ब्राह्मण्स में दादी थी ना, वो शेर मुंडन कर ऐसा सिस्टम था।
0: अच्छा क्यों मुंडन
1: हाँ
0: कराते थे?
1: वो तो शायद दादाजी गुजर गए माना, वो ऐसे करेंगे तो पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं,
0: अच्छा
1: नहीं तो नहीं आ सकते।
0: अच्छा तो
1: वो
0: सोम्या जी चलिए
1: एक
0: फिर से समय हो चला यहाँ पर एक गीत सुनने का, तो ये गीत
1: जी
0: सुनने के बाद तुरंत लौटते हैं
1: हाँ जी
0: फिर इसी विषय पर बात करने के लिए,
1: जी
0: ठीक है?
1: जरूर
0: तो बने रहिएगा श्रोता बंधु कार्यक्रम वंदे मातरम में। सोम्या जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं और जरूर सुनेंगे, पर पहले सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: कभी बेटी बनकर घर में खुशियां लाती है, कभी बेटी बनकर घर में खुशियां लाती है, कभी माँ बनकर जीवन की राह दिखाती है. हर रिश्ते को प्यार से सजाती है नारी, हर रिश्ते को प्यार से सजाती है नारी. अपने हौसलों से लिखती है नई कहानी, अपने हौसलों से लिखती है नई कहानी. तो ऐसी ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम आप सुन रहे हैं, और इसमें सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं. सौम्या जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए और भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे. सौम्या जी, आप बता रहे थे कि आपके दादी जी सिर मुंडवा करके ही पूजा कर सकते थे, बाकी नहीं, तो ऐसा उधर रिवाज है?
2: रिवाज है, अपना सामाजिक पद्धति था तब की टाइम, तब की टाइम में, अब तो नहीं है, तब की टाइम था, वो कंपलसरी भी था, उन लोगों को कंपलसरी था. बाद में जो हो गए तो वो नहीं करवाए, मगर उन्होंने करवाए थे.
1: अच्छा, तो फिर तो वो तो रोज ऐसे मुंडवा के रखते थे बाल?
2: हाँ,
1: क्योंकि पूजा तो रोज करनी होती
2: है, रोज करनी होती है. और शालिग्राम रहता है घर में, जहाँ शालिग्राम रहता है वो तो वो पूजा करने वाले एक वैसे लोग चाहिए, सर मुंडन करने वाले, या नहीं तो भाई लोग चाहिए. हम लड़कियां तो कर नहीं सकते और बहनें भी कर नहीं सकते शालिग्राम का पूजा, ऐसे सिस्टम था.
1: अच्छा जी जी जी, तो दादी जी तो खुशी खुशी करवाते होंगे.
2: उनको पूजा पाठ में, अध्यात्म में, धर्म में बहुत रुचि थी.
1: जी जी जी, बढ़िया. और आप बता रहे थे कि आप दुकान भी संभालते थे, तब आप कौन सी क्लास की पढ़ाई करते थे?
2: मैं 8th 9th स्टैंडर्ड.
1: अच्छा, तब से आपने दुकान पर जाना शुरू कर दिया. जी जी, और स्कूल में कैसा व्यवहार था सखियों के साथ?
2: स्कूल में तो सब मेरे फ्रेंड्स है, वैसे तो हम स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छे ही थे, फर्स्ट रैंक आते थे हम स्कूल में भी, और टीचर्स बहुत अच्छे अपना प्यार करते थे. जैसे कि टीचर एक बात बोली तो वो मना नहीं करते थे, हम कुछ भी हो जाए मानकर उस पर चल के दिखाते थे.
1: जी जी जी,
2: हाँ, आज्ञा पालक थे
1: जी. चलो, बहुत अच्छी बात है. तो इस तरह आपकी स्टूडेंट लाइफ, और घर में भी सभी का प्यार मिला, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी बीती. अच्छा, और पढ़ाई के अलावा क्या आपको रुचि थी? जैसे आप बता रहे थे कि भजन भी गाते थे, तो दो लाइन सुनाएंगे हमारे श्रोता बंधुओं को?
2: अभी तो बहुत दिन हो गए, वो तो याद ही नहीं है.
1: अच्छा,
2: और हम कन्नड़ लैंग्वेज में गाते थे, कन्नड़ लैंग्वेज का वो पुरंदर दास के वो सब, अभी तो वो आदत ही नहीं है, छूट गई है बहुत दिन के बाद.
1: अच्छा अच्छा, तो और आप क्या करते थे स्कूल में, जैसे गेम्स वगैरह खेलते थे?
2: गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स रहता था ना, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में चैंपियन थे हम.
1: अच्छा.
2: और कैरम बोर्ड में थे.
1: अच्छा.
2: इंडोर वो भी थे, और वॉलीबॉल में थे हम, वॉलीबॉल अच्छे से खेलते थे.
1: तो कभी आप टूर्नामेंट में गए?
2: गए हैं ना.
1: तो आप किस में गए फिर?
2: डिस्ट्रिक्ट, वो थे वही बैडमिंटन और इसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे, आगे जा नहीं सके क्योंकि टीम वर्क रहता है, टीम हार गई तो वापस आ जाते.
1: जी जी, हाँ. वो तो है बिल्कुल. तो बैडमिंटन में जाते थे?
2: हाँ, बैडमिंटन और वॉलीबॉल.
1: अच्छा, दो गेम्स में जा सकते?
2: हाँ.
1: अच्छा,
2: जा सकते, कितने भी हम जा सकते हैं. नेशनल लेवल तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट रहता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये जोन रहता है.
1: जी.
2: जोनल लेवल तक हम गए थे.
1: अच्छा, और डांस वगैरह?
2: डांस वगैरह कुछ कभी नहीं की है.
1: अच्छा.
2: मगर गाना गाते थे, संगीत सीखे थे बचपन से.
1: अरे वाह.
2: हाँ, गाना गाते थे
1: तो स्कूल में, गाना भी गाते थे.
2: हाँ,
1: कन्नड़ भाषा,
2: कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा.
1: हिंदी में कभी नहीं गाया?
2: हिंदी में कभी कभी गाए थे बचपन में, वो भी अभी याद नहीं है.
1: अच्छा. चलिए, कोई बात नहीं. और कॉलेज लाइफ आपकी कैसी गई?
2: कॉलेज लाइफ तो अच्छी थी. जब सेकेंड ईयर थे तब मम्मी को एक सीरियस या बीमारी आ गई थी, तो उसकी वजह से हम घर का ध्यान ज़्यादा देने लगे तब से.
1: अच्छा.
2: हाँ, इसीलिए थोड़ा नंबर कम मिले मगर घर पर ध्यान देना जरूरी समझा।
1: हाँ, बड़ी बेटी हो तो जिम्मेदारी घर की आ गई आपके ऊपर। भले संयुक्त परिवार है फिर भी माँ को संभालना
2: जरूरी था, तो माँ को ज्यादा पालना देना था उस टाइम। तब से अपना लाइफ और थोड़ा अंतर्गत, मतलब क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी होने लगे। मम्मी को सीरियस हो गया, उसको बचा के ले आना हमारे लिए एक अच्छा लगा था, मुश्किल भी लगा था तब के टाइम।
1: जी जी जी, वो उस समय, आज तो भाई परिपक्व एज है, उस समय तो बच्चे ही थे ना।
2: मैं तो 18 साल की थी तब।
1: जी जी जी जी,
2: 18 इयर्स ओल्ड।
1: जी जी, तो उनकी फिर तबीयत में सुधार आया,
2: बाद में सुधार आ गए।
1: अच्छा अच्छा,
2: बाद में अच्छे भी हो गए मगर जिम्मेवारी अपनी बढ़ गई।
1: जी,
2: उनके बाद जो अपनी बढ़ गई, माना पूरा जिम्मेवार ले लिया रसोई का भी।
1: अच्छा, तो रसोई में तो इतने जने थे बनाने वाले, फिर भी आपको
2: बनाने वाले थे मगर मम्मी जो बनाती थी, मम्मी का जो काम था वो करना ही था हम लोगों को।
1: अच्छा, हाँ, पेशेंट के हिसाब से खाना बना के देना, उनके केयर करना,
2: वो सब था ना।
1: जी जी जी जी, और फिर तो आप बड़े हो जो थोड़ा सा सोमिया जी इमोशनल हो गए हैं, स्वाभाविक है। चाहे माँ का तो बच्चों का बिल्कुल अजीज रिश्ता होता है, बिल्कुल ही करीब होते हैं माँ के। तो सोमिया जी, खैर
2: उस टाइम हम चले गए थे, आपने याद दिलाया, उस टाइम पास्ट में हम चले गए थे ना।
1: जी जी जी,
2: उस टाइम क्या क्या हो गया था
1: जी
2: सब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसी लाइफ को अभी जी रही हूँ।
2: हाँ,
1: याद आ गए सारी बातें। जी, जी
2: वो सब लगने लगा था।
1: फिर आपके मम्मी ठीक हो गए धीरे धीरे?
2: बिल्कुल, अभी बेंगलोर में, अभी तो नहीं है, बेंगलोर में ही है।
1: जी जी जी,
2: लेकिन
1: हाँ, लेकिन आपकी तपस्या रंग लाई।
2: हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो गई जब उसके बाद
1: वापिस उन्होंने संभाल लिया सब।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: जी जी जी, और इतने बड़े देखो घर में साधु संतों का जमावड़ा रहता था, तो उनकी भी दुआई तो मिलती थी,
2: दिन रात एक होकर वो सेवा करते थे मम्मी।
1: जी जी जी,
2: हम तो छोटे छोटे उन हाथ में काम करते थे मगर पूरा जिम्मेवारी उन लोगों की थी ना, बड़ों की।
1: जी,
2: तो एक नहीं है तो दूसरों को उसका प्लेस लेना ही पड़ता है,
1: बिल्कुल
2: उस स्थान में रहकर करना ही पड़ता है, वो प्रेशर ज्यादा होता है।
1: जी जी,
2: और हम कभी किए नहीं थे वो सब।
1: जी,
2: तो सीख गए और करने लगे।
1: वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी चीज ही ऐसी होती है कि कुछ नहीं आता, वो सब कुछ आ जाता है,
2: सिखा देता है।
1: जी, समय सिखा देता है।
2: सिखा दे
1: से आपका बचपन बहुत अच्छा बीता। कहते ना कि फिर भी संघर्ष तो हर एक के जीवन में रहता ही है। अच्छा सोम्या जी, फिर आपकी शादी कब हुई?
2: 1995 में शादी हो गई।
1: बीकॉम फाइनल हो गया था?
2: फाइनल तब भी हो गया था, उसी में साल में हो गया था। 1995 में शादी हो गई।
1: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
2: शादी के बाद तो बहुत बदलाव आ गई क्योंकि शादी के बाद हम दूसरे शहर पे आ गए, तो 30 लोगों से हम दो हो गए।
1: अच्छा,
2: ये बहुत बड़ी बदलाव है।
1: और आपके ससुराल में कोई नहीं है?
2: ससुराल सास थी, सासू माँ थे, और इनकी बहनें भी थे, ननद वगैरह थे, उनकी भी शादी हो गई थी। हम दूसरे शहर में रहते थे, वहाँ भी नहीं, मैके में भी नहीं, ससुराल में भी नहीं।
1: अच्छा,
2: जॉब की वजह से।
1: नाम बताएंगे आपके ससुराल का, शहर का नाम?
2: ससुराल का नाम है सिरसी, बोलते हैं उसका नाम।
1: अच्छा,
2: सिरसी।
1: सिरसी, हाँ। और रहते कहाँ थे?
2: वो सिरसी में ही रहते थे वो लोग।
1: नहीं, आप कहाँ रहते?
2: हम कहाँ, दूसरी जगह पे रहते थे। हुबली के पास एक शहर है, छोटा सा तालुका प्लेस है, वहाँ हम लोग बैंक में, श्याम सुंदर मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे, वहाँ हम लोग रहते थे।
1: जी जी जी,
2: तो 30 लोगों से, या उस वो भी 10 लोग थे ससुर के घर में, वहाँ से भी हम

0: के आ गए, तो दो के दो हो गए। तब थोड़ा बोर होता था मुझे, मगर श्याम सुंदर भाई आध्यात्म में वो भी रुचि रखते थे, उनके घर में भी ऐसे मेरी सासू माँ वो सब आध्यात्म में बहुत सारे रुचि रखते थे, उनको आसक्ति थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ाया।
1: अच्छा
0: बचपन का जो मेरे अंदर जो हवस था आध्यात्म का, वो उसमें मैं आगे बढ़ गया, बढ़ा दिया।
1: अच्छा शादी के बाद
0: शादी
1: आपको
0: के बाद,
1: आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए, आपको वो तोड़ मिला।
0: शादी के बाद पूरा खत्म ऐसा नहीं हो गया, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ। 2-4 साल उनके बाद साधना की मैंने, उसके
1: अच्छा
0: उसमें साधना की जो मुझे मिला, वो साधना के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा, जो प्यास थी अंदर अंदर, जो मेरे में एक वैक्यूम रह गया था, खालीपन, वो भरता गया भरता गया भरता गया, वो मुझे एहसास होने लगा।
1: जी बिल्कुल, और जो आपके प्रश्न थे उसका जवाब मिल गया
0: हाँ,
1: आपको।
0: जवाब मिलते चले गए, जवाब मिलते चले गए वो तो।
1: जी। तो चलिए सोमया जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौटते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी को कमजोर समझने की भूल न करना, उसके हौसलों को कभी धूल न करना। वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, अपने जुनून से इतिहास बना सकती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सोम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सोम्या जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आप बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जो पहले आप धार्मिक प्रवृत्ति में थे तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन शादी के बाद अध्यात्म में जाने से आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया और आपके प्रश्न खत्म हो गए।
3: खत्म होने लगे
2: होने लगे
3: होने लगे
2: जी।
3: ऐसा था माहौल दीदी, हम बताएंगे। उस टाइम में भी लड़कियां बहुत सारे जॉब करते थे, मेरी भी जॉब लगी थी एज ए टीचर, मेरी भी जॉब लगी थी। मगर मेरे हस्बैंड ने जो है वो श्याम सुंदर ने वो नौकरी भी छुड़ाई मेरे से।
2: अच्छा।
3: क्योंकि वो अध्यात्म के रुचि में थे ना, मैं और वो दोनों साथ में वो सब प्रैक्टिस करते थे हम, ध्यान का वगैरह
2: जी, सब मेडिटेशन करते थे।
3: हाँ, मेडिटेशन वो सब जो करते थे, उसके दोनों का इंटरेस्ट सेम था हमारा। तो उन्होंने कहा तुम क्यों जॉब करती हो, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने को बच्चा पैदा करके अपने में फंसना नहीं है, अपना स्वार्थ में फंसना नहीं था, हमको दुनियादारी विश्व कल्याण करना था, दुनिया की सेवा करनी थी, दोनों का इरादा वही था। इसलिए हमने जो सोचा और निर्णय किया, खुद का बच्चा न होना नहीं है, भगवान को ही अपना बच्चा मान ले।
2: क्या बात,
3: जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण की पालना करती थी वैसे ही हमने भी भगवान का सेम टू सेम पालना किया, वैसे ही हमने सब कुछ की, अपने अनुभव से मैं सब कुछ करती थी, कल्पना शक्ति से मैं करती थी
2: जी।
3: और उसका रिजल्ट भी आज मैं देखती हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ, क्योंकि दुनिया वाला जो सृष्टि करता है उसको ही मैं अपना बेटा मान चुकी हूँ
2: जी जी जी।
3: तो उसी तरह अब दो हम दोनों उसी मार्ग में चल पड़े, अपना खुद का जिंदगी, अपना खुद का स्वार्थ जो है अपना साइड रखा, विश्व कल्याण की दृष्टि से अब हम आगे बढ़ने लगे।
2: तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया?
3: पहले पहले
2: ससुराल वालों ने
3: पहले पहले विरोध किया, मैं हम दोनों मिलकर क्या किया, अपने माता पिता को और सास ससुर को सबको बिठाए, अपने घर में जो बड़े हैं सबको बिठाए, और अपनी मन की जो वो इच्छा थी वो हमने उनके सामने रखा। पहले पहले मना कर दिया, एक बच्चा होने दो बाद में वो सब करो ये सब, वैसे एक दो घटना हो गई, बच्चे होने के बाद भी कमज़ोर थे या कुछ हो गया वो मैं यहाँ बता नहीं सकती, इसलिए उन्होंने क्या कहा, तो अपना जिंदगी है ये भी अच्छा है, तुम अपना जिंदगी जी लो, तुमको कैसे चाहिए वैसे जी लो, ऐसे हमको आशीर्वाद देकर उन लोगों ने भेज दिया। हमने किसी का विरोध भी नहीं किया, अभी भी आज भी हम लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में हैं, वहाँ भी हम जाते हैं, बेंगलोर में भी जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं दो तीन महीना रहकर फिर वापस हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी अपना जिंदगी अच्छी चल रही है, वहाँ भी वो जो दिल में एक बार आ गया, अपना बच्चा नहीं हो तो मैं तो माँ बन सकती हूँ, क्योंकि दुनिया सृष्टिकर्ता भगवान को भी माँ बनी, मतलब सबको माँ बन सकती हूँ
2: जी।
3: तो अपने को मैं जगदम्बा रोल समझ लेती हूँ, अपने को सबको पालन देना है
2: जी जी जी, एक में बंद के नहीं, आप पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सोम्या जी, कहाँ पूरा जीवन आपका बेंगलोर में बीता, अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रह रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छा लगता है? पूरी भाषा आपकी चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, तो यह कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज माना क्या, साउथ से नॉर्थ आना माना विरुद्ध ध्रुव जैसा होता है ना, वैसा हो जाता है। तो खाना पीना और वायुमंडल, यहाँ का एयर कंडीशन, पानी हवा सब बदली होती है और लोग बदली होती है, मगर सब में क्या रहता है, एक भगवान की नाम और हर किसी के दिल में भगवान की ऊपर स्नेह और प्यार है, वो जो है आपस में बांधता है हम लोगों को। ये हम दोनों ने अनुभव किया। और पहली बात यह है, मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। 97 में पहली बार आ गए थे हम लोग, 95 के बाद ज्ञान में चलने के बाद, आध्यात्म में चलने के बाद। तो तब आए तो मुझे पहली बार देखा तो यहाँ गेट वो सब एंटर किया, देखा तो पहले मैंने कहीं देखा है, कभी देखा हुआ है, कभी सुना हुआ। तब आते ही क्या हो गया, एक गीत बजा, तब तो गीत बजा तो मैं अपनी दीदी को बोल पूछ रही थी, ये गीत आपने सेंटर पे लगाई थी क्या, ये गीत मैंने कहीं सुना है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये जो सृष्टि चक्र चलता है, फिरता रहता है, वैसा एहसास मुझे तब हो गया था, ये मैं सुनी सुनी हूँ, देखा हुआ है, मैं पहले मैं रह चुकी हूँ, ये कहाँ हुआ है, ऐसे जिंदगी में कहीं हो गया होगा अपने अपनी इस जिंदगी में, कब हुआ था वो मुझे याद नहीं, वो याद आता रहता था मुझे पहली बार आए तो। बाद में हर साल आने लगे, साल में दो बार आने लगे, तीन बार आने लगे, बाद में क्या हो गया, वीआरएस लेके खायम अपने यहाँ रहने के लिए आ गए।
2: अच्छा।
3: तो कुछ भी नया लगा ही नहीं हम लोगों को,
2: जी जी जैसे आपको ऐसा लगा पहले भी आके
3: पहले भी आके रहते थे, अभी भी आ रहे, इसमें क्या बड़ी बात है, सब अपने हैं, अपने भाई बहन है, ऐसा फील होने लगा, आराम से रहने लगे।
2: जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं आई,
3: कुछ भी नहीं, न खाने अच्छा की, ना पीने की, ना हवा की, कुछ भी दिक्कत
2: आप
3: नहीं।
2: रोड आपको पसंद आ गया,
3: पसंद आ गया।
2: बहुत ही सुंदर अनुभव है सौम्या जी आपके। और कार्यक्रम के अंत में जो हमारे बहने सुन रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं इस बहने सिर्फ बहनों के लिए नहीं कहती, सभी के लिए कहती हूँ, भाइयों के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कहती हूँ। मैं यहाँ पहले से ही आती थी, इस मार्ग में मेरे चलने से मेरे अनेक प्रश्नों का अनेक उत्तर भी मिले। और यहाँ आने के बाद जो भगवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, वो बचपन में जो पढ़ी थी, सुनी थी, कही थी, वो सबके उत्तर यहाँ मिल गए। यहाँ भगवान कहते हैं सबका सार, में शास्त्रों का सार मैं बताता हूँ, ये सच में ये सार ही है, यहाँ मैं सुनने को आ गया, पढ़ने को आ गए यहाँ। और ये एक अजीब सी शांति है यहाँ, मैं बता नहीं सकती, जैसे मीठा खाने के बाद उसकी अनुभव सुना नहीं सकते, वैसे मेरा अनुभव है। यहाँ आने के बाद यहाँ कोई नहीं अपना, मगर सब अपने हैं
2: जी,
3: ये यहाँ की हकीकत है, ये सच है यहाँ की
2: जी।
3: ये हम लोगों ने यहाँ ये अनुभव किया है, मेरी जिंदगी का यही सच है। दुनिया भर में कहीं भी सब जगह पे दुख है, कहाँ नहीं है, सब जगह पे सब तरह की दुख है, सिर्फ हम लोगों को यह ऐसा नहीं लगता, ये युद्ध चल रहा है, ये बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा है, ऐसा नहीं, अपने मन में भी बहुत सारे दुख है, ये ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा, हर किसी के ऊपर भी एक आरोप लगता है सोचे तो उस आरोप, उस दुख की दुनिया, उससे हम बाहर आ गए और अपना मनस्थिति को ऐसा कर दिया, उज्ज्वल कर दिया, निर्मल कर दिया, ये ज्ञान अपना आध्यात्म जीवन ऐसा कर दिया हमको, और ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। मैं तो ऐसा समझती हूँ जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता जा रहा है, ऐसे ही मैं यहाँ आकर उड़ रही हूँ।
2: क्या बात है,
3: और ऊपर उड़ रही हूँ मैं।
2: बहुत सुंदर सौम्या जी, बहुत अच्छा अनुभव आपने किया है और बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव सुनाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने अनुभव सुनाया इसके लिए।
3: थैंक यू, आपने बुलाए, आपको भी धन्यवाद।
2: तो श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम सौम्या जी से। सौम्या जी, जो पूरा जीवन आप बेंगलोर में रहे, अभी आपकी 55 साल की उम्र है और अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रहते हैं, लेकिन आपके अनुभव बहुत ही गहरे रहे, आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं और यहाँ आकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खुश है, दुनिया में इतना दुख है लेकिन हम बहुत खुश है, हम उड़ रहे ऐसा महसूस होता है। तो सचमुच ऐसी नारी शक्ति देखिए जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए सोच लिया कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, मैं पूरे विश्व की माँ हूँ, एक और दो की नहीं। तो आप निस्वार्थ रूप से सेवा भी करते हैं, दीन दुखियों का मदद करते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव सुनाना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति। आज 23 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। बाबा कहते ये बच्चों की पुकार है कि हे परमात्मा, हे पिता, आप अपना रूप बदल कर आकाश का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ जाओ। आकाश का सिंहासन, कौन से आकाश का? बाबा कहते हैं ये 5 तत्वों की दुनिया वाला आकाश नहीं, परंतु बच्चे जानते हैं कि परमात्मा ब्रह्म महतत्व के निवासी है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपना निराकारी लोक को छोड़कर या उस ब्रह्म लोक को छोड़कर साकारी दुनिया में साकारी रूप बदल करके आओ। बाबा कहते ये है साकारी दुनिया, वो है निराकारी दुनिया, बीच में है सूक्ष्म वतन यानी सटल वर्ल्ड, या जिसको कहा जाता है आकारी दुनिया। तो बाप अपना निराकारी स्वरूप बदलकर इस धरती पर आते हैं। किस लिए आते हैं? बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए। बाबा आकर के सबसे पहले ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपनी बुद्धि को बहुत विशाल बनाना है। नई नई बातें बाबा रोज सुनाते हैं, ये रूहानी बातें हैं, और इसीलिए रूहानी बाप आकर के ही ये रूहानी बातें हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को स्पिरिचुअल लीडर बनना है, सबको समझाने की हिम्मत दिखानी है। जैसे कोई छोटा बच्चा हिम्मत का काम करते हैं तो उसको भी टाइटल देते हैं, तो वैसे ही बाबा कहे तुम्हें बाप का नाम बाला जरूर करना है। इसीलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तुम अपने 84 जन्म को भी अभी जान गए हो कि कैसे हम भी आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है, रूप बदल करके और ये साकारी चोला धारण किया है। तो बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया और स्वयं का भी ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान को जीवन में धारण करना है और बाप को याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर है स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है, बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं,
बुलाते भी है, हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो। बाबा कहते बुलाते भी है कि हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं, तुम भी तो वहां के रहने वाले हो, ब्रह्म महतत्व व निराकारी दुनिया में, तुमने भी रूप बदला है, ये कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है, वह है निराकारी वर्ल्ड, यह है साकारी दुनिया और वह है आकारी दुनिया। सूक्ष्म वतन सटल वर्ल्ड को कहेंगे आकारी दुनिया, वह अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है, हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सबसे पहले बाबा निराकारी दुनिया से आने से पहले सूक्ष्म वतन को रचेंगे। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। ये सूक्ष्म वतन की रचना सिर्फ संगम पर होती है, बाकी बाबा कहे सारा कल्प मर्ज हो जाता है। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है। ये साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को, मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है परंतु जा नहीं सकते, मूल वतन में कोई जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो, शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो, ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, बल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड अर्थात निराकारी दुनिया, परंतु ये पता नहीं है कि वह कैसी होती है। पहले तो आत्मा कोई नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर क्या करते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं अर्थात आत्मा की अनुभूति कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है, वो सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड मुआफिक भरा हुआ है, जैसे सब कुछ आत्मा में भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनाते थे, बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूं जो तुम आगे नहीं जानते थे, वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसीलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाते हैं, ब्राह्मण ही यह दैवी झाड़ बढ़ता है, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटा आता है ये दैवी झाड़, बाबा कहे देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी, भारत देश कितना बड़ा है लेकिन नक्शे में देखो तो कितना छोटा दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मनाभव अर्थात अलफ को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है, तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण है फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, बच्चे समझा सकते हैं
जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं, फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे, यह तो समझते हैं हम इस दैवी कुल के हैं। हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे, अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। बल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहते हर एक का आने का समय भी अपना अपना है, जाएंगे इकट्ठे आएंगे थोड़े थोड़े, ये तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे, बाप को बुलाते ही है बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, ये कहां से आए फिर कहां गए? बाबा कहते लक्ष्मी नारायण कहां से आए कहां गए जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे ये रावण की परछाया जो पड़ी है, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। बाप समझाते हैं बच्चे ये रावण की परछाया जो पड़ी है, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको भी है नहीं। हमारी ये नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना, तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे यह तो कभी नहीं सुना, शिव भगवान वाच, हम तो श्री कृष्ण भगवान वाच सुनते आए थे। बाबा कहते हैं वो कहेंगे यह तो कभी नहीं सुना शिव भगवान वाच, हम तो श्री कृष्ण भगवान वाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो, अर्थात सब कुछ नया सुनते हो। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहां चला गया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं, ये हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हो, किसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसको पता ही नहीं है, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहां तक चला यह भी किसको पता नहीं, तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता है, किसकी भी बुद्धि काम नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, यज्ञ में उस समय तो दादियां भी बहुत छोटे छोटे थे, तो बाबा कहे तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, यह है बहुत सहज। भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी है, यहां तो हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनास्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाए तो समझेंगे, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई के पास है नहीं। ये आध्यात्मिक ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और किसी के पास है नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है, परमपिता ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी
कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, हमको बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएं तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, गॉड नॉलेजफुल है ना। गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, परमात्मा ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल है, आनंद का सागर है, लिबरेटर गाइड है, परंतु कहां ले जाने वाला है? मुक्ति दे करके गाइड बन करके कहां ले जाने वाला, ये कोई नहीं जानते। ये बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है, आनंद का सागर भी कहा जाता है। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, हेल को रावण राज्य कहा जाता है। ये नॉलेज किसको भी बैठ सुनाओ, झट कहेंगे ये सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा कहते परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्र की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। ये बच्ची भी बाबा के सामने, जयंती दीदी बैठे थे तो बाबा कहते ये बच्ची भी लंदन में वहां अपनी टीचर को समझा सकती है, वहां लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आते हैं, वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें ये बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, ये तो आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले हैं, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। यह फिर कहेगी ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं, वह है बीज रूप। यह उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल, बीज ही सारा ज्ञान रखता है सारे वृक्ष की। बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना, ये वैरायटी रिलीजन का झाड़ है, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है, डीटी रिलीजन माने देवता धर्म इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य, आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर ये बच्ची भाषण करे और समझाए कि ये वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, कैसे बढ़ता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं, ये बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिले, छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बाप को तो ये होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए, स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ नॉलेज देते हैं। श्री कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है, गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, वह बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं, जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था,
बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहां थी? शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। ये तो कहानी है, 5000 साल की कहानी है। कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो ये पक्की याद होनी चाहिए, ये कहानी पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूं। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ये जाकर नॉलेज देंगे तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ, बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था, भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत हेवन बना, वह कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं, क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे ना सके। तुम अभी फर्क समझते हो उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं, उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया बच्चे का, ज्ञान दिया फादर ने और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। सतयुग में श्री कृष्ण को ये नॉलेज है नहीं। नॉलेजफुल है ही फादर, परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। कितनी अटपटी बातें हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब तो नॉलेज है नहीं, कितना सूत मूंजा हुआ है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं। बाबा जयंती दीदी के साथ और भी जो बहनें बैठी होंगी तो उनको देखकर कहते हैं, ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। ये बैठ लिखे फिर देखे हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है, फिर याद करके लिखे। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम बाला हो जाएगा। यहां से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, ये जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है, चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत उच्च मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। यह है पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया जैसे कैसी है बाबा के, स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, इनसे बांस आती है। वह है सोने की दुनिया, यह है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहां ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। ये खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आएगा। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए? भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे। पता नहीं बच्चों को क्यों भूल जाता है, नहीं तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी चीची गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वमान में स्थित रहे, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाते हैं और मान शान में आ जाते हैं तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। इसीलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जितना दाता बनते हो उतना भरता जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों नहीं दाता बनो। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए स्नेह और सहयोग भी देना है। अगर ये हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। अच्छा।